बादशाह ने कहा उसे मेरे पास लाओ, मगर जब शाही फरिश्तादा यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है

यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके हां हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे ना आशना थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना, देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूं और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूं। अगर तुम उसे न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी न भटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब उसे भेजने पर राजी हो जाएं और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गल्ले के एवज जो माल दिया है वो चुपके से उनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस फयाजी पर एहसान मंद होंगे, और अजब नहीं कि फिर पलटें। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं और उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बारे शुतर और ज्यादा भी ले आएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं उसको हरगिज़ तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान न दे दो कि इसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने पैमान दे दिए तो उसने कहा, देखो, हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है।

0: جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللهم انی اصبحت اشہدک

0: मांग किससे रहा हूँ भाई?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सुभान अल्लाह।
1: यानी मांगते हुए अपने आप को ये ना सिर्फ छोटा ना समझे, छोटी चीजें ना मांगे, मांगे
0: सही।
1: अल्लाह सुभान ताला के लिए कोई बात नहीं, वो हर शय को मालिक है और वो आपको कुछ भी दे सकता है। तो इस वजह से कहते हैं कि अल्लाह से जब मांगते हो दिल खोल के मांगो।
0: क्या बात है भाई, बिल्कुल कोई कसर ही नहीं छोड़नी चाहिए ना, क्यों नहीं। और अल्लाह ताला जब भी मोमिन हाथ उठाता है अल्लाह की तरफ तो उसको दुनिया में मिलता है और भाई जखीरा होता रहता आखिरत के लिए।
1: बिल्कुल,
0: तो मांगते रहिए।
1: तो अल्लाह के जो वस्फ यहाँ लाया गया है सिफत आयत के आखिरी अल्फाज में देखिए, इन्नका अंतल वहाब, तू ही वहाब, अल वहाब यानी बहुत ज्यादा बार बार और बेहिसाब अता फरमाने वाला। ठीक है, तो यहाँ कुरान दुआ का जवाब भी हमें बताता है कि आगे क्या हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जमीन की अजीम सल्तनत मांगी थी तो रब्बुल आलमीन ने उनके लिए क्या किया, हवा को मुसख्खर कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है फसखरना लहु रीहा तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैथु असाब, हमने हवा को उनके ताबे कर दिया जो उनके हुक्म से नरमी के साथ चलती जहाँ वो चाहते।
0: भाई वाह, बट एक मिनट तला भाई, यानी भाई घोड़े उस टाइम पे तो घोड़े ही होते थे जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, लेकिन अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा ही ट्रांसपोर्ट बन गई। सुभान अल्लाह, और वो भी ऐसी हवा जो उनके हुक्म से चले।
1: देखें यहाँ दरअसल घोड़े की बात आपने यहाँ लाई है तो ये बहुत ही एक सही एक कंपैरिजन है। तो इससे पहले हमने घोड़े का किस्सा जिक्र किया था, अब अल्लाह सुभान ताला ने उनको जो हवा मुसखर कर दी वो घोड़े से कहीं ज्यादा रफ्तार में तेज है।
0: सही,
1: घोड़े की अपनी रफ्तार है, अपनी ताकत, अपनी हद है, लेकिन यहाँ अता का पैमाना ही बदल गया।
0: वाह,
1: फसखरना लहुर्री, हवा उनके लिए मुसखर कर दी गई। और दूसरे मकाम पर कुरान इसकी रफ्तार की एक झलक दिखाता है, गुदुवुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन, उसका सुबह का सफर एक महीने की मसाफत और शाम का सफर भी एक महीने की मसाफत के बराबर।
0: सुभानअल्लाह,
1: यानी वो फासले जिन्हें आम सफर में तवील मद्दत दरकार होती है अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए समेट दिए। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, कुरान एक और लफ्ज इस्तेमाल करता है, रुखाअन, अच्छा नरमी और सहूलत के साथ। तसव्वुर कीजिए आज हम दुनिया के जदीद तरीन जो जहाज में बैठे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, तो फिर ऐलान आता है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, आगे कोई मसला आने वाला है, फिजा खराब हो तो जहाज हिलना शुरू कर देता है, रास्ता तब्दील हो सकता है, लैंडिंग मौखर हो सकती है।
0: सही,
1: लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए
0: ये कोई मसला ही नहीं था।
1: रुखाअन हैथु असाब, यानी नरम नरमी के साथ, हवा की रफ्तार है, हवा की भी अपनी रफ्तार है और सफर भी हमवार है, तो ये तवाजुन बड़ा अजीब है। सुभान अल्लाह,
0: तो भाई बादशाहत का स्केल अब समझ में आ रहा है। सुभान अल्लाह, वही जैसे कि हमने बात शुरू करी कि जब मांगना है तो ऐसा मांगो, अल्लाह ताला देते हैं तो ऐसे ही देते हैं। और यहाँ सिर्फ जमीन या कहना चाहिए किले या पैलेस और आर्मी वाली बादशाहत का ही जिक्र नहीं हो रहा है दोस्तों, नेचर का एक एलिमेंट यानी हवा। भाई वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उनके लिए मसखर है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सोर्स में आगे शैतान का भी जिक्र है।
1: जी जी, यहाँ सल्तनत का दायरा जो है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का, ये सल्तनत और भी वसी हो जाती है, फिजा के बाद जमीन। अल्लाह फरमाता है والشياطين كل بناء وغواص, और शयातीन में से हर तरह के मेमार और गोताखोर भी उनके लिए मुसखर कर दिए गए। तो एक ग्रोह तामीर कर रहा है बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े ढांचे और मुख्तलिफ तामीराती काम, और दूसरा वगवास, समंदर की गहराइयों में उतरने वाला।
0: सुभानअल्लाह, तो यहाँ मैं एक बात और जानना चाहूंगा तला भाई, मतलब शैतीन की बात हो रही है तो इसका मतलब जिन्नात से ही मुराद है?
1: बिल्कुल, शैतीन से मुराद जिन्नात ही है, जैसे कि आपने बताया, मेंशन किया है। तो यानी यहाँ जिन्नात का जो दायरा बहुत वसी है, इसमें अच्छे जो सालेह जिन भी हैं और शैतान जिन भी हैं, सब तरह के हैं, तो उनके लिए ये सब भी मुसखर कर दिए गए थे, तो वो उनके लिए काम करते थे,
0: सबको उनके ताबे कर दिया। यानी एक तरफ कंस्ट्रक्शन ऑन लैंड और दूसरी तरफ डाइवर्स अंडर द सी, क्या बात है, गोताखोर जो जाके समंदर में भी काम कर रहे हैं भाई, सुभान अल्लाह। तो अब ये जो बादशाहत है लिटरली हवा से जमीन और जमीन से समंदर तक, मतलब इतनी वसी होती नजर आ रही है, सुभान अल्लाह।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और यही हकीकत है। कुरान के दूसरे मकामात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए किए जाने वाले अजीम कामों का भी जिक्र आता है, गोया एक ऐसे सल्तनत जिसके वसाइल इंसानी हदूद तक महदूद नहीं। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान में मलिका सबा बिल्कीस का वाकया भी आता है, سلیمان علیہ السلام کے محل میں وہ داخل ہوتی ہیں تو

0: सामने एक ऐसा शफाफ फर्श देखती हैं कि उसे पानी समझ बैठती है। कुरान कहता है قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها उनसे कहा गया महल में दाखिल हो जाइए। सर भाई ये जो आपने आयत सुनी और वाह कहा ना, तो कुरान की तावीरी अंदाज में भी एक वो मजा है। क्या आपको पता चलता है कि बिल्किस की वो मिठास है,
1: सारी चीजें बयान करना बिल्कुल। हम वक्त इतना कम होता सामने कि इसको हम बयान नहीं कर सकते, मतलब पूरा पूरा दिन कम पड़े।
0: अब जरा इसके माने को मैं बता देता हूँ। ये आयत जो इसका माना क्या है, उनसे कहा गया कि महल में दाखिल हो जाइए, जब उन्होंने उसे देखा तो उसे गहरा पानी समझा और अपनी पिंडलियां खोल ली। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया इन्नहु सरहुन मुमर्रदुन मिन क़वारीर, अरे ये तो शीशे से बना हुआ यानी हमवार और शफाफ महल,
1: यानी इतना ट्रांसपेरेंट कि पहली नजर में ग्लास का एहसास ही ना हो और पानी नजर आए। तो भाई आज किसी मॉडर्न बिल्डिंग में ग्लास फ्लोर देखकर हम इम्प्रेस्ड तो हो जाते हैं, यहाँ कुरान एक ऐसी रॉयल सीन का जिक्र कर रहा है जहाँ बिल्किस ने उसे पानी समझ लिया।
0: जी सर भाई, और इसी लम्हे में प्रोग्राम के इस लम्हे में एक मरतबा जरा ठहर कर हम जरा अल्लाह सुबहान तआला ने जो नेमतें दी थीं सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हवा मुसख़र, तामीर करने वाले मुसख़र, गोताखोर मुसख़र, अजीम सल्तनत, गैर मामूली वसाइल, और फिर इन सब के बाद रब्बुल आलमीन फरमाता है हाता अताउना, ये हमारी अता है। देखिए मुख्तसर जुमला है, पूरी सल्तनत को एक लफ्ज़ में समेट दिया गया,
1: सुभानअल्लाह,
0: अताउना हमारी अता,
1: सुभान
0: जिस चीज को देखकर दुनिया कहे अरे कितनी बड़ी सुल्तनत है, हमें तो ये ख्वाबों की तरह नजर आते हैं, ठीक है ना। कुरान कहता है ये सब अल्लाह की आता है, फिर फरमाया फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, अब तुम चाहो तो अता करो, चाहो तो अपने पास रखो, इस मामले में तुम पर कोई हिसाब नहीं, यानी इख्तियार भी दिया, वसत भी दी, इंतजाम भी दिया है।
1: तो दला भाई यहाँ मुझे लग रहा है कि स्टोरी का क्लाइमेक्स किंगडम ही होगा, हवा मिल गई, रिसोर्सेज मिल गए, अथॉरिटी मिल गई, बस इससे बड़ा और क्या। लेकिन सोर्स में आगे जो आयत है वो तो डायरेक्शन ही चेंज कर देती है भाई।
0: बिल्कुल, इस पूरे हिस्से का शायद सबसे खूबसूरत मकाम है कि हम समझ रहे थे काता मुकम्मल हो गई, लेकिन अल्लाह आगे फरमाता है वइन्ना लहू इंदना लज़ुल्फा व हुस्ना मआब,
1: सुभान अल्लाह,
0: और बेशक हमारे पास उनके लिए कुर्ब भी है और बेहतरीन अंजाम भी। यानी मोमिन का तसव्वुर ही आखिरत से रिलेट है ना। तो गोया कुरान कह रहा है कि सुलेमान हवा तुम्हारी खिदमत में है लेकिन ये दुनिया की आता है, जमीन का वसाइल तुम्हारे लिए है ये भी दुनिया की आता है, समंदर की गहराइयां ये भी दुनिया में है, सल्तनत बेमिसाल हो गई ये भी यही रह जाएगी, असल खजाना इंदना हमारे पास,
1: और उसमें भी नवाजूंगा।
0: बिल्कुल,
1: वाह सुभानअल्लाह। जैसा कि हम बात कर रहे थे यानी दुनिया का पूरा किंगडम मिलने के बाद भी कुरान फाइनल सक्सेस को किंगडम नहीं कहता, आखिरी लाइन ये नहीं कि सुलेमान के पास सब कुछ था, आखिरी लाइन ये है कि वह इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फा व हुस्ना मआब।
0: बिल्कुल सर भाई, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक्य को अगर हम आज अपनी जिंदगी के आईने में देखें तो मेरे ख्याल में सबसे पहला सवाल ये बनता है कि इंसान के पास नेमत जितनी है उससे ज्यादा अहम यह कि नेमत उससे कहाँ ले जा रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास घोड़े थे, कुव्वत थी, वसाइल थे, फिर अल्लाह ने हवा को भी उनके लिए मुसख़्खर फरमाया और एक बेमिसाल सल्तनत अता की, मगर कुरान का तारुफ उन चीज़ों से नहीं कराता बल्कि फरमाता है निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, क्या ही बेहतरीन बंदा जो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था।
1: तो यानी तला भाई हमारी लाइफ में भी सवाल ये नहीं कि मेरे पास कितना है, सवाल ये है कि जो मेरे पास है वो मुझे अल्लाह सुभान व तआला के करीब कर रहा है या अल्लाह से गाफिल है ना। करियर हो, पैसा हो, पोजीशन हो, टैलेंट हो, नेमत का जो साइज है ना वो मायने नहीं रखता, नेमत का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है।
0: बिल्कुल सामिन इकराम, और दूसरा सबक जो हमें मिलता है इस वाक्य का कि वो जिंदगी में लग्जिश आजमाइश के बाद जो हमें सवाल करना चाहिए यानी जो हमारी सोच होनी चाहिए वो ये कि आप किस तरफ पलटते हैं। सवाल ये नहीं कि भाई क्या हुआ है, अब क्या हो गया ये वो, नहीं, आप आके आपने किसकी तरफ रुख करना है। कुरान ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया तुम माना, फिर वो अपनी तरफ अपने रब की तरफ लौट आए। तो दो लफ्ज हैं लेकिन जिंदगी का पूरा उसूल इसमें है। इंसान से गलती हो सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं, कोई नेमत हाथ से निकल सकती है, लेकिन मोमिन की कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके पास एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, इनाबत यानी अल्लाह की तरफ वापसी।
1: मतलब यहाँ मुझे लगता है कि हम अक्सर उल्टा ही करते हैं तलब, जब गलती होती है तो

0: या तो एक्सक्यूजेस बनाते हैं या शर्मिंदगी में फंस जाते हैं. क्या कहते हैं अब क्या फायदा,
1: मायूसी जिसे कहते हैं.
0: लेकिन कुरान का मॉडल ही दूसरा है भाई, और रिटर्न कहा जाता है. मिस्टेक के बाद भी, गलती के बाद भी ईगो नहीं, रुजू है ना. वीकनेस के बाद भी होपलेसनेस नहीं, दुआ. और सेटबैक के बाद भी अल्लाह सुभान व तआला से डिस्टेंस नहीं, अल्लाह के और करीब.
1: और बिल्कुल जैसा कि आपने किस्से में भी देखा होगा सर भाई, कि यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जो भी मुश्किलात पेश आई, तो गलती और उन्होंने गलती की या नहीं, ये असल सवाल नहीं. ये कि उन्होंने दुआ की शुरुआत में भी माफ़ी ही से, माफ़ी की तलब ही से उन्होंने दुआ शुरू किया. तो इसमें हमें एक मिसाल मिलती है बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में भी. वो दुआओं के इब्तिदा में इस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला से माफ़ी मांगते थे, और ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार ये पूछा भी गया था कि आप इतने मगफरत क्यों तलब करते हैं, आपके तो पहले पिछले और आगे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफला अकुन अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं. तो सुलेमान अलैहि सलाम भी अंबिया इकराम का शेवा यही था, रब अग़फिर ली व हब ली, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझे अता फरमा. तो कमी का एहसास हर वक्त आप में होना चाहिए. बाज़ औक़ात हम अपने एहसासात को बहुत ज़्यादा बुलंद कर लेते हैं, और वो समझते हैं कि भाई हम तो बहुत काम कर रहे थे. अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको जितनी नेमतें दी हैं, इसका हकीकी शोर अगर आपके पास हो तो आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ कुछ ही नहीं है. तो रब अग़फिर ली, अल्लाह के करम से यानी आप अल्लाह की मगफरत भी तलब करें, और साथ साथ बड़ी उम्मीद भी हो, वहब ली, और उम्मीद भी कैसा वहब ली, मुल्क यानी ऐसी बादशाहत जो कभी किसी को बाद में न मिले.
0: क्या बात है, सुभान अल्लाह. तो भाई अब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ जाता है, तो अगर आज की पूरी स्टोरी को अपनी लाइफ में लेकर जाएं तो शायद फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जैसे कि तला भाई ने समझाया और मेरे समझ में आया कि भाई नेमत मिले तो शुक्र, इम्तिहान आए तो सब्र, गलती हो तो वापसी, जरूरत हो तो दुआ, और वहीं अगर सक्सेस मिल जाए, आप कामयाब हो जाए, तो इंसानियत, और हर हाल में फाइनल डेस्टिनेशन अल्लाह का कुर्ब.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और तीसरा सबक, इस पर हम हमारे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, और वो सबक है वसाइल से मोहब्बत और दुनिया परस्ती. देखें ये दोनों दो बात होती हैं, एक चीज़ नहीं. सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उम्दा घोड़े थे, वो उनमें दिलचस्पी रखते थे, उनकी देखभाल करते थे, बाद में अजीम सल्तनत और बेशुमार वसाइल भी मिले. इसलिए दीन हमें ये नहीं सिखाता कि अच्छा अगर अच्छी सवारी, कामयाब बिजनेस या वसाइल बजाते खुद ये बुरे हों, बात ऐसी नहीं. असल सवाल ये कि ये चीज़ें आपके हाथ में हैं या आप किसी ख्वाहिशात के पीछे इन चीज़ों को जो है ना ख्वाहिशात की मातहत काम कर रहे हैं. तो नेमत जो है ना, ये चीज़ें आपके मालिक ना बन जाए, बल्कि आप इनको अपने आपके रब्बुल आलमीन जो है आपके जो मालिक है उनके इरादे के मुताबिक आप इनको सर्व करें और इनको आप कंट्रोल करें.
0: तो भाई हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम आप अल्लाह ताला से ज़रूर मांगें, और अल्लाह हमें सिर्फ दुनिया की कामयाबी ही नहीं दे, ये सिर्फ मत कहिए, बल्कि वो कामयाबी भी अता फरमा जो हमें तेरे करीब रखे. यही कह सकते हैं जाते जाते, और इसी के साथ हम प्रोग्राम की क्लोजिंग भी करते हैं.
1: अल्लाह सुभान व तआला हमें भी उनके अपने खजाने से हर खैर और हर भलाई की तौफीक दे.
0: आमीन
1: आमीन या रब्बल आलमीन. इन्हीं दुआओं के साथ हम आज के इस हलके से इजाजत चाहते हैं. मुलाकात होगी बिइज़्निल्लाह ताला आइंदा हलके में.
0: आइंदा हलके में मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही एक अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है खून की कमी। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? जैसे कि अक्सर देखा गया है कि कुछ अफराद को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं या फिर सांस फूलने का शिकार होते हैं, ये खून की कमी की अलामत हो सकती है। इसी तरह से एक जो लड़की है वो रोजाना स्कूल जाती, थकी थकी वापस आती, जब चेकअप करवाया गया तो पता चला कि आयरन की कमी है। और फिर जब उसने सब्जियां, गोश्त और फ्रूट खाना शुरू किया, चंद माह में सेहत बहाल हो गई। अब ये कि ये बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि आयरन की कमी सबसे बड़ी वजह है। विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से भी जो खून की कमी है वो हो सकती है। इसी तरह खवातीन में पीरियड्स के दौरान खून का ज्यादा नुकसान हो, ये भी एक वजह हो सकती है। तो उसमें फिर थकन महसूस होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, चेहरा पीला नजर आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर तीसरी जो खातून है वो खून की कमी का शिकार है। तो फिर करना ये है कि अपनी ग़िज़ा में गोश्त, कलेजी, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां और खजूर शामिल कर लीजिए। खाने के साथ लीमू या माल्टे का रस लीजिए ताकि जो आयरन है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। चाय या कॉफ़ी खाने के फौरन बाद आप ना लीजिए। हामला ख़वातीन को या प्रेग्नेंट जो वुमेन हैं उन्हें बाकायदा आयरन सप्लीमेंट लेने ज़रूरी हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम पूछें कि आज कितने लिसनर्स ने जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खाएं, तो फिर ज़रा सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। और क्या हम या आप जानते हैं कि एक छोटा सा सेब या लीमू का रस आयरन के असर को दुगना कर देता है। तो खून की कमी आम है लेकिन खतरनाक मसला है, थकन और कमजोरी को मामूली ना समझिए। खून की कमी से बचने के लिए सुर्ख और सब्ज खाने अपनी प्लेट में शामिल कर लीजिए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
4: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर, आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
5: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।

0: best of shows on Urdu Radio FM 107. Dil Se Desi. Dil Se Desi.
1: Aap sun rahe hain Wake Up With Doha Wala Kabir. Sirf FM 107 par. Dil Se Desi.
2: कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं सो आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए नहीं तो सररररा पीरी पीरी कर दूंगा तो ये कहानी आपकी तरफ आ रही है एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टोरी आप किसी किसी ने सुनी भी होगी पर कोई दिक्कत नहीं जिसने नहीं सुनी है भाई तो हम उसके लिए आए ठीक है साफ सीधी बात है बाकी डिस्क्लेमर इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है और वही चीज़ इसको और भी हैरत अंगेज बना देती है सो ये असली किस्से के लिए वॉल्यूम बढ़ा ली जाए और शुरू करते हैं ओके आपको आज के किस्से के लिए मैं काफी साल पीछे ले जाना चाहता हूं 1918 की बात है ये जगह एल्टन इलिनॉय तारीख 22 फरवरी वार्डलो परिवार के घर पे एक बच्चा पैदा हुआ एडली वार्डलो ने जन्म दिया एक बच्चे को जिसका वजन जो था वो था 8.7 पाउंड तकरीबन 4 किलो के आसपास और उसका नाम रखा गया रॉबर्ट पर्शिंग वार्डलो ये बच्चा जो था काफी हेल्दी काफी नॉर्मल था और कुछ ऐसा अलग नहीं था रॉबर्ट में एवरीबॉडी वाज रियली रियली हैप्पी लेकिन फिर धीरे धीरे धीरे धीरे रॉबर्ट वार्डलो को जो लोग नोटिस कर रहे थे आसपास रिश्तेदार दोस्त अहबाब उन्हें दिख रहा था कि कुछ तो अलग है इस बच्चे में और वो अलग दिखना 6 महीने में ही शुरू हो गया था जब रॉबर्ट वार्डलो 6 महीने का हुआ तो वो 14 किलो का हो चुका था 14 kgs और जब उसका फर्स्ट बर्थडे आया जब वो महज 1 साल का था तो वो 20 किलो का हो गया था 20 kgs और हाइट जानते कितनी थी 1 साल की इस बच्चे की 3 फुट 3 इंच मां बाप थोड़े कंफ्यूज थे उन्हें लगा कि कुछ तो ऑड है मगर वो एनवायरमेंट को नॉर्मल रखना चाहते थे क्योंकि रॉबर्ट वार्डलो जो था वो सबसे बड़ा बेटा था उनका और बाकी रॉबर्ट वार्डलो के 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें थी तो सबको आपस में खेलने में दिक्कत ना आए अलग अलग थलग ना फील हो इसलिए रॉबर्ट को उनके बीच में ही रखा जाता था कि खेलो कोई दिक्कत नहीं है ऑब्वियसली बाकी भाई बहन मुकाबले में छोटे थे और दिखते भी बहुत छोटे थे मगर जस्ट टू मेक श्योर कि एनवायरमेंट ठीक ठाक है तो मां बाप की कोशिश रहती थी कि इन्हें अलग ना लगे चाहे कितनी मुश्किल हो लेकिन रॉबर्ट वार्डलो उसे थोड़ा ऑड फील होने लगा था जब वो 5 साल का हुआ ना सिर्फ 5 साल का तो रॉबर्ट वार्डलो ऑलरेडी 5 फुट 4 इंच लंबा हो चुका था आप जरा सोच के देखिए एक 5 साल का बच्चा और मैं बोलूं 5 फीट का है अब दिक्कत जाहिर है कपड़े पहनने में आ रही थी उसे जो वो कपड़े पहन रहा था वो टीनेजर्स के साइज के कपड़े थे उसके साइज के तो कैसे 5 साल का बच्चे के कपड़े के साइज क्या होता है आप खुद जानते हैं मुझसे बेहतर जब वो 8 साल का हुआ ना रॉबर्ट वार्डलो तो अपने बाप हैरल्ड वार्डलो की हाइट के ऊपर चला गया था 8 साल की रॉबर्ट वार्डलो की हाइट हो चुकी थी 5 फुट 11 इंच 5 फुट 11 इंच और कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो यह भी आता है कि वो अपने बाप से भी 3 इंच ऊपर चला गया था पर डिफिकल्ट क्या था उसके लिए स्कूल जाना जब स्कूल में एडमिशन उसको हो ही चुका था और इस दौरान स्कूल वाले नोटिस कर रहे थे कि बच्चा बड़ा अलग है होता ना लंबी हाइट वालों को लाइन में सबसे पीछे खड़ा किया जाता है तो वैसे ही रॉबर्ट वार्डलो के साथ था एवरीथिंग वॉज लुकिंग नॉर्मल कि चलो एक लंबी हाइट का बच्चा है जी हमारी क्लास में कोई टेंशन नहीं है सबसे पीछे खड़ा हो जाएगा मगर जैसे जैसे एलिमेंट्री स्कूल में उसकी पढ़ाई आगे जाती रही उसका जो बॉडी का फ्रेम था वो फिट नहीं हो पा रहा था एंड ये बहुत मुश्किल बात थी क्योंकि उसके लिए डेस्क बनाना बड़ा मुश्किल था उसका बॉडी फ्रेम फिट ही नहीं आता था वो टांगे कैसे फैलाए बेचारा मोड़ तो सकता नहीं बेंड हो नहीं पा रही है तो वो क्या करे तो इस रियल लाइफ जायंट के लिए ऑफकोर्स बच्चे मजाक उड़ाते थे लेकिन पढ़ाई का थोड़ा जो उसे शौक था उसके लिए वो स्कूल तो जाता था उड़ाने दो मजाक और उसके हिसाब से एक डेस्क बनाई गई जिसपे सिर्फ और सिर्फ वही बैठ सकता था एंड धीरे धीरे बच्चे जो मजाक उड़ा रहे थे वो उसके फैन होते चले गए यानी ही बिकेम अ सॉर्ट ऑफ सुपरस्टार इन द स्कूल और अपनी फ्रेटर्निटी में जो स्कूल के टीचर्स वगैरह थे तो भी स्कूल का तो सेटल हो गया मामला लेकिन घर पे मामला थोड़ा अलग था। घर पे जो उसके भाई बहन थे उनको लोग अपनी गोदी में उठा रहे थे और रॉबर्ट वॉडलो अपने बाप को गोदी में उठा सकता था, वो भी सीढ़ियों पे ले जा सकता था। उसके फादर उस वक्त 68 किलो के थे, 68 kgs, तो बाकी बच्चे तो माँ बाप उठा रहे थे और रॉबर्ट वॉडलो अपने माँ बाप को उठा रहे थे और सीढ़ियों पर चल पा रहे थे। जब 13 साल का हुआ रॉबर्ट वॉडलो, उस वक्त बॉयज स्काउट टीम्स बनाई जाती है ना, तो स्काउट टीम्स में सबसे लंबा बच्चा था रॉबर्ट वॉडलो। 13 साल की उम्र में वो 7'4" का था, 13 साल की उम्र में। बाकी जो बच्चे थे ऑफकोर्स पार्टिसिपेशन कर रहे थे, तो बाकियों के माँ बाप कहते थे नहीं ये बच्चा ऑड सा है, दिक्कत है, पता नहीं क्या, क्योंकि माँ बाप डर जाते थे। इट वॉज बैक इन द डे, उस टाइम लोग अपना दिमाग ही अलग चला रहे थे, लेकिन जो स्काउट लीडर्स होते थे वो कोशिश करते थे कि पार्टिसिपेशन बना रहे, कोई भागे नहीं, सब में दोस्ती बनी रहे। और कस्टम मेड यूनिफॉर्म बनवाई जाती थी रॉबर्ट वॉडलो के लिए, कि उसके लिए ना सिर्फ कस्टम मेड टेलर्ड कपड़े हों बल्कि टेंट भी हो, स्लीपिंग बैग भी हो। जस्ट इमेजिन, स्लीपिंग बैग 7'4" के बंदे के लिए आपको लिटरली अच्छा खासा बड़ा चाहिए। मगर ये परेशानी तो चलो ठीक है, नॉर्मल है, कपड़ों की परेशानी है, ये भी कस्टम मेड बन जाएगा, लेकिन परेशानी जो मेन थी वो थी खाने पीने की। अब ऐसा नहीं कि रॉबर्ट वॉडलो के घर वाले बहुत पैसे वाले थे, ठीक ठाक पैसा था, मगर जो राशन पानी एक बच्चे पे लग रहा था वो बहुत ज्यादा था। खाने पीने के मामले में रॉबर्ट वॉडलो 5 गुना ज्यादा कैलोरीज खा रहा था बाकी नॉर्मल बच्चों से अपनी उम्र के, डेली। अब ये लोग वो समझ रहे होंगे जो रनिंग वगैरह करते हैं, डेली 8,000 कैलोरीज लगती थी रॉबर्ट को, खाता ही खाता था वो। उसका टिपिकल ब्रेकफास्ट जो रॉबर्ट को चाहिए होता था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। जब वो 13 साल का था तो वो 8 अंडे खाता था, 12 स्लाइस ऑफ टोस्ट ब्रेड, बहुत सारा ऑरेंज जूस, 5 कप 6 कप कॉफी और बहुत सारा सीरियल खा के ही वो टकार लेता था, उससे नीचे बात ही नहीं। घर वाले जैसे जैसे मैनेज कर रहे थे, क्या कर सकते हैं, घर का बच्चा है। रॉबर्ट की हाइट लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जब लग रहा था कि अब अभी बहुत हो गया, लेकिन रॉबर्ट की हाइट बढ़ती जा रही थी। रॉबर्ट जब 17 साल का हुआ इन 1935 तो वो 8 फुट क्रॉस कर चुका था, टॉलेस्ट टीनेजर एवर बन चुका था। रॉबर्ट वॉडलो की आवाज अब सुन सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, इस कहानी के बाद सुनिएगा। आई विश मैं आपको यहां सुना सकता, मगर आप सुनिएगा, आपको पूरा उसकी आवाज में उसका इंट्रोडक्शन देना सुनाई दे जाएगा, एंड यू विल बी शॉक्ड टू हियर हिज वॉइस। वो बच्चों के साथ, अपने उम्र वाले बच्चों के साथ बास्केटबॉल बेसबॉल खेलने की कोशिश करता था। आप इमेजिन कि बच्चे उसकी उम्र के 17 साल के 16 साल के जो बास्केटबॉल खेल रहे थे उनका खेलना और रॉबर्ट वॉडलो का खेलना, जाहिर सी बात है बहुत फ़र्क है। तो उसे बास्केटबॉल खेलने से रोक दिया गया, स्कूल वालों ने बोला कि भाई तुम तो ऑलरेडी 8 फुट के हो, तुम्हारे लिए बास्केटबॉल का क्या ही मतलब है, तो उसे बास्केटबॉल से हटा दिया गया। बेसबॉल, उसके हाथ में जो बेसबॉल बैट पकड़ा था तो लगता था जैसे कोई टूथपिक पकड़ी उसने हाथ में, इट लुक्ड वियर्ड। तो उसे जितने भी खेल पसंद थे उन सब से उसे रिश्ता नाता तोड़ना पड़ा। रॉबर्ट वॉडलो कोई फेमस होना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात फैल चुकी थी, और ऐसे में कुछ डॉक्टर्स, एक टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम बार्न्स हॉस्पिटल सेंट लुई, वो पहुंचे थे रॉबर्ट के पास और 1929 में आ गए थे और उन्होंने बता दिया था उसे कि ये हाइट बढ़ना, इतना लाइम शेम होना, ये एक बीमारी है, हाइपरप्लेजिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इस कंडीशन में होता ही है कि रैपिडली बहुत स्पीड से लगातार इंसान को बढ़ाने वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होते रहते हैं जरूरत से ज्यादा। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है HGH। अब इसका कॉमन कॉज क्या, ऐसा होता क्यों है, ओवर एक्टिव पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों होता है, इसका रीजन है दिमाग के हिस्से में एक ट्यूमर का होना जिसे एडिनोमा कहते हैं, जिसे ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ते ही रहते हैं। आज की तारीख में सर्जरी करके हटा दिया जाता है, कोई मुश्किल नहीं है आज, इट इज स्टिल एक्सट्रीमली ईजी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा रॉबर्ट वॉडलो उस टाइम का इंसान है जब किसी ने ये सब देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, तो इट वॉज क्वाइट न्यू फॉर एवरीबॉडी, किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी होता है इतना लंबा आदमी। उस वक्त लोग ये नहीं सोच रहे थे कि ये मेडिकल कंडीशन हो सकती है, लोग सिर्फ ये देख रहे थे बाप रे भाई इसकी हाइट देखो भाई। और जब ये पता लग गया था कि ये बीमारी है तो रॉबर्ट वार्डलो के माँ बाप के पास बहुत सारे लोग आए जिनको रॉबर्ट वार्डलो के खानदान ने बुलाया था कि आप प्लीज सर्जरी करिए सर्जरी कीजिए, लेकिन डॉक्टरों की जमात जो घर पे पहुंचती थी उनमें से कोई भी सर्जन कॉन्फिडेंट नहीं था सर्जरी करने के लिए, नो बडी वॉज रेडी। एंड उनके रीजन भी अलग अलग थे, किसी का रीजन ये था कि हमारे जी हॉस्पिटल में इनको कहाँ लिटाएं जगह ही नहीं है, अजीब गरीब बहाने देते थे, लेकिन किसी ने भी सर्जरी करने के लिए हामी नहीं भरी। रॉबर्ट वार्डलो को बचपन से एक मजाक सुनने को मिलता था और उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी कि भाई मैं इस मजाक से ऊब चुका हूं, लोग उनसे कहते रहते थे और रॉबर्ट भाई ऊपर मौसम कैसा भाई बादल कब आएंगे, और ये वो सुन सुन के रॉबर्ट थक चुका था। जब वो 18 साल का हुआ तो उन्होंने एक मेमोआर भी लिखा, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि प्लीज कोई नया मजाक लेके आओ, मैं थक चुका हूं इस मौसम वाले मजाक से, आई एम डन विद इट। लेकिन रॉबर्ट वार्डलो बावजूद इसके कि लोग कह रहे थे कि तुम बीमार हो, ही वाज क्वाइट हेल्दी, ऐसी कोई खास परेशानी थी नहीं सिवाय एक परेशानी के, उनकी हाइट की वजह से उनके जो लोअर लेग्स थे टांगों के पूरे नीचे तक खून का दौरान नहीं पहुंच रहा था, जिस वजह से वो सुन पड़ जाते थे और वो टिंगलिंग होता ना, वो नीडल पोक करने वाली जो अजीब सी फीलिंग होती है वो फीलिंग आती थी, मतलब वो इस कदर लंबे हो चुके थे कि दिल भी उनका इतना पंप नहीं कर पा रहा था खून कि पैरों के बिल्कुल नीचे तक पहुंचा सके, इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। इसके लिए भी एक मेडिकल टर्म है जिसे साइकोटोनिक कहते हैं, ये अननेचुरली ब्लू पड़ जाते हैं पैर और इंसान को महसूस होना बंद हो जाते हैं। मगर रॉबर्ट वार्डलो फिर भी चैन से बैठने को राजी होता नहीं था। रॉबर्ट वार्डलो को कहा गया व्हीलचेयर में बैठ जाइए बाज आ जाइए, लेकिन रॉबर्ट वार्डलो नहीं बैठता था। जब वो 14 साल के थे तो एक बार वो अपने दोस्त के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने उसे धक्का दिया, वो तो गिर के बच गया, रॉबर्ट वार्डलो जो थे क्योंकि भाग के धक्का दे रहे थे तो वो गिरे और उनकी हड्डी टूट गई पैर की। अब उनको आयरन लेग ब्रेसेस लोहे के बने हुए ब्रेसेस पैरों को जकड़ने के लिए सपोर्ट के लिए दिए गए। पर इससे भी एक परेशानी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल रॉबर्ट की पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि अब तो वो स्कूल में पढ़ लिख के आगे बढ़ चुके थे। रॉबर्ट वार्डलो ग्रेजुएशन कर चुके थे अपनी एल्टन हाई स्कूल से 1936 में और तब उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया एज वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन, टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा आदमी। उस टाइम रॉबर्ट वार्डलो की हाइट थी 8'7". एंड माइंड यू रॉबर्ट इस वक्त सिर्फ 19 साल का था, सिर्फ 19 साल का। अब देखिए हर किसी का सपना तो होता है, आप किसी के सपने को रोक नहीं सकते। रॉबर्ट वार्डलो का भी एक सपना था जो लोग उससे पूछते नहीं थे, सिर्फ माँ बाप को और एक दो दोस्त को पता था। रॉबर्ट वार्डलो वकालत करना चाहते थे। जस्ट इमेजिन रॉबर्ट वार्डलो अगर किसी के वकील हों और अदालत में खड़े हों, एक 8'7" का शख्स खड़ा हुआ है और आपके लिए वकालत कर रहा है, जस्ट इमेजिन। मगर काश ये सच हो पाता, क्योंकि शर्ट लेफ्ट कॉलेज में उन्होंने एनरोलमेंट तो दिखाई लेकिन एक सेमेस्टर के बाद ही बेचारा रॉबर्ट वार्डलो आगे वकालत परसों नहीं कर पाए। प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम उनकी हाथ थे। ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, रॉबर्ट वार्डलो वॉज रियली गुड इन स्टडीज, बाद में जाके उनका पढ़ाई में और मन लगने लगा था, लेकिन उनके जो हाथ थे वो 32.3 सेंटीमीटर लंबे थे, कलाई से लेकर अगर मैं ये मिडिल वाली फिंगर तक की बात करूं 32 सेंटीमीटर कलाई से लेकर रिस्ट से लेकर बीच की उंगली तक, तो उनके लिए क्या था, पेन पकड़ना बड़ा मुश्किल था। वो ना पेंसिल पकड़ पा रहे हैं ना पेन पकड़ पा रहे हैं, बेचारा लिख ही नहीं पा रहा है, नोट्स ही नहीं बन पा रहे, तो कहाँ से करेगा पढ़ाई। ही रियली ट्राइड हिज लेवल बेस्ट लेकिन नहीं हो पा रहा था। एक तो उनके लिए जो कॉलेज में बैठने का सिस्टम भी था वो नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि उन्हें पैर सीधे रखने पड़ते थे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, और पैर टेबल के नीचे से निकाल के आगे करने पड़ते थे क्योंकि बैंड नहीं कर सकते और लोग गिरते थे, तो वो तंग आ गए, उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, उनका ये वाला सपना अधूरा ही रह गया बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो एक पेन पकड़ खेल सके। मगर रॉबर्ट वार्डलो की किस्मत में कुछ और लिखा था, ये सपना तो पूरा नहीं हुआ लेकिन कुछ और दरवाजे खुल गए, क्योंकि रॉबर्ट वार्डलो भर भर के फेमस हो चुके थे, उन्हें पब्लिसिटी पूरी पूरी मिल रही थी चारों तरफ से। ऐसे में वो नजर में आए दो भाइयों के, द रिंगलिंग ब्रदर्स। रिंगलिंग ब्रदर्स सर्कस चलाते थे और ट्रेवल करते थे अपने सर्कस के साथ। और जानते ना, पहले सर्कस की बहुत बहुत कदर हुआ करती थी। तो रिंगलिंग ब्रदर्स का जो सर्कस था वो ऐसा था कि एक तो बड़ा एक्ट होता था जो बिल्कुल फाइनल होगा, और छोटे छोटे लोगों के साथ भी वो लोग एक्ट करते थे। छोटे छोटे लोग माने जिनके साथ मेडिकल कंडीशन है, वो ट्रैवल करते थे अपने कार्निवल के साथ। और इसमें रिंगलिंग ब्रदर्स बड़े बड़े नाम थे, पीटी बर्मन, डॉबरिज इंटरनेशनल, बड़े बड़े नाम थे सर्कस में। तो मेन शो और साइड शो, साइड शो में क्या होता था, भाई कोई औरत है वो उसकी दाढ़ी है उसको ले लिया, जुड़वा बच्चे हैं साथ में जुड़े हुए भी हैं ले लिया, एक बंदा है जो हड्डियां मोड़ सकता है उसकी हड्डियां ऐसा लगता है ही नहीं, मसल पूरे मोड़ रहा है उसको ले लिया। ये सारे लोगों को मौका मिलता था पैसे बनाने का, और ऐसे लोगों की तलाश में सर्कस वालों की नजर पड़ गई रॉबर्ट वॉडलो पे कि एकदम परफेक्ट चॉइस है भाई, इसको हम खड़ा कर देंगे, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी। तो सर्कस में इंट्रोड्यूस किया गया रॉबर्ट वॉडलो को एज एल्टन जायंट, जायंट ऑफ इलिनॉय, बहुत फेमस हुए वो। और साइड शो नहीं, पूरा सेंटर स्टेज दिया गया उन्हें, पूरे के पूरे कंट्री में एक ही आदमी का सिक्का चल रहा था, हर कोई चाहता था रॉबर्ट वॉडलो उनकी तरफ आ जाए बस। पर रॉबर्ट वॉडलो सर्कस में जब थे तो उन्हें कलाकारी का शौक नहीं था, कोई रंगारंग कार्यक्रम करने का उनका मन भी नहीं था, वो एक ही शर्त पे काम करने को तैयार होते थे। वो सर्कस वालों से कहते थे, देखो मैं अपने अब्बा के साथ आऊंगा, साफ सीधी बात है, और हम दोनों को एक होटल स्वीट में एक बढ़िया सा कमरा चाहिए और सारा एक्सपेंस आप लोग उठाएंगे, ये वाली शर्त होती थी। तो सर्कस वाले मजबूर थे, देना ही पड़ते थे, कंडीशन पूरी करनी पड़ती थी। और जो परफॉर्मेंस थी उसके दौरान रॉबर्ट वॉडलो को कहा जाता था, सर आपको ये हैट पहनना पड़ेगा, थोड़ा चाहते थे कार्टून की तरह दिखे, लेकिन रॉबर्ट वॉडलो ना वो एक बिजनेस सूट पहन के आते थे और बोलते थे मैं नहीं पहनूंगा, मेरी भी कोई इज्जत है, और डटे रहे वो इस बात पे। और रॉबर्ट का ये डटे रहना और अपनी इज्जत को संभाल के रखना बहुत फायदे का सौदा रहा, क्योंकि फिर रॉबर्ट वॉडलो पे नजर पड़ी एक जूता बनाने वाली कंपनी की, पीटर शू कंपनी 1938 में। और उन्होंने कहा, जी आप हमारे लिए बढ़िया हैं, आप ही हमारे जूते का प्रमोशन करेंगे। अब ये बहुत खूबसूरत बात इसलिए थी क्योंकि रॉबर्ट जो थे वो बेचारे परेशान थे अपने शू साइज से, 47 सेंटीमीटर्स, दुनिया का सबसे बड़ा पैर। कंपनी ने कहा, देखो रॉबर्ट हम तुम्हें लाइफ टाइम जूतों की सप्लाई देंगे। और ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा बोनस था, क्योंकि रॉबर्ट के जो जूते बनते थे रॉबर्ट वॉडलो के, उन्हें बनाने में $1,000 लगते थे, $100 लगते थे, और आज के $2,000, तो ये तो फ्री में जूते मिल रहे हैं। तो रॉबर्ट ने कहा कि सर्कस को करो साइड में, मैं नहीं कर रहा सर्कस, और ऑब्वियसली वो शिफ्ट हो गए इस जूते की कंपनी के साथ। पूरी कंट्री में डिमांड बढ़ गई थी रॉबर्ट वॉडलो की, और बाप हेनरी वॉडलो, इन दोनों ने मिलकर बहुत रौला पाया पूरी कंट्री में। जो फादर थे हेनरी वॉडलो, अपने बेटी के लिए गाड़ी को जो है मॉडिफाई करना चाहते थे, क्योंकि उनका बेटा गाड़ी में बैठ नहीं पाता था। तो उन्होंने क्या किया, पैसेंजर सीट जो आगे वाली होती है उसे हटा दिया, और रॉबर्ट को कहा तुम आराम से पीछे बैठ सकते हो। तो पीछे बैठ के रॉबर्ट के पैर आगे तक आते थे, तो वो सीट हटाने से उसके लिए थोड़ी आसानी हो गई। बाप बेटे ने माइंड यू 800 टाउन घूमे साथ में कंपनी के साथ, 41 स्टेट्स प्रमोट करते हुए शू कंपनी को, कुल मिला के 500,000 किलोमीटर दोनों घूमे, 500,000। एक कंपनी आ गए, उन्होंने तो ये कह दिया कि हम जो है $7 का अपना इलेक्ट्रिक क्लॉक लैंप देंगे सबको जो जो रॉबर्ट को ग्रीट करेगा। उन्होंने टाइटल भी रख दिया कि वी विल लेट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बॉय गिव यू द बिगेस्ट फ्री गिफ्ट। सब चाहते थे कि रॉबर्ट वॉडलो उसका प्रमोशन करें, पर वो भूल गए थे अभी बच्चा है वो दिखता बहुत बड़ा है। अगर बिहेवियर की बात की जाए तो कभी उसके सर पे सुपर स्टारडम नहीं चढ़ा, आसपास के लोग भी हमेशा कहते थे कि बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छे से बात करता है।

1937 में उसके रॉबर्ट वार्डलो के फादर ने डिसाइड किया कि भाई अपने बेटे के लिए मैं एक घर बनाऊंगा जो सिर्फ उसके लिए होगा, 9 फुट की सीलिंग होगी, 11 फीट की, मतलब सॉरी 9 फीट का तो दरवाजा होगा, 11 फीट की सीलिंग होगी, सीढ़ियां होंगी 2-2 फुट चौड़ी और फर्नीचर भी होगा मेरे बेटे के हिसाब से। उन्होंने 10 फुट का बाथ टब भी बनवा लिया $1,000 खर्च करके उस टाइम के, पर ये सब हो नहीं पा रहा था क्योंकि प्रैक्टिकली खर्चा बढ़े जा रहा है, वो घर लग ही नहीं रहा, कुछ और ही बन रहा है, तो उन्होंने बीच में इसे हॉल्ट कर दिया। रॉबर्ट वार्डलो चाहते थे कि पब्लिक उनको ना जाने, लेकिन कैसे ना जाने, अगर आप एक भीड़ में से आ रहे हैं और कितना भी दूर हो आप, आपको एक ऊपर एक मुंडी नजर आ ही जाएगी अगर रॉबर्ट वार्डलो सड़क पे है, यू कैन नॉट इग्नोर हिम, और रॉबर्ट वार्डलो चाहते थे कि लोग उनको इग्नोर करें, मगर एवरीबडी वॉन्टेड अ पीस ऑफ हिम। एक डॉक्टर साहब थे चार्ल्स हम्बर्ट करके, वो रॉबर्ट वार्डलो के घर गए रिसर्च पेपर लेके कि मैं इस पर रिसर्च करूंगा, पर क्योंकि रॉबर्ट ने कहा कि आप थोड़े रूड हैं, आपके सवाल ऐसे हैं जैसे मैं कोई चूहा हूं और आप मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब जो हैं वो चढ़ गए और उन्होंने बाहर जाके रॉबर्ट वार्डलो के खिलाफ बहुत कुछ कहा कि ये कोई जेंटल जाइंट नहीं है, बड़ा घमंडी है, कुछ अकलमंद नहीं है, ये सब उन्होंने बातें अखबार में कह दी। जाहिर सी बात है रॉबर्ट वार्डलो की फैमिली को बहुत बुरा लगा, उन्होंने केस भी किया, सू कर दिया $1,00,000 के लिए, मिजोरी हाई कोर्ट में एक केस भी गया, लेकिन रॉबर्ट वार्डलो ये केस हार गए। जज साहब ने कहा कि कैसे प्रूव करोगे कि डॉक्टर साहब से तुम्हारी लड़ाई हुई, डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं, उस टाइम पे ये प्रूव नहीं हो सकता था, एंड अनफॉर्चुनेटली ये केस हार गए वो। बहरहाल 1940 में 22 साल के रॉबर्ट वार्डलो चलने में बहुत तकलीफ आ रही थी इनको, तो आयरन लेग ब्रेसेस, वो लोहे के ब्रेसेस टांग में तो थे ही, और एक लाठी लेके केन लेके चलते थे अपने सपोर्ट करके खुद को। उन्हें लेकिन अंदाजा नहीं था कि जो ब्रेसेस उन्होंने पैरों में लगा रखे हैं इसकी घिसड़ उनको लग रही है। रॉबर्ट वार्डलो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वो मिशिगन पहुंचे मैनिस्टी नेशनल फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट फेस्टिवल में शू कंपनी को फिर से प्रमोट करने के लिए, और इसी दौरान उनके पैर में एक छाला पड़ गया, ब्लिस्टर हो गया और वो इन्फेक्शन में बदल गया, और उन्हें पता भी नहीं लगा क्योंकि उनके पैर उन्हें महसूस नहीं होते थे। जब पता लगा तो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वालों ने सबने मना कर दिया, बोला कि आपका इलाज करने के लिए हमारे पास ना तो बेड है ना मैनिटीज हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, और उन्हें वापस भेज दिया। नतीजा इन्फेक्शन बढ़ता चला गया, और रॉबर्ट की हाइट की वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, बहुत वीक। जब इन्फेक्शन हुआ तो उन्हें बुखार चढ़ गया 106 डिग्री। डॉक्टर्स को फाइनली कहा गया कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डबल ट्रिपल बेड्स लगा के उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर उतरे तो सही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की भी कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ खबर आई, जुलाई की 15 तारीख थी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन डेड, ये अखबार में छापा गया। महज 18 दिन के इन्फेक्शन के बाद रॉबर्ट वार्डलो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, उस वक्त भी उनकी बॉडी को नापा गया। जिस वक्त उनकी डेथ हुई, ही वॉज 8 फुट 11 इंचेस, 8 फुट 11 इंच की थे उस टाइम पे, और 200 किलो के। वही लेग ब्रेसेस जिसकी वजह से वो चलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं लेग ब्रेसेस की वजह से उनकी जान गई। अगर वो 1-2 साल और जिंदा रहते तो 9 फीट क्रॉस कर चुके होते फॉर श्योर। उनको एल्टन इलिनॉय में ही दफनाया गया, इन ओकवुड सेमेट्री, मेडिसन काउंटी। उनके फ्यूनरल में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या आ रही थी कि दफनाना भी तो है बंदे को, अब दफनाने के लिए कैस्केट कहां से लेके आए। जो कैस्केट लेकर आ रहे थे, जो ताबूत था, वो 10 फीट का बनाया गया, 10 फीट 9 इंच का, और इसका वजन था 450 किलो। अब उनकी बॉडी को कैरी करके ले जाना सेमेट्री तक कोई आसान काम तो है नहीं। इसमें दर्जनों लोग लग गए उस कैस्केट को उठाने में, उनकी जान निकल गई लोगों की जो कंधा देने के लिए वहां पर आए थे, गाड़ी तक रखने तक ही उनकी जान निकल गई। लेकिन उनके फ्यूनरल में रॉबर्ट वार्डलो के 46,000 से भी ज्यादा पब्लिक पहुंची थी, 40,000 से ज्यादा लोग उनके फ्यूनरल में पहुंचे थे। डेफिनेटली ये 22 साल का लड़का पीछे बहुत कुछ छोड़ के गया था, एक बहुत बहुत बड़ी लेगेसी। 1985 में

0: रॉबर्ट वॉडलो का एक लाइव साइज ब्रॉन्ज का बना हुआ स्टैचू भी इंस्टॉल किया गया उन्हीं के हाई स्कूल में, एल्टन कैंपस ऑफ सदरन इलिनॉय यूनिवर्सिटी में. और तीन और स्टैचू लगाए गए अलग अलग जगहों पे. रिप्लीज बिलीव इट और नॉट का जो म्यूजियम है उनका वहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी है. इनफैक्ट एक और उनका वो बनाया गया पुतला जहाँ पे जब आप खड़े होते हैं तो वो गुब्बारे का बना हुआ है. जब आप खड़े होंगे तो पुतला एकदम से फूल के बड़ा हो जाएगा ताकि आप अपनी हाइट उनकी हाइट से मैच कर सकें. इनफैक्ट एक म्यूजियम है जहां पे उनका पूरा एग्जिबिट आपको मिल जाएगा एल्टन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट में, जहां पे उनके फोटोज मौजूद हैं और रॉबर्ट वॉडलो का जो जूता है वो मौजूद है. तीसरी क्लास में जो उनके लिए डेस्क बनाई गई थी वो भी मौजूद है. ग्रेजुएशन के टाइम पे जो उन्होंने केप और गाउन पहना था वो भी मौजूद है. मगर एक काम जो उनकी माँ ने बहुत बढ़िया किया, रॉबर्ट वॉडलो की माँ ने, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को लेकर लोग बाकी चीज़ें बाकी कमाई करते रहेंगे सालों सालों तक, तो उन्होंने रॉबर्ट वॉडलो की बाकी चीज़ों को जला दिया ताकि दुनिया इससे और प्रॉफिट करने का ना सोचे, विच वॉज़ अ वेरी गुड डिसीजन. तो इतना ही है जो म्यूजियम को दिया गया, वॉलंटरीली दिया गया. और एक ऑर्डर था उनकी माँ को, उनको पता था कि जहाँ पे रॉबर्ट दफनाए गए हैं तो आने वाले वक्त में लोग अपने आप को साइंटिस्ट बताकर वापस इस कब्र को खुदवाएंगे और उनकी बॉडी को एग्ज्यूम कर लेंगे. तो उन्होंने उनकी बॉडी को भी निकाल कर एक अननोन जगह पे कॉन्क्रीट वॉल्ट में दफनाया है. हालांकि वो अननोन जगह बाद में उन्होंने बता भी दी थी, बट वो कॉन्क्रीट वॉल्ट है इतना हार्ड इतना सॉलिड कि कोई ट्राई भी नहीं करेगा. ये कहानी थी रॉबर्ट वॉडलो की, उनकी लेगेसी अभी भी जिंदा है. इफ यू टाइप वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन तो रॉबर्ट वॉडलो का ही नाम आता है. तो इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा. एंड इफ यू हैवंट सीन इट, इन पे एक दो डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है और उनकी रिकॉर्डिंग भी है. रॉबर्ट वॉडलो एक 22 साल के बच्चे की आवाज़ कैसी हो सकती है वो आपको दिख जाएगा. बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं इनकी एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट. मुझे लगता है रॉबर्ट वॉडलो अगर आज की तारीख में जिंदा अगर होते तो वो कुछ टाइम तो और जिंदा रह जाते, बिकॉज जिस कंडीशन में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बस इलाज नहीं था. बहरहाल ये था आज का किस्सा, अब आपके हवाले.
1: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज हाइलाइट्स ऑन FM 107 दिल से देसी.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: आप सुन रहे हैं बेस्ट ऑफ शोज ऑन उर्दू रेडियो FM 107 दिल से देसी.
0: भाई एकदम क्लासिक स्टोरी के लिए तैयार हो जाइए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज आई एम ऑल सेट. आज की कहानी बहुत बहुत खास है. सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है. कहानी किसी किसी एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है. FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूं ना ही कभी देगा. लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इसीलिए ये और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है. ठीक है, तो जैसे पॉजेस के बारे में बात करेंगे उस्मान भाई, मज़ा आने वाला है आपको. वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गेट सेट एंड गो. आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए तो मुझे लिटरली बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा. आइए आपको ले चलता हूं मैं 1876 में. समझ रहे हैं वक्त के पहिए को कितना पीछे घुमाना पड़ा है. 1876 4 जनवरी, जगह ऑस्ट्रिया. एक वर्किंग क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ. इसका नाम था एमेरिक. एमेरिक जो था इसके 4 भाई बहन थे टोटल इसे मिला के, और ये सबसे बड़ा था, भाई और बहन, और ये सबसे बड़ा उनमें से, द मोस्ट क्या एल्डेस्ट. नॉर्मल फैमिली, वर्किंग क्लास फैमिली, ठीक ठाक चल रहा था. मतलब महीने के आखिर में होता ना कि लास्ट जब वीक आता है महीने का तो थोड़ा स्ट्रगल होता है लेकिन कट जाता है मामला, वैसा वाला हाल था इसकी फैमिली का. अब 14 साल की उम्र में कोई इसके पास आया, इनके अब्बा के पास आया और बोला कि लड़के को भेज दो न्यूयॉर्क में, ये काम कर सकता है, बहुत बढ़िया वहाँ पे चीज़ें निकल रही हैं और फ्यूचर वहीं है. अब कंसिडरिंग द फैक्ट कि 1800s की बात हो रही तो यू कैन जस्ट इमेजिन, क्योंकि हम उस वक्त थे नहीं लेकिन हमें इतना पता है कि वो दौर बहुत अलग था आज से. तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया गया. 14 साल की उम्र में घर वालों ने कहा बेटा तुम न्यूयॉर्क चले जाओ, और काम सीखने के लिए, काम करने के लिए एमेरिक सीधा पहुँच गया न्यूयॉर्क.

न्यूयॉर्क में आने के बाद पिक्चर फ्रेम बनाने के तौर तरीकों को उसने समझा, सीखा कि कैसे क्या बनता है, ठीक ठाक काम करता था, इतना कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं था, मगर यह था कि रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो सीख तो लिया। अब काम जब पटरी पे आ गया तो मोहब्बत की रेलगाड़ी भी तो उस पर चलनी है, तो एमरिक को मोहब्बत हो गई उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से जिसका नाम था फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस से उन्होंने शादी कर ली 1902 में, उस वक्त वो 26 साल के थे। एमरिक और फ्लोरेंस इन दोनों के दो बच्चे हुए, एक बच्चा हुआ वॉल्टर नाम का एक लड़का 1903 में, और उसके बाद एक बेटी हुई। फैमिली को फुल सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना ये वाला काम छोड़ के, क्योंकि ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी, उन्होंने फुल मेंटेनेंस मैन बनने के लिए नौकरी ढूंढी, उन्हें मिल भी गई, और उसके बाद एक मेन काम मिला, बिल्डिंग का सुपरिटेंडेंट बनने का मौका, जो उन्होंने फौरन पकड़ लिया न्यूयॉर्क के वेस्ट साइड अपर वेस्ट एरिया में। अब काम ठीक ठाक चल रहा था। फिर आया 1918, स्पेनिश फ्लू, ये पैंडेमिक बहुत लोगों के घर उजाड़ गया, और स्पेनिश फ्लू का शिकार हुई अमेरिक की बीवी फ्लोरेंस, और वो नहीं सह पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, और दुनिया को अलविदा कह के चली गई। डिप्रेशन में आ गया अमेरिक, उनसे काम नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे उन्होंने दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, और फिर वो अपने अपने रास्ते चले गए। अमेरिक अकेले पड़ गए, उनसे काम नहीं हो पा रहा था, नौकरी भी चली गई, लेकिन पापी पेट का सवाल है, खाना तो पड़ेगा, भूख तो हर किसी को लगती है, और इस भूख ने उनसे वो काम करवाया जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कबाड़ जमा करने का काम शुरू किया, वो सड़कों पे निकलते थे और कबाड़ इकट्ठा करते थे, उनके पास एक ट्रॉली थी जिसमें वो कबाड़ को रखते रहते थे, और बस उस कबाड़ को हफ्ते के एंड में बेच देते थे। एक नॉर्मल, बेहद नॉर्मल जिंदगी। एक जगह पे जो वहां पे वो रह रहे थे उसका रेंट था $25, बहुत छोटा सा अपार्टमेंट था ये। उन्होंने अपने बच्चों से कभी कुछ नहीं मांगा, ना उन्हें बताया कि वो कैसे जी रहे हैं। वो हर संडे अपने बच्चों से मिलते थे एक साफ सुथरा कोट पहनकर, ताकि उनके बच्चों को ये ना लगे कि हमारा बाप तकलीफ में है। उनसे जाके मौसम की बात करते थे, इधर उधर की बातें करते थे, टाल देते थे अगर कोई सवाल भी पूछे, और फिर अपने रस्ते चले जाते थे। बच्चों को कोई अंदाजा नहीं था कि उनका बाप कैसी हालत में है, और ना जाने क्यों उन्होंने कभी इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं। मगर अमेरिक यही करते थे, उठते थे, कबाड़ उठाते थे, कहीं पे कोई स्क्रैप कुछ भी मिले और उसको बेचकर अपना काम चला रहे थे। 1938 में ये वाला काम, कबाड़ बेचने का, ये बहुत मेन काम हुआ करता था, मतलब ये जोरों शोरों से चल रहा था, लिटरली इसकी दुकानें तक बहुत सारी थी उस वक्त पे। और ऐसे ही कबाड़ इकट्ठा करते हुए, सड़कों पे घूमते हुए, एक मैले कुचैले कोट में अमेरिक जा रहे थे, और उनको एक छोटा सा एक कुत्ता नजर आया, और वो भी बहुत बुरी हालत में था, मैला कुचैला सा था, और अमेरिक को एक साथी चाहिए था, तो उन्होंने इस कुत्ते को अपने पास रख लिया और उसको नाम दे दिया हेनरी। इस एयर में अमेरिक 62 साल के हो चुके थे, 62 years। हफ्ते में बेचारे बस वही $12-15 कमाते थे, और उसी में अपने आप का भी खाना करना है, अपना खाना भी करना है, और जो उन्होंने कुत्ता भी घर ले आए हैं, ये पेट उनका, इसके लिए भी खाना करना है, और कहीं कोई हायर उन्हें करने नहीं वाला, क्योंकि वो दौर था जहां पे लोग उम्र देखते थे, अरे 62 हो चुकी है, अब तो हायर कर नहीं सकते। और पूरे कंप्लीटली एक अलग किस्म के डिप्रेशन में चल रहे थे अमेरिक। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद लाइफ, और अंदर 19 साल से ये डिप्रेशन उनके पल रहा था। अब आपको लगेगा कि यहां से कहानी बहुत क्रेजी होने वाली है, जैसे कबीर ने इतनी सारी कहानी सुनाई है, एकदम पलट जाएगी कहानी, इट विल टेक अ ड्रास्टिक चेंज, स्पोर्ट्स कार की तरह 0 to 100 इन सेकंड्स, पर नहीं, ये अलग है। उन्हें कुछ नहीं आता था अमेरिक को, ना कोई स्किल कभी सीखने की जहमत उठाई, एक ही चीज सीखी थी, उसमें वो अच्छे थे भी नहीं, बट ठीक ठाक थे। अपने टॉप फ्लोर के अपार्टमेंट में रहते थे, छोटे से अपार्टमेंट में 1938 में। अमेरिक ऐसे बैठे हुए थे,

ये अपार्टमेंट ऐसा था, यूं समझ लीजिए कि बस एक छोटा सा बेड है, पैर तक उनके बेड के बिल्कुल साइड में जाते थे, दीवार से चिपका के सोने की कोशिश करते थे वो, इतना छोटा बेड और एक खिड़की थी और उसके खिड़की के पास एक टेबल लगी हुई थी। वो एक दिन बैठे हुए थे और बहुत थके हुए थे और अब उनकी उम्र, उनका जिस्म उनका जवाब दे चुका था, उनकी बस की नहीं हो रही थी कि वो हर रोज इतना टहल टोल के कबाड़ इकट्ठा करें, पर बेचारे मरते क्या ना करते। तो ऐसे में एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को आराम देता हूं। वो बैठे हुए थे, सिगरेट पी रहे थे और एमरिक ने अपनी जेब से $1 का नोट निकाला। उसे ऐसे घूरते रहे, देखते रहे और शौक शौक में ना वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आए थे। ऐसी उनके लिए कोई मायने नहीं है मैग्नीफाइंग ग्लास के, लेकिन लेकर आए थे। तो उन्होंने टेबल पे रखा नोट को और उसको देखने लगे कि क्या क्या है इसमें। उन्हें समझ में आया कि $1 की जो नोट है इसमें बहुत कुछ है। एक तो उन्हें समझ में ये आया कि ये पेपर जिस पे ये जो कागज़ यूज़ होता है ये कोई नॉर्मल कागज़ नहीं है, मार्केट में नहीं मिलता, ये कॉटन और लेनिन का बना हुआ है, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, इसमें छोटे छोटे टाइनी ब्लैक और रेड सिल्क के फाइबर्स हैं जो इम्पॉसिबल है प्रिंट करना, कोई नहीं कर सकता। मतलब जब तक आप इस नोट को, $1 के नोट को हाथों से फील ना करें, यू वुड नॉट नो। और एमरिक जो थे वो जानते थे कि ये कागज भी ऑफिस बॉन्ड पेपर की तरह नहीं है, मतलब ये बहुत महंगा कागज है। और इसी ख्याल के साथ नोट को देख परख के वो निकल गए ऐसी बाहर। इनकी एक ही आदत थी, जो थोड़ा सा खाना खाते थे, अपने डॉग को खिलाते थे, सिगरेट पीते हुए कबाड़ इकट्ठा करते थे, बेच देते थे, यही काम वो करने निकले थे। अचानक से कबाड़ इकट्ठा करते करते करते करते वो एक स्टेशनरी के पास रुके। न जाने उनके मन में क्या आया, वो स्टेशनरी के अंदर गए, उनके पास ज़्यादा डॉलर्स थे भी नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा उनके पास नहीं होता था, वो सिर्फ एक ब्रेड के लिए रखते थे या थोड़ा बहुत इधर उधर खाने के लिए। मगर न जाने क्यों उनका मन किया कि वो स्टेशनरी के अंदर जाएं और कुछ अलग ट्राई करें। वो स्टेशनरी के अंदर गए और बॉन्ड पेपर्स खरीद के ले आए, इंक भी उठा ली लगे हाथों, और ये इंक कमर्शियल इंक थी, मतलब जो नोटों पे ग्रीन होती है वो वाली इंक नहीं थी, बहुत खराब क्वालिटी की ग्रीन इंक थी। और फिर उन्हें याद आया अपना वो टैलेंट जो जवानी में इस्तेमाल करते थे, वो इंग्रेविंग्स का, स्टील की शीट, जिंक की शीट्स पे वो आर्ट बनाते थे, वो टैलेंट उनके अंदर अभी भी था। एंड ही वॉन्टेड टू सी कि क्या वो टैलेंट अभी भी है। तो उन्होंने कबाड़ से ही एक प्रेस मशीन उठाई जो कि बिक रही थी, बाकायदा मार्केट में बिक रही थी, लेकिन सामने वालों ने बिल्कुल कूड़े के भाव उन्हें वो छोटी सी प्रेस मशीन दे दी। अब सामान उनके पास था और वो घर गए कुछ कुछ करने के लिए, ट्राई करने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले इंक देखी जो उठा के ले गए, क्या वो $1 के ऊपर जो इंक है ग्रीन उससे मैच करती है, नहीं करती, बेहद खराब लग रही है। इनफैक्ट इंग्रेविंग जो होती है नॉर्मल, वो स्टील पे कट की जाती है, मशीन्स करती हैं, लेकिन इनके पास क्या था, कुछ नहीं। तो ये जिंक की प्लेट एक लेकर आए थे, किचन टेबल पे रख दी लाके, साइड में एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया और फिर पैटर्न बनाने लगे। नोटों को देख रहे थे और पैटर्न्स बना रहे थे, और ये पैटर्न जो बना रहे थे, एमरिक का दिमाग उन्हें ये नहीं बता रहा था कि भाई ये मशीनों से बनता है, हाथों से नहीं बनता है। मगर ये 62 साल का आदमी लगा हुआ था, हाथ कांप रहे हैं बुरी तरह से, बॉर्डर तक नहीं बन रहा है, लेकिन ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट एंड फेल हो गए। नोट पे पोर्ट्रेट जो तस्वीर बनी होती है वो जॉर्ज वॉशिंगटन की है, उनका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए नोट पे, एकदम परफेक्ट, जो उनका जॉ लाइन है एकदम आनी चाहिए परफेक्ट, लेकिन जो जिंक के प्लेट पर एमरिक ने बनाया वो कार्टून कैरेक्टर लग रहा था, यहां भी फेल। फिर नोट का सीरियल नंबर भी तो होता है, उसका क्या करें, बस मन में जो आया एक सीरियल नंबर उन्होंने लिख दिया, क्योंकि यूनिक होता है ना, स्पेसिफिक फॉन्ट होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, चलो जगह समझ में आ गई, फॉन्ट कहां से लेके आए। तो हल्का फुल्का कॉपी किया, नंबर छाप दिया अपने मन से जो आया। उसके बाद नोट पे क्या होता है, ट्रेजरी सील लगती है उस पर, है ना, गवर्नर साहब का साइन वोन होता है, ये कहां से लेके आए। तो उन्होंने एक सील तैयार करी, एकदम फेल, एकदम ऐसा लग रहा था वो खराब मेकअप नहीं होता, स्मज खराब हो जाता, स्मज हो जाता, वैसा वाला, यहां भी फेल। फिर बेचारे लिखने जा रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन का वॉशिंगटन, लेकिन उसमें भी उनसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वॉशिंगटन में WASH की जगह W

ए एच एस लिख दिया, तो एच की जगह एस हो गया, एस की जगह एच हो गया, यहां पर भी फेल। एंड क्या करें वो, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बना रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, बस कर रहे थे वो। ये ऐसा था कि अगर कोई नोट इनका बनाया हुआ, जो ये नकली नोट बना रहे थे, कोई अगर पकड़ेगा ना बिना लैंप की लाइट से, बस हाथ में लेकर बता देगा नकली नोट है ये, तो एकदम नकली है, इतनी खराब कॉपी बनाई थी इन्होंने। तो जितने मैंने आपको बताया कि नोट को चेक करने के तरीके होते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट जो है वो तब काम करते हैं ना जब कोई देखे हाथ से, जब नोट को पकड़ के कोई अच्छे से देखना चाहेगा तभी तो फाइबर नजर आएंगे, ऐसे थोड़ी नजर आ जाएंगे। और बात रही सीरियल नंबर की, तो आप और मैं कितने लोगों को सीरियल नंबर याद रहते हैं, अनटिल और अनलेस कोई बहुत ही यूनिक चीज आपको नोट पे दिख गई, वरना कैसे याद है सीरियल नंबर। तो जो लोग नकली छाप भी रहे थे उस टाइम पर, या इस टाइम पे कोई भी किधर भी कर रहा हो, तो उसको लालच होता है, वो $1 का थोड़ी छापेगा, $100 का छापेगा, $50 का छापेगा, एक का कौन छापता है, कोई लॉजिक ही नहीं है। मगर लॉजिक था अमेरिक के दिमाग में कि $1 कोई क्यों ही छापेगा, $1 के लिए कोई मुझे जेल भेजेगा क्या, ऐसा थोड़ी होता है। तो अमेरिक को ये आइडिया नहीं था कि क्या उनकी किस्मत में आगे लिखा हुआ है, और वैसे भी वो कहां बेचारे सोचते थे इतना, उन्होंने एक ही डॉलर था वो जैसे तैसे बना दिया और एकदम कचरा बनाया, मतलब बहुत ही खराब कॉपी, और अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि उनका खर्चा कुछ है भी नहीं, $1 से ज्यादा क्या है उनका खर्चा उस जमाने में, तो बहुत था $1, उन्हें क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, डॉग फूड चाहिए, सिगरेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और वो जब नोट बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक और अटेम्प्ट लिया उन्होंने। अभी क्या प्रॉब्लम थी ना कि जिस कमरे में वो काम कर रहे थे, छोटा सा कमरा था, अब बेचारे के पास पैसे नहीं थे कि वो 100 वोल्ट का बल्ब लगा ले, 100 वोल्ट का बल्ब जो है ज्यादा बिजली खींचेगा, तो वो 40 वोल्ट का जो बल्ब आता है वो लगाए हुए थे और उसी में काम करने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर से सब कुछ तो नोट में गलत बन ही चुका था, स्पेलिंग पे तो उनका ध्यान भी नहीं गया, फ्री हैंड वो ड्रॉ कर रहे थे, ऊपर से खिड़की नहीं खोल सकते थे, तपती गर्मी अगस्त की, बुरी गर्मी, और वो खिड़की खोल नहीं सकते क्योंकि जो इंक की महक है, जो स्मेल है, वो बाहर चली जाएगी, पकड़े जाएंगे। तो बिल्कुल आजाब गर्मी में ये बंदा नोट बनाने की कोशिश कर रहा था। खैर उन्होंने जैसे तैसे उसको ड्रॉ करने की कोशिश करी, बिल्कुल स्कूल प्रोजेक्ट की तरह, एजेस जो नोट की ये बना रहे थे बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, मगर जैसे तैसे इन्होंने 3-4 अटेम्प्ट में ठीक ठाक कर लिया। और नोट जो थे, क्योंकि काटने होते हैं, जब आप देखते हैं नोट जब कटते हैं तो मशीन्स होती हैं, गिलेटिन होता है या ट्रिमर होता है, ये घर की कैंची से काट रहे थे, जिससे लोग मुझे काटते हैं कई मरतबा, तो ये उससे पेपर काट रहे थे, लिटरली एक टॉडलर की तरह जैसे कोई पेपर काट रहा हो। एंड हर नोट जो ये इन्होंने बनाया एक दूसरे से छोटा या बड़ा हो रहा था, मतलब अगर आप कोई भी नॉर्मल आदमी के हाथ में दोनों नोट दे तो बता देगा भाई ये दोनों नकली हैं, और वो खुद जानते हैं ऐसा, इस आदमी को कोई उस बात का वो भी नहीं है कि गुमान में जी रहे ना, इन्हें पता है कि जो ठप्पा लगा है वो ग्रीन बहुत ही गलत ग्रीन है, इन्हें पता है कि इन्होंने नोट की जो कॉपी करी है वो लिटरल कचरा है। पर मन में एक बात आई कि यार ट्राई करके देखते हैं ना क्या जाएगा, वही बात, $1 के लिए मुझे कौन पकड़ रहा है, $1 लेकर वो गए, और वो जानते थे कि भीड़ में ही ये नोट चल सकता है, क्योंकि $1 जो ले रहा होगा भीड़ में वो पहली बार तो जानता है कि $1 ही ले रहा है, उसका ध्यान इधर उधर होगा, वो कुछ और सोच रहा होगा, $1 के सामान के लिए कहां कौन दिमाग लगाता है, और कोई नहीं लगा रहा था। मेथड बड़ा सिंपल था, रूल एकदम सख्त था कि हमेशा वो एक ही डॉलर यूज करेंगे, कभी भी सेम दुकान पर एक महीने में 2 बार नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, और हफ्ते में 2, 5, 6 डॉलर ही छापेंगे, ज्यादा नहीं, और जाहिर सी बात है किसी को नहीं बताएंगे, अपने बच्चों को भी नहीं बताएंगे, दोस्त तो है ही नहीं, तो कोई चलाकी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, क्योंकि जो छापते हैं उस जमाने में छाप रहे थे जो क्रिमिनल्स थे वो पगला जाते थे, दीवाने जाते थे, अरे भाई साहब अब तो ये करेंगे वो करेंगे, मगर अमेरिक वॉज टोटली डिफरेंट, उन्हें कोई नेटवर्क नहीं बनाना है ना, कोई बड़ा एम्बिशन नहीं है, कोई बड़ा सपना नहीं है, उन्हें अमीर होना ही नहीं है, अंपायर बनाना ही नहीं है, उन्हें बस खाना चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो जो पेट लेके आए उसको खाना मिल जाए, दैट्स इट,
थोड़ा सा उन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया कि भाई $12-15 कर लूंगा हफ्ते के, बस इतना मेरा चल जाना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए

ए एमरिक एक बैकग्राउंड नॉइज थे, नोबडी केयर्स अबाउट हिम। लेट 1938 में एमरिक गए सिगरेट खरीदने के लिए। जिस जगह वो एंटर कर रहे थे उस जगह पे काफ़ी सारे लोग थे। अब एक बुजुर्ग आदमी मैले कुचले कोट में, ब्राउन कोट था उनका, उनके साथ में उनका पेट था, वो अंदर गए, उन्होंने कहा कि एक सिगरेट का पैकेट चाहिए। सामने वाला जो कैशियर था वो इधर उधर बात कर रहा था, इन्होंने अपना बनाया वो $1 का नोट उसके पास रखा, मौसम की बात करने लगे। अब एक बुजुर्ग आदमी मौसम की बात कर रहा है, हालत ख़राब है, सामने वाले ने नोट लिया और रख के रजिस्टर में 90 सेंट्स वापस कर दिए। चार सेकंड के अंदर 90 सेंट असली करेंसी मिली उस एक नकली डॉलर के बदले और अ पैक ऑफ सिगरेट। स्पेलिंग गलत है नोट पे, नोट लिटरली सबसे खराब कॉपी है, मगर इट वर्क्ड। वो जानते थे कि जिस जगह पे कोई ना हो वहां पे ये नोट नहीं चलेगा। लोग सोचते ना कि भाई विटनेस नहीं होनी चाहिए, पर एमरिक जानते थे कि भीड़ चाहिए। खतरा उन्हें विटनेस से नहीं है, खतरा है नोटिस होने का। और वैसे भी कौन देख रहा है एमरिक को, वो बस बातें कर रहे हैं मौसम की, और कौन एक बुजुर्ग आदमी से मौसम की बातें सुनना चाहता है। वो यही सोच के आगे बढ़ रहे थे। सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड आदमी क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, सिगरेट चाहिए, डॉग फूड चाहिए। उनकी कोई इच्छा नहीं है कि सूट चाहिए, गाड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए, कुछ नहीं खरीदना है। 1941 जब आया तो ऑफ कोर्स वॉर शुरू हो गई, पर्ल हार्बर, पूरी कंट्री टेंशन में आ गई, हालत खराब सबकी। लेकिन अमेरिक भाई कबाड़ उठाते, $10-12 छापते, घर चल रहा है, टहल रहे हैं। 1944 आ गया, उस टाइम तो कंट्री में ये हो गया वहां पे कि राशनिंग करो, ब्लैकआउट ड्रिल्स हो रही हैं, बत्ती जा रही है, मगर भाई $1 प्रिंट करके खाना खाया, घर गए, कबाड़ उठाया, बेच दिया, बढ़िया चल रहा है। फिर 1945 आ गया, जश्न मनाया जा रहा है वहां पे, जीत हो गई है, पूरी कंट्री खुश है, टाइम स्क्वायर में भीड़ लगी हुई है, अमेरिका वहीं के वहीं है, $1 छाप रहे, $1 से कबाड़ उठाया, अपना काम किया, खाना खाया, घर चले गए। 1947 में लोग टीवी देख रहे थे, टीवी आ चुके थे, लेकिन इनकी कोई इच्छा नहीं थी। इनके दिल में था कि यार एक टीवी खरीद लूं क्या, मगर ये दुकानों के बाहर खड़े होते थे, बस वहीं से टीवी देखते रहते थे, अपने डॉग को हाथ में लिए एक सिगरेट फूंकते हुए और टीवी देखते रहते थे। पूरी दुनिया इनके इर्द गिर्द इधर की उधर हो गई थी। ये उस वक्त 71 ईयर्स के हो चुके थे, 71 साल के। एक पूरा नया दौर अमेरिका का शुरू हो चुका था, लेकिन एमरिक यूटना जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। एक बार तो क्या हुआ कि इनका दिया हुआ जो नोट था वो दुकानदार जमा करने के लिए गया, दुकानदार को तब नहीं पता था, और वो नोट जा पहुंचा एक बैंक टेलर के हाथों में। अब जानते क्या हुआ, उस बैंक टेलर के पास ये नोट पहुंचा, उसने देखा, उठाया, परखा और उसे फौरन समझ में आ गया कि ये नोट तो नकली है। मगर उसने नोट के साथ क्या किया, उसने नोट को साइड वाले जे ड्रॉर में डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि ये सिर्फ $1 का नोट था, लाइन में आगे 200 लोग लगे हुए हैं, अब इसकी शिकायत करने के लिए फॉर्म भरो, कॉल करो, फेडरल ऑफिसर आएंगे, पूरा दिन खाएंगे, पूछताछ करेंगे, $1 के चक्कर में कौन करे इतना। तो सिस्टम ने पकड़ लिया है ये $1, लेकिन सिस्टम इसे काबिल नहीं समझ रहा, इस काबिल नहीं समझ रहा कि इस पे टाइम जाया किया जाए। मगर दूसरी ओर डाउनटाउन एरिया में एक ऑफिसर थोड़ा परेशान है, उसे ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं $1 वाला सीन चल रहा है, और एक क्या सीन है वो समझने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट हुआ ये कि एक बार एक नोट जो था एक लेडी ने एक दुकानदार को दिया कुछ चीजें खरीद के, और उसको लगा कि औरत जो है मेरे साथ स्कैम कर रही। उसने बोला मैडम ये क्या दिया है, तो उसने बोला कि ये तो मुझे कहीं से मिला, ये मुझे नहीं पता। ऐसे ना जाने कितने लोग अरेस्ट हुए और 15-20 मिनट में छूट भी गए, क्योंकि जिन्होंने भी ये नोट दिए ये उनके पास आया नोट, ये उन्होंने बनाया नहीं था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि $1 का क्या चक्कर है भाई, किधर से आ रहा है ये। और ये ऑफिसर साहब जो थे मैप लगा के अपने सामने पिंस लगा रहे थे उस पर कि ये $1 यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, वो मैप पूरा भर गया क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ हो रहा था। 10 साल बीत चुके थे, 10 साल। पुलिस स्टेशन में एक फाइल खुली थी, इसका नंबर था फाइल नंबर 880, 880।

आसपास उसके जितनी फाइलें थी वो सॉल्व हो रही थी, लेकिन फाइल 880 सालों से सड़ रही थी। रिपोर्ट्स लिखी जा रही हैं, बताया भी जा रहा है, लोग हंस भी रहे हैं कि कितनी बुरी कॉपी बनाई है, कितनी घटिया कॉपी है, $1 की स्पेलिंग तक गलत है। पर ये बंदा है कौन, किसी के समझ नहीं आ रहा। दे ऑल आर फेलिंग, एविडेंस हैं पर एविडेंस नहीं भी है। वो देख रहे थे कि सारे के सारे सीरियल नंबर, मतलब एक ही सीरियल नंबर सारे के सारे नोट पर है, सब पे सेम टू सेम छपा हुआ है, जीरो मेहनत। और पुलिस क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि भाई कोई बहुत बड़ी गैंग है, हाँ बहुत बड़ी गैंग है, इनका वेयर हाउस होगा और बहुत सारे लोग होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, क्रू होगा, इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होगी, बॉस होगा, पेरोल पे होगा, हथियार होंगे, ना जाने क्या क्या थ्योरीज उन्होंने बना दी। उन्हें क्या पता कि एक 71-72 साल का एक आदमी है अमेरिक, वो जो पिंस मैप पे लगा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो उसकी हिम्मत ही नहीं चल के कहीं जाने की। पुलिस समझ रही है कोई नेटवर्क है, लेकिन वो नेटवर्क नहीं है, वो अपने मोहल्ले में ही टहल रहे हैं। वो एक बुजुर्ग जिसकी कमर में दर्द रहता है, उनके साथ उनका एक डॉगी है इतने सालों से, ना अब उस कुत्ते की हिम्मत है कि वो 20 घर दूर जा सके और ना उनकी हिम्मत बाकी रह गई है। और पुलिस ना जाने क्या क्या सोच रही है। केस 880 एक ही जगह पर सालों से पड़ा रहा, लेकिन एक हादसा हुआ। दिसंबर 1947 सर्द रात में कुछ अलग हुआ, आग लग गई उस बिल्डिंग में जिसका एड्रेस था वेस्ट 96th स्ट्रीट। सर्द रात में फायरमैन आए, फायर ब्रिगेड वाले वहां पर पहुंचे और उस वक्त उस अपार्टमेंट तक आग पहुंची जो आखिरी फ्लोर था, यानी कि एमरिक वाला फ्लोर। और उस जमाने में फायर ब्रिगेड वाले वही करते थे जो शायद आपने कहीं पढ़ा हो, सबसे पहले सामान को बचाने के लिए उन्होंने बाहर फेंका, खिड़की से सारा सामान फेंकने लगे। और क्योंकि ये वो घर था जिसमें कबाड़ बहुत था तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, सब कुछ बाहर फेंकते रहे। और बाहर फेंकने में वो जिंक की प्लेट, जॉर्ज वॉशिंगटन की फोटो जिसपे थी, और कुछ $1 का पूरे की पूरी गड्डी, सब कुछ बाहर फेंक दिया कचरे की तरह। अब ये सब कुछ ओपन एयर में मिडल ऑफ द सिटी पड़ा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच, और पूरे शहर में ढिंढोरा है, फेडरल ऑफिसर्स ढूंढ रहे हैं और वो वहीं बीच सड़क पे कचरे में जला हुआ पड़ा है। काफी टाइम तक वो वहीं पे पड़ा रहा, अमेरिका का दिल टूट चुका था, उनका घर जल चुका था। उन्हें फेडरल ऑफिसर्स ने कहा कि आप कुछ टाइम कहीं जुगाड़ कर लीजिए, हम इसको 1-2 दिन में ठीक कर देते हैं, आपके रहने लायक बना देते हैं। अमेरिक ने सड़क पे बैठे बैठे सोचा कि मैं क्या करूं, उन्हें नहीं पता कि बीच सड़क पे वो सामान पड़ा हुआ है, मगर वहीं रहे जैसे तैसे दिन काट रहे थे। पर उनका वो जो सामान था, वो जिंक वाली प्लेट, वो किसी के हाथ नहीं लगी, ना किसी ने उस पर ध्यान दिया। ध्यान किसने दिया, कुछ बच्चों ने जो वहां पे खेलने के लिए आए। उन बच्चों ने वो देखा कबाड़ के साथ खेलते हुए, ये क्या है, जिंक की प्लेट और उस पर जॉर्ज वॉशिंगटन का चेहरा, उनके लिए तो ये खिलौना था, वो खिलौना समझ के। और वो जो नोट थे $1 के, बच्चों को समझ में आ रहे थे कि ये नकली है। बच्चों ने नोटों को देखा, उन्हें लगा जैसे आज आपको चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया आता था, बच्चे समझ गए नो नकली है क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया। वो उसे खेलने के लिए अपने घर पे ले गए, बहुत दिनों तक खेले, एक दूसरे के साथ बांटते रहे इसे। एक दिन एक बच्चे के वालिद साहब आए और उन्होंने उस जिंक की प्लेट देखी जिस पे जॉर्ज वॉशिंगटन का चेहरा बना हुआ था, उन्हें ये खिलौना नहीं लगा और उन्होंने पुलिस को कॉल करी। पुलिस ने ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट सर्विस वालों को दी और फिर एजेंट लग गए अपने काम पे। 10 साल हो चुके थे, इतनी सारी थ्योरीज थी, वेयर हाउस होगा, बॉस होगा, सब कुछ होगा, पर बच्चों ने ये पूरी बात को बदल दिया पुलिस वालों के लिए। जनवरी 13, 1948 एजेंट्स पहुंचे उस फ्लोर पे जिसके बारे में उन्हें पता लगा था कि यहां से ही सामान गिराया गया है, वेस्ट 96th स्ट्रीट। दरवाजे पे नॉक नॉक, दरवाजा खुला, उन्हें लगा अंदर न जाने कितने लोग होंगे। अंदर से एक बिल्कुल कमजोर पतला सा आदमी, 72 साल का, 72 ईयर ओल्ड एमरिक, उन्होंने दरवाजा खोला, उनके कदमों के पास खेल रहा था उनका वो पेट, वो कुत्ता, और उनके चेहरे पर था कि वो भागना नहीं चाहते। उन्होंने पुलिस वालों को कहा प्लीज अंदर आइए, ना कोई वकील मांगा ना कुछ, अपनी कहानी बयां कर दी, जैसे तैसे जो भी थी सब बता दी। और वो कोने में जाके खड़े हो गए और सब कुछ एक्सप्लेन किया कि पिछले

सालों में क्या हुआ। कोने में खड़े होकर सारी मशीन जो उनके पास नहीं थी उसके बारे में बता रहे थे और पुलिस वाले ये सुनकर इतने हैरान थे कि सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। 40 वॉट का वो बल्ब टंगा हुआ था जो वो दोबारा लेकर आए थे इस उम्मीद में कि दोबारा कुछ करेंगे। कोई वेयर हाउस कुछ भी नहीं था। पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान थे। ये केस कोर्ट में जा पहुंचा। 10 साल तक काउंटरफीट, इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन, खर्चा, फेडरल ऑफिसर्स, एक्सपर्ट सब लगे हुए थे, लेकिन टोटल अमाउंट जो 10 सालों में एमरिक ने किया वो था $5,000 सिर्फ, यानी $500 हर साल। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसके क्राइम की जो सैलरी थी साल भर की, वो ऑफिसर्स के महीनों की सैलरी थी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है इस कहानी का। जज के पास ये फाइल पहुंची और जज ने कहा कि पेश किया जाए। अब जज साहब बैठे हुए थे, क्लैंसी नाम था उनका, और सामने 72 साल के एमरिक खड़े हुए थे। कोई हथियार नहीं, कोई वायलेंस नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाया, चोट नहीं पहुंचाई, सिर्फ $1 का नुकसान किया उन्होंने। उनके साथ कोई नहीं था, उनके बच्चे जो थे हालांकि कोर्ट रूम में थे मगर वो भी हैरान थे क्योंकि उन्हें अखबारों से अपने बाप के बारे में पता लगा था। उन्हें सजा सुनाई गई। जज साहब ने पहले उन्हें सजा सुनाई 9 महीनों की। जो प्रोसिक्यूटर थे वो बोलते रहे, साहब छोड़ दीजिए इस आदमी को, 72 साल का आदमी है, जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। सब यही कह रहे थे, जाने दीजिए सर, छोड़ दीजिए ना, क्या होता है। जज साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, 9 महीने की सजा मिलेगी और जुर्माना देना पड़ेगा। और जानते हैं जुर्माना कितना? $1 का, $1 का जुर्माना। वो $1 जो 10 सालों तक छापा है अमेरिका ने, वो $1 असली जुर्माने के तौर पे देना था। वो जाने लगे सजा सुनने के बाद, लेकिन जज साहब को ना जाने दिल में क्या आया, उन्होंने कहा अमेरिका वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। ये बुजुर्ग आदमी पलटा और अब हाथ में लाठी थी, ये पलट के गए जज साहब के सामने खड़े हुए थे। जज साहब ने कहा कि सुनो, सजा तुम्हारी बढ़ा रहा हूं मैं, 1 साल 1 दिन, ठीक है तुम्हारे लिए? अमेरिक ने बोला जी साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया जज साहब ने, 9 महीने से क्यों सजा बढ़ा दी बेचारे की? इसके पीछे है बहुत बड़ी ट्रिक। जज साहब खुले तौर पर ये नहीं कह सकते थे कि मैं इसको जाने देना चाहता हूँ, वो पब्लिक के सामने ये एग्जांपल नहीं सेट करना चाहते थे कि मैंने सजा नहीं दी। उस टाइम पे लॉ पे ये था कि अगर किसी को 1 साल से कम सजा मिलती है, जैसे 9 महीने उन्होंने पहले सजा सुनाई थी, तो पूरे के पूरे 9 महीने सर्व करने पड़ेंगे। और जज साहब ये नहीं चाहते थे। फैसला सुनाने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं इसको 9 महीने जेल में नहीं डाल सकता। उन्होंने 1 साल 1 दिन कर दिया। तो 1 साल 1 दिन होने की वजह से उस टाइम पे लॉ ये कहता है कि बंदा 4 महीने में पैरोल पे बाहर आ सकता है, इसलिए उन्होंने 1 साल 1 दिन की सजा दी और मुस्कुरा के अपनी कानून की किताब पलट दी। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। 4 महीने के अंदर बाहर आ गए वो अमेरिक। 1950 आया, 1950 हॉलीवुड को ये कहानी पता लग गई थी। भागते दौड़ते हुए 20th सेंचुरी फॉक्स वालों ने ढूंढा और उन्हें मिले अमेरिक। उन्होंने कहा सर ये लीजिए $1,000, टेबल पे रखे और बोला आपकी कहानी हमें चाहिए। और फिर एक मूवी बनी मिस्टर 880। इसके एक्टर को एकेडमी अवार्ड भी मिला। आप समझ रहे हैं, 10 साल का क्राइम, $5,000, 90 मिनट की फिल्म और चंद सेकंड्स में $1,000। काउंटरफिट, ये नकली नोटों का बिजनेस मेन बात नहीं है, उनकी कहानी मेन है, उसकी कीमत है। किसी ने उन्हें देखा ही नहीं कभी, और जब देखा तो फिल्म बन गई। 1955 में अमेरिक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो 79 के थे उस टाइम पे। और एक ऑफिसर, इनफैक्ट बहुत सारे ऑफिसर उनके फैन थे, उनमें से एक था जिन्होंने उनके बनाए वो नकली नोट, जो बहुत ही खराब कॉपी थी, वो अपने पास रख लिया। वो बहुत इंप्रेस थे और जब वो ऊंचे पद पे पहुंचे तो उन्होंने वही नोट अपने पुलिस स्टेशन में लगाया हुआ है, लिटरली एक सबक के तौर पर दीवार पर आज भी लगा हुआ है वो खराब कॉपी, ये बताने के लिए कि कई मरतबा चीज बड़ी सिंपल होती है। तो ये थी कहानी अमेरिक यूटनर की।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज जरा अपने इर्द गिर्द देखिए, मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर, टैबलेट्स, हमारी जिंदगी स्क्रीन से ही भर गई है। इसलिए आज हम बात करेंगे आंखों की सेहत और डिजिटल आई स्ट्रेन पर। आंखें हमें क्या बताती हैं? ज्यादा देर स्क्रीन देखने के बाद बस अफराद को आंखों में थकन, हेडेक, बर्निंग, ड्राइनेस या फिर धुंधलापन महसूस हो सकता है। कुछ अफराद ये महसूस करते हैं कि ये सिर्फ मोबाइल की वजह से है, लेकिन स्क्रीन यूज के साथ हम अक्सर मुसलसल करीब या बहुत ही करीब देख रहे होते हैं और ब्लिंक भी बहुत कम करते हैं। ये आप जरूर नोट कीजिए, जिससे फिर जो डिस्कम्फर्ट है वो ज्यादा हो जाता है। एक आसान सी आदत है, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, 20-20-20 रूल, तकरीबन हर 20 मिनट के बाद तकरीबन 20 फीट दूर किसी चीज को तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए जरूर देखिए। इस दौरान आंखों को स्क्रीन से ब्रेक दे दीजिए और ब्लिंक करना बिल्कुल ना भूलिए। ब्लिंक करते हुए हम बाज़ुकात कम जो कंसंट्रेट करते हैं स्क्रीन पर या जानबूझकर ज्यादा ब्लिंक करने की याद दहानी आंखों की ड्राइनेस को कम करने में मदद कर सकती है। अगर मुसलसल जो ड्राइनेस रहती है तो फिर आप जो आई स्पेशलिस्ट है, आई प्रोफेशनल है, उससे ज़रूर मशवरा कीजिए। स्क्रीन की ब्राइटनेस हो, इस पर भी खास तवज्जो देनी है। स्ट्रेन अगर ना हो तो आंखों को गैर ज़रूरी डिम या इतनी रोशन या इतनी ज़्यादा जो स्क्रीन है कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है वो हमारी आंखों को मुतासिर करती है। कमरे की रोशनी और स्क्रीन ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इससे डिस्कम्फर्ट पैदा हो सकती है। ऐसा रखिए कि बार बार आँखें सुकेड़ कर पढ़ना ना पड़े। जो टेक्स्ट साइज है उस पर भी तवज्जो दीजिए और जो डिस्टेंस है उसको भी आप बहुत ही गौर से देखिए। और बच्चों के लिए तो बहुत ही अहम है, और बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के साथ साथ जो आउटडोर एक्टिविटी है और जो फिजिकल उनकी एक्टिविटी है बहुत अहम है। वालिदैन सिर्फ ये ना कहें कि मोबाइल छोड़ दो, तब हम कहते हैं अच्छा मोबाइल पर बहुत टाइम हो गया है, या टैबलेट्स पर, या आप गेम खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब छोड़ दें। बल्कि उन्हें अल्टरनेटिव को एक्टिविटी आप दीजिए, खेल, किताब है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, और आउटडोर जो टाइम है वो बच्चों की रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। अगर आंखों में ख़ारिश हो तो बार बार आंखें रगड़ने से इरिटेशन और ज़्यादा हो सकती है। अगर उसमें दर्द हो, रेडनेस या डिस्चार्ज हो तो फिर फौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अब एक और बहुत अहम बात, वो ये कि आई चेकअप कब ज़रूरी है। अगर नज़र जो है धुंधली हो रही हो, बार बार आपको हेडेक हो, पढ़ने में मुश्किल हो, नज़र में तब्दीली महसूस हो, या फिर ग्लासेस का जो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पुराना हो गया हो, तो फिर आप आई एग्जामिनेशन ज़रूर करवाइए। और अगर अचानक नज़र कम हो जाए, शदीद आई पेन हो, फ्लैशेस या बहुत ज़्यादा नए फ्लोटर्स महसूस हों, या आपकी नज़र में अचानक कोई गैर

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं दूहा वाला कबीर FM 107 पे एंड आपको डायलॉग रेडी होगा। आपको वेलकम टू टेक अपडेट। यही आगे बोलेगा कबीर, यही बोलेगा भाई, और

0: क्या बोलूं मैं, बट देखो काम की बात बता के जाऊंगा, वेबसाइट जो आपको बताऊंगा ये आपके काम जरूर आएंगी, या फिर काम ना आए तो आपका टाइम पास बहुत बढ़िया कराएंगी, तो दोनों में से एक भी चीज अगर आपके मतलब की है तो बढ़िया है। तीसरा तो मुझे समझ नहीं आता मकसद क्या हो सकता है। यही दो मकसद होते हैं। अब जरा आगे बढ़ते और आप जानते हैं तीन वेबसाइट्स आपको बताई जाएंगी, तो आप तैयार हैं लिखने के लिए या कोई आपके साथ है जो याद कर सकता है, तो रेडी इन 3, 2, 1 लेट्स गो। पहली वेबसाइट का नाम है classcentral.com, classcentral. classcentral.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे, और ये बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी से हैं, हार्वर्ड की तरफ से भी इसमें भाई बहुत सारे कोर्सेज हैं, एंड आपको एक स्किल अगर सीखनी है तो इससे बढ़िया वेबसाइट तो नहीं होगी भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगहों पे वीडियो सिखाया जाता तो वो वहीं जाओ ये तो कुछ नहीं सिखाएंगे, नहीं, यहाँ पे जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगी वो बड़ी कमाल किया, मतलब वो ऐसा लगता है ना हाँ भाई ये कुछ भारी पढ़ा है मैंने, और स्किल को ब्रशअप करने के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी। सो इफ यू वांट टू लर्न सम स्किल ये आपके काम आ सकती है, classcentral.com। ठीक है जी, आगे बढ़ते भाई। देखिए आप गाड़ियों की नॉलेज हर किसी को नहीं होती, लोग ये अज्यूम कर लेते हैं गाड़ी चला रहे हो क्या 6 साल हो गए तुम्हें, ये नहीं पता गाड़ी के अंदर ही होता है। हाँ भाई नहीं पता, नहीं पता होता है किसी को, पर अगर आप गाड़ी के बारे में सीखना चाहते हैं या गाड़ी आप फिक्स करना चाहते हैं, कोई परेशानी हो गई मैं ठीक करूंगा या मुझे सीखना है, तो एक वेबसाइट है carcarekiosk.com, ये भी स्किल हो सकती है भाई गाड़ी सीखने की, ठीक करने की। सो कार केयर care फिर कायोस्क जो भी कहना चाहें आप kiosk.com। इस वेबसाइट पे जो आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई आपकी कौन सी गाड़ी है, आप बताएंगे हाँ जी ये गाड़ी है, हाँ जी कब का मॉडल है, कौन सा मॉडल है, हाँ जी ये मॉडल है, उसके बाद बाकायदा वीडियो में आपको बताएगा कि अच्छा ये वाला पार्ट टिकना है, अच्छा ये वाला टिकना है, अच्छा ये वाला पार्ट दिखना है। आप वीडियो देखते देखते देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या मसला है या मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, ये सब कुछ आपको वेबसाइट बताएगी। कितना ईजी कर दिया है भाई मामला, तो आपके अंदर क्या करें एक मैकेनिक है ना जो बहुत दिलों से तड़प रहा है, छटपटा रहा है कि मैं भी गाड़ी को जरा बोनट खोल के देखूं तो सही क्या है, तो ये आपके लिए सही समय है। बढ़ते हैं जरा आगे। ये जो लास्ट वेबसाइट है ये उनके लिए जो किताबें पढ़ते हैं, मैंने लास्ट में इसलिए बचा के रखी है बिकॉज ये बहुत ही बहुत लोगों के काम आएगी भाई, बहुत लोगों, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं किताबें पढ़ता भी नहीं हूँ यकीन जानिए, मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं ना, ऐसी किताबें हैं लगता है अरे ये तो पढ़ लेते हैं यार। मैंने एक होमो सेपियंस एक स्पीशीज करके एक किताब है वो पढ़ी इसी पे, एंड पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट पढ़ी नहीं है पूरी, पढ़ रहा हूँ, शुरुआत किया था मैंने ऐसी चेक तो करूं, पर वो चेक करने के चक्कर में कहा पढ़ सकते हैं, तो फ्री फंड में आपको सारी किताबें मिलेंगी, फ्री फंड में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है किताबों की, और प्लीज ये जाके किसी ना किसी को जरूर बताएगा। वेबसाइट का नाम है welib.org भर भर की किताबें भाई, फिर प्लीज ये किसी तक तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा दीजिएगा। ऑलराइट, अब जरा बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए क्या है कि अभी सैमसंग ने भी अपना रोल आउट किया है न्यू जो UI है उनका 9, आपने रिसेंटली नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। साथ ही गूगल की तरफ से बयान आ चुका है कि उन्होंने कहा हमारी जो क्रोमबुक अपडेट्स है वो अभी तक नहीं है, वो 2034 तक है भाई, आगे की सोची है हमने, 8 साल आगे के बाद अपडेट आएगी तो आएगी, अभी आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई नो कुछ लोग आईफोन पगलू हैं मगर थोड़ा सा मूव करने की जरूरत है, ट्राई एंड कंसिडर समथिंग गूगल, बिकॉज अभी गूगल ने अपने सारे जो मॉडल से मूव कर दिए गूगल बुक OS पे, और क्या क्लीन OS है यार, क्या क्लीन OS है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ना समथिंग न्यू, अगर आप एंड्रॉयड छोड़ के iOS छोड़ के कुछ करना चाहते हैं, एप्पल इज द वे आउट, मैं सच बता रहा हूँ, ट्राई दिस वन। ये थी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
2: दोस्तों मेत्राश ऐप के जरिए रिहायशी अफराद अपने रिन्यू किए गए पासपोर्ट की तफसीलात को आसानी और सहूलत के साथ अपडेट कर सकते हैं जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होती इस अमल को शुरू करने के लिए होम स्क्रीन पर रेसिडेंसी सेक्शन पर जाएं फिर चेंज डेटा सिलेक्ट करें और उसके बाद चेंज पासपोर्ट पर टैप करें इसके बाद अपना QID नंबर या उस एप्लीकेंट का QID नंबर एंटर करें जिसका डेटा अपडेट करना हो फिर नए पासपोर्ट का पहला सफा स्कैन या अपलोड करें और साथ ही एक वाज़े पर्सनल फोटो भी अपलोड करें इसके बाद तमाम मालूमात को दोबारा चेक करें ताकि ये यकीन हो जाए कि सब कुछ दुरुस्त है मुकम्मल होने के बाद अपना पसंदीदा पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें और पे पर टैप करें आपकी दरख्वास्त कामयाबी के साथ सबमिट हो जाएगी और अपडेटेड QID सीधा कतर पोस्ट के जरिए आपको डिलीवर कर दी जाएगी वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी खिदमत करना हमारे लिए बायस मसरत है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
3: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ तो सुनिए यू मैटर आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके क्योंकि आप मैटर करते हैं
4: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है ट्यून इन टू FM 107 दिल से देसी
5: आप सुन रहे हैं FM 107
6: दिल से देसी
7: स्कैम अलर्ट
8: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस जहां पर अगले 5 मिनट में आपको पता चलने वाले हैं नए जमाने में नए तरीके से होने वाले स्कैम के बारे में और आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं ये बड़ा ही यूनिक स्कैम है ये है पिक एंड ड्रॉप ट्रांजिट स्कैम कैसे ये काम करता है स्कैम सबसे पहले इस पर बात करेंगे क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स का स्केड्यूल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया है और बच्चों को सेफली स्कूल भेजना और वापस लाना एक बड़ी फिक्र की बात हो गई है स्कैमर्स आजकल इसी चीज का फायदा उठाने लगे हैं दोस्तों वो फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू लोकल फ्लायर्स या फिर इंस्टाग्राम पर एड्स पोस्ट करते हैं जो कि बहुत बड़ी कोई बात नहीं है वो दावा करते हैं कि वो बहुत ही कम दाम में एकदम चीप प्राइसेस में बच्चों के लिए डेली पिक और ड्रॉप का सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं और उनसे कई लोग जो है उनके साथ कई लोग जुड़े हैं और पेरेंट्स काफी खुश हैं और जो पेरेंट्स टाइट बजट पर होते हैं या जल्दी में होते हैं वो इस सस्ते ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं अच्छा माँ और बाप दोनों बहुत ज्यादा बिजी हैं और कई बार अगर थोड़ा महंगा भी लगता है तो लोगों को लगता है ये फायदे का सौदा है जब आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो आपसे बच्चों की बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जैसे कि घर का एड्रेस क्या है बच्चों का स्कूल का स्केड्यूल क्या है और एडवांस में डिपॉजिट भी मांगते हैं इसके बाद दो चीजें होती हैं या तो वो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं सर्विस कभी मिलती ही नहीं है या फिर सबसे खतरनाक आपके बच्चे की पर्सनल डिटेल्स और टाइमिंग्स किसी अनजान या कहें किसी क्रिमिनल के पास जो है वो चली जाती है जो बच्चों की सेफ्टी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है लेकिन किस तरह से आप इस तरह अगर आपके साथ हो रहा है या आपके सामने कोई फ्लायर आया है कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है और आप डायरेक्ट उस शख्स से बात कर रहे हैं जो फ्लायर में नंबर लिखा है तो कैसे बच सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है इस सॉल्यूशन पर भी बात करना बहुत जरूरी है देखिए सॉल्यूशन बहुत सारे हैं लेकिन हम 3 सॉल्यूशन के बारे में अभी फिलहाल बात करने वाले हैं सबसे पहली चीज है स्कूल से वेरीफाई करें सबसे पहला जो नियम जो रूल है वो ये है कि किसी भी रैंडम एड पर भरोसा ना करें। हमेशा वही ट्रांसपोर्ट सर्विस चूज करें जो आपके बच्चे के स्कूल से ऑफिशियली रिकमेंडेड या रजिस्टर्ड हो। कई बार सोशल मीडिया पे आपके बच्चे का स्कूल जिस जगह पे है वहां पर और आपका घर जिस जगह पे है या फिर आपके घर के आसपास की लोकेशन वहां पे कोई भी शख्स जो है वो आता और जाता है और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करता है कि मैं फला जगह से फला जगह तक आता जाता हूँ ए से लेकर बी पॉइंट तक, और किसी को अगर सर्विस चाहिए तो बताएं। और आप भी ए और बी पॉइंट के नजदीक रहते हैं, आप ऐसे में उन पर भरोसा कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे होते हैं। ऐसा कभी भी बिल्कुल ना करें। उसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे, ड्राइवर या एजेंसी से उनका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस CDL या क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन रिपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस के पेपर्स जरूर मांगे। इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर वो आनाकानी करें तो समझ जाइए ये कुछ गड़बड़ है, या फिर वो आपको जवाब ही ना दे तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से पीछे हट जाए, चीप यानी कि सस्ते ट्रांसपोर्ट के पीछे बिल्कुल ना भागे। उसके अलावा एडवांस देने से भी बचें, जब तक आप फिजिकली ड्राइवर से ना मिल लें और उनकी गाड़ी चेक ना कर लें तब तक कोई भी बड़ा एडवांस डिपॉजिट या अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल शेयर ना करें। बच्चों की सेफ्टी के मामले में एक्स्ट्रा अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नए जमाने के नए स्कैम्स कुछ इस तरह से भी होते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमारे फायदे की बात हो रही, लेकिन कुछ देर में हमें रियलाइज होता है, जब हमारे साथ स्कैम हो जाता है तब जाके हमें एहसास होता है कि ये एक्चुअली स्कैम था। जब आपको रिप्लाई मिलना बंद हो जाता है, जब आपकी जो डिटेल्स हैं वो किसी और के पास चली जाती हैं, आप किसी रजिस्टर्ड से भी ट्रांजिट करने लगते हैं या अपने बच्चों को उनके बसेस में आने जाने का मौका देते हैं, और फिर जब आप डिटेल्स किसी तीसरे से शेयर कर चुके होते हैं तब जाके आपको एहसास होता है जब आपके साथ सच में कोई स्कैम बाद में लेटर ऑन होता है। तो ऐसे में इस तरह के स्कैम से बचने की बेहद जरूरत है, और इसीलिए आपके लिए खास शो है जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। उम्मीद है इस शो के जरिए आपको कुछ पता चला होगा, आप अवेयर हुए होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
7: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station FM 107, दिल से देसी।

आज की स्पोर्ट्स कहानी बांग्लादेश क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी और लीडर की है जो बैट के साथ भी टीम की उम्मीद है और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर भी बांग्लादेश को एक नए दौर की तरफ ले जा रहे हैं। नाम है नजमुल हुसैन शांतो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। लेफ्ट हैंड बैटर नजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश क्रिकेट के इम्पोर्टेंट मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं बल्कि एक टेस्ट कप्तान की भी बन चुकी है। उन्होंने 2023 में पहली बार बांग्लादेश की टेस्ट कप्तानी संभाली थी। 2025 में यानी पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद उन्होंने कप्तानी से हटने का फैसला किया था। इट वॉज अ मेजर डिसीजन, लेकिन बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दोबारा टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान उन्हें बना दिया। उनका करंट मैंडेट अगर देखा जाए तो 2025-2027 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के एंड तक है, विच मीन्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन पर थोड़ा ट्रस्ट किया एंड ट्रस्ट करने के साथ साथ उनको ये एहसास भी था कि नजमुल हुसैन जो है ना कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन एक दिमाग रखते हैं, एक सोच रखते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा लॉन्ग एक्सटेंशन दिया गया है। और ये हुआ है अंडर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तमीम इकबाल, जिनका मानना यह है कि लॉन्ग टर्म सोच इम्पॉर्टेंट है ना कि शॉर्ट टर्म। परफॉर्मेंस खराब हो जाए और उनको निकाल दो, ये सोच तमीम इकबाल का नहीं। और इसी सोच के साथ बांग्लादेश क्रिकेट को कई ऐसे कामयाबी हासिल हुई। मैं बताऊंगा इसी चर्चे पे आपको आगे बता रहा हूं मैं कि कैसे नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश क्रिकेट को वो इंटरनेशनल एक फेम दिलाने में अहम रोल अदा किया है। कप्तानी करियर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2026 में सामने आया जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ढाका में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी और इस मैच में नजमुल हुसैन शांतो ने खुद भी शानदार बल्लेबाजी की और पहली इनिंग्स में 101 रन जबकि दूसरी इनिंग्स में 87 रन बनाए। उनकी इस कारकर्दगी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इस सेंचुरी के साथ नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान के तौर पर अपनी पांचवी सेंचुरी कंप्लीट की और मुशफिकुर रहीम के 4 सेंचुरीज के जो रिकॉर्ड थे उसे पीछे छोड़ दिया और आईसीसी रैंकिंग्स में भी उनकी पोजीशन करियर बेस्ट 23 तक पहुंची, विच वॉज अ वंडरफुल यू नो अचीवमेंट बाय दिस वंडरफुल क्रिकेटर फ्रॉम बांग्लादेश। कप्तान के तौर पर शांतो की एक और खास बात यह है कि वो सिर्फ बल्लेबाजी पर डिपेंड नहीं करते बल्कि फील्ड पर बॉलिंग चेंजेस और मैच सिचुएशंस को भी क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं, मॉनिटर करते हैं। मई 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ फतेह के बाद वो बांग्लादेश के सबसे तेज 7 टेस्ट विक्ट्रीज हासिल करने वाले कप्तान बन गए, यानी फास्टेस्ट टू विन 7 टेस्ट मैचेस। उन्होंने सिर्फ 17 मैचेस में ये माइलस्टोन अचीव किया, बहुत ही बड़ी बात है। फिर आया ऑस्ट्रेलिया का दौर, बांग्लादेश के लिए एक तारीखी चैलेंज। डार्विन में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट विक्ट्री हासिल की, यानी ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया के ही घर पर ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। क्रिकेट में अगर देखा जाए आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग टेस्ट प्लेइंग नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशंस माना जाता है। और इस मैच में तंजीद हसन ने सेंचुरी बनाई और मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट हासिल किए। नजमुल हुसैन शांतो की लीडरशिप में बांग्लादेश ने एक ऐसी जीत हासिल की जो टीम के टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। इट वॉज अ मेमोरेबल विक्ट्री, बिलीव मी, मेमोरेबल विक्ट्री। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त कमबैक किया और बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। इस नतीजे के बाद 2 टेस्ट मैच सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहा। मकई टेस्ट मैच में सिर्फ 2 दिन में 18 विकेट्स गिर गए। मैच के बाद शांतो ने पिच कंडीशंस पर बात करते हुए कहा कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर जब विकेट्स गिरती हैं तो बहुत डिस्कशन होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी कंडीशंस को इसी तरह एग्जामिन किया जाना चाहिए। दोस्तों
तकमल हुसैन शांतो की कहानी एक यंग बल्लेबाज से बांग्लादेश के टेस्ट लीडर तक के सफर की कहानी है। उनके सामने चैलेंज ये है कि बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी के साथ आगे ले जाया जाए और साथ ही खुद भी बल्ले के साथ टीम के लिए रन्स भी बनाए। नाजमुल हुसैन शांतो बांग्लादेश का टेस्ट कप्तान, लेफ्ट हैंडेड बैटर और एक ऐसा लीडर जिसके सामने बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का अगला चैप्टर लिखने का मौका है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो कतर की जमीन, तारीख और मेहमान नवाजी से गहरा ताल्लुक रखती है। ये है खजूर। कतर में खजूर सिर्फ एक मीठा फल नहीं बल्कि तहजीब और रिवायत की अलामत है।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar. दिल से देसी.

0: आप क्या समझती हैं, क्यों ऐसा है?
1: जी देखें, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट समझनी चाहिए कि औरतें जो हैं, हमारी मोस्ट ऑफ द केसेस जो ब्रेस्ट कैंसर के आ रहे हैं
0: जी,
1: 80 से 85% जो हैं उस वक्त डायग्नोज

0: लेकिन ये है कि चूंकि ये कैंसर है, अगर आप रेगुलर मैमोग्राम कर रहे हों तो यही एक फ़ायदा होता है कि रेगुलर मैमोग्राम वाला जो है एक सेंटीमीटर से भी कम, यानी इब्तदाई स्टेज में भी अगर कैंसर नमूदार हो रहा है तो वो पकड़ में आ सकता है, बजाय इसके कि जब तक आपको फील हो कोई लंप वो उस वक्त ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर हो चुका होता है और इजहार हो जाता है स्किन के बाहर। तो ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं छाती का कन्फर्म करने के लिए, और ज़रूरत पड़े अभी बाज़ुकात हमारी माओं बहनों बेटियों की ब्रेस्ट अगर बहुत डेंस हो, उनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है तो बाज़ुकात पिकअप नहीं हो सकती है, लेकिन आपको फिर भी तश्वीश है तो आप MRI करवा सकते हैं उस स्टेज में, और अगर लगे और कन्फर्म हो जाए तो फिर बायोप्सी हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इस तरह के बहुत सारे केसेस जो कि मैमोग्राम में जो हैं वो पता चल जाते हैं, खासतौर पर स्क्रीनिंग की अहमियत तो ज़रूर आपसे पूछूंगी कि क्यों, मगर ये कि आपके पास भी जैसे केसेस होंगे जो कि बिल्कुल स्टार्ट में लेस देन 1 सेंटीमीटर आप उसे डायग्नोज कर लेते हैं तो उसका फिर पूरा एक साइकिल जो है वो डिफरेंट होता है, वो जो आपको अब फील होने से पहले।
0: बिल्कुल, देखिए ना ये ऐसी चीज़ है कि उस टाइम में आपके पास अलामत तो कोई नहीं
1: जी,
0: आपको नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप स्क्रीन करें तो हम उस एक्सरे से पकड़ लेते हैं, उस एक्सरे से पकड़ के जब हम आइन बाकी टेस्ट करना शुरू हो जाते हैं और हमें कन्फर्म हो जाता है ये, तो देखिए अब छोटा सा कोई भी डिजीज़ हो रही हो जहाँ पे अभी वो बहुत ही इब्तदाई स्टेज में है तो आप उसको उस लंप को रिमूव कर दें, सर्जरी कर दीजिए और यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। तो यानी आपने उसको रिमूव कर दिया और आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं बगैर किसी परेशानी के।
1: जी लिसनर्स, जिसमें आप अपनी हमारी जो ख़वातीन हैं वो अपने इस प्रोग्राम में आ सकती हैं, आज का खसूसी प्रोग्राम जो है वो रखा है हमने हेल्थ गाइड का, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 666-221-07, इसके अलावा कॉल कर सकती हैं आप 4434-3377 पर, और अगर QMC नाउ ऐप आपने डाउनलोड किया है तो फिर आप हमारे साथ साथ होंगी। जैसे आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और अवेयरनेस मकसद हमारा यही है, और अक्टूबर ख़ास तौर पर जैसे कि पूरा महीना जो है वो डेडिकेट कर दिया गया है अवेयरनेस के लिए, मालूमात जो हैं वो फ्राहम की जाएं, और हमारा भी मकसद यही है। अजय डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो डायग्नोसिस है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपने कहा कि इसमें जो एक्सरे है या ब्लड मैमोग्राम जो है वो जो किया जाता है, और इसकी इम्पॉर्टेंस भी बता दीजिए। आपने बताई तो है मगर ये और थोड़ा डिटेल में पूछना चाहूँगी कि क्यों ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप जैसे ही कोई अलामत आपको नज़र आती है तो आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर से, तो क्यों ऐसा क्यों है?
0: नहीं, इसमें अलामत के बगैर भी जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वर्ल्ड वाइड जो है अब ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है,
1: हाँ जी, लेकिन यहाँ पर कतर में जैसे
0: जी, तो डायग्नोसिस का सबसे, जैसे हमने पहले भी बयान किया कि अर्ली डायग्नोसिस आपका ट्रीटमेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है, सो यू कैन निप द बड इन द इनिशियल स्टेज ओनली, सो दैट मींस आपको और कोई इलाजात ज़्यादा लेने की ज़रूरत ना पड़े, सारी सर्जरी करें आप, लंप को रिमूव कर दें और फिर उसकी तहकीक के बाद देखा जाता है उस इजाफी इलाज की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन जब आपका डिजीज़ जो है प्रोग्रेस कर जाती है और मेटास्टाइज कर जाती है या स्टेज 4 पर चली जाती है तो फिर आपके इलाजात भी बढ़ जाते हैं, यानी आपको फिर सर्जरी भी करने की ज़रूरत हो सकती है, कीमोथेरेपी लेने की ज़रूरत हो सकती है, फिर उन इलाजात से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इस तरह जो है आपकी मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी यानी जो आपकी ज़िंदगी ऊपर असरात होते हैं इलाजात के भी, वो भी उनका भी खतरात बढ़ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को भी खतरे बढ़ जाते हैं यानी आपकी ज़िंदगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अर्ली डायग्नोसिस करें और हम बेहतरीन प्रोग्नोसिस लेके आगे ज़िंदगी को जो है बेहतरीन अंदाज से गुजार सकें।
1: इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको से पूछना चाहूँगी कि आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जितने यंग उसमें डायग्नोज हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर तो उनके वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है?
0: नहीं, ऐसा तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जो देखा गया है कि हमारी पहले, जैसे हमने बताया था कि पहली हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ होती थी अच्छी फ़िज़ा में रहती थी, साफ़ सुथरा ग़िज़ा खाती थी और अपना घरों के काम करती थी, बाहर के काम भी करती थी, तो उनकी लाइफ स्टाइल जो थी वो बड़ी एक्टिव थी, तो उसकी वजह से जो है बहुत डिलेड اگر پتہ بھی چلتا تھا ڈیزیز بہت ڈیلیڈ ہوتی تھی تو لیکن ابھی جو نئی جنریشن میں چونکہ ہم نے آپ کو بتایا لائف سٹائل کا ایک بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے اور جو ایڈیٹیوز جو ہم لوگ اپنی غذا میں لے رہے ہیں اور جو چیزیں

0: ढांचा तबाह हो चुका है, जबकि 74,254 फलस्तीनी शहीद और तकरीबन 9,500 अफराद लापता हैं। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम, रिहाइश, ज़राअत और दीगर अहम शोबे शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। अस्वाबा ने आलमी बरदरी, अरब लीग और अक़वामे मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि गज़ा में जंग फौरी तौर पर रोकी जाए, इमदाद और तिब्बी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए और ज़ख्मियों मरीजों के इलाज के लिए रास्ते खोले जाएँ। पाकिस्तान और बहरीन ने अबनाए हुरमुज़ और बाबल मंदब में आज़ादाना और महफूज बहरी नकल व हरकत यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। ये बात इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़ियानी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाई अशिया की तरसील और आलमी तिजारत के तसलसल के लिए महफूज बहरी रास्तों की अहमियत उजागर की और बैनुल अक़वामी क़ानून के एहतराम पर भी जोर दिया। दोनों ममालिक ने इक्तिसादी, तिजारती, सनाती, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी इत्तेफाक किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 से ज़्यादा शोबों में ताउन के तबादले और उसमें शराकत दारी पर इत्तेफाक किया गया, जबकि तिजारत और सरमायाकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम और तवानाई के शोबे में आइंदा माह एक इजलास मुनक़िद करने का फ़ैसला भी किया गया है। सामाइन, नशरिया के अख्तिताम पर एक मरतबा फिर पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। वजीर बलदिया से नीदरलैंड्स और तुर्किया के सफीरों ने अलग अलग मुलाकातें की हैं। वजारत तालीम आला तालीम और ब्रिटिश काउंसिल के दरमियान असातिज़ा और स्कूल कायदीन की पेशावराना और तकनीकी तरबियत के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। रियासत कतर ने वजारत समाजी तरक्की और ख़ानदान की नुमाइंदगी में बहरीन में मुनाकिद होने वाले खलीज टाउन काउंसिल के समाजी उमूर और तरक्की के वजारती इजलास में शिरकत की है। सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने टेलीफोनिक राबते में इलाकाई सूरत हाल से मुतालिक बातचीत की है। शाम के वज़ीर ख़ारजा और अमरीका के ख़ुसूसी सदारती एलची ने तुर्किया में इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सलामती और इस्तेहकाम के लिए ताउन से मुतालिक बातचीत की है। पाकिस्तान और बहरीन ने अबनाए हुरमुज़ और बाबल मंदब में आज़ादाना और महफूज बहरी नकल व हरकत यकीनी बनाने पर जोर दिया है। और मकबूदा मगरबी किनारे में इसराइली फौज और मुसलह आबादकारों की कार्रवाइयों के दौरान एक फलस्तीनी बच्चा गोली लगने से ज़ख्मी हो गया। सामाइन, रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हमारे साथी मोहम्मद हसन सूदानी और मुझे मोहम्मद नफीस को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
4: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की

आज हम बात करेंगे इंडियन हॉकी के एक ऐसे लेजेंड की जिनका नाम सिर्फ ओलंपिक मेडल से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, एलिगेंस और अटैकिंग हॉकी से जुड़ा हुआ है। यहाँ दोस्तों नाम है जफर इकबाल, वो खिलाड़ी जिन्हें हॉकी की दुनिया में जेंटलमैन ऑफ हॉकी के नाम से भी याद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं FM 107 और आज स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में हम बात करेंगे जफर इकबाल के बारे में। 12 जून 1956 को बिहार में पैदा होने वाले जफर इकबाल ने इंडियन हॉकी के उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब टीम में एक तरफ पुरानी हॉकी की आर्टिस्ट्री थी और दूसरी तरफ गेम रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा था। ग्रास यानी घास के मैदान से एस्ट्रोटर्फ यानी सिंथेटिक टर्फ की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था और हॉकी ज्यादा फास्ट और फिजिकली डिमांडिंग बन रही थी। जफर इकबाल एक लेफ्ट फॉरवर्ड थे यानी ऑन द लेफ्ट विंग में खेलते थे जहां उनकी पोजीशन बॉल कंट्रोल, स्पीड, पासिंग और अटैकिंग इंटेलिजेंस की जरूरत होती है और उनका इंटरनेशनल करियर 1970 के आखिर में उभर कर सामने आया। उन्होंने 1978 के ब्यूनस आयर्स वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जहां टीम डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर गई थी। लेकिन जफर इकबाल के करियर का सबसे यादगार चैप्टर था 1980 का मॉस्को ओलंपिक्स। मॉस्को जाने वाली भारतीय टीम बहुत यंग थी और उस वक्त इंडिया के पास एस्ट्रोटर्फ पर ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। हॉकी इंडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक जफर इकबाल उस हिस्टोरिक स्क्वाड का हिस्सा थे

1980 के बाद इंडिया ने गोल्ड मेडल नहीं जीता। हाँ 2020-2024 में इंडिया पोडियम में वापस जरूर आए, लेकिन इंडिया को दोनों बार ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल हुए। जफर इकबाल ने बाद में याद किया कि मॉस्को फाइनल स्पेन के खिलाफ बहुत टफ था, इंडिया को मैच के आखिरी मोमेंट्स में मजबूत डिफेंस करना पड़ा, लेकिन टीम ने प्रेशर को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया था और पोडियम पर गोल्ड मेडल के साथ खड़ी हुई। सोचिए दोस्तों, एक नौजवान इंडियन टीम, नई सरफेस यानी एस्ट्रोटर्फ, ओलंपिक प्रेशर और सामने यूरोपियन चैंपियन स्पेन, और इसी स्टेज पर जफर इकबाल जैसे फॉरवर्ड्स ने इंडियन अटैकिंग ट्रेडिशन को जिंदा रखा। 1980 के बाद भी उनका इंटरनेशनल करियर जारी रहा। उन्होंने 1978 और 1982 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल्स जीते और 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच उनकी फेवरेट मेमोरीज में शामिल है। इंडिया मैच में 3-0 से पीछे था, लेकिन कमबैक करते हुए 4-5 से फतेह हासिल। और फिर आया 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। इस बार जफर इकबाल सिर्फ खिलाड़ी नहीं था दोस्तों, वो इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट के फ्लैग बेयरर थे और इंडियन हॉकी टीम के कप्तान भी। हॉकी इंडिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में इंडिया 5th पोजीशन पर रहा, लेकिन लीडरशिप का मतलब सिर्फ मेडल्स नहीं होता। जफर इकबाल का करियर इस बात की मिसाल है कि एक खिलाड़ी अपने गेम बिहेवियर और प्रोफेशनलिज्म से भी लीगेसी क्रिएट करता है। इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट के बाद भी उनका कनेक्शन इंडियन हॉकी के साथ खत्म नहीं हुआ था। वो कोचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए गेम की खदमत करते रहे और हॉकी इंडिया के मुताबिक वो फॉर्मर चीफ नेशनल कोच भी रहे और उनकी कोचिंग में इंडिया ने 1994 हिरोशिमा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। दैट्स एन यूनिक अचीवमेंट। जफर इकबाल की कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाती है दोस्तों कि लेजेंड सिर्फ वो नहीं होते हैं जो ट्रॉफीज जीतते हैं, लेजेंड्स वो होते हैं जो अपने दौर के गेम को समझते हैं, बदलते हुए वक्त के साथ अडाप्ट करते हैं और अगली जनरेशन के लिए एक मिसाल छोड़ जाते हैं। जफर इकबाल ओलंपिक चैंपियन, फॉर्मर कैप्टन, कोच और इंडियन हॉकी के एक ट्रू जेंटलमैन। और शायद इसीलिए जब इंडियन हॉकी के गोल्डन एरा का जिक्र होता है, जफर इकबाल का नाम हमेशा इज्जत और फख्र के साथ लिया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اینڈ ویلکم ٹو انادر ٹیک اپ ڈیٹ. دیکھیے پوری اپ ڈیٹس میں ہم نے ابھی تک آپ کو ویب سائٹس بتائی ہیں, بہت ساری خبریں بھی دی ہیں. اب ذرا میں صرف خبروں کے بارے میں بات نہیں کروں گا, نہ صرف میں آپ کو ویب سائٹ بتاؤں گا, مگر میں ان مدوں کے بارے میں بات کروں گا جو آپ کے فیوچر سے جڑے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کے ٹیک ورلڈ پہ اثر ڈالنے والے ہیں. تو آج میں بہت ضروری چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو امپیکٹ ڈالے گی ان لوگوں پر جو یوٹیوب پر اپنا کریئر دیکھ رہے ہیں. تو ہم اس پوری چیز کو آج کور کرنے والے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو بات سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ جانا چاہتے ہیں ان کو ابھی کے ابھی اکاؤنٹ بنا لینا چاہیے, انکلوڈنگ مائی اون سیلف. تو ہمیں اکاؤنٹ بنانا بھی ہے, اور اکاؤنٹ کا دھیان رکھنا ہے کہ اسے ہمیں ایک نوکری کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. آئی ایم سوری ٹو بریک اٹ ڈاؤن, لیکن یہ کڑوا سچ آپ کو یہ گھونٹ پینا پڑے گا, یوٹیوب کین ناٹ بی یور ٹائم پاس. اگر آپ یوٹیوب سے کچھ کمانا چاہتے ہیں, پھر ریئلی سیریس کہ مجھے کچھ ارننگ چاہیے, یو ہیو ٹو ٹریٹ اٹ لائک اے جاب. یہ پہلے ببل میں لوگوں کا جو ہے بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ پہلے جو تھا یوٹیوب کا ماڈل الگ طریقے سے کام کرتا تھا. 4000 آرز پورے کر رہے ہوتے تھے, 12 مہینوں کا وقت ہوتا تھا, 10 ملین شارٹ ویوز چاہیے ہوتے تھے یا تو 90 دنوں میں. لیکن اب نئی ریکوائرمنٹ فیبرری سے آنے والی ہے. یہ ریمائنڈر ہے, ویسے تو یہ خبر لوگوں تک پہنچ چکی ہے, لیکن جن تک نہیں پہنچی ہے جو ابھی اکاؤنٹ بنانے والے ہیں, تو نئی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ لاگو ہو جائے گی 1 فروری 2027 سے. A little time left, اور اس کی جو نئی ریکوائرمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ 8000 گھنٹے ان 365 ڈیز, مطلب بیسکلی ایک سال کے اندر, یا پھر 20 ملین شارٹس ویوز ان 90 ڈیز. اور جو بیس لائن رکھی گئی ہے سبسکرائبرز کی وہ ابھی بھی 1000 ہی رکھی گئی ہے. تو ایفیکٹ کس پہ پڑے گا؟ دیکھیے ایفیکٹ پڑے گا نئے کریٹرز پہ جو پوری طرح سے چاہتے ہیں کہ مونیٹائز کر لیں, پریمیم اکاؤنٹ بنا لیں پہلے یا بعد میں فروری سے, کیونکہ 20 ملین شارٹ ویوز لانا اس سے پہلے بہت مشکل کام ہے. اٹس ناٹ ایزی, بٹ اف یو آر کنسسٹنٹ یو کین ڈو اٹ. دوسری چیز ایگزسٹنگ پارٹنرز پہ بھی, جو کریٹرز آلریڈی ایکسیپٹڈ ہیں پارٹنر پروگرام میں اس ڈیٹ کے آنے سے پہلے, ان کو بھی اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. اور جو لو ٹیئرز میں جو فین فنڈنگ یا شاپنگ ان سب میں آتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ بھی کہیں نہ کہیں اثر پڑے گا. اب میں آپ کو کچھ چیزیں توڑ مروڑ کے بتانا چاہتا ہوں اف یو آر اسٹارٹنگ یور کریئر ان یوٹیوب, آن یوٹیوب, واٹ ایور. تو جب آپ یوٹیوب پہ کریئر شروع کرنے والے ہیں تو آپ کو لوگ دو طریقے کا ایڈوائس دیں گے. نمبر ون ایڈوائس جو میں بھی آپ کو دوں گا, اگر آپ کا کانٹینٹ زیادہ اٹینشن گریب کرنے والا ہے, تب تو آپ 20-25 منٹ کا ڈالیں, کہ آپ کو اتنا یقین ہے, آپ کو بھروسہ ہے اپنے اوپر کہ 20 منٹ کے اگر میں کچھ اپلوڈ کر رہا ہوں تو پیپل ول واچ اٹ, بیکاز دیٹس ہاؤ یو ول گیٹ دوز 8000 آورز. وہ جو 8000 گھنٹے پورے کرنے کا جو ایک کام تھما دیا ہے یوٹیوب نے, جو 1 فروری سے لاگو ہو جائے گا, اگر آپ چاہتے ہیں اپنا چینل مونیٹائز کرنا, سو یو ہیو ٹو فوکس آن دیٹ پارٹ. تو اگر ایسا نہیں ہے کہ نہیں یار مجھے نہیں لگتا کہ میں 20 منٹ کا کانٹینٹ دوں گا, تو آپ کو یوٹیوب کے شارٹس پہ فوکس کرنا چاہیے. وہ جو 1 منٹ کا جو ٹائم لائن ہے, 30 سیکنڈز کے اندر, 40 سیکنڈز کے اندر اپنے کانٹینٹ کو اگر آپ ڈیلیور کرنے والوں میں سے ہیں, جو بہت سارے لوگ ہیں, ڈو دیٹ, بیکاز دس از دا رائٹ ٹائم. ابھی سے آپ لگ گئے نا, جی جان لگا دی آپ نے, تو کچھ وقت نہیں لگے گا آپ کو اس لیول پہ پہنچنے پہ جو آپ نے سوچ رکھا ہے. بٹ دین اگین میں پیچھے پھر سے جانا چاہوں گا اس بات پہ جو میں نے پہلے کہی, یوٹیوب پہ اگر آپ اپنا کریئر سوچ رہے ہیں, اینڈ دیٹ انکلوڈز می آلسو, میں جو یہ جان دے رہا ہوں صرف آپ کو نہیں دے رہا, میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرا رہا ہوں, اف وی آل آر تھنکنگ یوٹیوب ایز اے کریئر, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہو سکتا, یہ کوئی صرف ہابی کی طرح نہیں ہے. اگر یوٹیوب سے کمانا ہے, صرف انٹرٹین نہیں کرنا ہے, دین یو ہیو ٹو ٹریٹ اٹ لائک اے جاب. Very, very simple. And quality or consistency. نوکری کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوٹیوب کو نوکری ماننے کا مطلب ہے کہ میں بھیا ہفتے میں 3 دن آؤں گا, ان دنوں آؤں گا, اتنے بجے آؤں گا. You have to deliver on کیا کہتے ہیں اس کو, ایکسپیکٹیشنز. آپ ایک ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں, ایک دن سیٹ کرتے ہیں, جیسے ہم لوگ اپنی نوکری پہ جاتے ہیں ویسا. اس میں اور بات کرتا رہوں گا, ان کیس یو ہیو اینی کوشچنز پوچھ لیجیے گا 666-22-107 پر, یا پھر سوشل میڈیا FM 107 قطر. یہ تھی آج کی ٹیک اپ ڈیٹ, ملتے ہیں اگلے میں, سٹے ٹیونڈ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107,
2: دل سے دیسی.
3: اسکیم الرٹ.
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम बात करते हैं। और कल जैसे कि हमने बात किया एक अजीबोगरीब चीप यानी कि सस्ता पिक एंड ड्रॉप स्कूल ट्रांजिट के बारे में, और आज ऐसे ही हम एक और स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज बेट एंड स्विच या फ्री सोशल मीडिया आइटम स्कैम। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्कैम होता क्या है। ये स्कैम सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस जैसे कि फेसबुक हो गया या ऐसे एप्लीकेशन हो गया जहां पर आपको सेकेंड हैंड मार्केट दिखती है या सोशल मीडिया का कोई और पेज, वहां पर बहुत तेजी से फैल रहा है ये स्कैम। स्कैमर्स बहुत ही महंगी और अच्छी कंडीशन वाली चीजें जैसे प्रीमियम फर्नीचर, महंगे फोन्स, लैपटॉप्स, रेफ्रिजरेटर्स बिल्कुल फ्री में देने का एड लगाते हैं। ये तो आप देखते ही होंगे, कई जगह आप यू नो सोशल मीडिया पर रहते हैं, आपने उन पेजेस को भी फॉलो कर रखा है जो फ्री में यू नो पोस्ट आता है, जो फ्री के सामान जो है लोग उससे जुड़े हुए। आप ऐसे कई फेसबुक को फॉलो भी करते होंगे पेजेस को जहां पर 100 से यू नो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 100,000 ऑफ लोग जो है वहां पर जुड़े हुए हैं, वो अपने घर से डीक्लटर करना चाहते हैं, फ्री में सामान बेचना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच एक स्कैमर भी छुपा होता है। वो एड में लिखते हैं या फिर उस सोशल मीडिया के पोस्ट पर लिखते हैं कि हमारे घर पे ये सामान फालतू का पड़ा है, प्लीज यहाँ से लेकर जाइए, हम पूरा फ्री दे रहे हैं, या हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, हमें बस स्पेस खाली करनी है इसलिए फ्री में दे रहे हैं। और जब आप ये सब देखते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं तो वो बहुत ही स्वीट बनते हैं और आपको आइटम कलेक्ट करने के लिए एक एड्रेस भी भेजते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद खेल चेंज हो जाता है। वो आपसे कहते हैं बहुत सारे लोग लेने के लिए रेडी हैं, अगर आपको चाहिए तो भी एक छोटा सा यू नो फीस जो है वो लगेगी, विच इज कॉल्ड होल्डिंग फी या फिर हैंडलिंग चार्ज भी। उसके अलावा अलग अलग तरीके से पेमेंट करने को वो आपसे कहते हैं, और वो ये भी डराते हैं कि अगर आप यू नो ये सामान नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से लोग हैं वो सामान ले लेंगे, क्योंकि आप वो फर्नीचर, वो लैपटॉप, वो रेफ्रिजरेटर सस्ता देखते हैं। यू नो एक तो वो फ्री में दे रहा था पहले, लेकिन अब वो कह रहा है नहीं नहीं वो 50 रियाल या 100 रियाल में लेकर जाइए, लेकिन आपको होल्ड करने के लिए फीस देनी पड़ेगी, तो आप अपफ्रंट पे कर भी देते हैं। लेकिन ये एक तरह का स्कैम है। आप सोचते हैं इतनी महंगी चीज है फ्री में मिल रही है, 500,000 रुपये देने में क्या ही बुराई है, या फिर 50 रियाल 40 रियाल देने में क्या बुराई है, लेकिन जैसे ही आप वो पैसे ट्रांसफर करते हैं वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और एड्रेस भी फेक निकलता है। इससे बचना कैसे है इस पर भी बात करना बड़ा जरूरी है दोस्तों। देखिए इनसे बचने के 3 आसान तरीके हैं, गोल्डन रूल को याद रखना सबसे बेहतरीन है आपके लिए। दोस्तों ऑनलाइन मार्केट प्लेस का सबसे बड़ा रूल है, अगर कोई चीज कंप्लीटली फ्री एडवर्टाइज्ड है या सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई है तो उसे पाने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो वो 100% स्कैम है। अगर किसी ने पोस्ट किया है फ्री में, उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद अगर आपसे वो पैसा मांग रहा है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं फेसबुक के या यू नो अलग अलग सोशल मीडिया पेज पे जहां पर उसने ये पोस्ट किया है, उनके एडमिन से भी आप कह सकते हैं कि ऐसे पेजेस को ब्लॉक करें। अगर उनका नंबर आपके पास है तो भी आप जो अथॉरिटीज होती हैं उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फिजिकल इंस्पेक्शन से पहले कोई भी पेमेंट ना करना। अगर आपके सामने कोई भी पोस्ट आती है, आप किसी के घर जाते हैं और जब देखते हैं कि सामान वहां पर रखा है, आपने इंस्पेक्शन कर लिया, किसी तरह की खराबी नहीं है, तब आप पेमेंट करें। किसी भी तरह का डिजिटल डिपॉजिट, टोकन मनी, शिपिंग फी या होल्डिंग चार्ज वगैरह कभी भी अपफ्रंट पहले से ना दें। खुद उस प्रोडक्ट को अपनी आंखों से देखें और चेक कर लें, उसके बाद पेमेंट करें। उसके अलावा सेफ मीटिंग प्लेसेस का भी बहुत ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर आप उनसे प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, सारी बात हो गई है, उन्होंने एड्रेस दे दिया है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है फ्री में ले जाइए, आप अपने लिए पूरा ट्रक बुक करके लेकर जाते हैं, अपनी कार लेकर जाते हैं कि सामान भर कर वापस घर लेकर आएंगे, तो हमेशा किसी पब्लिक प्लेस पर मिले, जैसे कोई बिजी मार्केट है, मेट्रो स्टेशन है, या फिर सबसे सेफ किसी लोकल पुलिस स्टेशन के बाहर, किसी के सुनसान घर या अनजान इलाके में अकेले बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये रिस्क डबल हो जाता है। कई बार आप किसी के घर जाते हैं, वो आप पर कोई इल्जाम भी लगा सकता है, चोरी का इल्जाम भी लगा सकता है, तो ऐसे में कोशिश करें कि घर के बाहर मिलें, जहां पर कैमरेज वगैरह लगे हों वहां पर मिलें और वहीं पर पेमेंट करें, ताकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ प्रूफ हो। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं उम्मीद है पिछले कुछ मिनट में जो हमने बताया, जितने सॉल्यूशन के बारे में हमने बात करी, उसके बाद आप इस तरह के स्कैम से बचने के लिए अब तैयार होंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: Smart money. Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hu aapki dost, aapki host Nasia. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है मनी मिस्टेक्स पेरेंट्स एक्सीडेंटली टीच देयर किड्स। पेरेंट्स बच्चों के सबसे पहले टीचर होते हैं, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसीलिए मनी हैबिट्स सिर्फ लेक्चर से नहीं बल्कि डेली एक्शन से ट्रांसफर होती है। अक्सर पेरेंट्स अच्छी नीयत से काम करते हैं लेकिन कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स अनजाने में अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। पहले, पैसा दरख्तों पर नहीं उगता, कहना मगर एक्सप्लेन ना करना। कई पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ ये कहते हुए सुने गए हैं लेकिन वो ये नहीं समझा पाते कि पैसा अर्न कैसे होता है, सेव कैसे किया जाता है और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। और नतीजा ये होता है कि बच्चे मनी को या तो डरने वाली चीज समझने लगते हैं या फिर उसके बारे में सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। फाइनेंशियल एजुकेशन फियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से शुरू होनी चाहिए। वहीं दूसरा एक और स्टेटमेंट, हर डिमांड को फौरन पूरा कर देना। जब भी बच्चा कोई टॉय, गैजेट या एक्सपेंसिव चीज मांगे और फौरन मिल जाए तो वो पेशेंस और वैल्यू को नहीं समझ पाता। रियल लाइफ में हर चीज इंस्टेंटली नहीं मिलती। बच्चों को वेट करना, सेव करना और प्रायोरिटी सेट करना सिखाना जरूरी है। वहीं पर सेविंग की इम्पोर्टेंस बताइए। अगर पेरेंट्स खुद सैलरी आते ही तमाम पैसे खर्च कर देते हैं और सेविंग्स नहीं करते हैं तो बच्चा भी वही हैबिट अडॉप्ट करेगा ना। बच्चे देखकर सीखते हैं। अगर वो देखेंगे कि पेरेंट्स इमरजेंसी फंड्स और सेविंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उनकी सोच भी वैसे ही डेवलप हो। वहीं इमोशनल शॉपिंग ना करें। कुछ लोग स्ट्रेस, सैडनेस या फिर बोर्डम की वजह से शॉपिंग करते हैं। जब बच्चे ये देखते हैं कि हर इमोशनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन शॉपिंग है तो वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं। खुशी खरीदी नहीं जा सकती। शॉपिंग टेम्परेरी एक्साइटमेंट दे सकती है लेकिन परमानेंट सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं। वहीं एक और चीज, मनी डिस्कशंस बच्चों से कीजिए। कुछ पेरेंट्स समझते हैं कि मनी के बारे में बात करना जो बच्चे हैं उनसे मुनासिब नहीं, लेकिन जब बच्चों को फाइनेंशियल मैटर्स का बिल्कुल आइडिया नहीं देंगे तो वो अडल्टहुड में भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करेंगे। एज के मुताबिक मनी कन्वर्सेशन हर एज में की जानी चाहिए। क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी जैसा ट्रीट करना। अगर पेरेंट्स हर चीज क्रेडिट कार्ड से खरीदें मगर रिपेमेंट और बजटिंग के बारे में बात ना करें तो बच्चे समझ सकते हैं कि स्पेंडिंग की कोई लिमिट ही नहीं है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि विजडम से भी ग्रो होता है। और ग्रैटिट्यूड, जब बच्चों को हर चीज मिल जाए और एप्रिसिएशन की हैबिट ना हो तो वो चीजों की वैल्यू महसूस ही नहीं करते। ग्रैटिट्यूड फाइनेंशियल वेलबींग का हिस्सा है। जो लोग अपने मौजूदा ब्लेसिंग्स की कदर करते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल चॉइसेस करते हैं। बस आखिर में यही कहूंगी कि पेरेंट्स अक्सर जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में अपनी मनी हैबिट्स बच्चों तक पहुंचा देते हैं और शायद अनहेल्दी मनी हैबिट्स बच्चों तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ बच्चों को पैसा देना ही ना सिखाएं बल्कि मनी मैनेजमेंट भी सिखाएं। सेविंग सिखाएं, बजटिंग सिखाएं, पेशेंस सिखाएं, ग्रैटिट्यूड सिखाएं, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग ये सिखाएं। ये ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चों की पूरी जिंदगी को बेहतर बना देती हैं। याद रखिए, चिल्ड्रन मे नॉट ऑलवेज लिसन टू व्हाट पेरेंट्स से बट दे ऑलवेज लर्न फ्रॉम व्हाट पेरेंट्स डू। अगर पेरेंट्स हेल्दी मनी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ हेल्दी वेल्थ नहीं बल्कि फाइनेंशियल विजडम का भी वरसा छोड़ कर जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर अब आपसे वक्त हो गया कि इजाजत ली जाए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते

में बैठ कर ही लोग यो-यो बन रहे हैं, तो इस यो-यो बनने की कैफियत में ही फिर आगे जाकर ये जुमला आता है कि मैंने इस्लाम देखा मुसलमान नहीं। हाँ जी, अच्छा जी, तो देखें ये बंदा जो है ना, इसने अपना शहर भी नहीं छोड़ा सुबह से रात तक, हाँ किसी ख़ास मुआशरे को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को, किसी दूसरे मुआशरे की ज़बान, फैशन को, रिलेशनशिप मॉडल्स, कामयाबी की डेफिनेशंस, जिस्मानी जो खूबसूरती के पैमाने, और इंटरटेनमेंट और सब कुछ, यानी ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं का उसका तसव्वुर बदल जाता है। उसका जिस्म हाँ ठीक है, उसके मुल्क में है, लेकिन वहाँ पर भी कई नफसियाती तौर पर वो दरअसल माइग्रेट कर चुका है। तो ये बहुत ही एक यानी अहम पहलू है जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि हम खुद भी और अपने आने वाली नस्ल को भी कहीं इस तरह की लाइफ स्टाइल न दे दें जिससे वो आइडेंटिटी क्राइसिस में हर वक्त पड़े हों। और जब आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला होता है ना, तो बंदा अपने तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं आगे के, उस प्रोजेक्ट्स में कामयाबी और नाकामी के हवाले से मुख्तलिफ स्टेप्स में, खुतवात में, इकदामात में हर पल वो मुतासर हो रहा होता है। उसकी अपनी अगली जो प्लानिंग है उसमें भी उसके मसाइल आते रहते हैं, कहाँ कैसे आगे जाए, किसको साथ में रखे, कौन से स्टेप ले, कहाँ अपनी बुनियाद डाले, घर बाड़ी की बात होती है, अपनी यानी रहन सहन का जो के जो आदाब होते हैं उसके मसाइल भी आ जाते हैं। जैसे ओवरऑल यानी मैंने ये सुना है काफ़ी, जैसे अरब ममालिक में भी जो पले बड़े हैं हमारे मुल्क से आते हैं, तो सब कॉन्टिनेंटल के ममालिक से आकर यहाँ पले बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बाद में जब शादी वगैरह के मसाइल आ जाते हैं तो फिर यानी एक बड़ा एक आइडेंटिटी क्राइसिस में वहाँ पर भी लोग नज़र आते हैं कि हमारे मुल्क में पले बड़े जो बच्चे बच्चियाँ होती हैं तो वो तो एक अलग किस्म के माहौल में बड़े होते हैं, उनके तसव्वुर कुछ अलग होता है, तो यहाँ जो बड़े होते हैं उनका तसव्वुर कुछ अलग होता है, लेकिन शादी के मसाइल फिर आगे आ जाते हैं और यानी आदाब की बात आ जाती है। काफ़ी सारे यानी ऐसी बातें हैं जो तवील अरसे से मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं उनको पता है इस सिलसिले में। अच्छा जी, तो ये है हमें हम अपना कौन सा अंदाज़ इख्तियार करेंगे। बास तो इस तरह की सोच अपनाते हैं कि हाँ जी मैं ही कह रहा हूँ, आप लोग भी आ जाइए 443-443-77। और जी है व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को पता है क्या है भाई नंबर, 666-221-07। आप लोग भी बता सकते हैं कि भाई आप लोगों यानी जब आप कतर में रह रहे हैं या फिर किसी दूसरे मुल्क में जो भी सफ़र करता है उसके लिए आप क्या कहेंगे ताकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस में न पड़े, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार ना हो, शिनाख्ती बहरान या शिनाख्त के बहरान का शिकार ना हो, इसके लिए आप उसको क्या कहेंगे, क्या एडवाइस देंगे। बास तो ये कहते हैं कि भाई मैं जहाँ पर भी चले जाऊँ भाई मेरा अपना जो है ना वही है सब कुछ, अपना डेरा, अपना इलाका, अपना घर, जो जिस जहाँ वो बचपन में जो जहाँ उसकी पैदाइश हुई है या फिर जहाँ उसके ददियाल बिलोंग करते हैं, जहाँ उसका अपना पुराना घर है, अपने मुल्क के हवाले से कह रहा है कि वही मेरा सब कुछ है, मुझे बस वहीं लौटना, मुझे बस मुझे और कुछ यानी उसका आइडेंटिटी से सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, क्राइसिस व्राइसिस को देखता ही नहीं है, उसको उसके लिए कोई क्राइसिस है ही नहीं। अब उसके तसव्वुर तो बिल्कुल वाज़ है, ठीक है, बाज़ का अप्रोच इस तरह के तसव्वुरात इस तरह के होते हैं। अच्छा, और बाज़ जो है ना वो कभी किसी दूसरे मुआशरे में आकर इतना मुनहमिक हो जाते हैं, इतने मुआशरे के साथ इतना मुतासर हो जाते हैं, या फिर एक तो मुस्बत पहलू में भी है ये बात, इस तरह मनफी पहलू में भी है। मुस्बत पहलू में क्या कि हाँ मैं अपने मुआशरे को भी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये दूसरे मुआशरे को भी यहाँ मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर ये तवाज़ुन हो तो
फिर भी क्राइसिस उतनी दिखती नहीं है।

0: कि हाँ दोनों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो भाई इनके अपने अपने मुल्क के आदाब का भी इनको ख्याल है, जिस मुल्क में आए हैं उस मुल्क के आदाब का भी ख्याल है, और पता है कि भाई मुझे कैसे आगे जाना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो बात बिल्कुल सही है। हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे ज़्यादा जहाँ झलकती है वो ये कि आप जब किसी दूसरे मुआशरे से इतने मुतासर हों कि बस अपने असल मुआशरे को आप इग्नोर कर देते हैं और कमतर समझने लगते हैं, हकारत की नज़र से देखने लग जाते हैं, क्योंकि हालांकि आप उन्हीं उस मुआशरे के एक फ़र्द हैं। तो आप अगर इग्नोर करेंगे तो एक वक्त यानी आपको ज़रूर यानी वहाँ एक वक्त नहीं बल्कि बारहा बसा अवकात आपको वहाँ आपका मामला रहता ही है, कुछ ना कुछ लेन देन है, कुछ ना कुछ है ही मामला। तो वहाँ अगर बंदा हर वक्त फिसलता रहता है, हर वक्त उसका तसादुम होता रहता, तसादुम कहते हैं ना टक्कर खाना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना बड़ी हकारत पसंद आदमी हो जाता है कि बस अरे ये सब फालतू हैं, ये कुछ नहीं है, और दूसरे मुआशरे से इतने मुतासर हैं, अब सिर्फ उसकी खूबियाँ हमें लगे हुए। तो आप सिर्फ इंसानियत की सतह पर भी अगर बात करें, हाउ इट पॉसिबल, कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, फिर आगे जाके मसाइल होते हैं कि भाई आप ना इधर के रहें ना उधर के रहें। यहाँ तक कि यूरोपीय ममालिक में भी जो जाते हैं उनका भी मसला ये होता है, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ चूँकि बातें होती रहती हैं, तो वो भी बता रहे थे कि नई जनरेशन का मामला ऐसा होता है कि ना इधर के रहें ना उधर के रहें। अब उनकी अपनी तालीमी लाइफ जो है उससे आगे बढ़कर जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है या फिर इज़दवाजी ज़िंदगी है, सारे जो है ना तरह तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो बहुत ही एक गहरा मौजू है ये आइडेंटिटी क्राइसिस का, अगर इसको हम सही से नहीं समझेंगे और इसका सही हल हमें पता नहीं है तो फिर यानी आप यकीन जानिए कि एक ना एक वक्त आकर आपने ये महसूस करना है कि भाई मसला तो बहुत ही गहरा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, या अहले वसहला मरहबा जी, कौन है हमारे साथ?
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: ज़ुल्क़रनैन भाई, सहला कैसे हैं जी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की ज़ात का।
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: जो आप मौजू डिस्कस कर रहे हैं ये तो सीधा मुझसे बिलोंग करता है, समझ लो कि मैं इससे गुजर रहा हूँ और शायद मेरे बच्चे भी इसी का शिकार।
0: भैया बताइए आपकी क्या राय है और आप इस सिलसिले में क्या एडवाइस देंगे दूसरों को जो सोचे अब नए आए हैं लेकिन एक तवील अरसे के लिए वो रहेंगे, या फिर जो रह रहे हैं ऑलरेडी उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए?
1: अच्छा, पहली बात तो ये कि जो आए हैं अल्लाह ताला देखें वो अपने घर वालों के लिए या उनके लिए एक सेक्रीफाइस और ज़्यादा कमाने के लिए निकलते हैं। अब नई जो सिचुएशन है ना, अब गारंटी नहीं है नए लंबे अरसे के लिए रहें, आगे पीछे इतनी टेक्नोलॉजी ने इन चीज़ों ने कर दिया है कि हर वक्त धड़का रहता है कि कहीं और कुछ ना हो जाए।
0: इसकी
1: वजह से पिछले अगर लास्ट 10 ईयर का मैं देखूं आफ्टर कोविड, जिसने एक वर्क फ्रॉम होम और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट किया और इनको एडवांस किया, इसमें बहुत सारे जो है ना अब आप देखें कम हो गए हैं। अब जो एग्जिस्टिंग है उसमें से भी काफ़ी कटौती हो गई है। और बाकी ये जो बच्चों की अब या आइडेंटिफिकेशन ये इस तरह है, इवन गल्फ में देखें तो आपको फिर भी माहौल मिल जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो हमारी मिक्स्ड वो समझ लें फैमिली या हमारे कल्चर जो है ना,
0: इस्लामिक एनवायरनमेंट की भी बात कर लें
1: तो वो भी एनवायरनमेंट भी हमें मिल जाती है कुछ है। हाँ, आपको सोशल एक्टिविटीज उस तरह नहीं मिलती बच्चों को, तो रिश्तेदार एक तरह से आइसोलेशन है कि वो नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं। अब हर ईद पे नहीं जा सकते क्योंकि ईद मूव करती है और हमारा शेड्यूल होता है उनकी एजुकेशनल जो वोकेशनल होती हैं उनके हिसाब से कि भाई एग्ज़ाम के बाद अब जो छुट्टियां होंगी तो उस दौरान जाना है।
0: तो ज़ुल्कर्न भाई, यहाँ जो यानी हमारे अपने जो भी हम जिस मुल्क से आए हैं तो यहाँ जो है ना परफेक्शन तो नहीं है, वहाँ भी कुछ खामियाँ हैं,

फिलासफिकल जो उनका मौक़िफ है इसको अगर तब तक जब तक हम सही से नहीं जानेंगे तब तक कुछ बाज़ ज़ाविये जो खूबसूरत हमें लगते हैं लेकिन इनके पीछे जो असल उनकी हकीकत है वो अगर रोनुमा ना हो तो फिर आप ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे अपने आप को हेज समझने लगेंगे। सबसे बड़ा मसला भयानक मैंने शुरू में कहा था कि अपने आप को हेज समझने लगना। अरे भाई मैं तो भाई मैं जिस समाज से उठ के आया हूँ जहाँ से मैं बिलोंगिंग करता हूँ अरे वो तो कुछ है ही नहीं तो ख़त्म। ठीक है तो ये डिस्टिंक्शन का सवाल है, ये आपके क्या कहते हैं डेस्टिनेशन का सवाल है। तो आप किस तरह दूसरे तहजीब के साथ आपका कैसा मामला रहता है ताकि आप आगे जाके आप ख़ुद आपकी नस्ल आइडेंटिटी क्राइसिस में न पड़े, शिनाख्त के बहरान का शिकार ना हो। ठीक है अब एक बार फिर चले वो मसूद की तरफ लौटते हैं। मसूद ने क्या देखा था, सफाई, वक्त की पाबंदी, अच्छी यूनिवर्सिटी। अब यानी वो आगे बढ़कर क्या सोचता है कि भाई इनका निज़ाम तो मुझसे बेहतर है तो शायद ज़िंदगी को समझने का इनका पूरा तसव्वुर भी मुझसे बेहतर होगा। लेकिन आप ख़ुद ही बताइए कि क्या पहला जुमला लाजमन दूसरे को साबित करता है। फिलोसफी के लिए आप ये बताएं मुझे, अगर इनका निज़ाम बेहतर है क्या ज़िंदगी को समझने का उनका तसव्वुर भी मुझसे बेहतर है? क्योंकि देखिए निज़ाम बेहतर होना ये कोई आपकी तंजीम है, कुछ भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं तो वो बेहतर होना एक अलग बात है ज़िंदगी को समझने के पूरे तसव्वुर के मुकाबले में। तो ये मैंने समझने की कोशिश की कि दूसरी तहजीबों की ख़ूबियों से मालामाल होकर अपने आप को भूल जाना ये गलत हो सकता है किसी के नज़रिए में और किसी के तसव्वुर में। भाई नहीं, दूसरी तहजीब की ख़ूबियों को आप देखेंगे लेकिन आपको ज़रूर अपनी शनाख्त के साथ वापस आना है, अपनी शनाख्त को समझना है, अपने आइडेंटिटी के करीब रहने में भी आपकी जो है ना भलाई है। ये वो इस तरह के कायल भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों तहजीबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो तीन तरह के लोग तो आपको हर जगह में मिल जाएंगे। तो हर एक के अपने अपने तसव्वुरात हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो यही बात है, कोई ख़ास हल बताने की भी हम कोशिश नहीं कर रहे लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल मुख्तलिफ लोगों के जो तसव्वुरात हैं इनके पीछे जो दलाइल हैं और एक गलत यानी आप जो कह सकते हैं कि क्राइसिस के हवाले से जो बहुत ही बुरा है वो ये कि अपने आप को हेज समझना। बंदा अगर अपने आप को हेज समझने लगे, अपने आप को कमतर समझने लगे तो यहाँ मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है उसके तमाम तर डिसीशंस में, फ़ैसलों में, तो हर तरह की जो है ना स्टेप्स में उसे कुछ यानी इसके तसरात जो है ना नुमाया होते हैं। तो ये तमाम चैलेंजेस को समझना और फिर स्टडी करके आगे बढ़ना ताकि आप आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार ना हों, ये हर एक के लिए ज़रूरी है। तो ओवरऑल सामिन कराम यही इसी मौजू पर, इसी मैसेज पर जो है ना हम अपनी प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। बात यह है कि जुम्मा रिफ्लेक्शन में हमारी बात होती है कि इज्तिमाई सरगर्मियों के हवाले से, तो इज्तिमाई सरगर्मियों में एक अहम पहलू ये भी है कि आप मुख्तलिफ तहजीब, बिल्कुल जब आप अपने मुल्क से माइग्रेशन करते हैं, हिजरत करते हैं या फिर कहीं सफ़र करके जाते हैं काम के थ्रू से या मुस्तकिल अपने रिहाइश इख्तियार के लिए किसी दूसरे मुल्क में, या आप नए आए हैं किसी दूसरे मुल्क में, दूसरे माशरे के साथ आपका ताल्लुक कैसा होगा या फिर आपने लंबे अरसे के लिए यहाँ रहना है, तो ओवरऑल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, मुख्तलिफ प्लानिंग्स हैं लेकिन आपके दूसरे माशरे को देखने का जो तरीक़ा है वो उसूल है, इस पर हमने गुफ्तगू की कि भाई दूसरे माशरे की साथ ताल्लुक की जो नौईयत है इसको आपने सही से समझना है और इनके चैलेंजेस को समझते हुए आपने इकदामात करने हैं और डिसीशंस लेनी है। तो सामने कराम जुमे का दिन है, अल्लाह सुभान व तआला ने इस दिन को बहुत मुबारक बनाया है और इस दिन में एक बहुत ही एक अहम लम्हा है, साथ इस

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

اشدد به أزري وأشركه في

अरे मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम हैं जो इससे लेता हूँ। फरमाया, फेंक दे इसको मूसा। उसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप थी जो दौड़ रहा था। फरमाया, पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी। और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तू फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वजीर मुकर्रर कर दे, हारून जो मेरा भाई है, उसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। फरमाया, दिया गया जो तूने मांगा है मूसा, हमने फिर एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया। याद कर वो वक्त जबकि हमने तेरी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के जरिए से ही किया जाता है, कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे, दरिया उसे साहिल पर फेंक देगा और उसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। याद कर जब तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है, मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचा दिया, ताकि उसकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। और यह भी याद कर कि तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, हमने तुझे उस फंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा, और तू मदियन के लोगों में कई साल ठहरा रहा, फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है। ऐ मूसा, मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है, जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, और देखो तुम मेरी याद में तकसीर न करना। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास कि वो सरकश हो गया है, उससे नरमी के साथ बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए।

0: एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
3: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ। एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के दौरान हिफाजती कवानीन पर अमल जरूरी है। वजारत दाखला ने स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के शौकीन अफराद को हिदायत दी है कि हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि पानी के नीचे होने वाले हादसात से बचाव मुमकिन हो और गोताखोरी या वाटर डाइविंग को महफूज बनाया जा सके। याद रखें कि डाइविंग शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है जो किसी ऑफिशियल इदारे से हासिल की जाए। इसके साथ साथ समंदर और मौसमी सूरत हाल भी चेक करना चाहिए ताकि नामुनासिब हालत में डाइविंग को अवॉइड किया जा सके। वजारत दाखला ने वाजे तौर पर कहा है कि जब आप अकेले हों तो डाइविंग मत कीजिए और खाने के फौरन बाद या ऐसी दवा लेने के बाद डाइविंग मत कीजिए जो तवज्जो या होश पर असर डाल सकती हो। ये भी याद रखिए कि समुद्री मखलूक को छूना या नुकसान पहुंचाना मना है, जबकि समुद्री माहौल की हिफाजत भी हर डाइवर की जिम्मेदारी है। डाइविंग से पहले तमाम इक्विपमेंट की जांच कर लेना लाजमी है ताकि ये यकीन हो जाए कि वो ठीक हालत में है। डाइवर को चाहिए कि डाइविंग लोकेशन और वापसी के वक्त के बारे में घर वालों या दोस्तों को पहले से इत्तला दें और पानी की सतह पर डाइविंग फ्लैग के साथ नुमाया बयोई लगाएं ताकि वहां पे जो कश्तियां या दूसरे लोग हैं उनको आपकी मौजूदगी का अंदाजा हो सके। डाइविंग के दौरान पानी की गहराई, प्रेशर और एयर कंजम्पशन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, जबकि ममनू इलाकों और मुल्क की समंदरी हुदूद से दूर रहना जरूरी है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 999 पर राब्ता कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है कि हिफाजती कवानीन पर अमल करें, महफूज रहें और समंदर का लुत्फ जिम्मेदारी के साथ उठाएं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
5: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی صفت کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسی عظیم سنت اور صفت ہے جو انسان کے کردار کو سنوارتی ہے، اس کی زبان کو پاکیزہ بناتی ہے، اس کی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے رویے میں شائستگی پیدا کرتی ہے اور اسے ہر برائی سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے. آج کا موضوع ہے حیا، جو مومن کا زیور ہے. آج کے دور میں بعض لوگ حیا کو کمزوری سمجھتے ہیں، بعض لوگ اسے اعتماد کی کمی قرار دیتے ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان باحیا ہوگا تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیکن اسلام کا تصور حیا ان سب سے مختلف ہے. حیا کا مطلب ہے وہ احساس جو انسان کو برائی، بے حیائی، بدتمیزی اور گناہ سے روک دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم اسے آپ کے چہرے کے تأثرات سے پہچان لیتے تھے. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا کہ ہر بات پر سخت لہجہ اختیار کریں، ہر غلطی پر بلند آواز میں ڈانٹیں یا ہر معاملے میں لوگوں کو شرمندہ کریں، بلکہ اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تأثرات ہی بتا دیتے کہ آپ اس سے خوش نہیں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں. یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے باحیا تھے، لیکن جب اللہ کی حدود پامال ہوتی، کسی پر ظلم ہوتا یا دین کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ حق بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
6: السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں صفا اور آپ سن رہے ہیں ایکو سوئچ آن ایف ایم 107. ساتھیوں، ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ ہمیں اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے بھائی کہ کاربن فٹ پرنٹ آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بالکل بدل دینی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا تو نہیں ہے. سمپل الفاظ میں سمجھیں تو کاربن فٹ پرنٹ کا مطلب ہے ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے انوائرمنٹ میں کتنی گرین ہاؤس گیسز ریلیز ہوتی ہیں. اچھا، جب ہم اپنی گاڑی چلاتے ہیں، الیکٹرسٹی یوز کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں یا کھانا ویسٹ کرتے ہیں، تو بھائی ان سب کا انوائرمنٹ پر ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے. لیکن ہاں، अच्छी बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से अपने कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। तो चलिए आज के इको स्विच में बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट डेली, यानी रोज की जिंदगी में ऐसी चॉइसेस जो एनवायरमेंट के लिए बेहतर हों। अच्छा, थोड़ा सा ना पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं कि मसला क्या है। साथियों, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कन्वीनियंस के साथ रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। बात है ना, सही बात है। कुछ डेली एक्टिविटीज जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने में रोल अदा करती हैं, वो क्या है? अगर सोचा जाए तो जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, हर छोटी डिस्टेंस के लिए गाड़ी यूज करना, मतलब ये कि अगर साथ वाली दुकान से दही भी लेने जाओगे तो उसके लिए भी गाड़ी में जाना है, भाई हमने गाड़ी में जाना है। फूड वेस्ट करना, भाई खाना जाया कर देना, सिंगल यूज प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल, या अननेसेसरी शॉपिंग और फास्ट फैशन फॉलो करना। अच्छा, अक्सर हमें ये लगता है कि भाई हम एक इंसान है, हमारी एक आदत से क्या ही कोई जिंदगी में, क्या ही दुनिया को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब लाखों लोग छोटी छोटी बेटर चॉइसेस कर रहे होते हैं ना, तो कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है भाई। देखिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हम सबकी डेली चॉइसेस का ये हिस्सा होती है। चलिए अब मिलकर कुछ इको स्विच के सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देती हूं जो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए। पहली चीज तो ये, एनर्जी स्मार्टली यूज करें। जब जरूरत हो तो ही मेहरबानी करके एसी, फैन, लाइट्स, अप्लायंसेस अपने इस्तेमाल करें, वरना तो उन्हें बंद रखें। एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स और अप्लायंसेस का इस्तेमाल भी मददगार हो सकता है साथियों। अच्छा, ट्रैवल चॉइसेस बेहतर बनाएं ना। देखें, जहां मुमकिन हो ना वॉकिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। अब देखें कतर मेट्रो कितना अच्छा है, क्यों नहीं यूज करते उसे। कार शेयरिंग करें, छोटे डिस्टेंसेस के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस चूज करना एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो सकता है। अच्छा, तीसरी चीज है, खाने का वेस्ट कम करें ना। सिर्फ उतना ही खाना बनाएं जितना जरूरी हो, बचा हुआ खाना प्रॉपरली स्टोर करें और फूड वेस्ट को बचाने की कोशिश करें भाई। चौथी चीज ये, रीयूज और रिपेयर करें। अच्छा, ये जो रिपेयर वाली आदत है ना, ये हमारे अम्मा अब्बा तो बड़े परफेक्ट वे में करते हैं, पता नहीं हम में से क्यों गुम हो गई है, कोशिश कर रहे हैं हम भी। तो भाई, किसी चीज के खराब होने पर फौरन नई चीज ना ले आए या उसे ठग कचरे में ना फेंक दें। दूसरी चीज खरीदने के बजाय ये देखें कि वो रिपेयर या रीयूज हो सकती है कि नहीं हो सकती। अक्सर औकात लोगों की कभी इस्त्री खराब हो जाती है या ब्लेंडर वगैरह खराब हो जाता है तो लोग उठा के फेंक देते हैं। नो, उसे फेंके नहीं, उसे एक दफा चेक करवाएं किसी अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाकर, वो सही हो सकता है। आप अगर चाहें तो वो सही हो सकता है, एक दफा जाकर उसे चेक करवाएं, क्या पता वो रिपेयर होने के लायक हो, आप उसे वापस से रिपेयर करके रीयूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्शियस शॉपिंग करें। अब ये खास तौर पे शॉपहोलिक लोगों के लिए, देखें शॉपिंग से पहले खुद से पूछें, 10 दफा पूछें, क्या मुझे इस चीज की वाकई में जरूरत है। कम लेकिन बेहतर क्वालिटी की चीजें खरीदना वेस्ट कम कर सकता है साथियों। तो भाई, इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूं आपको, तो एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल है। अगर एक फैमिली रोजाना अनयूज्ड लाइट्स बंद करना शुरू कर दे, ग्रोसरी प्लानिंग करे, फूड वेस्ट कम करे, रीयूजेबल बैग्स और रीयूजेबल बॉटल्स यूज करे, तो क्या लगता है आपको, है ना? तो शायद हर चेंज छोटा लगे, लेकिन वक्त के साथ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है भाई। इसी तरह एक ऑफिस भी अगर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स यूज करे, एनर्जी सेव करे और रीसाइक्लिंग सिस्टम अडॉप्ट करे, तो भाई बहुत सारा वेस्ट और रिसोर्स कंजम्पशन कम हो सकती है। कार्बन फुटप्रिंट कम करना एक दिन का काम नहीं होता, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है जो छोटी छोटी आदतों से बनता है साथियों। तो भाई, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि आज अपनी डेली लाइफ की रूटीन में से एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करें जहां आप कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। क्या आप एनर्जी बचाएंगे, क्या आप गाड़ी का इस्तेमाल कम करेंगे, या क्या आप फूड वेस्ट कम करना पसंद करेंगे? और भाई, हमें जरूर बताएं कि आपकी नजर में कार्बन फुटप्रिंट कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ताकि हम भी दूसरों के साथ शेयर कर सकें। इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, बड़ी तब्दीली हमेशा छोटी आदतों से शुरू होती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
7: आप सुन रहे हैं FM 107
8: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। दोस्तों, आज की दुआ बंदे की आजजी, नदामत, उम्मीद और अल्लाह की रहमत पर यकीन का हसीन इजहार है। इसका खुलासा हम कुछ यूं कह सकते हैं कि गुनाह के बाद अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब मोमिन से कोई गुनाह सादिर हो जाए तो वो दिल दिल में बेचैन हो जाता है, क्योंकि ईमान वाला गुनाह पर मुतमईन नहीं रह सकता। अब इस मोमिन के दिल की कैफियत ये होती है, इलाही ए मेरे अल्लाह, कैफ अफरहु वक़द असैतुक, मैं कैसे खुश रहूं जबकि मैंने तेरी नाफरमानी की है। وكيف لا افرح وقد عرفتك, लेकिन मैं खुश क्यों ना हूं जबकि मैंने तुझे पहचान लिया है। गोया यहां साइल की नजर उम्मीद के दरवाजे की तरफ है। जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसने रहमत का दरवाजा पा लिया है। वो जानता है कि अल्लाह माफ करने वाला, सुनने वाला और रहमत फरमाने वाला है। फिर वो मजीद कहता है, वकैफ अदउका वअना खातिअ, मैं तुझे कैसे पुकारूं जबकि मैं खुद खताकार हूं। यहां बंदा अपनी

0: कमजोरियां मान रहा है अपनी आजिजी को नुमाया कर रहा है फिर कहता है वो कैफला अदऊक व अंत करीम और मैं तुझे क्यों ना पुकारूं जबकि तू बड़ा करीम मेहरबान है क्योंकि वो देखता है कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहित है हर चीज को अपने हाथे में ले लेती है इसी वजह से वो गड़गड़ा कर ये कहता है इन कुंत ला तरहम इल्ला ताइईन फमन लिल आसीन अगर तेरी रहमत सिर्फ नेक लोगों के लिए हो तो फिर गुनहगारों का कौन है मेरे मौला यानी अल्लाह की रहमत तो सिर्फ कामिल लोगों के लिए नहीं बल्कि जो तौबा करके बार बार अपने रब की तरफ लौटते हैं उनके लिए भी है मजीद इसी अंदाज में फिर वो कहता है وَإِن كُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْعَامِلِينَ فَمَن لِلْمُقَصِّرِينَ अगर तू सिर्फ बेहतरीन अमल वालों को कबूल करे तो हम जैसे कमजोर लोगों का क्या होगा वह यहाँ बंदे का इतराफ है कि हमारे आमाल कामिल नहीं इसीलिए हम अमल से ज्यादा अल्लाह के फजल के मोहताज हैं फिर वो कहता है रबी हस्साइमून वफाज अलकाइमून वनजल मुखलिसून रोजा रखने वाले कामयाब हुए इबादत गुजार कामयाब हुए इखलास वाले नजात पा गए यानी तो सारे नेक लोग हैं ये तो नजात पा गए लेकिन हमारा क्या होगा وَنَحْنُ عَبِيدُكَ الْمُذْنِبُونَ हम तेरे गुनहगार बंदे हैं فَرْحَمْنَا हम पर रहम फरमा وَجِدْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَمِنَّتِكَ अपने फजल और एहसान से हम पर करम फरमा यानी हम अपने गुनाहों के बावजूद तेरे ही तरफ लौट कर आए हैं और तुझे ही से हमारी सब उम्मीदें वाबस्ता हैं बस तू हम पर रहम फरमा वग़फिर लना अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले हमारे साथ रहमत का मामला करते हुए हम सबको माफ कर दे तो आज की दुआ का खुलासा ये निकला कि गुनाह के बाद मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो आजिज़ी इख्तियार करो और अपने आमाल पर कभी भी गुरूर न करो बल्कि हम हर वक्त अल्लाह के फजल के मोहताज हैं हम अपने आमाल के इवज कुछ हासिल नहीं कर सकते ए अल्लाह ए इंसो जिन के रब ए तमाम लोगों के रब अल्लाहुम्म रब्बन नास तो हम सब को माफ़ कर दे हम सब पर इंसानियत पर रहम व करम का मामला फरमा आमीन Ya Rabbil Alameen.
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere. Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, कभी एक मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़े मंसूबों की जरूरत होती है, लेकिन कभी एक प्लेट खाना और चंद खूबसूरत अल्फाज दो इंसानों के दरमियान फासला कम कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, इस्लाम की कौन सी खसलत बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में दो ऐसे अमाल बताए जो बज़ाहिर बहुत सादा दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का ताल्लुक दूसरे इंसान से है। एक किसी की जरूरत पूरी करना और दूसरा किसी को अमन, मोहब्बत और अपनाइयत का एहसास देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुतइमु अत्तआम व तक़्रअु अस्सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तअरिफ। खाना खिलाओ और हर दीगर शख्स से सलाम करो, खाओ से जानते हो या न जानते हो। गौर कीजिए सामईन किराम, एक अमल हाथ से खाना खिलाना और एक अमल जबान से सलाम कहना, गोया एक के जरिए इंसान की जरूरत का ख्याल रखा गया और दूसरे के जरिए उसके दिल का। सबसे पहले फरमाया खाना खिलाओ, किसे? भूख एक ऐसी जरूरत है जिसे इंसान किसी भी जबान, कौम या माशरती मकाम से ताल्लुक रखता हो महसूस करता है। किसी भूखे को खाना देना, ये दरअसल उसे ये एहसास भी दिलाना है कि तुम्हारी जरूरत मेरे लिए अहम है। इसीलिए खाना खिलाने की सुन्नत में बात सिर्फ खुराक की हद तक महदूद नहीं, यहाँ मुआसात, सखावत और मेहमान नवाजी है कि दूसरे इंसान की जरूरत को महसूस करना ये बहुत ही बड़ा एक अहम अमल है। अब खाना खिलाने का तसव्वुर सिर्फ ये नहीं कि किसी इंतहाई गरीब इंसान को खाना दिया जाए, यानी जो अजनबी हो, जिसे कोई जाना पहचाना ना हो। यकीनन जरूरतमंद को खाना खिलाना बड़ी नेकी है, लेकिन खाना मोहब्बत का जरिया भी बनता है।

0: घर में मेहमान आया, खिलाइए, पड़ोसी को कुछ भेजिए, दोस्त को अपने साथ बिठाइए, दफ्तर में कोई आपके साथ है तो उसे साथ बिठा कर कहिए कि आइए साथ एक साथ मिलकर खाते हैं। कोई मुसाफिर है, कोई नया शख्स शहर में आया है, कोई तालिबे-इल्म घर से दूर है, कोई मुसाफिर है, आप उनको अपने दस्तरखान में बिठाइए, ये नेकी का काम है। कभी एक दस्तरखान तो अजनबी इंसानों को दोस्त बना देता है। सामने कराम, जरा अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हात याद कीजिए। कितनी यादें किसी दस्तरखान से वाबस्ता हैं। घर वालों के साथ खाना, दोस्तों के साथ बैठना, रमजान में इफ्तार, ईद की दावत, किसी मुसाफिर की मेजबानी और इस तरह खाना इंसानों को एक जगह बिठाता है। बात शुरू होती है, दिल करीब आने लगते हैं। और इसीलिए कभी किसी इंसान से ताल्लुक मजबूत करना हो तो सिर्फ रस्मी गुफ्तगू के बजाय उसे अपने दस्तरखान में जगह देकर देखिए। कभी रोटी बांटने से दिल भी जुड़ जाते हैं। फिर आगे कहा है, उतकरा उस सलाम, सलाम करो, यानी जिस शख्स को आप सलाम कर रहे हैं उसे खैर और सलामती की दुआ दे रहे हैं। तो मुलाकात की इब्तिदा ही दुआ से हो, और ये सिर्फ ग्रीटिंग नहीं, ये दरअसल अमन व अमान का पैगाम है, ये दुआ है। सामने कराम, जरा हदीस की तरतीब को एक मरतबा फिर एक साथ देखिए। तो क़ैमुत्ताम, यानी खाना खिलाओ, व तकरा उस्सलाम, सलाम करो, एक में आप दूसरे इंसान को कुछ दे रहे हैं, दूसरे में आप उसी के लिए दुआ कर रहे हैं। एक फ़ैल है और एक कौल है, वो इस्लाम कहता है, लोगों के लिए आपके हाथ से भी खैर निकले और जबान से भी। तो सामने कराम, सलाम को सिर्फ जानने वालों तक महदूद न कीजिए, और अपने दस्तरखान को सिर्फ अपने लोगों तक महदूद न रखिए, अपने दायरे को थोड़ा वसी कीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत इस्लामी मुआशरा वहाँ बनता है जहाँ हाथ और जबान दोनों से हम खैर को बांटते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमाए, हमें खैर को आम करने, ज़रूरतमंदों की खबर लेने और जानने और न जानने वालों के साथ हुस्न अखलाक इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. They'll say, they see.
2: Your health matters.
3: Assalamu alaikum, listeners. आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं, वो है वेट और हेल्दी वेट। आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ वेट लॉस टिप्स जो हैं वो नज़र आती हैं। कोई कहता है ब्रेकफास्ट छोड़ दें, कहीं नज़र आता है कि सिर्फ एक फूड खाइए, कोई बहुत कम कैलोरीज का मशवरा देता है, कोई चंद रोज़ में बहुत ज़्यादा वेट लॉस का दावा करता है। लेकिन हेल्थ का मकसद सिर्फ स्केल पर एक नंबर कम करना नहीं है। हेल्दी वेट का मतलब क्या है, ये हमें समझना ज़रूरी है। हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ है, उसमें उम्र है, कद है या जिन्स है, उसमें लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, मसल मास और जो हेल्थ कंडीशंस हैं, सब हमारे वज़न पर असरअंदाज होते हैं। इसलिए सिर्फ वज़न देखकर किसी शख्स की मुकम्मल सेहत का फैसला नहीं किया जा सकता। अब ये कि आजकल जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर बहुत आम है कि चंद दिनों में इतना ज़्यादा वेट जो है वो रिड्यूस आप कर सकते हैं या क्रैश डाइट जो है वो आप कर सकते हैं, तो ये क्यों बहुत बड़ा मसला बन जाती है, क्योंकि बहुत सख्त डाइटिंग से बस अफराद को शुरू में वेट कम होता नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसी डाइट्स को लंबे अरसे तक मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से एनर्जी कम हो सकती है और बाज़ अफराद में बाद में ओवर ईटिंग भी हो सकती है। इसलिए जो सस्टेनेबल हैबिट्स हैं वो अपनाना बेहद अहम है। अपने जो खाने की प्लेट है उसे आप बेहतर बनाइए। खाने की प्लेट में सब्जियां शामिल कीजिए, मुनासिब मकदार में प्रोटीन लीजिए और इसी तरह से होल ग्रेन्स या न्यूट्रिशंस कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेज हैं वो आप लीजिए, और जो पोर्शन साइज है उस पर तवज्जो देना बेहद अहम है। आपको अपनी पसंद की हर चीज़ हमेशा के लिए छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। असल चीज़ है बैलेंस और मॉडरेशन, और जो ड्रिंक्स हैं उनको ना भूलिए। बाज़ अफराद खाने से बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हैं, लेकिन ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज और शुगर ले लेते हैं, इसलिए जो शुगरी ड्रिंक्स के इस्तेमाल को कम करना एक प्रैक्टिकल तब्दीली हो सकती है। और फिर अपना जो लाइफस्टाइल है उसे एक्टिव रखना है। अब वेट मैनेजमेंट और डाइट ही सिर्फ मसला नहीं है बल्कि मजमूई सेहत के लिए जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत अहम है और रूटीन के मुताबिक और जो कैपेसिटी होती है आपकी उसके मुताबिक आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए और इसी तरह से वॉक कीजिए या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर कीजिए। नींद और वेट के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक पाया गया है। अगर आपकी जो स्लीप रूटीन है मुसलसल ख़राब है तो हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए वेट मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी जो सोने की रूटीन है उसको बेहतर बना लीजिए। कभी हम भूख की वजह से नहीं बल्कि जो है स्ट्रेस या सैडनेस की वजह से ज़्यादा खाते हैं, इसलिए अपने आप से ज़रूर पूछिए कि क्या मुझे वाकई भूख लगी है या मैं किसी इमोशन को मैनेज करने के लिए खाना जो है वो हम खा रहे हैं। अगर इमोशनल ईटिंग बार बार हो रही है तो अपने ट्रिगर्स को समझना और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल सपोर्ट लेना बहुत अहम है और बहुत मुफीद भी। वेट लॉस का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हमें कितने किलो कम करने हैं, इसके साथ साथ ये सोचना बहुत अहम है कि हम ज़्यादा एक्टिव कैसे बन सकते हैं, अपने स्टैमिना को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी डाइट कैसे बैलेंस कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत अहम कि अपनी नींद को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये अप्रोच ज़्यादा हेल्थ फोकस्ड है और अगर किसी शख्स को सिग्निफिकेंट वेट मैनेजमेंट की ज़रूरत हो तो फिर वो डॉक्टर या जो डाइटिशियन है या जो इंडिविजुअल एडवाइस है वो लेना उसके लिए बेहतर होगा। लिसनर्स, हेल्दी वेट का सफ़र पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें आपको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर पसंदीदा फूड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर दिन परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अपनी हैबिट्स में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लाइए जिन्हें फिर आप लॉन्ग टर्म जारी रख सकें, जिसमें हेल्दी फूड है, रेगुलर मूवमेंट है, अच्छी नींद है, लेस शुगरी ड्रिंक्स हैं और इसके अलावा जो अपने मुख्तलिफ गोल्स हैं उन्हें सामने रखना है और यही सबसे बेहतर अप्रोच है। वजन के नंबर से ज़्यादा अपनी मजमूई सेहत पर तवज्जो दीजिए और यही है योर हेल्थ मैटर्स।
4: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, स्कूल स्टूडेंट्स की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए वजारत दाखिला ये ताकीद करती है कि बच्चों को सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के जरिए ही रोड क्रॉस करने की हिदायत दी जाए। ये न सिर्फ उन्हें ट्रैफिक एक्सीडेंट से महफूज करता है बल्कि उनमें ट्रैफिक अवेयरनेस और अपने आप को महफूज रखने की आदत को भी बढ़ावा देता है। पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल स्टाफ का फर्ज है कि वो बच्चों को गाइड करें और उन्हें समझाएं कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी हर वक्त जरूरी है। बिना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के रोड क्रॉस करना खतरा बढ़ाता है, खासतौर पर बिजी रोड्स और स्कूल जोन्स में। बच्चों को ये जरूर बताएं कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर भी रुककर ट्रैफिक का मुआयना करना, सिग्नल्स और रोड मार्किंग्स को फॉलो करना उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि अगर हम सब मिलकर बच्चों को रोड क्रॉस करने का सही तरीका सिखाएं तो हम न सिर्फ उनकी हिफाजत करते हैं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और सेफ ट्रैफिक कल्चर को भी बढ़ावा देते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: टू अनदर टेक अपडेट। देखिए पूरी अपडेट्स में हमने अभी तक आपको वेबसाइट्स बताई हैं, बहुत सारी खबरें भी दी हैं। अब जरा मैं सिर्फ खबरों के बारे में बात नहीं करूंगा, ना सिर्फ मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, मगर मैं उन मुद्दों के बारे में बात करूंगा जो आपके फ्यूचर से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके टेक वर्ल्ड पे असर डालने वाले हैं। तो आज मैं बहुत जरूरी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो इम्पैक्ट डालेगी उन लोगों पर जो यूट्यूब पर अपना करियर देख रहे हैं। तो हम इस पूरी चीज को आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात सबसे जरूरी है वो ये है कि जो लोग YouTube पर जाना चाहते हैं उनको अभी के अभी अकाउंट बना लेना चाहिए, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ। तो हमें अकाउंट बनाना भी है और अकाउंट का ध्यान रखना है कि उसे हमें एक नौकरी की तरह ट्रीट करना है। आई एम सॉरी टू ब्रेक इट डाउन, लेकिन ये कड़वा सच आपको ये घूंट पीना पड़ेगा, YouTube कैन नॉट बी योर टाइम पास अगर आप YouTube से कुछ कमाना चाहते हैं। फिर रियली रियली सीरियस कि मुझे कुछ अर्निंग चाहिए, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब। ये पहले बबल में लोगों का जो है बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये कि पहले जो था YouTube का मॉडल अलग तरीके से काम करता था, 4000 आवर्स पूरे कर रहे होते थे, 12 महीनों का वक्त होता था, 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज चाहिए होते थे या तो 90 दिनों में। लेकिन अब नई रिक्वायरमेंट फरवरी से आने वाली है, ये रिमाइंडर है। वैसे तो ये खबर लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन जिन तक नहीं पहुंची है जो अभी अकाउंट बनाने वाले हैं, तो नई रिक्वायरमेंट जो है वो लागू हो जाएगी 1 फरवरी 2027 से। अ लिटिल टाइम लेफ्ट, और इसकी जो नई रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि 8000 घंटे इन 365 डेज, मतलब बेसिकली एक साल के अंदर, या फिर 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज इन 90 डेज। और जो बेसलाइन रखी गई है सब्सक्राइबर्स की वो अभी भी 1000 ही रखी गई है। तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? देखिए इफेक्ट पड़ेगा नए क्रिएटर्स पे जो पूरी तरह से चाहते हैं कि मोनेटाइज कर लें, प्रीमियम अकाउंट बना लें पहले या बाद में फरवरी से, क्योंकि 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज लाना उससे पहले बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट इजी, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट यू कैन डू इट। दूसरी चीज, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पे भी, जो क्रिएटर्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं पार्टनर प्रोग्राम में इस डेट के आने से पहले, उनको भी अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो लो टीयर्स में जो फैन फंडिंग या शॉपिंग इन सब में आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ चीजें तोड़ मरोड़ के बताना चाहता हूँ, इफ यू स्टार्टिंग योर करियर इन यूट्यूब ऑन यूट्यूब वट एवर। तो जब आप YouTube पे करियर शुरू करने वाले हैं तो आपको लोग दो तरीके का एडवाइस देंगे। नंबर वन एडवाइस जो मैं भी आपको दूंगा, अगर आपका कॉन्टेंट आप ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाला है तब तो आप 20-25 मिनट का डालें, कि आपको इतना यकीन है, आपको भरोसा है अपने ऊपर कि 20 मिनट के अगर मैं कुछ अपलोड कर रहा हूं तो पीपल विल वॉच इट, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल गेट दोज 8000 आवर्स। वो जो 8000 घंटे पूरे करने का जो एक काम थमा दिया है YouTube ने, जो 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं अपना चैनल मोनेटाइज करना, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट। तो अगर ऐसा नहीं है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि मैं 20 मिनट का कंटेंट दूंगा, तो आपको YouTube के शॉर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। वो जो एक मिनट का जो टाइमलाइन है, 30 सेकंड्स के अंदर, 40 सेकंड्स के अंदर अपने कंटेंट को अगर आप डिलीवर करने वालों में से हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, डू दैट, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। अभी से आप लग गए ना, जी जान लगा दी आपने, तो कुछ वक्त नहीं लगेगा आपको उस लेवल पे पहुंचने पे जो आपने सोच रखा है। बट देन अगेन, मैं पीछे फिर से जाना चाहूंगा वो उस बात पे जो मैंने पहले कही, YouTube पे अगर आप अपना करियर सोच रहे हैं, एंड दैट इंक्लूड्स मी आल्सो, मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ सिर्फ आपको नहीं दे रहा, मैं अपने आप को भी रिमाइंड करा रहा हूँ, इफ वी ऑल आर थिंकिंग YouTube एज अ करियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोई टाइम पास नहीं हो सकता, ये कोई सिर्फ हॉबी की तरह नहीं है। अब YouTube का माना है सिर्फ एंटरटेन नहीं करना है, देन यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब। Very, very simple. And quality और consistency. नौकरी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? YouTube को नौकरी मानने का मतलब है कि मैं भैया हफ्ते में 3 दिन आऊंगा, 3 दिनों आऊंगा, इतने बजे आऊंगा। You have to deliver on क्या कहते हैं उसको, expectations। आप एक टाइमिंग सेट करते हैं, एक दिन सेट करते हैं, जैसे हम लोग अपनी नौकरी पे जाते हैं वैसा। इस पे और बात करता रहूंगा, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा 666-22-107 पर या फिर सोशल मीडिया FM 107 कतर। ये थी आज की टेक अपडेट, मिलते हैं अगले में, स्टे ट्यून्ड।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: खबर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम बात करते हैं। और कल जैसे कि हमने बात किया एक अजीबोगरीब चीप यानी कि सस्ता पिक एंड ड्रॉप स्कूल ट्रांजिट के बारे में, और आज ऐसे ही हम एक और स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज बेट एंड स्विच या फ्री सोशल मीडिया आइटम स्कैम। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्कैम होता क्या है। ये स्कैम सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस जैसे कि फेसबुक हो गया या ऐसे एप्लीकेशन हो गया जहां पर आपको सेकेंड हैंड मार्केट दिखती है या सोशल मीडिया का कोई और पेज, वहां पर बहुत तेजी से फैल रहा है ये स्कैम। स्कैमर्स बहुत ही महंगी और अच्छी कंडीशन वाली चीजें जैसे प्रीमियम फर्नीचर, महंगे फोन्स, लैपटॉप्स, रेफ्रिजरेटर्स बिल्कुल फ्री में देने का एड लगाते हैं। ये तो आप देखते ही होंगे, कई जगह आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, आपने उन पेजेस को भी फॉलो कर रखा है जो फ्री में पोस्ट आता है, जो फ्री के सामान जो है लोग उससे जुड़े हुए हैं। आप ऐसे कई फेसबुक को फॉलो भी करते होंगे पेजेस को जहां पर 100 से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 100,000 ऑफ लोग जो है वहां पर जुड़े हुए हैं, वो अपने घर से डीक्लटर करना चाहते हैं, फ्री में सामान बेचना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच एक स्कैमर भी छुपा होता है। वो एड में लिखते हैं या फिर उस सोशल मीडिया के पोस्ट पर लिखते हैं कि हमारे घर पे ये सामान फालतू का पड़ा है, प्लीज यहाँ से लेकर जाइए, हम पूरा फ्री दे रहे हैं, या हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, हमें बस स्पेस खाली करनी है इसलिए फ्री में दे रहे हैं। और जब आप ये सब देखते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं तो वो बहुत ही स्वीट बनते हैं और आपको आइटम कलेक्ट करने के लिए एक एड्रेस भी भेजते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद खेल चेंज हो जाता है। वो आपसे कहते हैं बहुत सारे लोग लेने के लिए रेडी हैं, अगर आपको चाहिए तो भी एक छोटा सा फीस जो है वो लगेगी, विच इज कॉल्ड होल्डिंग फी या फिर हैंडलिंग चार्ज भी। उसके अलावा अलग अलग तरीके से पेमेंट करने को वो आपसे कहते हैं, और वो ये भी डराते हैं कि अगर आप ये सामान नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से लोग हैं, वो सामान ले लेंगे, क्योंकि आप वो फर्नीचर, वो लैपटॉप, वो रेफ्रिजरेटर सस्ता देखते हैं। एक तो वो फ्री में दे रहा था पहले, लेकिन अब वो कह रहा है नहीं नहीं वो 50 रियाल या 100 रियाल में लेकर जाइए, लेकिन आपको होल्ड करने के लिए फीस देनी पड़ेगी, तो आप अपफ्रंट पे कर भी देते हैं। लेकिन ये एक तरह का स्कैम है। आप सोचते हैं इतनी महंगी चीज है फ्री में मिल रही है, 500-1000 रुपये देने में क्या ही बुराई है, या फिर 50 रियाल 40 रियाल देने में क्या बुराई है, लेकिन जैसे ही आप वो पैसे ट्रांसफर करते हैं वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और एड्रेस भी फेक निकलता है। इससे बचना कैसे है इस पर भी बात करना बड़ा जरूरी है दोस्तों। देखिए, इनसे बचने के 3 आसान तरीके हैं। गोल्डन रूल को याद रखना सबसे बेहतरीन है आपके लिए। दोस्तों, ऑनलाइन मार्केट प्लेस का सबसे बड़ा रूल है, अगर कोई चीज कंप्लीटली फ्री एडवर्टाइज्ड है या सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई है तो उसे पाने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो वो 100% स्कैम है। अगर किसी ने पोस्ट किया है फ्री में, उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद अगर आपसे वो पैसा मांग रहा है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं फेसबुक के या अलग अलग सोशल मीडिया पेज पे जहां पर उसने ये पोस्ट किया है, उनके एडमिन से भी आप कह सकते हैं कि ऐसे पेजेस को ब्लॉक करें। अगर उनका नंबर आपके पास है तो भी आप जो अथॉरिटीज होती हैं उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फिजिकल इंस्पेक्शन से पहले कोई भी पेमेंट ना करना। अगर आपके सामने कोई भी पोस्ट आती है, आप किसी के घर जाते हैं और जब देखते हैं कि सामान वहां पर रखा है, आपने इंस्पेक्शन कर लिया, किसी तरह की खराबी नहीं है, तब आप पेमेंट करें। किसी भी तरह का डिजिटल डिपॉजिट, टोकन मनी, शिपिंग फी या होल्डिंग चार्ज वगैरह कभी भी अपफ्रंट पहले से ना दें। खुद उस प्रोडक्ट को अपनी आंखों से देखें और

0: कर लें उसके बाद पेमेंट करें। उसके अलावा सेफ मीटिंग प्लेसेस का भी बहुत ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर आप उनसे प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, सारी बात हो गई है, उन्होंने एड्रेस दे दिया है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है फ्री में ले जाइए, आप अपने लिए पूरा ट्रक बुक करके लेकर जाते हैं, अपनी कार लेकर जाते हैं कि सामान भर कर वापस घर लेकर आएंगे, तो हमेशा किसी पब्लिक प्लेस पर मिले, जैसे कोई बिजी मार्केट है, मेट्रो स्टेशन है, या फिर सबसे सेफ किसी लोकल पुलिस स्टेशन के बाहर, किसी के सुनसान घर या अनजान इलाके में अकेले बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये रिस्क डबल हो जाता है। कई बार आप किसी के घर जाते हैं, वो आप पर कोई इल्जाम भी लगा सकता है, चोरी का इल्जाम भी लगा सकता है, तो ऐसे में कोशिश करें कि घर के बाहर मिले, जहां पर कैमरेज वगैरह लगे हों वहां पर मिले और वहीं पर पेमेंट करें, ताकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ प्रूफ हो। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। उम्मीद है पिछले कुछ मिनट में जो हमने बताया, जितने सॉल्यूशन के बारे में हमने बात करी, उसके बाद आप इस तरह के स्कैम से बचने के लिए अब तैयार होंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

आज हम बात करेंगे इंडियन हॉकी के एक ऐसे लेजेंड की जिनका नाम सिर्फ ओलंपिक मेडल से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, एलिगेंस और अटैकिंग हॉकी से जुड़ा हुआ है। यहाँ दोस्तों नाम है जफर इकबाल, वो खिलाड़ी जिन्हें हॉकी की दुनिया में जेंटलमैन ऑफ हॉकी के नाम से भी याद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं एफएम 107 और आज स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में हम बात करेंगे जफर इकबाल के बारे में। 12 जून 1956 को बिहार में पैदा होने वाले जफर इकबाल ने इंडियन हॉकी के उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब टीम में एक तरफ पुरानी हॉकी की आर्टिस्ट्री थी और दूसरी तरफ गेम रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा था। ग्रास यानी घास के मैदान से एस्ट्रोटर्फ यानी सिंथेटिक टर्फ की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था और हॉकी ज्यादा फास्ट और फिजिकली डिमांडिंग बन रही थी। जफर इकबाल एक लेफ्ट फॉरवर्ड थे यानी ऑन द लेफ्ट विंग में खेलते थे जहां उनकी पोजीशन बॉल कंट्रोल, स्पीड, पासिंग और अटैकिंग इंटेलिजेंस की जरूरत होती है और उनका इंटरनेशनल करियर 1970 के आखिर में उभर कर सामने आया। उन्होंने 1978 के ब्यूनस आयर्स वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जहां टीम डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर गई थी। लेकिन जफर इकबाल के करियर का सबसे यादगार चैप्टर था 1980 का मॉस्को ओलंपिक्स। मॉस्को जाने वाली भारतीय टीम बहुत यंग थी और उस वक्त इंडिया के पास एस्ट्रोटर्फ पर ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। हॉकी इंडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक जफर इकबाल उस हिस्टोरिक स्क्वाड का हिस्सा थे जिसने स्पेन को फाइनल में 3-4 चार गोल से शिकस्त देकर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। यह इंडिया का हॉकी में 8th गोल्ड मेडल था और अब तक समर ओलंपिक्स में इंडिया का आखिरी गोल्ड मेडल ही यही है। 1980 के बाद इंडिया ने गोल्ड मेडल नहीं जीता। हाँ, 2020-2024 में इंडिया पोडियम में वापस जरूर आए लेकिन इंडिया को दोनों बार ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल हुए। जफर इकबाल ने बाद में याद किया कि मॉस्को फाइनल स्पेन के खिलाफ बहुत टफ था। इंडिया को मैच के आखिरी मोमेंट्स में मजबूत डिफेंस करना पड़ा लेकिन टीम ने प्रेशर को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया था और पोडियम पर गोल्ड मेडल के साथ खड़ी हुई। सोचे दोस्तों, एक नौजवान इंडियन टीम, नई सरफेस यानी एस्ट्रोटर्फ, ओलंपिक प्रेशर और सामने यूरोपियन चैंपियन स्पेन और इसी स्टेज पर जफर इकबाल जैसे फॉरवर्ड्स ने इंडियन अटैकिंग ट्रेडिशन को जिंदा रखा। 1980 के बाद भी उनका इंटरनेशनल करियर जारी रहा। उन्होंने 1978 और 1982 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल्स जीते और 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच उनकी फेवरेट मेमोरीज में शामिल है। इंडिया मैच में 3-0 से पीछे था लेकिन कमबैक करते हुए

4 के मुकाबले में 5 गोल से फतह हासिल। और फिर आया 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। इस बार जफर इकबाल सिर्फ खिलाड़ी नहीं था दोस्तों, वो इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट के फ्लैग बेयर थे और इंडियन हॉकी टीम के कप्तान भी। हॉकी इंडिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में इंडिया 5th पोजीशन पर रहा। लेकिन लीडरशिप का मतलब सिर्फ मेडल्स नहीं होता। जफर इकबाल का करियर इस बात की मिसाल है कि एक खिलाड़ी अपने गेम बिहेवियर और प्रोफेशनलिज्म से भी लीगेसी क्रिएट करता है। इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट के बाद भी उनका कनेक्शन इंडियन हॉकी के साथ खत्म नहीं हुआ। वो कोचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए गेम की खिदमत करते रहे और हॉकी इंडिया के मुताबिक वो फॉर्मर चीफ नेशनल कोच भी रहे और उनकी कोचिंग में इंडिया ने 1994 हिरोशिमा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। दैट्स एन यूनिक अचीवमेंट। जफर इकबाल की कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाती है दोस्तों कि लेजेंड सिर्फ वो नहीं होते हैं जो ट्रॉफीज जीतते हैं, लेजेंड्स वो होते हैं जो अपने दौर के गेम को समझते हैं, बदलते हुए वक्त के साथ अडाप्ट करते हैं और अगली जनरेशन के लिए एक मिसाल छोड़ जाते हैं। जफर इकबाल ओलंपिक चैंपियन, फॉर्मर कैप्टन, कोच और इंडियन हॉकी के एक ट्रू जेंटलमैन। और शायद इसीलिए जब इंडियन हॉकी के गोल्डन एरा का जिक्र होता है, जफर इकबाल का नाम हमेशा इज्जत और फख्र के साथ लिया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। आज हम बात करेंगे कतर की एक बहुत अहम रिवायत, अरबी कॉफी यानी कहवे के बारे में। कहवा सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि मेहमान नवाजी, एहतराम और गुफ्तगू का आगाज है। कतर में जब कोई मेहमान मजलिस में आता है तो अक्सर उसे खजूर के साथ कहवा पेश किया जाता है। मेहमान के आने से पहले ही कॉफी छोटे फंजान तैयार कर लिए जाते हैं। अरबी कॉफी आमतौर पर हल्के भुने हुए कॉफी बीन्स से तैयार की जाती है। बीन्स को पीसा जाता है और फिर पानी के साथ पकाकर इसमें इलायची शामिल की जाती है। कुछ घरानों में जाफरान, लौंग या दूसरे मकामी अज्जा भी डाले जाते हैं। इसीलिए हर खानदान के कहवे में एक अलग खुशबू और जायका महसूस होता है। कतरी घरानों में कहवा बनाने का तरीका सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि एक हुनर होता है। कॉफी के दाने चुनने से लेकर उन्हें भूनने और पीसने तक का हर मरहला तवज्जो का मुतालबा करता है। कुछ बुजुर्ग खुद बीन्स भूनना पसंद करते हैं ताकि खुशबू और रंग उनकी पसंद के मुताबिक हो। कहवा अरबी कॉफी पॉट यानी तला में पेश किया जाता है। तला अपनी खास शक्ल और लंबी नाक की वजह से आसानी से पहचाना जाता है। इसे कॉफी को छोटे बगैर हैंडल वाले कप यानी फंजान में डाला जाता है। कप आमतौर पर छोटा भरा जाता है ताकि कॉफी गर्म रहे और मेहमान को दोबारा पेश की जा सके। कहवा के आदाब में सबसे अहम बात मेहमान का एहतराम है। अक्सर मेजबान या घर का छोटा फर्द कॉफी पेश करता है। कप दाएं हाथ से देना और लेना रिवायती आदाब का हिस्सा है। बड़े या मौजूद मेहमान को पहले पेशकश की जाती है, फिर दूसरे लोगों को। मेहमान अगर और कॉफी चाहता हो तो वो कप मेजबान की तरफ बढ़ा सकता है और जब वो मजीद ना लेना चाहे तो आमतौर पर कप को हल्के से दाएं बाएं हरकत देता है। ये खूब

0: को टारगेट किया जाता है इसके बारे में. इंसान को आप स्टेटमेंट दीजिए, आपने जो रिसेंटली स्ट्रेस फेस किया है और वो कहता है कि वाओ ये तो बिल्कुल सच है, फिर ट्रस्ट जो है बिल्ड होता है और फिर मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है.
1: हाँ जी सामिन इकराम, इन मॉडर्न टर्म्स की बात आपने सुनी सरोज भाई की जबान में, ये तो मुझसे इस तरह की बातें कहना नामुमकिन है, यानी इस तरह के टर्म्स यूज करना जो कि मॉडर्न टर्म्स है, मैं इनको आपको उर्दू में बताता हूँ.
0: इसीलिए हम इसीलिए ताकि ये मैसेज पहुंच जाए,
1: सब तक पहुंचे. बिल्कुल,
0: हम चाहते हैं कि हमारी जेन जी जो है ना वो भाई कुरान को उठाए, पढ़े, समझे.
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब जरा उर्दू में भी सुन लीजिए. कुरान और सुन्नत ने कहानत, फालगिरी, गैब दानी के दावों और तवहुमात के बारे में सख्त तंबीह की है. तो मुद्दा यह कि आपने सरोज भाई से तो उस जबान में सुन ली है, अब जरा उर्दू में भी आप जो उर्दू समझते हैं वो भी समझ जाएंगे कि जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से आप, जैसे कि सरोज भाई ने हॉरोस्कोप का जिक्र किया है तो उसमें बुर्ज हमल की बात आती है, बुर्ज सौर में जौजा के लिए मोहब्बत के दिन, रिज़्क बढ़ेगा या घटेगा, किसी नाम, तारीख पैदाइश या सितारे से मुस्तकबिल का फैसला निकालना, तो ये सब इंसान को अल्लाह पर तवक्कुल से हटाकर वहम और गैर यकीनी सहारों की तरफ ले जा सकता है. ये बहुत खतरनाक है.
0: और जो एक बात तलब है आपको मैं रोकूंगा, जो उस वक्त भी आम थी और आज भी, कहने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा करवाना.
1: बिल्कुल, और ये बहुत गलत एक यानी खतरा है. मैं ये कह सकता हूँ कि बदनीयती हो सकती, बदनीयती पर मुमकिन ये सब आमाल है और क्या
0: बदनीयती है.
1: अब मियाँ बीवी के दरमियान झगड़वाने के लिए आज भी आप क्या कहें, हमारे तरफ के लोग हर वक्त मुख्तलिफ हीले अपनाते हैं, वो कोशिश करते हैं ताकि आप झगड़ जाइए,
0: घर वाले शामिल हैं,
1: और जादू टोना की बात करें तो बहुत खस्ता हालत है. अल्लाह सबको महफूज रखे. और इस सिलसिले में तस्बीहात की जो बात आती है सुबह शाम के अज़कार, इसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि जैसा कि हमने क़िस्से के शुरू में ही कहा है कि बिइज़्निल्लाह हर चीज जो है ना वो अल्लाह की हुक्म से ही, अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह के इल्म के बगैर नामुमकिन है. तो इस वजह से वमा हुम बिदारिन अभी मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह. सहर की बात भी आई है, सहर हकीकत है, लेकिन उसमें एक बात है कि अल्लाह का इल्म, अल्लाह की इजाजत, अल्लाह का हुक्म, ये सब चीज के ऊपर है. तो इस वजह से अगर हम अल्लाह के दरपेश होंगे हर वक्त और इस तरह जो ना रुजू करने वाले होंगे तो बिइज़्निल्लाह तआला ये सब उस तरह के हमें मुतासर नहीं कर सकेंगे
0: इंशाअल्लाह.
1: अब एक और कुरानी पस मंजर देखते हैं सामिने किराम के. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसत के ज़माने में जब शयातीन ने पहले की तरह आसमान की खबरें सुनने की कोशिश की तो उन्होंने महसूस किया कि अब आसमान पर सख्त निगरानी है और सितारे जो है ना उनका ताकुब करते हैं. शिहाब की बात आई है, शोहबन साकिब. तो सूरह जिन में जिन्नात की जबान से आता है कि हम पहले आसमान में सुनने की जगह बना लिया करते थे मगर अब जो सुनने की कोशिश करे उसे एक ताक में लगा हुआ शिहाब मिलता है, यानी वो ताक पर बैठा हुआ रहता है, जब ऊपर जाते हैं उसका पीछा करता है. तो इसी तब्दीली ने जिन्नात को हैरान किया. उन्होंने सोचा कि जमीन में जरूर कोई बड़ा वाकया हुआ है. वो मुख्तलिफ सिमतों में निकले और एक जमात वादी नखला के करीब पहुंची जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे. उन्होंने कुरान सुना और जब कुरान सुना तो पहचान लिया कि वो यही वो नई हकीकत है जिसकी वजह से आसमान का निज़ाम बदल गया है. फिर वो ईमान ले आए और अपनी कौम की तरफ दावत देने चले गए.
0: भाई ये भी बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है देखा जाए तो, है ना, सेम अनसीन वर्ड और दो रिएक्शंस. भाई कुछ शयातीन जो हैं वो सच का मिसयूज करते हैं और कुछ जिन कुरान सुनकर हकीकत जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं. यानी कैटेगरी से ज्यादा चॉइस मैटर करती है यहाँ पर. हर ग्रुप में इंडिविजुअल्स अपना रिस्पांस चूज करते हैं, हम भी वही करते हैं. सेम मैसेज दो लोग सुनते हैं, एक चेंज हो जाता है और दूसरा उसको रद्द कर देता है, रिजेक्ट कर देता है.
1: देखिए सर भाई, और यही बात जो आपने कही कि कुरान जिन्नात के बारे में भी वाज़े करता है कि सब जिन एक जैसे नहीं. सूरह जिन में आता है वन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक, हम में कुछ साले हैं और कुछ उससे कम दर्जे के. यानी जिन्नात में भी नेक और बद की तकसीम है. और शैतान के लफ्ज़ भी आम तौर पर सरकश और जो मुतमर्रिद कहते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से. कुरान कहता है कि शयातीन इंसुजिन में से हो एक दूसरे को धोखे की आरास्ता बातें पहुंचाते हैं. यानी शर हमेशा खौफनाक शक्ल में नहीं आता, कभी शर जो है ना खूबसूरत दलील लेकर आता है, कभी कहता है कि बस एक बार आजमा कर तो देखो. तो सामिन इकराम यहाँ बात यह है कि कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें खोलना ही आजमाइश को घर में दावत देता है.
0: क्या बात कही है. बिल्कुल हर चीज जो मिस्टीरियस हो वैल्यूएबल नहीं होती और हर चीज जो एंशिएंट सीक्रेट कहकर बेची जाए ये कह सकता हूं मैं आज के दौर में
1: बिल्कुल
0: भाई वो विजडम नहीं होती वो समझ नहीं है आज भी स्कैम्स का एक बड़ा फॉर्मूला चल रहा है भाई सीक्रेट नॉलेज हिडन पावर गारंटीड रिजल्ट ये सारी चीजें कहकर आजकल बेची जाती है तला भाई जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम हो वहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों
1: सर भाई अब जरा हम हमारी बातें काफी फैल रही हैं उसको जरा समेट कर लेके आते हैं
0: बिल्कुल
1: और असल जो किस्सा है उसकी तरफ लौटेंगे सुलेमान अलैहि सलाम के जमाने में सुलेमान अलैहि सलाम दाऊद अलैहि सलाम के फर्जंद नबी भी थे और बादशाह भी सब जानते हैं तो अल्लाह ने उनके लिए एक अजीम सल्तनत अता फरमाई जिसकी मिसाल यानी आम इंसानी तारीख में कम मिलती है उन्होंने दुआ की थी कि मेरे रब मुझे ऐसी बादशाह अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लिए मुनासिब ना हो इस सिलसिले में हमने पिछले हलके में भी इसकी तफसील वाकया बताया है तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई परिंदों की बोलियां समझने की सलाहियत दी चींटी की गुफ्तगू सुनने की नेमत दी हवा को मुसख़र फरमाया जिन्नात उनके मातहत काम करते थे इंसानों जिन्नात और परिंदों पर मुश्तमिल उनका लश्कर एक मुनज़्ज़म सल्तनत के तहत चलता था कुरान में वादी नमल का मशहूर वाकया आता है कि जब एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा अपने बिलों में दाखिल हो जाओ कहीं सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रोन न दे
0: और उन्होंने सुन लिया
1: सुनकर वो मुस्कराए ये उनकी देखिए सल्तनत की वसत थी देखिए वो चींटी की जबान को भी समझ रहे हैं लेकिन उसी मकाम पर कुरान ने ये भी वाज़े किया कि सल्तनत शहर की वजह से नहीं थी ये अल्लाह की अता थी
0: सुभान अल्लाह और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जब अल्लाह सुबहान ताला किसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट दें तो भाई उस गिफ्ट को आप गलत एक्सप्लेनेशन के साथ अटैच ना करें ये बहुत अनफेयर है किसी की पर्सनालिटी के लिए कभी किसी की सक्सेस देखकर लोग कहते हैं कुछ सीक्रेट तो होगा ऐसे होता है ना किसी कनेक्शन से हुआ होगा ये नेचुरल तो नहीं है मगर हर अनयूजुअल सक्सेस सस्पिशियस नहीं होती कभी मेहनत होती है कभी दुआ होती है कभी अल्लाह सुभान व तआला की खास अता होती है तला भाई
1: बिल्कुल सर भाई आपने जो बताया था बिल्कुल काफी अहम है अब कोई पूछे सर तुम यहाँ कैसे आए तुम रेडियो पर कैसे बात कर रहे हो
0: सही सही सही
1: काफी लोग इस तरह के सवाल करते रहते हैं
0: बिल्कुल सही बिल्कुल सही
2: आप सुन रहे हैं कससुल कुरान
3: आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर
1: और सामिन कराम अब हम दोबारा वाक्य की तरफ लौट रहे हैं रिवायती बयानात में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में फैलने वाली सहरों कहानत की किताबों को जमा करवाया था उन्होंने दबा दिया यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम बल्कि सहर के खिलाफ वो मुज़ाहमत कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने इस तरह के इकदाम किए कि लोग ये ना समझे कि कोई इंसान अल्लाह के सिवा मुस्तकिल तौर पर गैब जान लेता है यही कि जादू और कहानत के जरिए हकीकी कोई तसर्रुफ़ कायनात हासिल किया जाता है तो उनके बाद जब एक सालेह यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जब एक सालेह नस्ल गुजर गई जो नेक थी और नई नस्ल आई तो रिवायती बयानात में यह है कि शयातीन ने उन छुपी हुई किताबों की तरफ लोगों को दोबारा मुतवज्जे किया तो एक फरेब यह भी फैलाया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी बादशाहत का राज इन्हीं किताबों में था वो जिन के जरिए वो मैजिक जो है ना वो सहर के जरिए जिन्नात पर इंसान और परिंदों पर इस तरह हुकूमत करते थे और यहीं से फिर वो दोबारा वो झूठ को जिंदा किया गया
0: और देखिए ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है जब एक्सप्लेनेशन सिंपल होते हैं ना तो क्या होता है कि भाई अल्लाह सुभान व तआला ने दिया मेहनत से मिला नॉलेज से हुआ लोग कभी कभी उससे सेटिस्फाई नहीं होते ऑब्वियसली उन्हें क्या है साहब हिडन कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए होता है मसाला तो चाहिए ना आजकल की जिंदगी में तो भाई सीक्रेट फॉर्मूला हिडन बुक मिस्ट्री कोट वगैरह वगैरह इसलिए कॉन्स्पिरेसी थिंकिंग भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल टेम्पटेशन है हर कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी ट्रू नहीं होती और हर सिंपल एक्सप्लेनेशन वीक भी नहीं होती ये हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए
1: बिल्कुल और समीन इकराम सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान इन आयात के शुरू में ही इस तरह किया गया वो मा कफ़रा सुलेमान सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया वलाकिन शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास सिहर बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया वो लोगों को सहर सिखाते थे यानी कुरान ने दो चीज़ें अलग कर दी एक तो नबुव्वत और सहर मौजज़ा और जादू यानी अल्लाह के आता और शैतानी फरेब ये दोनों एक चीज़ नहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे साहिर नहीं اور اس طرح یہی آیت اس تاریخی بہتان کو تہمت کو جڑ سے ختم کرتی
0: ہے کیا بات ہے اور ہم اپنی لائف میں بھی لیبلز جو ہیں نا ان کو کیئرفلی یوز کریں ہمیشہ یاد رکھیے ہر چیز جو سمجھ نہ آئے اس کو سحر میجک کہہ دینا بھی اگنورنس ہے بھائی ہر اسپریچول کلیم کو ایکسیپٹ کر لینا بھی یہ بھی اگنورنس ہے بھائی بیلنس اپروچ یہ ہے کہ ایویڈنس دیکھیں اوتھینٹک سورس دیکھیں اور اپنے بلیف کو ریومر پر بلڈ نہ کریں ہمیشہ اس کی تحقیقات کریں جو بھی چیز ہے
1: بالکل سر یہ جو آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات کہی اور اس سلسلے میں جادو کے حوالے سے لوگ زیادہ تر کہنے لگتے ہیں ارے کچھ بھی ہو گیا شاید جادو کیا ہے کسی نے ہر بات کو جادو سے ریلیٹ کر دیتے ہیں
0: آج کل یہی چل رہا ہے
1: یہ بہت ہی بدزن ہے بدزن ہے جس طرح بعض اوقات بدزن کے بھی آثار ہوتے ہیں اثرات دکھتے ہیں تو دیکھیں اس موضوع کا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ریلیٹ کریں تو ایک واقعہ وہاں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا صحیح حدیث میں لبید ابن عاصم کا واقعہ آتا ہے کہ اس سحر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور بشری کیفیت تک محدود تھا یعنی وہی شریعت یا دین پہنچانے کے معاملے پر نہیں عام طور پر ملحدین اور ایتھسٹ جو ہے نا وہ یہ تہمت دینا چاہتے ہیں اس دین پر یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ کہتے ہیں کہ سحر حقیقت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے تو پھر کیا وہی اور اس معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ سحر کے تاثرات سے کچھ کہے ہوں گے معاذ اللہ بات ایسی نہیں کبھی بھی نہیں نبوت اور تبلیغ رسالت اللہ کی حفاظت میں تھی قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے غمگین بھی ہوئے زخم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور آخر کار وفات بھی پائے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہی پہنچانے کے معاملے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اس میں کوئی شک نہیں
0: کیا بات ہے یار یہ پوائنٹ بہت بیلنسڈ ہے طلح بھائی بھائی اسپریچولیٹی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فزیکلی انوینسیبل ہو جائے ہے نا رسول نبی پروفٹس بھی انسان ہیں اور وہ بھی تکلیف سے گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے ہمیں ملتے ہیں کیا کیا ہوا ہے کن کن چیزوں سے ہمارے لیے گزرے ہیں کتنی اذیت طائف میں کیا ہوا اس سے زیادہ کیا ہوگا سبحان اللہ ہے نا تو اس لیے اگر کوئی ریلیجن پرسن کسی بیماری وغیرہ میں پڑ گیا ہے فیس کر رہا ہے یا ایموشنل اسٹریس فیس کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا جو فیتھ ہے وہ کمزور نہیں ہے نا ہیومن جو طریقہ ہے جو انٹیگریٹی ہے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر سکتی ہیں بس جیسا طلب بھائی نے بتایا کہ ہر چیز کو ایک جادو سے ہی کنیکٹ نہ کرا جائے
1: بالکل بالکل بالکل جادو کے حوالے سے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے سر بھائی وہاں ہاروت ماروت کا ذکر آتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت اور پھر فوراً یہ آیا وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر وہ کسی کو کچھ سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ یہ ہم تو ایک آزمائش ہیں بس کفر نہ کرنا تو یہاں اصل لفظ ہے فتنہ آزمائش تو نالج جو ہے نا یہ انوائٹیشن نہیں تھا یہ وارننگ کے بغیر کھلا ہوا دروازہ نہیں تھا بلکہ ابتدائی میں واضح کر دیا جاتا تھا کہ تم ایک خطرناک حد کے قریب کھڑے ہو اسے عبور نہ کرنا
0: اور یہ ہماری ماڈرن لائف کے لیے بہت ریلیونٹ ہے بھائی کبھی وارننگ لیبل پروڈکٹ پر ہوتا ہی ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں بس ٹرائی کر لیتے ہیں ایکسپائر ہو گیا تو کیا ہے بھائی کچھ چیزوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کا جو کاسٹ ہے نا وہ بہت ایڈکشن ہو فراڈ ہو ہے نا کوئی بھی غلط پریکٹس ہو ٹاکسک ریلیشن شپ میں آپ ہوں ہر چیز کو میں کنٹرول کر لوں گا یہ اپروچ سیف نہیں ہوتی تو سمجھ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کچھ چیزوں سے ڈسٹینس ہی رکھا جائے ان سے دوری ضروری ہے
1: بالکل سر بھائی اور آپ نے آخر میں جو بات کہی یہ دراصل میں سمجھتا ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کافی اہم ہے کہ انہیں یہ سکھانا کہ آپ کو بعض چیزوں سے ڈسٹینس رکھنا ہے ہر چیزوں کا مزہ اور ذائقہ چکھنا نہیں ہے
0: کیا بات
1: چونکہ یہ بات اگر ہم ان کو سکھائیں گے نا تو یہ وہ ذہنیت اور اقلیت ختم ہو جائے گی کہ جو بالعکس بالمقابل ہم جو بچوں کو یہ سکھاتے کہ اب جوانی ہے ارے چکھ لو سب چیزوں کا مزہ یہ تو یہ غلط ہے تو بچوں کو غلط ہم ایڈوائز کر رہے ہیں تو یہ سکھانا کہ بعض چیزوں کا ذائقہ لینا ہی بہت برا ہے کہ آپ اس کا ایک قدم رکھیں گے تو آگے 10 قدم آپ کے لیے بہت بھیانک ہے اور خطرناک ہیں تو یہ باتیں ضرور سمجھائیے اور پہلا قدم کی گنجائش ہی نہ رکھیے تو یہی بیٹر ہے یہی احتیاط ہے
0: بھائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو طلح بھائی نے بتایا واقعی طلح بھائی یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کبھی لوگ اگر ہم بات کریں کہ جادو کے فیر میں اتنا چلے جاتے ہیں کہ ہر پرابلم کا ریزن وہی بنا دیتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بتایا بزنس فیل ہے جادو شادی نہیں چلی جادو سر میں درد ہے جادو ہے دوستی خراب ہے جادو خدا نہ خواستہ بھئی یہ انہیلدی بھی ہو سکتا ہے نا پہلے نارمل کازز جو ہیں ان کو دیکھیں کمیونیکیشن ہیلتھ فائنینس اسٹریس بیہیویئر وغیرہ دیکھیں بھئی اسپریچول پروٹیکشن رکھیں لیکن ہر چیز کو انسین

0: किसी तरह की कोई गलत कोई एहसासात आपके अंदर हो तो आप ज़रूर तिब्बे नबवी और जादू वगैरह के हवाले से यहाँ पर वज़ात औकाफ इस्लामी उमूर में भी एक सेक्शन है जहाँ जिससे आप ज़रूर उनके साथ रुजू करके मुदावा कर सकते हैं और वो सिलसिले में आपको रहनुमाई करेंगे कि जादू टोने वगैरह के हवाले से नबवी और रहनुमाई क्या है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई तलबाई, और ये मतलब ऐसी चीजें पता चलना ये अच्छा होता है और कमी पता चल पाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह के काफी ऐसे नबवी हिदायत हैं जो आप शहद की बात कर लें और जो कुरान में जितने वो शिफा की बात आई है ना, बाज ऐसे पौधे हैं ये हैं नबातात हैं ये हैं, सिदर की बात कर लें तो सिदर के पत्ते आपको पता है, तो ये अपनी जगह पर यानी इनकी अपनी अहमियत है और इससे शिफायाबी की बात आई है और हुक्म भी आया कि आप इसको एज ए यानी दवा आप ले सकते हैं।
1: क्या बात है भाई। चलिए भाई आते हैं मौजू की जानिब, जो आज बातचीत चल रही है हमारी। और कोई भी चीज सीखने से पहले है ना हमेशा पूछ लें कि इज दिस मेकिंग मी बेटर और जस्ट मोर क्यूरियस, क्या ये स्किल मेरी लाइफ इम्प्रूव करेगी, क्या ये नॉलेज मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाएगी या सिर्फ डर और उसका ऑब्सेशन और उसका कन्फ्यूजन बढ़ाएगी, ये सारी चीजें चेक कर लेना जरूरी है। अटेंशन भी रिसोर्स है, हर चीज उसके काबिल नहीं होती, ये याद रखिए।
0: अच्छा जी सामिन कराम, अब आते हैं हारूत मारूत की तरफ और हारूत मारूत के हवाले से चंद अकवाल हमें मिलते हैं। बाज ने कहा कि वो दो फरिश्ते थे, कुछ ने कहा उन्हें इंसान करार दिया और बाज दूसरी आरा भी तफसीरी लिटरेचर में मिलती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात जरूरी है कि हारूत मारूत के बारे में एक बहुत मशहूर दास्तान सदियों से बयान होती आई है और वो बहुत गलत बयान है कि दो फरिश्तों को इंसानी शहवात के साथ जमीन पर भेजा गया, फिर एक हसीन औरत के फितने में मुब्तला हुए, शराब पी कत्ल किया, बदकारी की, फिर उस औरत को जोहरा सितारा बना दिया गया। तो ये जोहरा जो सितारा है इसके साथ एक गलत तस्वीर को इस तरह रिलेट कर दिया गया। तो ये किस्सा यहाँ तक कि बहुत सी तफसीरी किताबों में नकल तो हुआ है लेकिन इसकी इस्नाद और तफसीलात को मुहक्किक अहले इल्म ने कहा है कि ये मजबूत नहीं है। और किस्सा मशहूर हो सकता है लेकिन मशहूर होना और सही साबित होना एक चीज नहीं, ये कोई हर अकलमंद इसको इस बात को तस्लीम कर लेगा। तो सामने कराम, अब किस्से से जो माखूज करदा असबाक हैं, अक्स करदा असबाक हैं या इसके किस्से के नतीजे में जो असबाक हमें मिलते हैं इस बात की तरफ आते हैं। तो सबसे अहम सबक जो मुझे लगता है कि हमें बार बार ये जो रट्टा लगाना जादू जादू अपने बच्चों को खौफ की जबान में सहर की जो है ना बार बार हम ये बातें कहते रहते हैं ये ना बताइए, उन्हें ये ना कहे कि हर जगह जिन है हर मसला सहर है। ये कितना
1: आम हो गया था। आपने बहुत अच्छी बात की, रात में बच्चा नहीं सो रहा सो जाओ बाबा आ जाएगा ले जाने वाला है, जस्ट टू कनेक्ट, ये सही नहीं है। बचपन से ही उनके दिल में हाँ अपनी आसानी के लिए वो सो जाए या वो जो काम उनसे नहीं करवाना है वो ना करें, तो उनको जादू भूत जिन्नात इन सारी चीजों से
0: देखिए अगर डराने की बात है बच्चों को कभी कभार यानी आप डराने का तस्वीर बदल दीजिए, जिन्नात से ही क्यों डराना है,
1: शेर बना दो भाई है ना, चीता बना दो शेर आ जाएगा बिल्ली आ जाएगी,
0: या आप ऐसे कहें कि कोई खास ऐसी बात हो कि वो चीज मैं ऐसा कर दूंगा, यानी वो चीज जो वो नहीं चाहते हैं या उनके तसव्वुरात में वो है कि ऐसी चीज वो मुझे कल चॉकलेट मिलनी चाहिए, ऐसे कहूँ कि मैं अगर तुम ऐसे करोगे तुम्हें कल चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो इस तरह के हम तसव्वुरात दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल ये अच्छा है, इससे
1: समझेंगे वो वैसे भी समझेंगे
0: बनिस्बत इसके कि आप उनको जन्नात से डरा रहे हैं फालतू में, चूंकि आप इसको एक अकीदे को पुश कर रहे हैं ना, और ये अकीदा पुश करना कि जन्नात हमारे आसपास हैं ये हैं वो हैं
1: और वो डर की ही चीज है,
0: शहर है वो डर की
1: चीज है, ये उनको हम बता रहे हैं कि उनसे सिर्फ डरो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: और बाज मौलवी तो सरूर भाई बात इस हद तक पहुंचती है कि ऐसे काफी सारे किस्से सुनने को मिलते हैं कि बच्चों में वो एबनॉर्मल सा वो एक एहसास पैदा हो जाता है तो हर बातों से डर रहे होते हैं और ये वो, हालांकि हमने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जिनको रात से डर नहीं है, उनके सामने वो माहौल पेश ही नहीं किया गया ना, आपने उनको जो तरबियत की है वो अलहदा सो रहे अपने बेड पर अपने रूम में, कोई मसला नहीं है, वो नहीं डर रहे क्योंकि आप बार बार उनको जन्नत ये वो ऐसा,
1: तो वो उतने ही डरेंगे, उनको एक हवा की आहट से भी यही होगा कि कोई आ गया,
0: कोई आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तरबियत का पहलू बहुत ही अहम है कि आप उन्हें सिखाएं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, गलत और हराम रास्तों से बचना है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है सादा जिंदगी गुजारने की अहमियत। सादा जिंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ हासिल ना करे, बल्कि ये है जिंदगी को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से बचाया जाए। अक्सर हम मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि इसी में खुशी है, लेकिन असल सुकून सादगी में होता है। इस्लाम हमें एतदाल और सादगी का दर्ज देता है। जब इंसान सिंपल लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करता है तो उसका फोकस ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों पर होता है, जैसे इबादत, रिश्ते और इनर पीस। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन स्ट्रेस का सबब बन जाते हैं, जबकि सादगी सुकून देती है। आज का अमल ये है कि अपनी जिंदगी में से किसी एक अननेसेसरी चीज को कम करें और सिंपल सोच को अपनाएं।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, पानी हमारी जिंदगी की सबसे बेसिक जरूरत है, ये हम सबको पता है। खास तौर पर गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम सबको ज्यादा पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। ऑफिस हो, स्कूल हो, जिम हो, ट्रैवल हो, भाई कहीं पर भी हो, पानी की बॉटल हमारे साथ होनी चाहिए क्योंकि गर्मियां हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पानी पीने की हमारी आदत का एनवायरनमेंट पर भी असर होता है? जी हाँ, होता है। एक बार इस्तेमाल होने वाली वो जो प्लास्टिक की बॉटल होती है ना, जो आप दुकान से खरीद लेते हैं, उसकी अननेसेसरी पैकेजिंग और पानी का वेस्ट, ये सब मिलकर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई क्यों ना आज हम इको स्विच में इसी के बारे में बात कर लें, यानी सस्टेनेबल हाइड्रेशन हैबिट्स, यानी पानी पीने की ऐसी आदतें जो सेहत के लिए भी अच्छी हो और एनवायरमेंट को भी बेहतर बनाए। देखिए, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाइड्रेशन जरूरी है, मैं ये मानती हूँ। ऐसा तो नहीं कि रूखे सूखे पत्ते की तरह हम घूमते रहें, लेकिन जिस तरीके से हम पानी को कंज्यूम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। देखिए, सबसे पहला और मेरे ख्याल से मैं कहती हूँ कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैंने पता है क्या देखा है, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स होती है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। हम अक्सर एक बॉटल खरीदते हैं, पानी पीते हैं और फिर क्या करते हैं, वो बॉटल कहाँ गई? ये गई डस्टबिन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा पानी को बेवजह वेस्ट करना, जरूरत से ज्यादा बॉटल्ड ड्रिंक्स खरीदना, रियूजेबल ऑप्शंस को इग्नोर कर देना, ये सब छोटी छोटी सी आदतें हैं, लेकिन जब बहुत से लोग रोजाना ऐसी हरकतें करेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है भाई। देखिए, पानी बहुत कीमती रिसोर्स है, इसलिए हमें सिर्फ पानी पीना नहीं है बल्कि उसकी कदर भी करनी चाहिए। हर घूंट के साथ एक कदर होती है भाई, हर घूंट की। तो भाई, इको स्विच सॉल्यूशन हमारे पास सस्टेनेबल हाइड्रेशन के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो हम सभी एनवायरनमेंट को बचाने में मदद करेंगे। पहली चीज ये कि रीयूजेबल वाटर बॉटल अपनाएं। सबसे आसान इको स्विच ये है कि अपनी रीयूजेबल बॉटल साथ रखें। स्टेनलेस स्टील हो गया या ड्यूरेबल बॉटल्स को आप बार बार यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक वेस्ट इससे बहुत कम हो सकता है। दूसरी चीज ये कि बॉटल रिफिल करने की आदत अपनाएं। जहां पानी रिफिल की फैसिलिटी अवेलेबल हो वहां नई बॉटल खरीदने के बजाय अपनी बॉटल को दोबारा रिफिल करें। ये सिंपल सी हैबिट होती है और अगर आप इसे रोजाना के तौर पर या हर टाइम रिफिल के तौर पर आप ये चीज अपनाएंगे तो इससे प्लास्टिक वेस्ट बहुत कम हो जाता है। तीसरी चीज है, पानी वेस्ट ना करें। देखिए, सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि घर के तमाम कामों में पानी की कदर करना सीखें। अपने ग्लास में उतना ही पानी डालें जितने की जरूरत हो, बचा हुआ पानी आप प्लांट्स को दे सकते हैं या किसी और दूसरी तीसरी चीज में उसको स्टोर करके रखें और बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है उसे। ऐसा नहीं है कि बचा हुआ पानी आप सिंक में फेंक दें। साथियों, चौथी चीज ये कि घर में पानी की बॉटल रेडी रखें। अगर घर से निकलते वक्त बॉटल साथ हो तो बाहर से प्लास्टिक बॉटल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आदत ट्रैवलिंग और डेली रूटीन के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को पानी की कदर करना सिखाएं। बचपन से ही अगर बच्चों को पानी बचाने की या रीयूजेबल बॉटल्स यूज करने की आदत होगी ना, तो ये उनकी जिंदगी भर की हैबिट्स को अच्छा बना सकती है। अच्छा, अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए तो आजकल बहुत से लोग अपनी डेली लाइफ रूटीन में सस्टेनेबल हाइड्रेशन अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑफिस एम्प्लॉयज अपनी डेस्क पर रीयूजेबल बॉटल्स रखते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में अपनी वाटर बॉटल्स लेकर जाते हैं, फैमिलीज घर में रीयूजेबल बॉटल्स का सिस्टम बनाती हैं ताकि हर बार डिस्पोजेबल बॉटल्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। जरा सोचिए, अगर एक इंसान सिर्फ एक बॉटल पानी रोजाना कम यूज करे तो साल भर में कितना फर्क पड़ेगा भाई, लाखों करोड़ों। तो भाई, छोटी सी आदत लेकिन एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा फर्क होता है। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज हमारा ये है कि अगले 7 दिन के लिए कोशिश करें कि बाहर जाते वक्त मेहरबानी करके अपनी रीयूजेबल वाटर बॉटल अपने साथ रखें ना, और हमें ये जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट वाटर बॉटल कौन सी है, स्टील बॉटल, ग्लास बॉटल या कोई कलरफुल रीयूजेबल बॉटल। मुझे तो वो स्टील वाला फ्लास्क अच्छा लगता है, उसके अंदर गरम डालो गरम रहता है, ठंडा डालो ठंडा रहता है। आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है? मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, पानी की हर बूंद कीमती है और हर छोटी आदत एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप बन सकती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर RJ सफा के साथ, छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। साथियों खुश आमदीद है आप सभी को हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सस्टेन द फ्यूचर। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम बात करेंगे हमारे प्लैनेट, हमारे एनवायरनमेंट और हमारे मुस्तकबिल की। हमारी जिंदगी का हर पहलू कुदरत से जुड़ा है साथियों। साफ हवा, साफ पानी, हरियाली, समंदर, जंगल, जानवर और वो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। लेकिन आज हमारी दुनिया को क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, बायोडायवर्सिटी के नुकसान और कुदरती वसाइल के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल जैसे कई चैलेंजेस का सामना है। साथियों सस्टेन द फ्यूचर का मकसद सिर्फ इन मसाइल के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि हम में से हर शख्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या छोटी छोटी आदतें, क्या छोटी छोटी तब्दीलियां ला सकता है जिनसे एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम में हम ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंजेस के साथ साथ लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज पर भी बात करेंगे। हम जानेंगे कि सस्टेनेबिलिटी असल में है क्या, क्लाइमेट चेंज हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करता है, पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना क्यों हमारी भी जिम्मेदारी है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ साइंटिस्ट्स, गवर्नमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। क्योंकि जो दुनिया हम आज अपने लिए देख रहे हैं, वही दुनिया हम कल अपनी अगली जनरेशंस के लिए छोड़ कर जाएंगे। तो आइए एनवायरनमेंट को सिर्फ एक इशू नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ आने वाला वक्त नहीं, फ्यूचर वो है जो हम आज क्रिएट कर रहे हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर ओनली ऑन FM 107।
0: टॉपिक ऑफ द डे।
1: भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फुटप्रिंट के बारे में जो हमें नजर नहीं आता लेकिन फिर भी हमारे प्लैनेट पर इम्पैक्ट डालता ही डालता है। अच्छा हम अक्सर कार्बन फुटप्रिंट का नाम सुनते ही क्या सोचते हैं, फौरन हमारे दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो आता है फौरन से कार्स, फैक्ट्रीज, एरोप्लेन्स या पावर प्लांट्स, ये सारे ख्याल आते हैं मेरे दिमाग में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन, लैपटॉप, स्ट्रीमिंग और क्लाउड स्टोरेज भी एक एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं और करते हैं? अच्छा भाई आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट, हाउ क्लाउड स्टोरेज, स्ट्रीमिंग एंड अनरेड ईमेल्स कंज्यूम एनर्जी। देखिए भाई सबसे पहली बात तो ये है, हमें समझना जरूरी है कि डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट आखिर होता क्या है। लेकिन सिंपल वर्ड्स में ना, जब हम डिजिटल सर्विस यूज करते हैं तो उन सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। हमारे फोन्स और लैपटॉप्स, मोबाइल नेटवर्क्स, वाईफाई सिस्टम्स, डाटा सेंटर्स, सर्वर्स और स्टोरेज इक्विपमेंट्स, ये सब मिलकर डिजिटल वर्ल्ड को चलाते हैं साथियों। अगर इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में फॉसिल फ्यूल्स यूज हो तो भाई क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी एसोसिएटेड हो सकता है इससे। इसीलिए हमारी डिजिटल एक्टिविटी कम्प्लीटली वेटलेस नहीं होती साथियों। देखिए भाई हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई क्या ही कोई मसला होगा, हमारी फोटो तो क्लाउड में है। लेकिन क्लाउड असल में आसमान में तैरता हुआ कोई मैजिकल क्लाउड नहीं है। क्लाउड के पीछे रियल बिल्डिंग्स हैं, रियल कंप्यूटर्स हैं, रियल सर्वर्स हैं और रियल इलेक्ट्रिसिटी है भाई। आप इसे एक इनविजिबल सिटी समझ सकते हैं। यानी कि हमारे फिजिकल सिटीज में क्या होता है, रोड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं और पावर स्टेशंस होते ही होते हैं, ठीक है। डिजिटल सिटी में सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क्स और डाटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है। हम उस डिजिटल सिटी को स्क्रीन के थ्रू एक्सेस करते हैं अपनी, लेकिन वो फिजिकल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। जरा अपनी मॉर्निंग रूटीन के बारे में इमेजिन कीजिए ना, आप अलार्म बंद करते हैं, फोन अनलॉक करते हैं, अपने कोई मैसेजेस वगैरह चेक करते हैं ऐप में से, आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं, ईमेल्स देख लेते हैं और क्या करते हैं कि अक्सर औकात वीडियोस भी आप चला लेते हैं, वेदर चेक करते हैं, शायद आप सर्च इंजन पे कुछ जाकर सर्च भी कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ टैब्स ही तो हैं और क्या है, लेकिन हर डिजिटल रिक्वेस्ट के पीछे डाटा मूव होता है साथियों। इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस से नेटवर्क के थ्रू सर्वर्स तक जा सकती है और फिर रिस्पांस वापस आता है ना आपके डिवाइस पर। इसे एक इनविजिबल हाईवे की तरह इमेजिन कीजिए कि आपको रोड नजर नहीं आता, लेकिन डाटा कंटिन्यूसली हाईवे पर ट्रेवल कर रहा होता है। सर्वर्स इस हाईवे के वेयर हाउस और प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं। नेटवर्क्स रोड हैं और इलेक्ट्रिसिटी वो फ्यूल है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की। अब ये क्या भला है भाई? देखें, क्लाउड स्टोरेज ने हमारी लाइफ को बहुत कन्वीनियंट बना दिया है। पहले इंपॉर्टेंट फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को हार्ड ड्राइव्स या सीडीज या यूएसबी में स्टोर कर लिया जाता था ना, हम लोग कर लेते थे स्टोर। आज हम अपनी फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और बैकअप्स को क्लाउड में रख लेते हैं। फोन खो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लाउड बैकअप की वजह से डाटा रिकवर करना पॉसिबल होता है। ये टेक्नोलॉजी इनक्रेडिबली यूजफुल है साथियों, लेकिन कन्वीनियंस के पीछे एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आपकी एक फोटो जब क्लाउड में सेव होती है ना, तो वो किसी सर्वर पर स्टोरेज का फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। सर्वर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, डाटा सेंटर को कूलिंग चाहिए होती है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट को पावर चाहिए होती है, सिक्योरिटी सिस्टम्स को बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑपरेट करने पड़ते हैं। अच्छा, इसीलिए क्लाउड को एक डिजिटल कबर्ड समझा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिजिकल कबर्ड में अगर हम अननेसेसरी चीजें भरते जाएं तो एक वक्त आता है ना कि वो फिजिकल कबर्ड फुल हो जाती है, अलमारी के जो दरवाजे हैं वो खुलकर सामान गिरने लगता है बाहर। डिजिटल कबर्ड में प्रॉब्लम ये है कि क्लटर नजर नहीं आता। हमारी गैलरी में हजारों फोटोज हो सकती हैं और क्लाउड में उनकी बैकअप भी हो सकती है मौजूद। हम एक ही फोटो की मल्टीपल कॉपीज स्टोर कर सकते हैं। ओल्ड स्क्रीनशॉट्स, डुप्लीकेट वीडियोस, रैंडम डाउनलोड्स और पता नहीं क्या क्या फाइल्स हम जो दोबारा खोलते भी नहीं है, सब डिजिटल स्टोरेज में स्पेस ले सकते हैं। अच्छा, इसको ना मैं डिजिटल डस्ट कहना पसंद करूंगी। देखिए, फिजिकल डस्ट को हम देखकर क्लीन कर लेते हैं ना, लेकिन डिजिटल डस्ट इनविजिबल होती है भाई। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा डिजिटल कबर्ड कितना भरा हुआ हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई हर फोटो डिलीट कर देनी चाहिए या इम्पोर्टेंट ईमेल्स को रिमूव कर देना चाहिए। मेमोरीज और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल चीज है। सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट ये है कि अननेसेसरी डुप्लीकेशन और डिजिटल क्लटरिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए, महीने में एक बार अपनी गैलरी को चेक करें, डुप्लीकेट फोटोज डिलीट करें, स्क्रीनशॉट्स जो अब यूजफुल नहीं है उन्हें प्लीज डिलीट कर देना, रिमूव कर दें, या जो पुरानी डाउनलोड्स देखें उनको डिलीट कर दें। अननेसेसरी क्लाउड बैकअप्स रिव्यू करें, अगर किसी फाइल की जरूरत नहीं है तो उसे परमानेंटली डिलीट करना डिजिटल हाउसकीपिंग का सिंपल स्टेप है। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रीमिंग की। अच्छा, आजकल का एंटरटेनमेंट जो है ना, वो एंटरटेनमेंट मैं कह लूं कि आज एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा मैं कहूंगी कि डिजिटल हो गया। हमारी मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं, हम जब चाहें कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये कन्वीनियंस बड़ा अमेजिंग है, नो डाउट, लेकिन वीडियो स्ट्रीमिंग डाटा इंटेंसिव एक्टिविटी हो सकती है। देखें, आप एक वीडियो प्ले करते हैं, डाटा सर्वर से नेटवर्क के थ्रू आपके डिवाइस तक ट्रेवल करता है, आपका राउटर या मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एक्टिवेट होता है, आपका फोन, टैबलेट, लैपटॉप या टेलीविजन स्क्रीन कंटेंट डिस्प्ले करता है और इस पूरी चेन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है कि नहीं। अब इमेजिन कीजिए एक सिंपल सा सिनेरियो, आप सिर्फ एक शॉर्ट रेसिपी देखना चाहते हैं, वीडियो खत्म हुई, ऑटो प्ले ने दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरा, फिर एल्गोरिथम ने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो सजेस्ट कर दी। भाई, आपने सोचा कि बस भाई ये लास्ट वाली है, अरे ये भाई मैं इसके बाद ना देखूंगा, और फिर क्या होता है, 40 मिनट गुजर जाते हैं, 2 घंटे गुजर जाते हैं, यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग सी बात आती है. ऑटो प्ले डिजिटल एस्केलेटर की तरह होता है साथियों. आप एक स्टेप पर खड़े होते हैं और एस्केलेटर खुद आपको अगले स्टेप तक ले जाता है. आपको एक्टिवली डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना. इसी तरह ऑटो प्ले हमें एक आप कह लें कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो तक कंटिन्यूस लेकर जाता रहता है. सस्टेनेबल डिजिटल हैबिट का मतलब एंटरटेनमेंट बंद करना नहीं है. नो, मतलब इंटेंशनल स्ट्रीमिंग है भाई. देखें, अगर आपको सिर्फ एक ट्यूटोरियल देखना है ना तो ट्यूटोरियल देखें, कोई मसला नहीं है. अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं और ऑडियो ओनली ऑप्शन अवेलेबल है तो जरूरत नहीं है ना वीडियो की. कंटिन्यूसली वीडियो स्ट्रीमिंग की क्या जरूरत है फिर. अगर आप छोटी सी स्क्रीन पर कंटेंट देख रहे हैं तो हर वक्त हाईएस्ट रेजोल्यूशन रखने की जरूरत नहीं है ना. देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा रूल है, जितनी क्वालिटी की जरूरत हो उतनी ही क्वालिटी यूज करो भाई. देखिए, अगर फोन की छोटी सी स्क्रीन पर नॉर्मल एचडी वीडियो परफेक्टली क्लियर है तो हर चीज को मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर स्ट्रीम करना जरूरी तो नहीं है ना भाई. लेकिन स्ट्रीमिंग का इम्पैक्ट सिर्फ वीडियो क्वालिटी से डिसाइड तो नहीं होता ना. देखिए भाई, डिवाइस, नेटवर्क्स और डाटा सेंटर्स सब डिजिटल सर्विसेज के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट में कंट्रीब्यूट करते हैं. इसीलिए डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट को समझने के लिए हमें पूरी चेन को देखना होता है. अच्छा, अब बात करते हैं ईमेल्स के बारे में, या कह लेंगे अनरेड ईमेल्स पर. आपके इनबॉक्स में कितने ईमेल्स हैं, वो भी अनरेड? 100, 500, 2000? मैं ऑनेस्टली बोलूं, लास्ट टाइम जब मैंने अपनी ईमेल चेक की थी तो कहीं 7000 या 8000 ईमेल्स थी. या फिर आप उनमें से एक हैं मेरी तरह जिनकी अनरेड ईमेल 15000 तक पहुंची हुई हैं. क्या कहते हैं, मेरी तरह आप भी यही कहते होंगे कि मैं बाद में देखूंगा. देखिए भाई, हम अक्सर ये सोचते हैं कि अनरेड ईमेल्स का कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि हमने उसे ओपन ही नहीं किया. लेकिन भाई, जब मैंने इस बारे में पढ़ा ना कि इसके पीछे क्या साइंस चल रही है, तो मैंने तो पहले सबसे यही डिसाइड किया कि इस शो के बाद, इस एपिसोड के बाद मैं जाकर अपनी ईमेल सही से क्लीन करूंगी इनबॉक्स को. देखिए साथी, हम अक्सर ये सोचते हैं कि अनरेड ईमेल का कोई एनवायरमेंटल फुटप्रिंट नहीं होता क्योंकि हमने उसे ओपन ही नहीं किया. लेकिन ईमेल एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है जो सर्वर और स्टोरेज सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है. न्यूज़लेटर, प्रमोशनल मैसेजेस, अटैचमेंट्स और रिपीटेड ईमेल स्टोरेज और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें यूज करती हैं. लेकिन यहाँ भी अगर मैं कहूँ कि एग्जैजरेशन से बचना जरूरी है. एक सिंगल अनरेड ईमेल क्लाइमेट डिजास्टर नहीं पैदा करती भाई. मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप एक ईमेल छोड़ देंगे अनरेड तो वो कोई डिजास्टर कर देगी. देखिए, एक सिंपल टेक्स्ट ईमेल का इंडिविजुअल इंपैक्ट बहुत छोटा होता है. प्रॉब्लम स्केल और अननेसेसरी एक्युमुलेशन से होती है साथियों. सोचिए, एक इंसान जिसके इनबॉक्स में 10000 से ज्यादा अननेसेसरी ईमेल्स हैं. अब इमेजिन कीजिए कि मिलियंस ऑफ यूजर्स के इनबॉक्स हैं. डिजिटल वर्ल्ड में छोटी एक्टिविटीज जब बिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट होती है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरऑल डिमांड सिग्निफिकेंट हो सकती है साथियों. इसीलिए अनसब्सक्राइब करना एक यूजफुल डिजिटल हैबिट है. अगर आप किसी न्यूज़लेटर को कभी ओपन ही नहीं करते तो उसे अनसब्सक्राइब कर देना. प्रमोशनल ईमेल्स जो आपको कभी यूजफुल ही नहीं लगती, उन्हें स्टॉप कर दें. अननेसेसरी ईमेलिंग लिस्ट से रिमूव हो

0: जाए साथियों, लेकिन इंपॉर्टेंट ईमेल को सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के नाम पर डिलीट करने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और मेमोरीज को प्रिजर्व करना बिल्कुल फाइन है. इट्स टोटली फाइन. अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है. डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ डाटा नहीं होता, डिवाइसेस से भी ये रिलेटेड होता है. आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और टेलीविजन सब फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं. इन्हें बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स, मेटल्स, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है साथियों. इसीलिए डिजिटल सस्टेनेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिवाइसेस को ज्यादा देर तक यूज करना. मतलब कभी कभी फोन बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है लेकिन मार्केट में नया मॉडल आ जाता है ना, जिसको देखकर हमारा दिल किसी छोटे बच्चे का जैसे दिल ललचाता है ना खिलौने देखकर, वैसे ललचाने लगता है. कैमरा थोड़ा बेटर होता है, स्क्रीन थोड़ी ब्राइटर होती है, डिजाइन थोड़ा सा 19-20 डिफरेंट होता है और हम ये सोचते हैं कि भाई बस अब तो भाई मुझे तो अपग्रेड करना चाहिए भाई. लेकिन अगर एग्जिस्टिंग डिवाइस अभी फंक्शनल है तो मेहरबानी करके उसे यूजफुल बनाए ना, उसकी लाइफ को एक्सटेंड करना है भाई. हमने एक सस्टेनेबल चॉइस हो सकती है ये आपकी. इसे एक एक एक एक पेयर ऑफ शूज की तरह देखिए. ठीक है, देखिए अगर शूज कंफर्टेबल है और अभी भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है तो सिर्फ इसीलिए उसको फेंक देना कि भाई मार्केट में नया डिजाइन आ गया है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड ना. टेक्नोलॉजी में भी यूजफुल लाइफ एक्सटेंड करना रिसोर्सेज को बेटर यूज करने का एक तरीका होता है साथियों. अच्छा, अगर डिवाइस रिपेयर हो सकती है रिपेयर कंसिडर करें, बैटरी रिप्लेस हो सकती है तो भाई रिप्लेसमेंट को कंसिडर करें, और जब डिवाइस जेन्युइनली एंड ऑफ लाइफ पर पहुंच जाए तो भाई उसे एप्रोप्रिएट ई-वेस्ट रिसाइकलिंग का ऑप्शन आप दे सकते हैं. क्योंकि डिजिटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ क्लाउड को ग्रीन बनाना नहीं है, डिवाइस की पूरी जर्नी को रिस्पॉन्सिबल बनाना है साथियों.
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
0: चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी AI के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इन मुद्दा है. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डिजिटल लाइफ का रैपिडली ग्रोइंग पार्ट बन चुका है. हम AI से क्वेश्चंस पूछते हैं, इमेजेस जनरेट करते हैं, डॉक्यूमेंट समराइज करवाते हैं, ट्रांसलेशंस करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या क्रिएटिव असिस्टेंस उससे लेते हैं. AI सर्विसेज के पीछे पावरफुल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है साथियों. देखिए, AI वर्कलोड्स डाटा सेंटर्स में सर्वर्स पर प्रोसेस होते हैं और ये कंप्यूटिंग एनर्जी डिमांड क्रिएट करती है साथियों. देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक डाटा सेंटर्स ने 2024 में ग्लोबली अराउंड 415 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का राउंड आप कह लें कि अराउंड 1.5% था. IEA के बेस केस सिनेरियो में डाटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2030 तक अराउंड 945 टेरावाट आवर्स तक पहुंच सकती है. AI रिलेटेड कंप्यूटिंग इस ग्रोथ का इम्पोर्टेंट ड्राइवर है साथियों. यानी डिजिटल वर्ल्ड की एनर्जी स्टोरी फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट होने वाली है. लेकिन AI भी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, AI एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस में हेल्प भी कर सकता है. देखिए, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. देखिए, बिल्डिंग्स एनर्जी कंजम्पशन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सेंसर्स वाटर लीक्स डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट रूट्स ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में इंटीग्रेशन को स्मार्टर बनाया जा सकता है. टेक्नोलॉजी को आप डबल एज्ड टूल समझ सकते हैं साथियों. अगर स्मार्ट तरीके से यूज हो तो सस्टेनेबिलिटी एक्सेलरेट कर सकती है. अगर अननेसेसरी रिसोर्सेज इंटेंसिव यूज हो तो एनवायरमेंटल प्रेशर बढ़ सकता है. इसीलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी गुड है या बैड है, क्वेश्चन ये है साथियों कि हम टेक्नोलॉजी को किस पर्पस और किस एफिशिएंसी के साथ यूज करते हैं. अच्छा, अब बात करते हैं डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, ठीक है, कुछ और गहराई में जाकर. देखिए, आप अपने डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट को एक इनविजिबल बैकपैक समझिए ना. जब आप कोई फोटो अपलोड करते हैं ना तो बैकपैक में एक छोटा सा वेट ऐड हो जाता है. जब आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं एक और एक्टिविटी ऐड हो जाती है. जब आप अननेसेसरी फाइल्स क्लाउड में सालों तक स्टोर रखते हैं, बैकपैक में डिजिटल क्लटर का एक और लेयर ऐड हो जाता है. जब आप डिवाइसेस को अननेसेसरीली फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करते हैं तो फुटप्रिंट में मैन्युफैक्चरिंग और रिसोर्सेज यूज का डायमेंशन ऐड हो जाता है. अकेले एक बंदे का बैकपैक शायद हल्का हो साथी है, लेकिन दुनिया के बिलियंस ऑफ डिजिटल यूजर्स के बैकपैक्स को इमेजिन कीजिए तो सोचिए आपके दिमाग में क्या आएगा।

0: अब वो कलेक्टिव वेट इम्पोर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, है ना? यही सस्टेनेबिलिटी का बेसिक लेसन है। स्मॉल एक्शंस इंडिविजुअली छोटे ही लगते हैं, लेकिन इस बड़े स्केल पर अगर उन्हें देखा जाए तो उनका इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने ग्रीन फ्लैश की तरफ, यानी कि सस्टेनेबिलिटी की दुनिया से कुछ क्विक अपडेट्स के बारे में।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: देखिए, पहली अपडेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एनर्जी डिमांड से रिलेटेड है साथियों। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के लेटेस्ट एनालिसिस के मुताबिक डाटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है, और एआई और डिजिटल सर्विसेज इस ग्रोथ के इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स हैं। IEA के एस्टिमेटेड हिसाब के मुताबिक डाटा सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2030 तक रफली डबल से ज्यादा हो सकती है। दूसरी अपडेट ये है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के रोल से रिलेटेड ये अपडेट है हमारी। डाटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी भी रैपिडली एक्सपेंड हो रही है। सोलर और विंड जैसे आप कह रहे हैं कि जो सोर्सेज फीचर डाटा सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को मीट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब फ्यूचर का क्लाउड पोटेंशियली क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी का साथ पावर्ड क्लाउड हो सकता है। अच्छा भाई, तीसरी अपडेट आती है हमारी सस्टेनेबल डिजिटलाइजेशन पर है। ये हमारी अपडेट देखिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को एनर्जी कंजम्पशन, रिसोर्स अट्रैक्शन, ई वेस्ट और वाटर यूज के ब्रॉडर कॉन्टेंट में एग्जामिन करता है। UNEP का फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल बनाना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के लिए यूज करना भी है। अच्छा, यानी के डिजिटल फ्यूचर्स को सस्टेनेबल बनाना होगा साथी, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबिलिटी का टूल भी बनाना होगा। अच्छा, अब मूव ऑन करते हैं ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट पर।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: देखिए, आज हम स्पॉटलाइट किसकी तरफ कर रहे हैं? एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर्स पर, यानी कि जो एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर्स होते हैं उन पर। देखिए, डाटा सेंटर्स डिजिटल दुनिया का आप कह लें कि वेयर हाउस और फैक्ट्रीज दोनों हैं। यहाँ डाटा स्टोर भी होता है और कंप्यूटिंग भी होती है, लेकिन सर्वर्स हीट जनरेट करते हैं, इसीलिए कूलिंग सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, फ्यूचर के डाटा सेंटर्स में एनर्जी एफिशिएंसी, एडवांस कूलिंग, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी और इंटेलिजेंट वर्कलोड मैनेजमेंट का रोल बढ़ सकता है साथियों। अब जरा से ऐसे इमेजिन कीजिए ना कि एक डाटा सेंटर जहां सेंसर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं कि किस सर्वर को कितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए। कूलिंग सिस्टम्स रियल टाइम कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट हो रहे हैं साथियों। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो तो फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग वर्कलोड्स को इंटेलिजेंटली स्केड्यूल कर लेती है। बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी को टेम्परेली स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, यानी के डाटा सेंटर एक स्मार्ट इकोसिस्टम बन रहा है। UNEP की सस्टेनेबल डाटा सेंटर गाइडेंस एनर्जी एफिशिएंट के साथ साथ कूलिंग इफेक्टिवनेस और वाटर यूज एफिशिएंसी जैसे फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंट कंसिडर करती है। अच्छा, और यहाँ एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है, पता है किस चीज का? वेस्ट हीट रिकवरी का। देखिए भाई, समझने की बात ये कि सर्वर कंप्यूटिंग करते हैं और हीट जनरेट करते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में क्या होता है कि हीट को रिमूव करना पड़ता है ना, लेकिन कुछ डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स वेस्ट हीट को रिकवर करके नियर बाय बिल्डिंग्स या डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम्स में यूज करने की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी के अगर एक सिंपल वर्ड में समझाऊं, यानी जो कल वेस्ट था फ्यूचर में रिसोर्स बन सकता है। इसे सस्टेनेबिलिटी का आप कह लें गोल्डन प्रिंसिपल समझा जाए तो बेहतर है। यानी कि वेस्ट तब तक वेस्ट है जब तक हम उसका कोई और दूसरा यूज नहीं ढूंढ लेते।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: अब साथियों, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं क्लाउड स्टोरेज क्लीन करने पर।

डुप्लीकेट फोटोज रिमूव करें, पुरानी डाउनलोड्स देखें और क्या करें उन्हें डिलीट करें अगर वो काम की नहीं है तो, रिपीटेड बैकअप रिव्यू करें साथियों। दूसरा ये कि स्ट्रीमिंग अपनी इंटेंशनल बनाएं, ऑटो प्ले को कंट्रोल करें। अगर सिर्फ ऑडियो चाहिए तो भाई वीडियो की जरूरत तो है नहीं, तो सिर्फ ऑडियो का ऑप्शन रखें। स्मॉल स्क्रीन पर अननेसेसरी मैक्सिमम रेजोल्यूशन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात ये कि ईमेल इनबॉक्स क्लीन करें, अननेसेसरी न्यूज़लेटर्स से अनसब्सक्राइब करें, स्पैम को डिलीट करें, इंपॉर्टेंट ईमेल्स को प्रिजर्व करें। चौथी चीज आ जाती है भाई डिवाइस की लाइफ एक्सटेंड करें। अगर फोन या लैपटॉप काम कर रहा है तो उसे ज्यादा

0: एनर्जी एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी को भी साथ साथ देखें, नजर में रखें कि ये कितना ड्यूरेबल है। देखिए, हमें सिर्फ मोर कॉन्शियस डिजिटल यूजर्स बनना है। देखिए, स्ट्रीमिंग करें लेकिन अननेसेसरीली वेस्टफुल स्ट्रीमिंग ना करें ना। फोटोज सेव करें, किसने मना किया, करें लेकिन एंडलेस डुप्लीकेट्स ना रखें। ईमेल्स यूज करें लेकिन यूजलेस न्यूज़पेपर से आपने करना ये है कि अनसब्सक्राइब कर दें। क्लाउड यूज करें लेकिन डिजिटल डस्ट को रेगुलरली क्लीन भी करें ना साथ साथ। डिवाइसेस भी यूज करें, अच्छी बात है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको प्रोग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन उनकी लाइफ अननेसेसरीली शॉर्ट ना करें ना। टेक्नोलॉजी यूज करें, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन उसकी हिडन एनर्जी स्टोरी को भी समझकर यूज करें, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का मतलब टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर देना, उससे हाथ उठा लेना नहीं है, उसको दीवार से लगा देना नहीं है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब टेक्नोलॉजी को स्मार्टर तरीके से यूज करना है। देखें, आज से जब आप अपना फोन उठाएं ना, तो एक छोटी सी चीज याद रखें, हर क्लिक के पीछे सिस्टम है, हर स्ट्रीम के पीछे एनर्जी है, हर क्लाउड के पीछे सर्वर है, हर डिवाइस के पीछे रिसोर्सेज हैं, हर डिजिटल चॉइस के पीछे एक अपॉर्चुनिटी है बेटर चॉइस करने की। और भाई, इस एपिसोड के पीछे हूँ मैं, यानी सफा। आप सुन रहे थे सस्टेन द फ्यूचर ऑन FM 107। और हाँ, अगर आप अपने डिजिटल हैबिट्स के बारे में मुझे कोई इंटरेस्टिंग टिप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें, हमें मैसेज करें 666-222-107 पर, और चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar। और भाई, अगली बार जब आप फोन उठाएं और आप इंडिकेशन देखें स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल का, तो सिर्फ स्टोरेज अपग्रेड करने से पहले एक सेकंड के लिए रुक जाएं, समझने की कोशिश करें, शायद आपके डिजिटल कबर्ड में भी कुछ डिजिटल डस्ट जमा हो चुकी है। कुछ अननेसेसरी फोटोज, कुछ ओल्ड डाउनलोड्स, कुछ डुप्लीकेट फाइल्स, कुछ न्यूज़लेटर्स जो आपने कभी रीड ही नहीं किया, किसी काम की नहीं है। थोड़ी सी डिजिटल क्लीनिंग करें, क्योंकि क्लीन प्लैनेट के लिए सिर्फ फिजिकल वेस्ट कम होना जरूरी नहीं है, डिजिटल वेस्ट को समझना भी जरूरी है। और याद रखिए, हमारी डिजिटल दुनिया इनविजिबल जरूर हो सकती है, लेकिन वो अर्थ से डिस्कनेक्टेड नहीं है भाई। इसीलिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज करें, कॉन्शियस चॉइसेस करें ना, और अपने इनविजिबल फुटप्रिंट को थोड़ा सा लाइटर बना दें भाई। तो साथियों, सस्टेन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ फिजिकल दुनिया में नहीं बन रहा, हमारा डिजिटल फ्यूचर भी इसी प्लैनेट पर बिल्ड हो रहा है। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे FM 107 पर सस्टेन द फ्यूचर। तो साथियों, स्टे कनेक्टेड, स्टे कॉन्शियस एंड सस्टेन द फ्यूचर। और अगले एपिसोड तक के लिए सफा और हमारे साउंड डिजाइनर शहबाज को दीजिए इजाजत। मैं चली गई अपना ईमेल और अपना इनबॉक्स खाली करने, क्योंकि इस एपिसोड के बाद मैं तो बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ भाई कि अनरेड ईमेल्स भी डिलीट करनी पड़ती हैं। मेरे पास तो हजारों हैं, मुझे बहुत टाइम लगना है। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: सस्टेन द फ्यूचर, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीन किराम, कभी एक मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़े मनसूबों की जरूरत होती है, लेकिन कभी एक प्लेट खाना और चंद खूबसूरत अल्फाज दो इंसानों के दरमियान फासला कम कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, इस्लाम की कौन सी खसलत बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में दो ऐसे अमाल बताए जो बज़ाहिर बहुत सादा दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का ताल्लुक दूसरे इंसान से है। एक किसी की जरूरत पूरी करना और दूसरा किसी को अमन, मोहब्बत और अपनाइयत का एहसास देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि

0: सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की.
1: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल.
0: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा. हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दोस्तों, सुनना न भूलें शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से डीसी.
2: आप सुन रहे हैं एफएम 107 दिल से डीसी.

आज हम बात करेंगे इंडियन हॉकी के एक ऐसे लेजेंड की जिनका नाम सिर्फ ओलंपिक मेडल से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, एलिगेंस और अटैकिंग हॉकी से जुड़ा हुआ है। यहाँ दोस्तों नाम है जफर इकबाल, वो खिलाड़ी जिन्हें हॉकी की दुनिया में जेंटलमैन ऑफ हॉकी के नाम से भी याद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं एफएम 107 और आज स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में हम बात करेंगे जफर इकबाल के बारे में। 12 जून 1956 को बिहार में पैदा होने वाले जफर इकबाल ने इंडियन हॉकी के उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब टीम में एक तरफ पुरानी हॉकी की आर्टिस्ट्री थी और दूसरी तरफ गेम रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा था। ग्रास यानी घास के मैदान से एस्ट्रोटर्फ यानी सिंथेटिक टर्फ की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था और हॉकी ज्यादा फास्ट और फिजिकली डिमांडिंग बन रही थी। जफर इकबाल एक लेफ्ट फॉरवर्ड थे यानी ऑन द लेफ्ट विंग में खेलते थे जहां उनकी पोजीशन बॉल कंट्रोल, स्पीड, पासिंग और अटैकिंग इंटेलिजेंस की जरूरत होती है और उनका इंटरनेशनल करियर 1970 के आखिर में उभर कर सामने आया। उन्होंने 1978 के ब्यूनस आयर्स वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जहां टीम डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर गई थी। लेकिन जफर इकबाल के करियर का सबसे यादगार चैप्टर था 1980 का मॉस्को ओलंपिक्स। मॉस्को जाने वाली भारतीय टीम बहुत यंग थी और उस वक्त इंडिया के पास एस्ट्रोटर्फ पर ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। हॉकी इंडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक जफर इकबाल उस हिस्टोरिक स्क्वाड का हिस्सा थे जिसने स्पेन को फाइनल में 3-4 से शिकस्त देकर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। यह इंडिया का हॉकी में 8th गोल्ड मेडल था और अब तक समर ओलंपिक्स में इंडिया का आखिरी गोल्ड मेडल ही यही है। 1980 के बाद इंडिया ने गोल्ड मेडल नहीं जीता। हाँ 2020-2024 में इंडिया पोडियम में वापस जरूर आए लेकिन इंडिया को दोनों बार ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल हुए। जफर इकबाल ने बाद में याद किया कि मॉस्को फाइनल स्पेन के खिलाफ बहुत टफ था। इंडिया को मैच के आखिरी मोमेंट्स में मजबूत डिफेंस करना पड़ा लेकिन टीम ने प्रेशर को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया था और पोडियम पर गोल्ड मेडल के साथ खड़ी हुई। सोचिए दोस्तों, एक नौजवान इंडियन टीम, नई सरफेस यानी एस्ट्रोटर्फ, ओलंपिक प्रेशर और सामने यूरोपियन चैंपियन स्पेन, और इसी स्टेज पर जफर इकबाल जैसे फॉरवर्ड्स ने इंडियन अटैकिंग ट्रेडिशन को जिंदा रखा। 1980 के बाद भी उनका इंटरनेशनल करियर जारी रहा। उन्होंने 1978 और 1982 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल्स जीते और 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच उनकी फेवरेट मेमोरीज में शामिल है। इंडिया मैच में 3-0 से पीछे था लेकिन कमबैक करते हुए 4-5 से फतेह हासिल। और फिर आया 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। इस बार जफर इकबाल सिर्फ खिलाड़ी नहीं था दोस्तों, वो इंडियन ओलंपिक कंटिजेंट के फ्लैग बेयरर थे और इंडियन हॉकी टीम के कप्तान भी। हॉकी इंडिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में इंडिया 5th पोजीशन पर रहा। लेकिन लीडरशिप का मतलब सिर्फ मेडल्स नहीं होता। जफर इकबाल का करियर

इस बात की मिसाल है कि एक खिलाड़ी अपने गेम बिहेवियर और प्रोफेशनलिज्म से भी लीगेसी क्रिएट करता है। इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट के बाद भी उनका कनेक्शन इंडियन हॉकी के साथ खत्म नहीं हुआ। वो कोचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए गेम की खदमत करते रहे और हॉकी इंडिया के मुताबिक वो फॉर्मर चीफ नेशनल कोच भी रहे और उनकी कोचिंग में इंडिया ने 1994 हिरोशिमा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। दैट्स एन यूनिक अचीवमेंट। जफर इकबाल की कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाती है दोस्तों कि लेजेंड सिर्फ वो नहीं होते हैं जो ट्रॉफीज जीतते हैं, लेजेंड्स वो होते हैं जो अपने दौर के गेम को समझते हैं, बदलते हुए वक्त के साथ अडाप्ट करते हैं और अगली जनरेशन के लिए एक मिसाल छोड़ जाते हैं। जफर इकबाल ओलंपिक चैंपियन, फॉर्मर कैप्टन, कोच और इंडियन हॉकी के एक ट्रू जेंटलमैन। और शायद इसीलिए जब इंडियन हॉकी के गोल्डन एरा का जिक्र होता है, जफर इकबाल का नाम हमेशा इज्जत और फख्र के साथ लिया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: एक मिनट का जो टाइमलाइन है 30 सेकंड्स के अंदर 40 सेकंड्स के अंदर अपने कंटेंट को अगर आप डिलीवर करने वालों में से हैं जो बहुत सारे लोग हैं डू दैट बिकॉज दिस इज द राइट टाइम. अभी से आप लग गए ना जी जान लगा दी आपने तो कुछ वक्त नहीं लगेगा आपको उस लेवल पे पहुंचने पे जो आपने सोच रखा है. बट देन अगेन मैं पीछे फिर से जाना चाहूंगा उस बात पे जो मैंने पहले कही. YouTube पे अगर आप अपना करियर सोच रहे हैं एंड दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ सिर्फ आपको नहीं दे रहा, मैं अपने आप को भी रिमाइंड करा रहा हूँ. इफ वी ऑल आर थिंकिंग यूट्यूब एज अ करियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोई टाइम पास नहीं हो सकता, ये कोई सिर्फ हॉबी की तरह नहीं है. अगर यूट्यूब से कमाना है, सिर्फ एंटरटेन नहीं करना है, देन यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब. Very, very simple. And quality और consistency. नौकरी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? YouTube को नौकरी मानने का मतलब है कि मैं भैया हफ्ते में 3 दिन आऊंगा, 3 दिनों आऊंगा, इतने बजे आऊंगा. You have to deliver on क्या कहते हैं उसको, expectations. आप एक टाइमिंग सेट करते हैं, एक दिन सेट करते हैं, जैसे हम लोग अपनी नौकरी पे जाते हैं वैसा. इसमें और बात करता रहूंगा. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा 666-22-107 पर या फिर सोशल मीडिया FM 107 कतर. ये थी आज की टेक अपडेट, मिलते हैं अगले में. स्टे ट्यून्ड.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: स्कैम अलर्ट.
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम बात करते हैं. और कल जैसे कि हमने बात किया एक अजीब और गरीब चीप यानी कि सस्ता पिक एंड ड्रॉप स्कूल ट्रांजिट के बारे में, और आज ऐसे ही हम एक और स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज बेट एंड स्विच या फ्री सोशल मीडिया आइटम स्कैम. सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्कैम होता क्या है. ये स्कैम सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस जैसे कि फेसबुक हो गया या ऐसे एप्लीकेशन हो गया जहां पर आपको सेकेंड हैंड मार्केट दिखती है या सोशल मीडिया का कोई और पेज, वहां पर बहुत तेजी से फैल रहा है ये स्कैम. स्कैमर्स बहुत ही महंगी और अच्छी कंडीशन वाली चीजें जैसे प्रीमियम फर्नीचर, महंगे फोन्स, लैपटॉप्स, रेफ्रिजरेटर्स बिल्कुल फ्री में देने का एड लगाते हैं. ये तो आप देखते ही होंगे, कई जगह आप यू नो सोशल मीडिया पर रहते हैं, आपने उन पेजेस को भी फॉलो कर रखा है जो फ्री में यू नो पोस्ट आता है, जो फ्री के सामान जो है लोग उससे जुड़े हुए. आप ऐसे कई फेसबुक को फॉलो भी करते होंगे पेजेस को जहां पर 100 से यू नो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 100,000 ऑफ लोग जो है वहां पर जुड़े हुए हैं, वो अपने घर से डीक्लटर करना चाहते हैं, फ्री में सामान बेचना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच एक स्कैमर भी छुपा होता है. वो एड में लिखते हैं या फिर उस सोशल मीडिया के पोस्ट पर लिखते हैं कि हमारे घर पे ये सामान फालतू का पड़ा है, प्लीज यहाँ से लेकर जाइए, हम पूरा फ्री दे रहे हैं, या हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, हमें बस स्पेस खाली करनी है इसलिए फ्री में दे रहे हैं. और जब आप ये सब देखते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं, तो वो बहुत ही स्वीट बनते हैं और आपको आइटम कलेक्ट करने के लिए एक एड्रेस भी भेजते हैं. लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद खेल चेंज हो जाता है. वो आपसे कहते हैं बहुत सारे लोग लेने के लिए रेडी हैं, अगर आपको चाहिए तो भी एक छोटा सा यू नो फीस जो है वो लगेगी, विच इज कॉल्ड होल्डिंग फी या फिर हैंडलिंग चार्ज भी. उसके अलावा अलग अलग तरीके से पेमेंट करने को वो आपसे कहते हैं, और वो ये भी डराते हैं कि अगर आप यू नो ये सामान नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से लोग हैं वो सामान ले लेंगे, क्योंकि आप वो फर्नीचर, वो लैपटॉप, वो रेफ्रिजरेटर सस्ता देखते हैं. यू नो एक तो वो फ्री में दे रहा था पहले, लेकिन अब वो कह रहा है नहीं नहीं वो 50 रियाल या 100 रियाल में लेकर जाइए, लेकिन आपको होल्ड करने के लिए फीस देनी पड़ेगी, तो आप अपफ्रंट पे कर भी देते हैं. लेकिन ये एक तरह का स्कैम है. आप सोचते हैं इतनी महंगी चीज है फ्री में मिल रही है, 500,000 रुपये देने में क्या ही बुराई है, या फिर 50 रियाल 40 रियाल देने में क्या बुराई है. लेकिन जैसे ही आप वो पैसे ट्रांसफर करते हैं वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और एड्रेस भी फेक निकलता है. इससे बचना कैसे है इस पर भी बात करना बड़ा जरूरी है दोस्तों. देखिए इनसे बचने के 3 आसान तरीके हैं. गोल्डन रूल को याद रखना सबसे बेहतरीन है आपके लिए. दोस्तों ऑनलाइन मार्केट प्लेस का सबसे बड़ा रूल है, अगर कोई चीज कंप्लीटली फ्री एडवर्टाइज्ड है या सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई है तो उसे पाने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए. अगर कोई पैसे मांग रहा है तो वो 100% स्कैम है. अगर किसी ने पोस्ट किया है फ्री में, उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद अगर आपसे वो पैसा मांग रहा है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं.

0: फेसबुक के या यू नो अलग अलग सोशल मीडिया पेज पे जहां पर उसने ये पोस्ट किया है, उनके एडमिन से भी आप कह सकते हैं कि ऐसे पेजेस को ब्लॉक करें। अगर उनका नंबर आपके पास है तो भी आप जो अथॉरिटीज होती हैं उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फिजिकल इंस्पेक्शन से पहले कोई भी पेमेंट ना करना। अगर आपके सामने कोई भी पोस्ट आती है, आप किसी के घर जाते हैं और जब देखते हैं कि सामान वहां पर रखा है, आपने इंस्पेक्शन कर लिया, किसी तरह की खराबी नहीं है, तब आप पेमेंट करें। किसी भी तरह का डिजिटल डिपॉजिट, टोकन मनी, शिपिंग फी या होल्डिंग चार्ज वगैरह कभी भी अपफ्रंट पहले से ना दें। खुद उस प्रोडक्ट को अपनी आंखों से देखें और चेक कर लें, उसके बाद पेमेंट करें। उसके अलावा सेफ मीटिंग प्लेसेस का भी बहुत ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर आप उनसे प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, सारी बात हो गई है, उन्होंने एड्रेस दे दिया है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है फ्री में ले जाइए, आप अपने लिए ना पूरा ट्रक बुक करके लेकर जाते हैं, अपनी कार लेकर जाते हैं कि सामान भर कर वापस घर लेकर आएंगे, तो हमेशा किसी पब्लिक प्लेस पर मिले, जैसे कोई बिजी मार्केट है, मेट्रो स्टेशन है, या फिर सबसे सेफ किसी लोकल पुलिस स्टेशन के बाहर, किसी के सुनसान घर या अनजान इलाके में अकेले बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये रिस्क डबल हो जाता है। कई बार आप किसी के घर जाते हैं, वो आप पर कोई इल्जाम भी लगा सकता है, चोरी का इल्जाम भी लगा सकता है, तो ऐसे में कोशिश करें कि घर के बाहर मिलें, जहां पर कैमरेज वगैरह लगे हों वहां पर मिलें और वहीं पर पेमेंट करें, ताकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ प्रूफ हो। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। उम्मीद है पिछले कुछ मिनट में जो हमने बताया, जितने सॉल्यूशन के बारे में हमने बात करी, उसके बाद आप इस तरह के स्कैम से बचने के लिए अब तैयार होंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107, दिल से देसी।
3: सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है कतर 2026। क्या हाल चाल है दोस्तों, और इस शो में जहां पर आपको हर एक चीज, हर एक इवेंट, हर एक एग्जीबिशन, अनाउंसमेंट, कतर का फ्यूचर क्या है, उन सब के बारे में पता चलता है। चाहे वो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट को लेकर बात हो, चाहे वो यू नो वीकेंड में क्या कुछ हो रहा है, मॉल्स में क्या एक्टिवेशंस है, सारी डिटेल्स आपको इस शो में पता चलती है जिसका नाम है कतर 2026। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर अनाउंसमेंट के बारे में कि कतर में कतर टूरिज्म और विजिट कतर ने ऑफिशियली क्या अनाउंस किया है, और फिर कतर में होने वाले या आने वाले इवेंट्स के बारे में, क्योंकि ये जो अक्टूबर का महीना है ये सबसे बेस्ट होने वाला है। इसके दो वजह है। एक तो यार देखो, मौसम बहुत ही लाजवाब होगा और हल्की यू नो ठंडे मौसम में आप बाहर निकले, और फिर दूसरा इवेंट्स, ऐसे ऐसे इवेंट्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में होते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है, और हॉस्पिटैलिटी कतर की तो लाजवाब है ही है। फिर उसके बाद वीकेंड के अट्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। कतर स्टार्स लीग होने वाला है, उसमें क्या कुछ होगा इस पर भी हम यू नो राबता करेंगे, बात करेंगे, और फिर कतर की न्यू ओपनिंग्स के साथ साथ हम बात करेंगे कॉन्सर्ट के बारे में। म्यूजिक लवर्स के लिए भी तो कुछ खास होना चाहिए। और फिर मॉल एक्टिवेशन से लेकर हम बात करेंगे एग्जीबिशन सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मेजर अनाउंसमेंट कतर का क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, कतर टूरिज्म और विजिट कतर ने ऑफिशियली अपना नया कतर कैलेंडर 2026-27 नेशनल प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। इस नए प्रोग्राम का मकसद कंट्री के एंटरटेनमेंट, कल्चरल और स्पोर्ट्स सेक्टर्स को बड़े लेवल पर एक्सपेंड करना है। ये पूरे देश के टूरिज्म को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए एक बड़ा कदम। इस अनाउंसमेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि अब बड़े और फेमस फेस्टिवल को कैपिटल सिटी यानी कि दोहा से बाहर शिफ्ट और एक्सपेंड किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी इवेंट्स होते थे मेनली फोकस होता था दोहा, लेकिन अब दोहा से बाहर भी होगा। सो दोहा के बाहर जो अलकोर में रह रहे हैं या फिर यू नो थोड़े दूर दराज इलाके में रह रहे, मेन शहर में नहीं रह रहे हैं, उनके लिए भी काफी कुछ है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, कतर के अलग अलग रीजन्स की यूनिक आइडेंटिटी है, उनके कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा है और पूरी कंट्री में रौनक हो इसलिए भी। और इस नए प्लान के मुताबिक मशहूर कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल भी आ रहा है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस बार का कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल लुसेल सिटी के वाटर फ्रंट पर एक ग्रैंड तरीके से वापस लौट रहा है। इसके अलावा विंटर एक्टिवेशंस के लिए भी नए लोकेशन सेलेक्ट किए गए हैं। वेस्टर्न कतर के रग्ड लैंडस्केप ब्रूक में इको टूरिज्म इवेंट्स होंगे, और इसके साथ ही लोगों के लिए काफी अवेटेड दोहा आउटडोर्स सीजनल फ्रेमवर्क भी शुरू किया जाएगा। इन सभी बदलावों और एक्सपेंशंस को आसान बनाने के लिए अथॉरिटीज ने एक यूनिफाइड डिजिटल टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एक सिंगल नेशनल पोर्टल है जहां से सिटीजंस, रेसिडेंट्स और इंटरनेशनल टूरिस्ट किसी भी इवेंट के पासेज और टिकट्स को आसानी से ढूंढ सकेंगे और खरीद सकेंगे। ये डिजिटल इंटीग्रेशन कतर के एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेवल ईयर के बाद किया गया है, जो आने वाले ऑटम और विंटर टूरिज्म सीजन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आने वाले इवेंट के बारे में जिस पर बहुत ज्यादा एक्चुअली बात हो रही है, वो है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर और कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में मिड अक्टूबर से बड़े इंटरनेट

एग्जीबिशन और हाई प्रोफाइल कन्वेंशन जो शुरू होने वाले हैं उनके बारे में। हॉस्पिटैलिटी कतर 2026 और फूड कतर 2026, ये दोनों इवेंट्स DECC में एक साथ चलेंगे, जो फूड बेवरेजेस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के टॉप ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स और कलिनरी इनोवेटर्स को बिजनेस डील्स के लिए एक साथ लाएंगे। मिलिपोल कतर 2026 ये ग्लोबल इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी एग्जीबिशन है जो अक्टूबर 20 से 22 तक चलेगा। फिर सिटीस्केप कतर रियल स्टेट एंथुजियास्ट के लिए ये बड़ा इवेंट अक्टूबर 27 को DECC में ओपन होगा। इसमें थोड़ा भी वक्त है, और भी काफी इवेंट्स हैं जिसके बारे में आपको वक्त के साथ पता चलेगा, क्योंकि कई इवेंट्स लेट अक्टूबर में शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ अगर हम वीकेंड के अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो इस 8 अक्टूबर यानी कि थर्सडे के दिन कतर में वीकेंड लेजर एक्टिविटीज की एक शानदार और एक्शन पैक्ड शुरुआत हो रही है, जिसमें स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और आउटडोर अट्रैक्शंस दोनों शामिल हैं। फुटबॉल लवर्स के लिए पूरे देश के अलग अलग स्टेडियम अरीनाज में शाम 5 से कतर स्टार्स लीग के मैचेस एक साथ शुरू हो रहे हैं। इस स्पोर्ट्स लाइनअप में सबसे बड़ा और आइकॉनिक मैच कतर स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस अल रयान स्पोर्ट्स क्लब के बीच सेंट्रल दोहा के सुहेम बिन हमद स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, जहां लोकल सपोर्टर्स के लिए एकदम इंटेंस और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। जो फैमिलीज सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट के पास रहती है उनके लिए अल शाहानिया वर्सेस लुसेल स्पोर्ट्स क्लब का गेम अल रयान के हिस्टोरिक अहमद बिन अली स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा तीसरे एलीट फेस ऑफ यानी कि अल अहली दोहा वर्सेस अल सैलिया स्पोर्ट्स क्लब के बीच जो मैच होगा वो होगा हमद बिन खलीफा स्टेडियम में, जो कि बड़ा ही लाजवाब होने वाला, और ये कांटे की टक्कर आपको जरूर देखना चाहिए। ये सभी टिकेटेड और फैमिली फ्रेंडली आउटडोर स्टेडियम स्पेक्टेकल्स लोगों के लिए एक परफेक्ट वीकेंड आउटिंग का ऑप्शन बनने वाले हैं। स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स के अलावा जो फैमिलीज एक रिलैक्स्ड और सुकून भरी शाम बिताना चाहते हैं उनके लिए भी काफी ऑप्शंस हैं। लोग ओल्ड दोहा पोर्ट लुसेल बुलेवार्ड के नए अपग्रेडेड ओपन एयर प्रोमेनेड्स में जा सकते हैं, वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा सुहाना जो वेदर है उसका भी मजा ले सकते हैं। सीजनल पॉपअप मार्केट्स, इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, इंस्टॉलमेंट्स, लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, बहुत कुछ होने वाला है। ये सारी डिटेल्स आपको यहीं कतर 2026 में मिलती रहेंगी। और भाई जब इतनी सारी चीजों के बारे में बात हो रही है तो कतर के कमर्शियल लैंडस्केप में इस महीने बड़े लेवल पर इंस्टीट्यूशनल और रिटेल सेक्टर की न्यू ओपनिंग्स के बारे में भी बात होनी चाहिए। नया कुछ क्या है कतर में? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ने अपना आने वाला पब्लिक ऑक्शन फ्रेमवर्क ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इसके तहत अक्टूबर 4, 2026 से एक बड़ा 2 वीक पब्लिक बिडिंग इवेंट शुरू होने जा रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें न्यू ओपनिंग्स की तो साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि जो कतर का साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क है, यहाँ के टेक स्पेसेस में स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज खोली जा रही हैं जो खास तौर पर स्मार्ट सिटी ऑटोमेशन और इंटरप्राइज सेस प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करेंगे। तो आपके लिए कुछ नया भी, साइंस से जो रिलेटेड बच्चे हैं, जो साइंस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, साइंस के आसपास रहना चाहते हैं, उनके लिए भी जबरदस्त कतर साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क में कुछ खास जरूर है। लेकिन अब बात करेंगे हम कतर के कॉन्सर्ट के बारे में। कतर में कौन सा कॉन्सर्ट हो रहा है, फूड फेस्टिवल में क्या कुछ है, मॉल के एक्टिवेशन में कुछ नया आ रहा है कि नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्सर्ट से। दोस्तों अगर हम कॉन्सर्ट के बारे में बात करें तो अक्टूबर 9 को QNCC में आपके लिए आ रहा है इन बिटवीन मिडिल ईस्ट टूर। ये एक अनोखा टूर होने वाला है, QNCC में होगा, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में। इस कॉन्सर्ट में मशहूर OPM डायनेमिक डुओ TJ मॉन्टेड और KZ तांदिंगन जो हैं वो आ रहे हैं। एक के बाद एक कंसेक्यूटिव सोल्ड आउट अरीना शोज के बाद स्टेज पर अपनी अकूस्टिक हिट्स और बेहतरीन वोकल से ये दोनों समा बांधने वाले हैं। इसके बाद यानी कि मंथ के एंड में भी यानी कि 31 अक्टूबर को भी कुछ खास है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा रुक कर बात करेंगे, यानी कि अगले के अगले हफ्ते हम इस पर थोड़ा नजर डालेंगे, वरना आप भूल जाएंगे। 31 अक्टूबर कटारा ओपेरा हाउस में बड़ा ही कुछ कतर का ऑर्केस्ट्रा जो है एक तरह से वो आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं बताने वाला, थोड़ा सा रुक कर एक दो हफ्ते थोड़ा और गुजर जाने दीजिए, तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर बोले तो DECC में अक्टूबर 12 से 14 अक्टूबर तक कतर का प्रीमियर डेडिकेटेड फूड एंड बेवरेजेस एग्जीबिशन यानी कि फूड कतर 2026 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये इवेंट कतर के वाइब्रेंट कल्नरी सीन को सेंटर स्टेज पर लेकर आएगा। इस मेजर

0: कल्नरी गैदरिंग में इंटरनेशनल फूड मैन्युफैक्चरर्स, टॉप टियर रीजनल शेफ और इनोवेटिव हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे इकट्ठा होंगे। यहां पर लोगों को ग्लोबल डाइनिंग ट्रेंड्स, फूड प्रोसेसिंग ब्रेकथ्रू और लाइव मैन्युफैक्चरिंग डेमोंस्ट्रेशंस देखने को मिलेगा। बड़ा ही लाजवाब होने वाला है, बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही अक्टूबर 9 से अक्टूबर 24 तक कतर के रिटेल डेस्टिनेशन पर शॉपर्स के लिए इमर्सिव और इंटरैक्टिव मॉल एक्टिवेशंस भी शुरू हो रहे हैं। वैसे अगर हम मॉल एक्टिवेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको एजदान मॉल अल वकरा की तरफ रुख करना चाहिए। ये मॉल ग्लो इन लाइट, अ मैजिकल वर्ल्ड ऑफ लाइट्स एंड फन होस्ट कर रहा है। ये एक स्पेशलाइज्ड इंडोर एक्टिवेशन है जो मॉल के सेंट्रल वॉकवेज को एक ग्लोइंग वंडरलैंड में बदल देगा। यहां पर नियॉन आर्ट इंस्टॉलेशंस, फ्लोरोसेंट फैमिली चैलेंजेस और शानदार कस्टम फोटो बैकड्रॉप्स देखने को मिलेंगे जो वीकेंड मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए परफेक्ट है। उसके अलावा अगर आप अलखोर की तरफ रहते हैं और थोड़ा करीब ढूंढ रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली अलखोर नहीं, लेकिन अगर आप लुसेल के आसपास हैं तो फिर प्लेस विंडोम मॉल आपके लिए है, मॉल ऑफ कतर भी आपके लिए है। इन दोनों लग्जरी शॉपिंग हब्स में लोकलाइज्ड पॉपअप स्टेजेस, क्रिएटिव फैशन प्रेजेंटेशंस और इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट जोन्स शुरू किए जा रहे हैं जो उनके नए कॉर्पोरेट सेटअप के साथ मैच भी करेगा। तो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। अब बात कर लेते हैं फैमिली इवेंट्स के बारे में कि कतर में कोई ऐसी जगह बताओ फजील जहां पर फैमिली जा सके और फैमिली के लिए इवेंट हो। तो मैं आप फैमिली वालों से गुजारिश करूंगा कि आप जाएं फायर स्टेशन म्यूजियम। फैमिली के लोग यहां दो शानदार कंटेम्प्रेरी आर्ट शोकेसेस का जो एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं। अक्टूबर 25 तक चलने वाला है। पहला है अहमद अल हमार बिटवीन रस्ट एंड आर्ट और दूसरा है हाइफा अल खुजाई थ्रेड्स ऑफ मेमोरी। ये पब्लिक कलेक्शंस बच्चों और पेरेंट्स दोनों को ही मिक्स्ड मीडिया स्ट्रक्चर्स, टेक्सटाइल्स और ट्रेडिशनल सेरेमिक्स के जरिए मॉडर्न कतरी हेरिटेज का एक बेहतरीन और किड फ्रेंडली रूप दिखाते हैं। दूसरा है आउटडोर वेन्यूज यानी कि ओल्ड दोहा पोर्ट और लुसेल बुलेवार्ड। जो लोग खुली जगह या आउटडोर सेटिंग पसंद करते हैं उनके लिए यहाँ के स्प्रॉलिंग प्रोमेनेड्स पर फैमिली एंटरटेनमेंट जोन्स शुरू किए जा रहे हैं। इनमें स्ट्रीट बस्कर्स, लाइव थिएट्रिकल पॉपअप्स और स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी वर्कशॉप शामिल है ताकि जब तक पेरेंट्स हार्बर के पास बैठकर रिलैक्स करें, बच्चे जो है आराम से सिक्योरिटी के साथ सेफ फील करें और तरीके से एंटरटेन होते रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं कतर के नेशनल विजन 2030 के बारे में जिसमें सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, स्मार्ट सिटी अपडेट्स हैं, एजुकेशन इनिशिएटिव हैं और भी बहुत कुछ। सबसे पहले अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में तो कतर ने लॉन्ग टर्म ग्रीन ग्रोथ के लिए अपने कमिटमेंट को बढ़ा दिया है। इसमें सबसे मेन अल हारसा सोलर पीवी पावर प्लांट है जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कार्बन फुटप्रिंट को ड्रास्टिकली कम कर रहा है। देश का टारगेट यानी कि खतर का टारगेट है 2030 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 25% तक कम करना। इसके साथ स्मार्ट सिटी की भी अपडेट्स हैं। कतर का अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तास्मू स्मार्ट कतर प्रोग्राम के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है जो AI और IoT टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है। इसमें लुसेल सिटी एक यूनिफाइड स्मार्ट इकोसिस्टम की तरह काम करती है जहां एक सेंट्रलाइज्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर से रियल टाइम डेटा के जरिए म्युनिसिपल ऑपरेशन मैनेज होते हैं। वहीं मुशरिफ डाउनटाउन का एक सस्टेनेबल रीजनरेशन प्रोजेक्ट है जिसमें पैसिव कूलिंग वाली 100 से ज्यादा लीड सर्टिफिकेट बिल्डिंग्स हैं। उसके अलावा अगर हम एजुकेशन इनिशिएटिव की बात करें कतर की तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर ह्यूमन कैपिटल फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज कर रही है। इसी के चलते कतर की 7 सिटीज ने यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज को ज्वाइन किया है और अब स्कूल करिकुलम्स में रीजनल सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस को एक्टिवली जोड़ा जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्ट चेंजेस के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रेटजीज के चलते कतर का 70% पब्लिक बस फ्लीट फुल्ली इलेक्ट्रिक हो चुका है जिसका टारगेट 2030 तक 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करना है। अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो कतर थर्ड नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2024-2030 के तहत कतर डिजिटल इकोनॉमी हब लोकल स्टार्टअप्स के लिए ऑफिशियली इंक्यूबेटर का काम कर रहा है। ये हब एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर यानी कि SaaS, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, फिनटेक और एडवांस्ड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है ताकि देश की डिपेंडेंसी हाइड्रोकार्बन मार्केट पर कम हो सके। तो दोस्तों ये था आज का कतर 2026। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक कतर 2026 के बारे में बात करते हुए और कतर के तमाम इवेंट्स, एग्जीबिशन और कतर के नेशनल विजन 2030 से अलाइन होता हुआ ट्रांसपोर्ट के चेंजेस, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, एजुकेशन इनिशिएटिव के बारे में और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से दही से
1: कतर 2026। RJ फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है मनी मिस्टेक्स पेरेंट्स एक्सीडेंटली टीच देयर किड्स. पेरेंट्स बच्चों के सबसे पहले टीचर होते हैं. बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं. इसीलिए मनी हैबिट्स सिर्फ लेक्चर से नहीं बल्कि डेली एक्शन से ट्रांसफर होती है. अक्सर पेरेंट्स अच्छी नीयत से काम करते हैं लेकिन कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स अनजाने में अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं. आइए जानते हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं. पहले, पैसा दरख्तों पर नहीं उगता, कहना मगर एक्सप्लेन ना करना. कई पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ ये कहते हुए सुने गए हैं लेकिन वो ये नहीं समझा पाते कि पैसा अर्न कैसे होता है, सेव कैसे किया जाता है और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है. और नतीजा ये होता है कि बच्चे मनी को या तो डरने वाली चीज समझने लगते हैं या फिर उसके बारे में सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते. फाइनेंशियल एजुकेशन फियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से शुरू होनी चाहिए. वहीं दूसरा एक और स्टेटमेंट, हर डिमांड को फौरन पूरा कर देना. जब भी बच्चा कोई टॉय गैजेट या एक्सपेंसिव चीज मांगे और फौरन मिल जाए तो वो पेशेंस और वैल्यू को नहीं समझ पाता. रियल लाइफ में हर चीज इंस्टेंटली नहीं मिलती. बच्चों को वेट करना, सेव करना और प्रायोरिटी सेट करना सिखाना जरूरी है. वहीं पर सेविंग की इम्पोर्टेंस बताई. अगर पेरेंट्स खुद सैलरी आते ही तमाम पैसे खर्च कर देते हैं और सेविंग्स नहीं करते हैं तो बच्चा भी वही हैबिट अडॉप्ट करेगा ना. बच्चे देखकर सीखते हैं. अगर वो देखेंगे कि पेरेंट्स इमरजेंसी फंड्स और सेविंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उनकी सोच भी वैसे ही डेवलप हो. वहीं इमोशनल शॉपिंग ना करें. कुछ लोग स्ट्रेस, सैडनेस या फिर बोर्डम की वजह से शॉपिंग करते हैं. जब बच्चे ये देखते हैं कि हर इमोशनल प्रॉब्लम का सलूशन शॉपिंग है तो वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं. खुशी खरीदी नहीं जा सकती. शॉपिंग टेम्परेरी एक्साइटमेंट दे सकती है लेकिन परमानेंट सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं. वहीं एक और चीज, मनी डिस्कशंस बच्चों से कीजिए. कुछ पेरेंट्स समझते हैं कि मनी के बारे में बात करना जो बच्चे हैं उनसे मुनासिब नहीं, लेकिन जब बच्चों को फाइनेंशियल मैटर्स का बिल्कुल आइडिया नहीं देंगे तो वो अडल्टहुड में भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करेंगे. एज के मुताबिक मनी कन्वर्सेशन हर एज में की जानी चाहिए. क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी जैसा ट्रीट करना. अगर पेरेंट्स हर चीज क्रेडिट कार्ड से खरीदें मगर रिपेमेंट और बजटिंग के बारे में बात ना करें तो बच्चे समझ सकते हैं कि स्पेंडिंग की कोई लिमिट ही नहीं है. बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि विजडम से भी ग्रो होता है. और ग्रैटिट्यूड, जब बच्चों को हर चीज मिल जाए और एप्रिसिएशन की हैबिट ना हो तो वो चीजों की वैल्यू महसूस ही नहीं करते. ग्रैटिट्यूड फाइनेंशियल वेलबींग का हिस्सा है. जो लोग अपने मौजूदा ब्लेसिंग्स की कदर करते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल चॉइसेस करते हैं. बस आखिर में यही कहूंगी कि पेरेंट्स अक्सर जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में अपनी मनी हैबिट्स बच्चों तक पहुंचा देते हैं और शायद अनहेल्दी मनी हैबिट्स बच्चों तक पहुंचा देते हैं. इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ बच्चों को पैसा देना ही ना सिखाएं बल्कि मनी मैनेजमेंट भी सिखाएं. सेविंग सिखाएं, बजटिंग सिखाएं, पेशेंस सिखाएं, ग्रैटिट्यूड सिखाएं, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग ये सिखाएं. ये ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चों की पूरी जिंदगी को बेहतर बना देती हैं. याद रखिए, चिल्ड्रन मे नॉट ऑलवेज लिसन टू व्हाट पेरेंट्स से बट दे ऑलवेज लर्न फ्रॉम व्हाट पेरेंट्स डू. अगर पेरेंट्स हेल्दी मनी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ हेल्दी वेल्थ नहीं बल्कि फाइनेंशियल विजडम का भी विरासत छोड़ कर जाते हैं. फिलहाल यहाँ पर अब आपसे वक्त हो गया कि इजाजत ली जाए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107.

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
0: दोस्तों, मित्राश ऐप के जरिए वर्क वीजा आसानी और तेजी से जारी किया जा सकता है, जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होती। इस खदमत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मित्राश ऐप की होम स्क्रीन पर जाकर वीजा का इंतखाब करें, फिर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए वर्क वीजा का ऑप्शन चुनें। वर्क वीजा के सफहे पर मुतालिक एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करने के बाद इशू वीजा पर क्लिक करें। इसके बाद एप्लीकेंट की कौमियत या नेशनैलिटी का इंतखाब करें और उसके पासपोर्ट की वाजे कॉपी अपलोड करें। फिर एक साफ और वाजे पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद जाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिका अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि ये डिजिटल सर्विस वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती है और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: Anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل

0: वो बदल नहीं हो सकता, बल्कि आपको मसा करना ही पड़ेगा जी, ये ज़रूरी है
1: जी जी, जी। तो मसा और गुस्ल में यही फ़र्क है कि मसा में कि आप तर हाथ अपने फेरे सर पर
0: जी,
1: कि पानी टपके ना
0: बिल्कुल,
1: और गुस्ल ये होता है धोना यानी जिसे कहा जाता है, तो वो यही होता है कि भाई आप इस तरह पानी फैलने के पानी टपकने लग जाए
0: जी,
1: तो वो गुस्ल गसल कहलाता है
0: जी,
1: गुस्ल नहीं गसल कहलाता है जी
0: जी।
1: जज़ाकुमुल्लाह शेख साहब, दूसरा सवाल है और ये ज़रा तफसील तलब सवाल है
0: जी।
1: और सवाल उन्होंने किया तो इसमें कुछ बाज़ पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए जो उनके सवाल करने के तरीके से मुझे महसूस हुए हैं
0: जी।
1: उन्होंने सबसे पहले ये बात कहा कि कहिए कि हुकूमत किसी पर मुखालफा लगाती है
0: जी,
1: माली मुखालफा जो लगता है उमूमन, जबकि चारों फ़िक्र चारों अइमा ने ये बात कही है कि भाई माली मुखालफा इस अब नहीं लगता है, नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने कहा ये बात उन्होंने कही है। और तो ये कहते हैं कि कहाँ तक दुरुस्त है माली मुखालफा लगाना, एक चीज़, और दूसरी चीज़ उन्होंने ज़िक्र किया था कि अगर यानी इंसान की गलती का इल्म नहीं होता, उनको तहकीक नहीं होती, वो मुखालफा लगा देते, अगर इंसान की गलती इतनी कि 1,000 का मुखालफा लग रहा है, लगना चाहिए, लेकिन वो 5,000 का लगा देते हैं
0: जी,
1: इस तरह का मुखालफा लगता है। तो अब अगर इंसान, एक तो ये कि मुखालफा लगाना कहाँ तक दुरुस्त है माली मुखालफा, एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मुखालफा अदा नहीं करता तो क्या वो गुनहगार होगा या नहीं
0: जी,
1: ये दूसरा सवाल उनका था, तो इसका जवाब इनायत फरमा दे जज़ाकुल्लाह।
0: सबसे पहली बात यह है कि ये इदारी उमूर हैं, इदारी मसले हैं
1: जी,
0: हर मुल्क का एक अपना अपना ज़ाब्ता होता है
1: जी जी,
0: तो ये हर मुल्क का अपना अपना ज़ाब्ता है, तो उसके मुताबिक क्या बेहतर है क्या नहीं है वो फैसला करते हैं
1: जी।
0: तो हकीकत क्या है, ये मामलात को सामने रख कर ही उसको फिक्स किया जा सकता है। तो ये इन उमूर में ये मेरे ख़्याल से ये हमारे हमसे पूछताछ में जो कुछ बातें आ रही हैं ये इदारी उमूर हैं, बल्कि वहाँ जा कर के पूछें
1: जी,
0: यहाँ जो हम हमारा जो ये नूर इस्लाम है ये मसले मसाइल दीनी चीज़ें जो उसके बारे में हैं, बाकी चीज़ें जो इदारी उमूर हैं तो ये इससे हमारा कनेक्शन नहीं है, बल्कि जो इसके अहल हैं वो लोग उनसे जाके करें
1: जी जी। जहाँ तक शेख साहब इन्होंने ये बात कही है कि माली सज़ा या माली मुआवजा लगाना किसी पर, माली मुखालफा लगाना, ये इसका तो हमें शरीई एतबार से ये एक साबित शुदा सज़ा है, जो चीज़ मना की गई है यानी जो हमारे फ़िक्र में या दीगर फ़िक्रों में जो बात मना की गई है, वो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि वो वली अम्र मुस्तस्ना है उससे
0: जी,
1: यानी मुल्क का हाकिम है
0: जी,
1: वली अम्र है या काजी है कहीं का, वो अपनी सवाबदीद पर इस तरह की ताज़ीरात लगा सकता है माली ताज़ीरात। उसके अलावा अगर आप वली अम्र नहीं हैं या आप काजी नहीं हैं तो आप माली मुआवजा नहीं लगा सकते, ये जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर इसमें मुसलमानों का हाकिम या उसकी तरफ से बाख्तियार शख्स ये मुखालफात नाफिज कर सकता है, और इस सज़ा का जो मकसद होता है उमूमी तौर पर दीनी लिहाज से, वो मुआशरे को किसी उमूमी नुकसान और फसाद से बचाना होता है उमूमन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर गाड़ी ओवर स्पीडिंग पर मुखालफा है, उसकी हिकमत क्या है, उसका यानी मकसद क्या है, उसका मकसद यही है ना कि भाई इससे जो हमारा मुआशरा है वो उमूमी नुकसान से बच जाए। पर अगर हम ओवर स्पीडिंग को एक आम बात कर दें कि भाई ओवर स्पीडिंग कर लो, या हम माली मुखालफे के बजाय किसी कोई दूसरा मुखालफा क्या लगाएंगे इस तरह का कि भाई जेल में बंद कर दें या कुछ और करें, तो ये इसका मकसद ही होता है कि भाई उमूमी नुकसान और फसाद से बचाना होता है। तो हमारे यहाँ के उलमा जो दोहा कतर के उलमा हैं वो कहते हैं कि इसकी नज़ीर हमें पहले उसमें मिलती है यानी खुलफ़ा राशिदीन के दौर में, तो वो कहते हैं कि ज़कात अदा ना करने वाले से उसके माल का कुछ हिस्सा ले लेना, ये एक हुक्म है हमारे यहाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर 40 चरने वाले ऊँटों पर एक बिनत लबून, 2 साल की ऊँटनी ज़कात है। तो ये सारी जो हदीस है ये हदीस के बाद, अगर जो शख्स ज़कात अदा करने से इनकार कर दे तो हम उससे ज़कात भी वसूल करेंगे और उसके ऊँटों का निसफ भी ले लेंगे, ये अल्लाह ताला की अल्लाह के रसूल की हदीस है। और इसी तरीके से एक ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक शख्स था, वो मिलावट करने वाला मिलावट करता था, तो उसके ख़िलाफ़ ये इक़दाम किया था

0: कि मिलावट शुदा दूध को ज़मीन पर बहा दिया करते थे ताकि मिलावट करने वाले को सज़ा मिले। इसकी वजह यह थी कि अगर ऐसे दूध की खरीदो फरोख्त की इजाज़त दी जाए तो ये मिलावट की हौसला अफजाई होगी और मुसलमानों के बाज़ारों में ये फसाद का सबब बनेगा। तो जो ये जो माली मुखालफात हैं ये यानी एक तरह से वली अमर के लिए जायज़ हैं, यानी अगर हमारे हुकमा इस बात की जो हाकिमीन हमारे उन्होंने ये मुखालफात किए हैं तो उनकी तरफ से उनका ये अमल जायज़ है, इस पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। बाकी शख्स साहब जो तीसरा सवाल था इनका इरफान भाई का, वो कह रहे थे कि जैसे जींस पैंट पहनने वाले लोग हैं वो नमाज जब पढ़ते हैं ये तो एक उमूमी मस्जिद में सूरत आलम भी देखते हैं कि उनका जब वो रुकू या सजदे में जाते हैं तो उनका सतर खुल जाता है
1: जी।
0: तो उसके पीछे वाले की जो नज़र है वो उसके सतर पर गई तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है, एक तो ये सवाल है, और जो शख्स ये पहन कर नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है जब उसका सतर दिख जाए
1: जी। तो चूँकि सतर ढकना ये नमाज के शुरू में से है तो जिस आमतौर से देखा देखने में आता है मसाजिद के अंदर, और हमें इन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है
0: जी।
1: क्योंकि एक नमाज जो है एक अल्लाह तबारक ताला से इंसान का एक राबता है
0: जी।
1: और इसके अंदर नहायत खुशु खुशु के साथ इंसान गिरियाजारी के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर हो
0: जी।
1: तो ये सब चीज़ों से अगर वो बार बार ऐसी चीज़ें होती देखने में आती हैं तो इनसे बचना है, और नमाज जो है ये जाती रहती है, नमाज बातिल हो जाती है अगर ज़्यादा अगर फौरन खुल गया बंद हो गया तो फिर उसका अलग मसला है
0: जी।
1: लेकिन वो देर तक खुला रहे और ज़्यादा हिस्सा खुल जाए तो फिर उससे नमाज जो है फासिद हो जाती है। तो ये जो है जो वो शख्स जो नमाज ख़ुद पढ़ रहा है
0: जी।
1: और जिसकी नज़र अगर उसके पर पड़ गई है तो नज़र हटा ले फौरन इंसान, इसमें कोई हर्ज नहीं है
0: शेख साहब। इसके बाद अमानुल्लाह भाई का एक सवाल है, वो मालूम करे थे कि गाड़ी चलाते हुए कुरान की तिलावत सुनते हैं
1: जी।
0: तो उसमें तिलावत में मुतअद्दिद आयात सजदा पढ़ी जाती हैं तो उनको मालूम नहीं रहता कि भाई 5 सजदे फ़र्ज हुए कि 10 फ़र्ज हुए
1: जी,
0: तो क्या करें, फ़र्ज होते हैं या नहीं होते हैं?
1: एक तो इंसान ख़ुद तिलावत कर रहा है
0: जी
1: और बार बार याद कर रहा है एक ही सजदे कई बार
0: जी जी,
1: तो फिर एक ही सजदा करेगा वो
0: जी। नहीं ये इनका है कि
1: एक है उनका जो मसला है उसमें वो बार बार सजदे आते हैं और उनको एहसास नहीं होता कितना हुआ
0: जी।
1: तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप बाद में जो है कर लें कुछ सजदे, बाद में जो है
0: जी
1: वो कर लें सजदे, और नहीं भी करें तब भी कोई हर्ज नहीं
0: जी
1: जी।
0: जहाँ तक ये शेख जो गाड़ी पर हमारे यहाँ चलते हैं कुरान
1: जी,
0: ये लाइव नहीं होते
1: जी,
0: ये रिकॉर्डेड होते हैं
1: जी।
0: और मसला जहाँ तक है ये कि रिकॉर्डेड अगर तिलावत चल रही है तो उस पर सजदा वाजिब नहीं होता
1: जी, बिल्कुल
0: सजदा तिलावत
1: रिकॉर्डेड है बिल्कुल हाँ,
0: तो उस पर नहीं होगा, अगर लाइव है तो फिर आप सजदा कर लें
1: जी, दोनों में फ़र्क है
0: जी जी, फ़र्क है
1: जी।
0: ये फ़र्क वाज़े हो गया है। और सवालात भी हमारे पास इतने ही थे और सवालात के जवाबात का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। हाँ एक बात, उनकी इरफान भाई का जो दूसरा सवाल था उसमें एक बात ये है कि वो कहते हैं भाई माल यानी अगर नहीं दे रहा है कोई इंसान यानी मुखालफा तो क्या उसका यानी मुखालफा ना देने वाला गुनहगार होगा यानी? तो एक बात याद रखें कि जहाँ बहुत सारे अहकाम हैं अगर आप मुखालफात नहीं अदा करेंगे तो आप पर मज़ीद मुश्किलात आएंगी
1: जी
0: भाई, आपको हो सकता है जेल में बंद कर दिया जाए या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यम्बगी लिल्मुमिन अन युदल्ल नफ्सह क़ालू वकैफ युदल्ल नफ्सह क़ाला यतअर्रदु मिन अल-बलाई लिमा ला युतीक, कि इंसान को अपने आप को इस तरह यानी जलील करने की चीज़ों में नहीं डालना चाहिए और अपनी इज़्ज़त व आबरू को बचाए, और उसके बचाने के लिए आप ये कहें कि भाई हम नहीं देंगे ये सारी चीज़ें तो ये गलत चीज़ें हैं। बारकल्लाहु फीकुम, ये हमारे सवालात का सिलसिला ख़त्म होता है और हमारा वक्त भी मुकम्मल होने को है, और इस वक्त के मुकम्मल होने से पहले हम तमाम सामीन के सामने आज के प्रोग्राम का चंद खुलासा पेश कर देते हैं। अवलन तो ये बात याद रखें कि कनात का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंसान के पास कम हो, कनात का मतलब ये है कि कम या ज़्यादा जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसके साथ इंसान का दिल कैसा है, यानी इंसान का दिल उस पर मुतमईन होना चाहिए, मज़ीद की तलब उसको ना हो। और इस्तिग़ना का मतलब ये नहीं है कि इंसान किसी का मोहताज नहीं, यानी कि भाई इस्तिग़ना का मतलब मैं किसी का मोहताज ही नहीं हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इंसानी ये जो पैदा किया गया है माशरे में रहने के लिए पैदा किया गया। तो हकीकत ये है कि बंदा अल्लाह का मोहताज है लोगों के सामने हाथ फैलाने और उनके

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: पूरी टीम की जानिब से शाम बखैर। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम आफतों और मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम महफिल शायरी। तरतीब पेशकश आरजे महविश खान, आरजे सीम और दोहा वाला कबीर।
2: बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। चार किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। ये जिस शायर ने कहा, अगर इनसे आप वाकिफ नहीं है तो ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि आज जिनका जिक्र है वो सिर्फ एक शायर नहीं, सयाने भी थे, फनकार भी थे। वो जिसने दुनिया भी खूब देखी और दुनिया को बहुत कुछ दिखाना भी चाहा। नाम मुब्तदा हसन निदा फाजली। असली नाम था मुब्तदा हसन, जिसे बदलकर उन्होंने निदा फाजली कर लिया। निदा मतलब स्वर, यानी सुर, और फाजली कश्मीर में उनकी जड़, उनकी जगह की पहचान थी। निदा फाजली को लिखने का शौक बचपन से ही था, क्योंकि 12 अक्टूबर 1938 में निदा फाजली जिस घराने में पैदा हुए वो शायरी घराना था। बचपन ग्वालियर की गलियों में बीता और इसी ग्वालियर से पोस्ट ग्रेजुएशन भी हासिल की, पर उनके कलम को एक नया रुख, एक नया रास्ता दिया कॉलेज में हुए एक हादसे।
3: हुआ कुछ यूं कि कॉलेज में ये शायर अपना दिल किसी को दे बैठे और उनकी दुनिया से रुखसती हो गई और कलम और निदा फाजली का कलाम जैसे थम गए। इस दर्द को कागज पर उतारने की निदा फाजली ने बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी दर्द को लफ्ज देना नामुमकिन सा लग रहा था। मगर फिर एक दिन वो मोहल्ले में टहल रहे थे, तभी उन्होंने सूरदास को सुना और एहसास हुआ कि कुछ भी बयां करने के लिए लफ्जों का भार और मुश्किल शायरी जरूरी नहीं। दरअसल आसान लफ्जों में दुनिया की नफ्स को पकड़कर आसान जुबा में कुछ भी कहा जा सकता है। आगे निदा फाजली ने मीरा, सूरदास, कबीर, रहीम को बहुत गहराई से पढ़ा, जिसकी वजह से उनकी कलम ने इन सभी के कलाम को जैसे एक आईना बना लिया और मुतासिर हुए निदा फाजली ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: सैलाब नहीं, एक टीवी सीरियल जिसका नाम था सैलाब। पर सच में सैलाब आया इसकी शोहरत में, क्योंकि इसके टाइटल ट्रैक को लिखा निदा फाजली साहब ने, गाया जगजीत सिंह ने, और फिर हर कोई इसका इंतजार करने लगा। दोनों की जोड़ी एक दूसरे को, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, काफी कॉम्प्लीमेंट करती थी। निदा साहब ने एक किताब भी लिखी, मुलाकातें, जिसमें अपने साथ के शायरों के बारे में बेबाकी से लिखा। फिर कई किताबें आईं, लेकिन एक किताब उनकी अहम रही, जिसका नाम था दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर।
1: 8 फरवरी 2016 को निदा फाजली साहब का दिल रुक गया, और रुक गया एक पूरा दौर। 78 साल की उम्र में निदा फाजली साहब का इंतकाल हुआ।
2: इत्तफाक ये रहा कि उनकी लिखी गजलों की आवाज और उनके दोस्त जगजीत सिंह की यौमे पैदाइश पर ही उनका इंतकाल हुआ। यहां भी दोनों ने इस दिन को मशहूर करा, पर उदास भी।
0: 1958 में साहित्य एकेडमी अवार्ड से लेकर 2013 में मिले पद्मश्री तक निदा फाजली के नाम कई अवार्ड्स हैं। पर सबसे बड़ा इनाम तो लिखने वाले को तब मिलता है जब उसकी कलम से निकली स्याही का एक एक लफ्ज जिंदा रहे सालों तक।
1: 2016 में निदा फाजली साहब के इंतकाल के चंद महीनों बाद राज्यसभा में सियासी बहस चल रही थी, और इसी गर्मा गर्मी को ठंडा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने निदा फाजली साहब का लिखा हुआ पढ़ा। वो गजल थी, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो, हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फिजा, तुम अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो।
3: आप सुन रहे हैं महफिले शायरी, महफिले शायरी सिर्फ FM 107 पर, 107 पर।
1: तो लिसनर्स, महफिले शायरी में आज हमने तस्करा किया निदा फाजली का, और क्या ही खूब तस्करा हुआ है। अब बारी है हमारे खुसूसी सेगमेंट बैदबाजी की, जिसकी शुरुआत आज मैं ही करती हूँ।
0: और तो आपका टर्न भी है, आपका टर्न भी है इस बार, क्योंकि पहला मैंने किया, फिर कबीर ने, और अब आप।
1: इसी एपिसोड, और अच्छा ये कानून चाह रहा है, बकायदा हमने रूल्स बनाए हुए हैं महफिल शायरी के, तो आज मेरी बारी है। तो चले आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत शेर से। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। ओए होए,
4: नसीर साहब का चेहरा आ गया जहन में मेरे, पूरी सरफरोश की पिक्चर समझ में आ जाती है। मुझे लगता है कि हर मूवी का, हर फिल्म का एक ऐसा होता है ना कि समराइज्ड वर्जन होता है, किसी गाने में छुपा होता है, कोई गाना पूरी पिक्चर याद दिला देता है। ये बिल्कुल वैसी गजल है जो,
1: हाँ, मेरा और दिल चाह रहा था कि मैं इसको ना लय में पढ़ना शुरू करूं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा।
4: इन चीजों के साथ क्या ना, बैकग्राउंड में
1: खुद ब खुद
4: म्यूजिक बजने लग
1: जाता है। बिल्कुल वैसे ही है।
4: तो आपने ये खत्म किया है, ये बिछा है ना आपने, ठीक है। तो अभी हम जरा आगे बढ़ते हैं, ये से मेरी बारी है, ये बहुत आता है मेरे पास, ठीक है। चलिए, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो।
1: क्या
4: चलो भाई,
5: चांस की बारी है,
1: अब सीन की बारी है,
0: चलो मेरी बारी,
1: चलो। तो चलो यानी वाओ,
0: अच्छा वाओ से कुछ नया आया इस बार, नहीं तो अलिफ और ये में अटक गई थी, एक बार नून जरूर आया।
1: बिल्कुल, अब पहली दफा वाओ से समाप्त करते हैं कि क्या सुनाती है हमें सीन।
0: तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में,
1: हाय हाय हाय,
0: वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता,
1: बस यही एक मसला है।
4: यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि निदा फाजली साहब और जॉन एलिया के बीच के जो थॉट्स है ना, वो आपस में रिश्ते मिले।

0: टायर मतलब वीक हैं तो उनके ही
1: उन्हीं को क्योंकि हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, तो ये एक जरा और मुश्किल
0: टास्क है।
1: चले तो फिर निदा फाजली, अब किसी से भी शिकायत नहीं रही, अब किसी से भी शिकायत नहीं रही, जाने किस किस से गिला था पहले।
0: उफ,
1: ये तो मेरी वाली वाकई कैफियत हो गई है। अब मैंने भी सोच डिसाइड कर दिया यार, अब इतने क्या मतलब दिल पे गम लगाने।
2: धीरे धीरे जो शेर हैं बड़े पर्सनलाइज्ड होते चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है
1: कासी कर रहे
2: हैं। हाँ, जो नहीं कहना चाहते ना वो इन इन आशारों के जरिए कहीं ना कहीं निकल जाएगा।
0: देखिए महफिल शायरी में आई हो, पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करेंगे।
2: तो आपने फिर से मुझे ये दे दिया क्या
1: जी,
2: क्या कर रही हैं आप, मुझे कभी अलिफ और नून तो कुछ तो मिले, हमेशा ये
1: आपके जो है ना चल रहा है भाई।
2: ओके, तो ये से, ये शहर है कि नुमाइश लगी हुई है कोई,
1: वाह,
2: ये शहर है कि नुमाइश लगी हुई है कोई, जो आदमी भी मिला बन के इश्तिहार मिला।
1: क्या बात,
2: दर्द है, दर्द है, दर्द,
1: ये क्या बात है। वैसे मतलब इस वक्त देखो तो सारे शहर ही ऐसे हैं, निदा फाजलीन तो पता नहीं किस शहर के बारे में कहा होगा, और लेकिन यहाँ पे तो यही है का कहा था, लेकिन लग रहा है जैसे आज की बात है।
2: ये तेल के कुएं से गहरा शेर है ये
1: ना। बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये आपके
1: आदमी इश्तिहार कुछ इस तरह का, वाह वाह क्या बात है।
2: अभी अलिफ आ गया है फिर से, पिछली बार भी अलिफ ही मिला था शायद सीम को,
0: वाव मिला,
1: वाव मिला था,
2: वाव मिला,
1: दफा अलिफ आ गया
0: क्योंकि मैं वाव हूं ना, इसलिए मुझे वाव मिला।
1: ओए होए होए,
2: मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने पंचलाइन क्यों नहीं मारी थी देर से, ये
0: की शेड हो जाता ना, फिर मैंने सोचा नहीं मार देती हूँ, फिर मुझे बाद में याद आएगा तो बुरा लगेगा कि मैं वाव की नहीं,
1: बाकी क्यों बैठी रही तू।
0: तो अलिफ से, अब अलिफ तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है क्योंकि अलिफ बहुत बार आ चुका है,
1: वो भी निदा फाजली।
0: तो अलिफ से बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ ध्यान में आया है, शायद आपको पसंद आए, कहिए इरशाद।
1: इरशाद
2: इरशाद इरशाद
1: इरशाद भाई ना आ जाए बाहर से।
2: ओ बाहर इरशाद, अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए
0: जी। अपने लहजे की हिफाजत कीजिए, अपने लहजे की हिफाजत कीजिए, शेर हो जाते हैं ना मालूम भी।
1: ओए होए क्या बात है भाई,
2: ये मतलब आपने तो
1: क्या बात, अपने लहजे की हिफाजत कीजिए,
2: ये बाउंड्री के बाहर ही स्टेडियम के बाहर गया है,
0: ना मालूम,
1: ना मालूम भी, ना मालूम अफराद से डायरेक्ट हम शेर तक आते।
2: वही तो, वही मैं कह रहा हूँ ना, बाउंड्री के बाहर नहीं गया है ये, स्टेडियम के बाहर गया है ये, बाहर जब बॉल जाती है ना किसी गाड़ी पे शीशा तोड़ देती है, बिल्कुल वैसा वाला
0: मुझे छह नहीं मिले आठ मिले
2: शीशा,
1: फिर से ये
0: फिर से ये आ चुका है
1: निदा फाजली, और ये थोड़ा दिमाग पे और जोर देना पड़ेगा मुझे कि ये से अब मैं क्या ढूंढूं।
2: अब मुझे विकेट कीपर की तरह करना पड़ेगा, शाबाश शाबाश आएगा आएगा महवेश।
1: अच्छा अभी खत्म हुआ ये के ऊपर, और शेर भी बड़ा जबरदस्त शेर था
2: इरशाद।
1: तो अब थोड़ी सी हम मतलब यकीन के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं, यकीन से मेरे जहन में एक शेर आ रहा है,
2: ठीक है।
1: यकीन चांद पे सूरज में एतबार भी रख, यकीन चांद पे सूरज में एतबार भी रख, मगर निगाह में थोड़ा सा इंतजार भी रख।
2: यही तो चाहिए,
1: अब आ गया आपके पास है,
0: have some patience,
2: have some patience। अच्छा तो फिर अभी है आया है ना मेरे पास,
0: चलो कुछ नया आया है।
2: तो अगला जो है फिर से बड़ा ही दुनियावी आशार है, ये ऐसा है कि आज तो बड़ा जरूरी है, ऐसे लोग चाहते हैं ना एक दूसरे को देखते हैं, प्रोफाइल भी देखते हैं, बैकग्राउंड भी चेक करते हैं, कुछ ज्यादा ही चेक होता है बैकग्राउंड। तो ये उस वक्त पे लिखा हुआ शेर है जो आज बिल्कुल लागू होता है। तो इरशाद कहिए, इरशाद
1: इरशाद
2: शुरू करते हैं फिर। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना।
1: सही बात है भाई, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो एग्जैक्टली चले, खैर आजकल बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हैं, तो आपकी सही बात है, कई बार देखना चाहिए, एक दफा में कोई समझ में नहीं आता,
2: इसलिए सोशल मीडिया के पोस्ट पे ना जाएं, कई बार देखें,
1: कई बार देखें।
2: हाँ चलिए, क्या आया आपके हिस्से में आज?
0: मेरे हिस्से में फिर से अलिफ आ चुका है, फिर मैं इस अलिफ से बड़ी परेशान हो चुकी हूँ।
1: लेकिन ये है कि अलिफ और ये से शेर हैं भी बहुत,
2: बहुत
1: शुरुआत भी बहुत
2: होती है।
0: तो ये एक शेर है जो कि बहुत इंस्पायरिंग भी है,
1: सही,
0: जैसे कि हम अपने अपने मुल्क से आए हैं कतर,
1: हाँ।
0: और यहाँ पे बस गए हैं आके, कतर ने हमें बहुत कुछ चीजों से नवाजा है,
1: हाँ।
0: ये एक कंट्री हमारा होम बन गया है,
1: हाँ।
0: होम अवे फ्रॉम होम,
1: हाँ।
0: तो एक हॉस्टलर होने के नाते मतलब ये वाला शेर मेरे दिल को छू रहा है, तो मैं वो वाला शेर आपको सुनाना चाहूंगी।
1: बिल्कुल,
0: तो इरशाद फरमाइए।
2: इरशाद इरशाद।

0: अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं।
1: बात तो सही है।
2: क्या बात है।
1: बात तो सही है।
2: क्या बात है।
0: तो जहाँ जहाँ जिंदगी ले जा रही है उधर ही हम चलते जा रहे हैं।
2: बिल्कुल।
0: और ये सही भी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। प्लान
2: गो विद फ्लो।
0: हाँ, प्लानिंग कुछ नहीं होती है।
1: आप कहते ना पानी बन जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं है, बहते जाओ, जो भी रास्ते में जैसा शेप मिले आपको लेके आगे बढ़े। एंड यही आसानी है, मतलब जहाँ आपने ठहर के,
2: जहाँ आप इस फलसफे को समझ लेते ना जिंदगी के, जिंदगी में जहाँ अपनी चलाई वहाँ पे गिरोगे, और जहाँ पे अपने आपको छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं तो चल ही पड़ा।
1: और जहाँ ज्यादा अकलमंदी भी दिखाई ना वहाँ भी दिक्कत है। कुछ चीजें ना समझ में है, बेहतर है कहते रहो।
2: तो क्या ये नूम गुन्ना तो नहीं आ गया कहीं?
0: नहीं, अब ये मुकम्मल हो गया है, हमारे लिए राउंड्स मुकम्मल हो गए हैं।
2: क्या बात,
3: जबरदस्त।
2: तो हमने जो है ये मुकाबला, जो सख्त मुकाबला था, हमने कर डाला।
0: बात मैं कहना चाहूंगी, ये नज्म है जो मुझे बहुत पसंद है।
2: अच्छा, निदा माकरी की
0: जी, तो वो क्या मैं पढ़ लूं? इजाजत है?
2: बिल्कुल इजाजत है, आपको इजाजत है।
0: अच्छा ठीक है। तो नज्म कुछ यूं है। यूं तो हर रिश्ते का अंजाम यही होता है, फूल खिलता है, महकता है, बिखर जाता है। तुमसे वैसे तो नहीं कोई शिकायत, लेकिन शाख व सब्ज तो हसास फजा होती है, हर कली जख्म की सूरत ही जुदा होती है। तुमने बेकार ही मौसम को सताया, वरना तुमने बेकार ही मौसम को सताया, वरना फूल जब खिल के महक जाता है, खुद ब खुद शाख से गिर जाता है।
1: आए। क्या बात है,
2: क्या बात,
1: ओहो, क्लाइमैक्स।
2: हाँ,
1: देखिए
2: बखुद।
1: इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको भी कोई पसंदीदा अशआर होगा, कोई शेर होगा, कोई गजल होगी, नज्म होगी, तो आप हमसे जरूर जरूर शेयर करें। देखिए, आप इसका हिस्सा बनेंगे तभी ये शो और भी आगे जाएगा, और इंशाल्लाह फिर हमें भी समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं, किस तरफ जाना है, ये राहें आप ही हमें समझाएंगे। तो सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे बड़े जरूरी हैं। इनफैक्ट अगर आप ये सुने और आपको कुछ सुनाना है तो खुद को भी रिकॉर्ड करके हमें जरूर टैग कीजिएगा, FM107 कतर, इस नाम से हमें
2: शो का नाम लिखना ना भूलिएगा, हमें पता चल जाए क्या पढ़ेंगे हमारे लिए।
0: आरजे कबीर, आरजे महविश और आरजे सीम के साथ।
1: बिल्कुल। तो आप जो है हमें टैग करेंगे, स्टोरीज बनाएंगे अपनी, और आपके पास हो सकता है कि हमारी स्टोरी पे जब हम उसको शेयर करें तो पूरी दुनिया सुने कि आपको क्या पसंद आ रहा है और आपकी आवाज शायरी पढ़ते हुए कैसी है। तो ये किस्म का,
2: हाँ बिल्कुल। और ये भी कि आप हम लोगों को, हमारे जो पर्सनल है, आप उस पर भी हमें टैग कर सकते हैं, हम उसको जरूर रीशेयर करेंगे।
1: बिल्कुल। तो आज का एंटी क्लाइमेटिक सीम कौन देने वाला है? क्या आपने तो पिछले मरतबा बाय बाय खुदा हाफिज वगैरह कह दिया था,
0: इस बार मुझे लगता है महविश दे देंगी।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है। वैसे तो खैर काफी हद तक हो ही चुका है, मतलब हमने जो कुछ बताना था आप लोगों को हम बता ही चुके हैं।
0: कायदे कानून वाले लोग हैं, exactly. तो सबको
2: तो सबको बराबर की बारी मिलेगी। तो आज मेरी बारी है ये शमा बुझाने की, इस महफिल की। तो वो शमा मैं बुझा देती हूँ, फूक मार के नहीं, बल्कि आपको अल्लाह हाफिज कह के। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलते हैं एक बहुत ही जबरदस्त शायर के साथ। और आप जैसे कबीर ने भी कहा है कि आप हमें फीडबैक भी जरूर दीजिए, हमें अपने पसंदीदा शेर भी जरूर बताइए, और अगले जुमे को हमें सुनना ना भूलिएगा, इसी वक्त इसी चैनल पे, यही हम तीनों यानी कबीर, सीम और मैं महविश आप लोगों के साथ होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
0: अल्लाह हाफिज।
4: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: गानों के पीछे की कहानी लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप

0: 10 विद ए फॉर अमिता सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? हाँ, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता एंड इस हफ्ते के टॉप 10 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो कैसा गुजरा आपका ये हफ्ता या कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? सारी अपडेट्स मुझे चाहिए, लेकिन वो भी बिल्कुल म्यूजिकल अंदाज में, क्योंकि हमारा शो काफी म्यूजिकल है, जहां पर ग्लोबल चार्ट्स के सारे हिट हिट गानों को हम कंसिडर करते हैं, उन्हें देखते हैं, समझते हैं कि कौन से गाने आजकल हमारे दुनिया भर में लोगों के दिलों को जीत रहे हैं। इनफैक्ट हमारे कतर में कौन से वो गाने हैं जो हमारे लिसनर्स के दिलों पर राज करते हैं एंड वो ट्रेंडिंग गाने वो चाहते हैं कि FM 107 टॉप 10 की प्लेलिस्ट हिस्सा बने। सो डेफिनेटली उन सारे गानों को सुनकर, समझकर, देखकर आज के एपिसोड को हमने तैयार किया है। तो जानेंगे एक एक करके कि कौन कौन से गाने हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में धूम मचाने वाले हैं और कौन सी न्यू एंट्रीज हैं जो अब कुछ गानों को रिप्लेस करेंगी। तो चलिए सुनते हैं इस हफ्ते की न्यू एंट्रीज।

0: वाओ क्या बात है, मतलब इस बार की न्यू एंट्रीज तो ऐसा लग रहा है कि हाय बड़ी सॉफ्ट सी है, दिल को छूने वाली है, काफी रोमांटिक है. आई सो लव्ड इट. तो चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, इन गानों को हम पूरा पूरा सुनेंगे. लेकिन अभी गाना नंबर 10 पर कौन सा गाना आ गया है? दैट इज दर्शन रावल. ओ हो हो, नाल नाल वे. तो दर्शन रावल ने और सुवर्णा तिवारी ने साथ में इस गाने को गाया है, कंपोज किया है द वन ओनली दर्शन रावल, और लिखा है यंग वीर ने. मेरे ख्याल से यंग वीर का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है दर्शन रावल के साथ, क्योंकि अधिकतर गाने वही लिखते हैं उनके. सो डेफिनेटली इस गाने को हम सुनने वाले हैं, एंड व्हेन यू लिसन टू दिस फ्रेश सॉन्ग तो ऐसा लगेगा कि दर्शन रावल की एक न्यू एंट्री हो रही है, ठीक है, जहां पर एक्सप्लोर किया जा रहा है स्टोरीज ऑफ लव, डिवोशन एंड मैजिकल मोमेंट्स को. और इस गाने के जो लिरिक्स है ना, वो टोटली सेंटर करते हैं कंपेनियनशिप, लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स, एंड उस साथ में रहना चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए. सो यस, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, नाल नाल वे, आपको जरूर पसंद आएगा. इस गाना नंबर 10 आपकी राहों में आ रहा है. सो बी प्रिपेयर्ड एंड एंजॉय. स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10, नंबर 10.

वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी फरमीता. एंड टॉप 10 पर ये पहला गाना यानी कि गाना नंबर 10 हमने एंजॉय किया और अब हम आगे बढ़ते हैं गाना नंबर 9 एंड 8 की तरफ जो कि इस हफ्ते की ब्रांड न्यू एंट्रीज है. एंड आई शुड टेल यू मतलब एक जगह दर्द है तो दूसरे जगह मोहब्बत है और दोनों ही जगह पर एक अलग ही एहसास है. यस सो गाना नंबर 9 इज फहीम अब्दुल्ला का बेकदरा. यस इसे गाया है फहीम अब्दुल्ला, शानिया कश्यप ने कंपोज किया है, हैदर दार ने, नजीउल्ला ने और म्यूजिक को अरेंज किया है, प्रोग्राम किया है, प्रोड्यूस किया है हैदर दार ने और लिखा है नजीउल्ला ने. सो ये एंटायर टीम ने मिलकर एक बेहतरीन से गाने को प्रोड्यूस किया एंड द सॉन्ग इज बेकदरा.

0: जब ये गाना आप सुनो, इसका वीडियो भी अगर आप देखो, तो एक एक फील आता है कि वो दर्द महसूस कर रहा है वो शख्स जिसका प्यार उसके साथ नहीं है. यस, एंड रियली वो एक अंदर से दुआ निकल रही है कि काश फिर से रीयूनियन हो सके. इनफैक्ट ये गाना फोकस करता है उस दिल के ऊपर जो मोहब्बत में सब कुछ लुटा देता है और उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं. क्या बात है. बेकदरा इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक जो आपको जरूर अच्छा लगेगा एज गाना नंबर 9 आपकी राहों में आएगा. और उसके बाद गाना नंबर 8 पर अगेन इट्स अ न्यू एंट्री फ्रॉम द मूवी पहला प्यार दूसरी बार, एंड द सॉन्ग इज पुराने दिन, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, कंपोज किया है रोचक कोहली ने और कुमार ने लिखा है. और वो कहते हैं ना कि एक लंबे अरसे के बाद जब तीनों का कॉम्बिनेशन आया, प्लस लव रंजन की ये फिल्म है, इस गाने को फील किया जा रहा है कि जैसे वो स्कूल कॉलेज के दिन जब निकल जाते हैं, वो उस वक्त की मोहब्बतें होती हैं, उस वक्त के फीलिंग्स होते हैं, और जब आप बड़े होके वापस से मिलते हैं तो कैसा लगता है, आप उन बातों को सोच के हंसते हैं और आपके बॉन्ड्स और गहरे और खूबसूरत होते हैं. सो डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक. इसके लिरिक्स भी बड़े कमाल के हैं कि जब आप सुनते हैं तो आप बिल्कुल आप उसी दुनिया में खो जाते हैं. सो गाना नंबर 9 and 8 आपकी राहों में आने वाला है, इसे इंजॉय कीजिए. एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि कोई ट्रेंडिंग गाना जो आपको बहुत पसंद है, यू वॉन्ट कि अमिता ये गाना आपके FM 107 की top 10 की लिस्ट में होना चाहिए, तो ज़रूर हमसे शेयर करें 666-22107 पर, 666-22107 पर. और अभी बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी.
1: FM 107 Top 10 Number 9.

हाँ जी जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 टॉप 10 पर. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमृता, और क्या कहना, एक से बढ़कर एक न्यू एंट्रीज को भी हमने एंजॉय किया. एंड आई कैन सी योर मैसेजेस कि आपने कितने दिल से नए नए गानों के, ट्रेंडिंग गानों के बारे में हमें लिखा है कि प्लीज अमृता इसे भी जरूर कंसिडर करना. सो यस, हमारी टीम इस पर काम करना शुरू कर चुकी है. लेकिन अभी गाना नंबर 7 और 8 की तरफ बढ़ेंगे. देखो, गाना नंबर 7 पर वो गाना है जो पिछले हफ्ते न्यू एंट्री की तरह एंटर हुआ, एंड गाना नंबर 8 पर रहा, लेकिन अभी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया है. और इसमें खूबसूरत सी आवाज है गुरु रंधावा की, बोल है गिल मचराय के, रोनी अजनाली की, और गुरु रंधावा की वो हुक लाइन जिसकी इंस्पिरेशन है फारूक यार की पोएट्री. यस, इस गाने को कंपोज किया है रोनी अजनाली ने, गिल मचराय एंड लवीश.

और ये गाना ये बताता है कि जब मोहब्बत हो तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि फिजिकल साइट या वो दो आंखों से मोहब्बत का इजहार करना इट्स नॉट जस्ट इनफ. मोहब्बत एक लाइफ लॉन्ग चीज है जिसके हर उतार चढ़ाव को आपको फेस करना होता है अगर आप इंसान की इनर ब्यूटी के बारे में जानना चाहते हैं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक विद वेरी सिंपल मीनिंग. टू आईज बाय गुरु रंधावा एज गाना नंबर 7 आपकी राहों में आएगा. एंड देन कम्स गाना नंबर 6. उफ, व्हाट अ सॉन्ग.

रंगी जो कि पिछले हफ्ते हमारे चार्ट्स में एंटर हुआ इस गाना नंबर 7 और इस हफ्ते एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुका है. सो हसन रहीम की आवाज है, इसको लिखा है हसन रहीम ने और म्यूजिक कंपोज किया है उमेर ने. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक जहां पर इंसान की उम्मीदें जो कि रंगी होती है उसके जज्बात को इसके वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कैप्चर किया गया है. लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आखिर में पता चलता है कि जिंदगी जितनी रंगीन दिखती है कभी कभी वहाँ रंगों की कमी हो जाती है एंड लास्ट में एक स्वीट सा ब्यूटीफुल सा हार्ट ब्रेक होता है.

0: की राहों में आने वाला है. इंजॉय कीजिए फुल वॉल्यूम पे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि आगे के हमारे टॉप 10 के नंबर्स में कौन कौन से गाने रूल कर रहे हैं. तो आप कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 7.

Yes, जनाब, मेरे ख्याल से अभी आपकी ड्राइव और भी ज्यादा शानदार हो चुकी होगी, बिकॉज ये हिटेड गाने आपके रास्ते को और हसीन जो बना रहे हैं, आपके सफर को और खूबसूरत बना रहे हैं. बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफ एम 107 पर. मैं हूँ आपके फरमीता और आप सुन रहे हैं इस हफ्ते का टॉप 10, जहाँ पर हिटेड गाने म्यूजिकल चार्ट्स पर धूम मचा रहे हैं. और अब हम आगे बढ़ेंगे गाना नंबर 5 और 4 की तरफ. सो गाना नंबर 5 पर वो गाना है जिसने पिछले हफ्ते से अपनी जगह को बिल्कुल नहीं छोड़ा, एंड सेम गोज विद गाना नंबर 4 ऑल्सो. सो गाना नंबर 5 इज ठुमक ठुमक फ्रॉम द मूवी.

कासा ने, कंपोज किया है तनिष्क बागची ने, बोल है शब्बीर अहमद एंड तनिष्क बागची के, और इस गाने को पूरा कोरियोग्राफ किया है बॉस्को मार्टिस ने। मतलब जब मैं देखती हूँ ना इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया को साथ में परफॉर्म करते हुए, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे गुड्डा गुड़िया नहीं है, बिल्कुल वैसे

इस मिनट पे पैदा हुआ था। हाँ जी, इस गाने को गाया है अफ्यूजिक जोहा वसीम ने, इस गाने को प्रोड्यूस किया है अली सुमरो ने, कंपोज किया है अफ्यूजिक एंड अली रजा ने, अरेंज किया है अली सुमरो ने, और क्या कहूँ, क्या कमाल का गाना है दिल। उफ, इस गाने को सुनकर सच में दिल धड़कने लगता है। एंड कहते हैं ना कि जब क्रिएटिविटी बनने वाली होती है तो ये नहीं कहते कि कितना वक्त लगेगा, ये कहते हैं कि ये कैसे बनी और कितने वक्त में बनी। एग्जैक्टली कभी कभी एक क्रिएटिव लिरिक्स को लिखने में आपको एक दिन लग सकता है, दो दिन लग सकते हैं, और कभी कभी सिर्फ 10-15 या 20 मिनट, जैसे कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग। दिल आपके दिल को धड़काएगा, बीट्स इसकी कमाल की है, जो कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं सो यू रियली रियली लव इट। सो गाना नंबर 5 और 4 दोनों ही आ रहे हैं आपको ग्रूव कराने के लिए, सो बी प्रिपेयर्ड। कहीं ना जाए, इंजॉय करें, बने रहे FM 107 Top 10 पर। मैं हूँ आपकी A for Amita, स्टे ट्यून्ड FM

वेलकम वंस अगेन एफएम 107 टॉप 10 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी फॉर अमिता. और क्या कहना, ये हिटेड गाने वाकई में दिल को छूते जा रहे हैं. और अभी आगे गाना नंबर 3 और 2 की बारी. एंड आई जस्ट टेल यू कि गाना नंबर 3 और 2 दोनों ही बेहद बेहद रोमांटिक सॉन्ग्स हैं और दोनों अपने जज्बातों को बहुत खूबसूरती के साथ बयां कर रहे हैं. तो सबसे पहले गाना नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज समझो ना फ्रॉम द मूवी द विवान, जो कि पिछले हफ्ते भी नंबर 3 की कुर्सी पर बैठा हुआ था और निकला नहीं, यानी कि छोड़ी नहीं इन्होंने कुर्सी. और इस हफ्ते भी सेम जगह पर इसने जगह बना के रखी है. इसे जुबिन नौटियाल, स्वर्णा तिवारी ने गाया है, कंपोज किया है, प्रोड्यूस किया है तनिष्क बागची ने, लिखा है मनोज मुंतशिर ने. और ये गाना जैसे ही रिलीज हुआ सारे म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स पर, तो फैंस जो थे तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा के, उन्होंने पहली चीज तो इस लीड पैर को साथ में देखा. एंड एट द सेम टाइम जुबिन की आवाज इस गाने को और भी खूबसूरत बना रही थी. एंड आई शुड टेल यू कि इन दोनों की जोड़ी की वजह से ये गाना और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ और ट्रेंड पर चला गया. सो यस, समझो ना इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक जिसमें छोटे छोटे लव मोमेंट्स हैं और उन लव मोमेंट्स को इतनी खूबसूरती के साथ बयां किया गया है, विच आपको सुनने में और इसका वीडियो देखने में समझ में आएगा. तो यह समझो ना आपकी राहों में आएगा इस गाना नंबर 3. उसके बाद आएगा गाना नंबर 2, जो कि पिछले हफ्ते न्यू एंट्री था और इस हफ्ते नंबर 9 की पोजीशन से हटकर सीधा नंबर 2 पर आया है.

म्यूजिक और लिरिक्स क्या कहना, हिमेश रेशमिया के और उनकी आवाज भी असीस कौर के साथ क्या बात है। मतलब आई शुड टेल यू कि एक तरफ था आशिक बनाया आपने और दूसरी तरफ अफसाना बनाया आपने। मतलब इस 3 मिनट के गाने में इमरान हाशमी जो कि जेनेलिया के साथ हैं एंड ही इज परस्यूइंग, उनको कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि यू नो कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक और इतने खूबसूरत सिंपल लिरिक्स है ना कि आपकी जुबा पर चढ़ जाते हैं। एंड इसका जब आप वीडियो देखो तो इमरान हाशमी फुल मोहब्बत में दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम वो जेनेलिया को हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ देख कर ना बड़ा अच्छा लगता है। एंड वो कहते हैं ना ओजी डुओ, यानी कि ओरिजिनल डुओ की एंट्री हुई है भाई, हिमेश रेशमिया एंड इमरान हाशमी आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड देन ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर साहब आदित्य दत्त की बात करें तो उन्होंने भी इस पर्टिकुलर गाने के म्यूजिक में काम करने में 8 से 9 महीने लगा दिए, जहाँ पर खूब सारे जैमिंग सेशंस हुए और काफ़ी खूबसूरती के साथ लिरिक्स को लिखा गया, फिर लिरिक्स को कैंसिल किया गया एंड दिस इज हाउ ये ब्यूटीफुल गाना सामने निकल कर आया। सो गन मास्टर G9 मूवी का ये गाना बहुत ही कमाल का है। एंड आई शुड टेल यू कि हिमेश और इमरान जब साथ आते हैं तो वो कहते हैं ना कि नज़र ना लगे, दिल से ये दुआ निकलती है, और जब ये साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए लकी होते हैं कि वो पर्टिकुलर सॉन्ग हिट होता ही है। एंड जस्ट सी कि ये गाना पिछले हफ्ते हमारे टॉप 10 के चार्ट्स पर नंबर 9 पर एंटर हुआ था और आज सीधा नंबर 2 पर आ गया है। सो यस, इस गाने को इंजॉय करेंगे आप, मतलब गाना नंबर 3 एंड 2 इंजॉय कीजिए और उसके बाद एनी गेसेस कि इस हफ्ते का गाना नंबर 1 कौन सा हो सकता है, सोचिए और शेयर कीजिए मुझसे 666-222-107 पर। तब तक के लिए हम इंजॉय करते हैं गाना नंबर 3 एंड 2, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है।
2: अल्लाहु अकबर।

0: वक्त FM 107 पर पैगाम।
1: परेशानी में मजाक और खुशी में ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। इंसान को अल्लाह ताला से मुआफी और सेहत का सवाल करते रहना चाहिए, क्योंकि ईमान की नेमत के बाद तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा तंदुरुस्त, खुशखुरम और सलामत रखे।
0: पैगाम ऑन FM 107
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

पर पहुंच गए. और अब वो कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है कि जब दिलों की धड़कनें बढ़ती हैं, सारे म्यूजिक लवर्स ये सोच रहे होते हैं कि वो कौन सा गाना है जो ग्लोबल चार्ट्स पर धूम मचा रहा है. क्या ये वाला है, क्या वो वाला है, या ये जो हम हमेशा सुनना पसंद करते हैं, आखिर वो गाना कौन सा है. तो हमें कुछ मैसेजेस आए हैं जहां पर कुछ लोगों ने लिखा है अमिताभ माशुका इज द सॉन्ग. वैसे आई शुड टेल यू कि माशुका इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक. मतलब अगर मैं चाहूं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में नंबर वन पे हमेशा रहे. बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. अभी हमें दूसरे गानों को मौका देना पड़ेगा. कुछ ने लिखा है तो फिर आओ, और कुछ ने लिखा है ये आवारापन डेफिनेटली. सो इस हफ्ते का गाना नंबर वन कौन सा हो सकता है, आइए सुनते हैं. सो यस, आवारापन टू.

0: बाबू का ये गाना, ये आवारापन जो कि कई हफ्तों से नंबर वन की पोजीशन पर रुका हुआ है. डेफिनेटली इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, कंपोज किया है माल मलिक ने, लिखा है रश्मि विराग ने, और मतलब बड़ा ही खूबसूरत गाना. अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया के कॉम्बिनेशन को, और यहाँ पर इमरान हाशमी एंड अरिजीत के कॉम्बिनेशन को भी जब सुनते हैं ना, तो लगता है कि हाई मेड फॉर ईच अदर कॉम्बिनेशन है. एंड ये आवारापन, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, दिल को छू ही जाता है. थोड़ा आराम आराम से ये गाना प्ले होता है, लेकिन दिल की धड़कनों को एकदम बढ़ा जाता है. क्यों, सही कह रही हूँ ना? चले तो गाना नंबर वन ये आवारापन हम इंजॉय करने वाले हैं टॉप 10 चार्ट्स पर. और इसी के साथ मैं कहूंगी अब आप मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त है मेरे जाने का. अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस. तब तक क्या करना है, आप FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं, मैसेज वगैरह कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर नोट कीजिए 666-22107, 666-22107. इस पर भी अपने दिल की बात अपने नाम के साथ आप हम तक पहुंचा सकते हैं. और अभी के लिए इंजॉय कीजिए गाना नंबर वन बिल्कुल आराम आराम से, और दिल की गहराइयों में जाकर. वो कहते हैं ना, उस खूबसूरत शख्स को जो कि आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, उसके बारे में सोचिए, ठीक है? और आप और मैं मिलेंगे अब अगले हफ्ते. तो मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय. और जाने से पहले कह के जाऊंगी, हाँ, हम है राहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 1.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: न्यूज एट 7 PM विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोहा कतर में शाम के 7 बजे हैं। समाअत कीजिए फरकान शाहिद से ताज़ा तरीन खबरें। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिम अलहरमैन शरीफैन के नाम रियाज के शाह खालिद बिन अल-अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाने वाले 2 हमलों में 3 सऊदी शहरियों की शहादत पर ताज़ियती पैगाम इरसाल किया है। कतर और भारत की वजारत खारजा के दरमियान सियासी मुशावरत का 6ठा दौर आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। कतर की जानिब से फराहम करदा 13 लाख लीटर ईंधन की इमदाद गजा पहुँच गई है। और यमन में कानूनी हुकूमत की हिमायत करने वाले इत्तेहाद ने इलाकाई सलामती को ख़तरे में डालने के लिए हौसी गिरोह के ज़ेर इस्तेमाल 3 रॉकेट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तबाह करने का ऐलान किया है। ये थी अब तक के अहम खबरों की सुर्खियां। आम समाज के लिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
2: FM 107.
0: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
4: दोहा वाले कबीर के साथ।
5: दोहा

0: अभी चाहिए रहती है, वो प्रॉब्लम उनकी है।
1: नहीं भाई, आप उबर एक्स में आप बुक करें तो आपको कंफर्ट वाली फीलिंग कैसा है? माशाल्लाह मेरी गाड़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लोग खुद ताजुब करते कि भाई आपकी गाड़ी को कंफर्ट क्यों नहीं दिया।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, गाड़ी जबरदस्त है, सामने फ्रंट सीट भी अच्छी है, बैक सीट भी अच्छी है, अच्छी स्पेस है।
0: ये कुछ लोगों ना जरूरत से ज्यादा चाहिए होता है, जब वो बुक रहे जरूरत से ज्यादा चाहिए होता है, उन्हें लगता है सब ले लूं मैं आज इस गाड़ी के अंदर, सब चाहिए मुझे।
1: हाँ खरीद लो ना वही घर
0: पे। अरे पंच लाइन भाई बहुत बढ़िया भाई, ये मेरे दिल की आवाज आपने निकाली है, वेरी गुड। और एक ये रहता है ना कि कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए। मैं उस दिन ऐसी एक पोस्ट पे देख रहा था, उसमें था कि एक कैब के अंदर कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए, उसमें था कि टिश्यू पेपर होना चाहिए और परफ्यूम होना चाहिए, फलाना ढिमकाना। क्या आप क्या क्या मानते हैं, आपके पर्सनल क्या रहता है, गाड़ी में क्या रखना पसंद करते हैं?
1: मैं तो टिश्यू रखता हूँ। अब कुछ लोग सिगरेट पीने के लिए फोर्स करते हैं, मैं मना कर देता हूँ कोई हो, क्योंकि दूसरा जो कस्टमर आएगा उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज का मैं ध्यान रखता हूँ। और मैं समझता हूँ भाई उबर का जो मसला है, मेरे साथ नहीं, जितने भी हमारे उबर भाई जो ड्राइवर गाड़ी चलाते वो लोग के साथ भी यह मसला होता होगा, क्या बोलते, हर चीज हमको ही फॉलो करना है, कस्टमर के ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। भाई ड्राइवर से अच्छी बात करें, तुम देने का 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, ज्यादा से ज्यादा 25,000, 30,000, और क्या।
0: सही बात है।
1: अभी उसको जितना तुम अपना डेस्टिनेशन जितने का होगा या 10-15-20 मिनट का जितना भी होगा, तो क्या वो आपका गुलाम है?
0: नहीं, करेक्ट,
1: ये कस्टमर को भी सोचना चाहिए ना भाई।
0: करेक्ट भाई, मैं आपके साथ हूं इस चीज में, करेक्ट, आई टोटली अंडरस्टैंड।
1: ये चीज मेरे को बहुत अच्छी नहीं दिखती, बहुत भी बहुत खराब दिखती। लास्ट टाइम एक बंदा मॉल में खड़ा था, कहां पर मालूम है, मिशेला के लोलू के पास। अच्छा, सही है, माशाल्लाह ब्लैक बंदा था, सॉलिड बॉडी, लोग की बॉडी कैसी रहती, सॉलिड बॉडी है, हाथ में कैरी बैग है, शॉपर से उसके पास। अब बोल रहा आके गाड़ी में रख, हाथ में है उसके, बॉडी बिल्डर है वही, आके हाथ में, एक हाथ में सिपर है, एक हाथ में वो शॉपर है उसका, आके गाड़ी में रख। मैं बोला, मैं इशारे से बता उसको, मैं बोला नहीं आता तेरे को आना है, तो कैंसिल कर, खलास।
0: आनी सही है, सही है, ये एटीट्यूड नहीं है तो एकदम सही बात है, एक अग्री करता हूँ।
1: क्या है कि हम क्या गुलाम है? नहीं,
0: लोग पता ये भूल जाते हैं कि कुछ हिसाब किताब दुनिया में भी होने
2: जी, बिल्कुल।
0: बाद के तो बाद में है, कुछ हिसाब किताब यहाँ पर भी देखे जाने, ऐसा नहीं है, तो ये चीजें लोग भूल जाते हैं, और अक्सर मैंने आयरनी होते हुए देखी है। ये सारी जो बातें हैं जरा अभी होल्ड करके रखिएगा, बिकॉज़ वी नीड टू टेक अ ब्रेक।
3: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
4: दोहा वाले कबीर के साथ।
0: एक हंसी मजाक की बात, उस दिन हम शो पे कर रहे थे कबीर भाई, वो बात ये थी कि कुछ गाड़ियों में ना बहुत अतरंगी रंग नजर आते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पूरी एक अंदर से लाल गाड़ी है, ऐसा लगता है कि मैं झूमर उमर बस कमी है, वरना पूरा होटल है भाई गाड़ी के अंदर। तो इनको आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं इन भाइयों को बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ ज्यादा हो जाता है गाड़ी के अंदर।
2: हमारे क्या बोलते हैं, हैदराबादी लैंग्वेज में क्या रे, गाड़ी में शादी खाना बना लिया।
0: हाँ वो वैसा ही है, वो शादी खाना ही है वो।
2: आप मेरी गाड़ी देखेंगे, मैं कुछ भी नहीं लगा, एटलीस्ट यानी इवन डैशबोर्ड पे जो आता ना, जो कवर लगाते हैं लोग धूप से, नहीं कुछ नहीं, सादी जैसी की वैसी। हाँ स्टिकर्स लगाया था परसों, वो फास्ट में गया था, कैंसिल कर दिया था, तो वो निकालना पड़ा, बाहर स्टिकर्स लगाया था, एक तस्वीर है रियर मिरर में लगाया, एक तस्वीर है और सामने शीशे पे माशाल्लाह लिखा हुआ है, हालात साफ सुथरी, नीटनेस, यानी सिंपल गाड़ी। वो 6 रबर लगा के लोगों का दिल खट्टा हो जाता भाई, वो देखे तो
0: भाई। मैं तो ऐसी गाड़ी में बैठा था, वो पूरी ब्राइट येलो और उसकी सीट एकदम स्लिपरी, मतलब अगर एक ब्रेक लगा तो आप आगे शीशा तोड़
2: आगे चिकनी एकदम
0: चिकनी से मैं उसको पूरा, मैंने कहा भाई बहुत शानदार गाड़ी, तुम्हारी खुशबू भी बड़ी कमाल की आ रही है, पर ये क्यों किया तुमने? एक झालर और पंखे की कमी थी, वरना वो पूरी मुकम्मल गाड़ी जो थी वो एक्चुअली में तैयार थी।
2: पंखे भी लगा रहे गर्मी की वजह से, डैशबोर्ड के ऊपर 2 पंखे लगा ले रहे, क्योंकि अब एसी की हवा भी थोड़ा।

0: वो तो यार देखो
1: फायदा होता है सर जी,
0: वो तो आई अंडरस्टैंड यार, बनता है वो तो अपने सर्वर भाई भी लगाते हैं विच इज ओके, पर बाकी ये पीली लाल ये नहीं समझ में आता बस, बाकी सब
1: लाल लाल पूरे सीट का ना लाल रेड एंड ब्लैक क्या बोलू मेरे भाई बोलो ना दिल खट्टा हो जाता देख के।
0: हाँ वो तो है, वो तो है, वो पता है वो आदत क्या है ना इंडिया में जब हम ऑटो बुक करते हैं तो उसके अंदर वो डिक्चिक डिक्चिक डिक्चिक में से वो अच्छा लगता है, वो यहाँ नहीं जमता था,
1: यहाँ नहीं जमता सही है सही।
0: अच्छा तो कबीर भाई बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ को बदलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप करना चाहते नहीं करते हैं, पर आप में मैंने हमेशा देखा है कि खुश रहते हो यार, ये बड़ी अच्छी बात है, I've seen you happy all the time, और ये बड़ी अच्छी आदत है
1: मेरा भाई,
0: ये एटीट्यूड मेरा भाई, ये जरा कैसे लाए हो अपनी जिंदगी में, क्योंकि लोग अक्सर मैं बताऊँ फोन पे रोते रहते हैं, उनको बोलता रोया मत करो यार सब बढ़िया चल रहा है, क्या कहूँगा उनसे यार?
1: बोली तो एक बार
0: बोल रहे
1: मेरे काम के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है, मेरी भी लाइफ में ये 2-3 साल में प्रॉब्लम्स आए बहुत सारे, सही है ये गाड़ी गाड़ी का फाइनेंस लेके गाड़ी कभी खराब हो जाती है पैसा नहीं रहता, इनसे कर्जा कर लिया उनसे कर्जा कर लिया, लेकिन मेरे जो दोस्त मेरे को जो खरीबी जो मेरे साथ बैठने उठने वाले जो जानते मेरा भाई एक चचेरा हुआ रहता उन्हें जो जानते उठते ना वो लोग आप जो बात बोले ना ये बात मेरे को ऑलमोस्ट लोग बोलते भाई तुम इतनी टेंशन में भी हंसते हंसते बोलते रहते भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो जो मसले में डाला वही निकालने वाला है, आपका हमारा कुछ भी अख्तियार नहीं है, और मेरे भाइयों को भी बोलूंगा टेंशन लेने का ही नहीं बिल्कुल भी, हाँ प्रॉब्लम आते हैं फेस करो लड़ने की हिम्मत रखो बस, अल्लाह ताला जो है सब आसान जैसा प्रॉब्लम आई वैसा निकल भी जाती है इंशाल्लाह।
0: बेशक मेरे भाई ये पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए मेरे भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी चॉइस से यहाँ पर आए हैं तो फिर आपको खुश रहना चाहिए, एंड ऑफ द डे खुद के लिए आदमी इतना तो कर ही सकता है सबसे
1: जी, जी, बिल्कुल।
0: अच्छा तो आप जरा उस तरफ बढ़ते हैं, इस बारे में हम दोनों गॉसिप भी कर रहे थे कल को, और वो है सोशल मीडिया की दुनिया भाई, यहाँ पे कॉन्टेंट थोड़ा ये है कि हर कोई बेचने निकला है, कोई सामान बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, भाई क्या किया जाए यार, क्या कंटेंट आपको चाहिए बनना चाहिए जो नहीं बन रहा, मेरे भाई दिल में क्या आता है कि कैसा कंटेंट देखना है?
1: नहीं एक तो होता भैया देखो अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स बोल लेते अपने आप को हर जगह जाके बोलते इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा ये चीज मेरे को नहीं बर्दाश्त होती बॉस, इससे बेटर आपको इससे कम प्राइस में पूरे कतर में नहीं मिलेगा, अरे भाई ऑलरेडी कतर है माशाल्लाह बहुत अच्छा है छोटा सा हर किसी को पता है, हाँ वो चीज अच्छी होती कोई किसी चीज किसी को नहीं मालूम है, वो आप बता रहे हैं उससे लोगों को फायदा हो रहा तो वो चीज आपकी जो मेहनत है वो कामयाब हो गई सही है। एक मैं ये नहीं बोल रहा मैच बेस्ट हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है मेरे, पर सम रिसेंटली मैं मेरी गाड़ी जो चाइनीज गाड़ी है ना मेरी, तो चाइनीज गाड़ियों के रास्ते में कितने मेरे ड्राइवर्स भाई पूछे भाई ऐसा प्रॉब्लम आ रही है ऐसा गर्म ओवरहीट हो जा रही गाड़ी, तो मैं गैरेज में गया मेरे को फायदा हुआ वीडियो बनाया डाला मैं व्यूज आए नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई लोगों को इससे फायदा हो।
0: हाँ नहीं भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताऊँ क्या क्या दिक्कत क्या, एक तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कंटेंट में बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि आपको कंटेंट जाएगा आगे और मुझे पूरा यकीन है इस बात पे, बस पता है एक दिन एक टाइम डिसाइड कर लो करो, और भाई अपनी जरा आईडी बता दो लोगों को कि कहाँ पे तुमसे मुलाकात करनी है, कौन सी जगह पे आना है, कौन से सोशल मीडिया पे आना है, ये बता दो साथ।
1: मेरे से अगर कांटेक्ट करना है फॉलो करना है गरीब को तो मेरा नाम है कबीर शाह KABERSHAH99 मेरा टिकटॉक का अकाउंट है उस पर आप लोग फॉलो कर सकते और मेरे वीडियोस देख सकते, मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ स्टोरीज बनाता हूँ यानी लिपसिंग करता हूँ सब, कबीर भाई के रैप पे भी मैं लिपसिंग कर रहा था वीडियो बना के डाला।
0: भाई ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे चक्कर में ना तुमने डबल ई आर लगा रखा है, मैं KABIR लगाता हूँ, तुम्हारे चक्कर में मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है
1: थोड़ा तो अलग रहना ना मेरे
0: नहीं बढ़िया भाई एकदम बढ़िया, मैं तो सोचता हूँ कि कोलैबोरेशन करना चाहिए भाई आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, बिकॉज़ यू टोटली डिजर्व इट मेरा भाई।
1: बनाया हूँ मैं मेरे बहुत दोस्त है बहुत सारे लोग जुड़े भी थे बहुत सारे लोग टूट भी गए इसमें से क्योंकि वो 2-4 वीडियोस वायरल थोड़ा बहुत जाते कि अपने आप को हीरो समझने लगे तो मैं थोड़ा किनारा कर लिया।
0: नहीं भाई ऐसे मिथुन चक्रवर्ती से दूर रहे, इट्स बेटर टू बी अलोन।
1: कबीर भाई एक बात बोलो
0: ना भाई,
1: जो मेरी बात थोड़ी रुकी थी बीच में, आप जो बोले ना ये लोग इन्फ्लुएंसर से आलू ले लो ये वो बेचते रहते कुछ भी, पैसा लेके वीडियो बनाना एक अलग ही मसला है भाई। ये चीज मेरे को नहीं समझ में आती सही है। अब मेरे दोस्त की होटल है तो वहाँ होटल है, मेरे को वहाँ का खाना अच्छा दिखता, मैं बनाता हूँ, मेरा दोस्त की होटल है, बनाता हूँ, नॉर्मली डाल देता हूँ वीडियोस, सही है, कहीं का भी पानी पूरी अच्छी दिखी, बनाया वीडियो डाल दिया, पहले जाता हूँ टेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब जाता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार गया और तब बना दिया, नहीं, पहले खाता हूँ, खुद टेस्ट करता हूँ, उसके बाद में अच्छा दिखा पब्लिक को मालूम होना भाई यहाँ ये चीज मिल रही, खाओ फायदा उठाओ, यानी एंजॉय करो,
0: ऐसा ये सही है, सही है।
1: पैसे कबीर भाई मेरे को पैसे दे रहे हैं, भाई कबीर भाई की तारीफ होंगे पुल बांध दे रहे, ये तो फेक हो गया, सीधा सीधा फेक हो गया। पैसे लेके तो कोई भी तारीफ करता ना भैया।
0: एक्चुअली में क्या है ना कि हर खाना होता है वो जो आवाज निकालनी होती है ना, बहुत बढ़िया, रे रे।
1: कसम से मेरे भाई ऐसा टेस्ट आपको पूरे कत्तर में नहीं मिलेगा।
0: ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, बट मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट आप कर रहे हैं मेरा भाई, उसको करते रहना, इसलिए रुकना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कंटेंट आगे जाएगा, लोगों को मदद मिलेगी उससे, और एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप अपने जो भाई बंधु हैं ऐसे आपके ग्रुप के, उनके साथ कुछ बनाने का प्लान नहीं किया, मतलब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ ग्रुप ग्रुप बनाने का कुछ प्लान किया, कुछ है ऐसा ग्रुप?
1: मेरा ग्रुप बने हुआ था, मैं जब उमसलाल अली में था, मैं करीब आज से चार पांच साल पहले तब ग्रुप बना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मेरे और एक भी एक दोस्त थे, उनकी होटल थी, खैर वो होटल बंद हो गई, तो उन्होंने अपने होटल में बुलाते थे, पूरे दोस्तों को लिख जाता था, वीडियोस बनाते थे हम लोग, और कभी इधर करने चले गए मर्फे पे नाचना करना, हैदराबाद या मर्फा बोल तो पागल हो जाते भाई, मर्फे पे नाचना करना सब सब कर लिए भैया जी, अच्छे दोस्त मनी भी थे।
0: अच्छी बात है, अच्छी बात है, अपन को भी जरूरत है भाई कोलैब करने की, कबीर और कबीर को करने की जरूरत है, के बी आई आर के डबल ई आर, भाई तुमने स्पेलिंग गलत करके ना मेरे साथ गलत कर दिया। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, टेंशन नहीं है। और भाई मेरे इतने लोग मैंने देखे हैं जो आते हैं कतर में नए, और थोड़े से घबराए हुए होते हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंटली बुकिंग करी थी मैंने, और भाई थे पाकिस्तान से कहीं से थे, वो थोड़े डरे हुए ज़्यादा थे कि पता नहीं यू नो लोग चाहते हैं कि सीधे लोकेशन में पहुँचे, अब उनको मैप रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो जल्दी जल्दी एकदम से मिल जाता है ना कैब चलाने को, और काम ऐसा है कि लोकेशन पता होनी चाहिए, मैप भी देखना है, तो इनके लिए क्या एडवाइस, कोई है तरीका है, कोई एडवाइस है इनके लिए बेचारों के लिए, क्या कहना चाहिए?
1: उबर में काम करना इजी नहीं है मेरे हिसाब से, क्यों? क्योंकि आपका जहन और गाड़ी रोड पे ड्राइव करना और लोकेशन लाजिम आपको फॉलो करना है, लाजिम लोकेशन, तो आपका जहन उधर भी रहता, फिर कस्टमर अगर कुछ अगर बोल रहे हैं तो उनको भी सुनना, उनको भी जवाब देना, और खास करके जब छोटे बच्चे रहते तो पूरा ध्यान बच्चों पर रखना पड़ता, गाड़ी लॉक करना है, जैसा कि विंडोज लॉक करना है, ये सब जिम्मेदारियां रहते, तो परफेक्ट होने के बाद ही ये लाइन में आना मेरे हिसाब से सही रहता।
0: और कबीर भाई आजकल कुछ मूवीज वगैरह देखने का टाइम मिलता है, कोई पिक्चर देखने का, सीरीज वीरीज नापने का कुछ?
1: नहीं भैया, मैं वो उस पर देख लेता हूँ ऑनलाइन पिच, कभी टाइम मिला तो
0: देख लेते हो,
1: हमारे मेरी जान हमारे काम का ऐसा मसला है, अगर एक मूवी डाउनलोड कर लिया तो 3 दिन में खत्म होती हो।
0: हाँ भाई, ये तो मैं समझ रहा हूँ, और मतलब इसका भी अपना मजा है भाई, इसका भी अपना मजा है, ऐसा नहीं है, वो एक एक्साइटमेंट रहती है कि मैंने 20 मिनट में छोड़ी थी। ये भी सही है। और कोई ऐसा मिलता है कि गाड़ी में म्यूजिक सुनना पसंद हो और आपको भी मतलब थोड़ा म्यूजिक थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के सुनने में मजा आ रहा है, ऐसा होता है लोग यूजुअली म्यूजिक बंद ही करवाते हैं?
1: मैं तो लगाता नहीं, अगर कोई कस्टमर बोलता है कैन आई कनेक्ट योर ब्लूटूथ, या ऑफ कोर्स म्यूजिक का तो अपन तो दीवाने से, तो अरबी कोई अरबी लगा लेते गाने, कोई हिंदी लगा लेते, तो अगर कोई बोलते भाई कोई अपने इंडिया पाकिस्तान में वहाँ के रहे तो बोलते भाई गाना तो चला दो, यूपी बिहार के रहे तो भैया यह गाना तो चला दो, ठीक है अब अपना लगा दिए एमिवे के रैप्स रफ्तार के हनी सिंह के चलते रहते अपने तो।
0: वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया। और लॉन्गेस्ट ट्रिप कितनी मिली है रिसेंट टाइम मिली, लॉन्गेस्ट कितने रह जाओगे, कितने किलोमीटर?
1: मेरे को लॉन्गेस्ट ट्रिप मिली 56 किलोमीटर की एक बार मिली थी, एक बार वकरा से अलखुड़ तक के मिली थी, फीफा के टाइम पे पोर्टरेविया से मेरे को मिली थी बुसमरा बॉर्डर तक।
0: भाई साहब बहुत लंबी ट्रिप है यार ये तो, अच्छी खासी लंबी ट्रिप है।
1: अरे लंबी ट्रिप है, वहां जाने के बाद उबर नहीं खुल रहा था मेरे भाई।
0: अच्छा ये भी हो गया था?
1: हाँ वहां पर नहीं खुलता उबर।
0: अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाब रखे मेरे भाई। और आखिर में भाई मैं ये कहूँगा, मुझे एक तो बात करके बहुत मजा आया, और ऐसी भाई खुश रहना, ये एटीट्यूड ना आपका बहुत बढ़िया है, बिकॉज मैं उन लोगों को जुड़ना पसंद करता हूँ जो एक्चुअली मैं एटीट्यूड रखते हैं भाई. एंड मुझे, मैं बहुत श्योर हूँ कि लोग जितने भी सुनेंगे तुमको, उन्हें ऐसा इंस्पिरेशन आएगा, अंदर से आवाज आएगी यार मैं काहे को दुखी हूँ. तो वेरी नाइस.
1: अच्छे दिन नहीं रुके ना, अपने पास अच्छे दिन है, आए चले गए, उसके बाद में परेशानी आए, वो भी नहीं रुकते, फिर अच्छे दिन आते
0: इंशाल्लाह.
1: अल्लाह के ऊपर शक रहना चाहिए.
0: बेशक बेशक कबीर भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात करके अच्छा लगा होगा. मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा.
1: बहुत अच्छा मेरी जान, बहुत अच्छा.
0: और बस अब चाय कहीं पीते हैं, मिलना पड़ेगा अब तो. तो भाई ये थे कबीर शाह, और इनसे कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं. व्हाट्सएप 666-22107 है. एंड डू लेट मी नो कि अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं शो का, 666-22107. एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर. दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मासलामा. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शूफ प्लेटफॉर्म पर

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है मनी मिस्टेक्स पेरेंट्स एक्सीडेंटली टीच देयर किड्स. पेरेंट्स बच्चों के सबसे पहले टीचर होते हैं. बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं. इसीलिए मनी हैबिट्स सिर्फ लेक्चर से नहीं बल्कि डेली एक्शन से ट्रांसफर होती है. अक्सर पेरेंट्स अच्छी नीयत से काम करते हैं लेकिन कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स अनजाने में अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं. आइए जानते हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं. पहले, पैसा दरख्तों पर नहीं उगता, कहना मगर एक्सप्लेन ना करना. कई पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ ये कहते हुए सुने गए हैं लेकिन वो ये नहीं समझा पाते कि पैसा अर्न कैसे होता है, सेव कैसे किया जाता है और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है. और नतीजा ये होता है कि बच्चे मनी को या तो डरने वाली चीज समझने लगते हैं या फिर उसके बारे में सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते. फाइनेंशियल एजुकेशन फियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से शुरू होनी चाहिए. वहीं दूसरा एक और स्टेटमेंट, हर डिमांड को फौरन पूरा कर देना. जब भी बच्चा कोई टॉय, गैजेट या एक्सपेंसिव चीज मांगे और फौरन मिल जाए तो वो पेशेंस और वैल्यू को नहीं समझ पाता. रियल लाइफ में हर चीज इंस्टेंटली नहीं मिलती. बच्चों को वेट करना, सेव करना और प्रायोरिटी सेट करना सिखाना जरूरी है. वहीं पर सेविंग की इम्पोर्टेंस बताई. अगर पेरेंट्स खुद सैलरी आते ही तमाम पैसे खर्च कर देते हैं और सेविंग्स नहीं करते हैं तो बच्चा भी वही हैबिट अडॉप्ट करेगा ना. बच्चे देखकर सीखते हैं. अगर वो देखेंगे कि पेरेंट्स इमरजेंसी फंड्स और सेविंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उनकी सोच भी वैसे ही डेवलप हो. वहीं इमोशनल शॉपिंग ना करें. कुछ लोग स्ट्रेस, सैडनेस या फिर बोर्डम की वजह से शॉपिंग करते हैं. जब बच्चे ये देखते हैं कि हर इमोशनल प्रॉब्लम का सलूशन शॉपिंग है तो वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं. खुशी खरीदी नहीं जा सकती. शॉपिंग टेम्परेरी एक्साइटमेंट दे सकती है लेकिन परमानेंट सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं. वहीं एक और चीज, मनी डिस्कशंस बच्चों से कीजिए. कुछ पेरेंट्स समझते हैं कि मनी के बारे में बात करना जो बच्चे हैं उनसे मुनासिब नहीं, लेकिन जब बच्चों को फाइनेंशियल मैटर्स का बिल्कुल आइडिया नहीं देंगे तो

वो अडल्टहुड में भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करेंगे। एज के मुताबिक मनी कन्वर्सेशन हर एज में की जानी चाहिए। क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी जैसा ट्रीट करना। अगर पेरेंट्स हर चीज क्रेडिट कार्ड से खरीदें मगर रिपेमेंट और बजटिंग के बारे में बात ना करें तो बच्चे समझ सकते हैं कि स्पेंडिंग की कोई लिमिट ही नहीं है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि विजडम से भी ग्रो होता है। और ग्रैटिट्यूड, जब बच्चों को हर चीज मिल जाए और अप्रिसिएशन की हैबिट ना हो तो वो चीजों की वैल्यू महसूस ही नहीं करते। ग्रैटिट्यूड फाइनेंशियल वेलबींग का हिस्सा है। जो लोग अपने मौजूदा ब्लेसिंग्स की कदर करते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल चॉइसेस करते हैं। बस आखिर में यही कहूंगी कि पेरेंट्स अक्सर जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में अपनी मनी हैबिट्स बच्चों तक पहुंचा देते हैं और शायद अनहेल्दी मनी हैबिट्स बच्चों तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ बच्चों को पैसा देना ही ना सिखाएं बल्कि मनी मैनेजमेंट भी सिखाएं। सेविंग सिखाएं, बजटिंग सिखाएं, पेशेंस सिखाएं, ग्रैटिट्यूड सिखाएं, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग ये सिखाएं। ये ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चों की पूरी जिंदगी को बेहतर बना देती हैं। याद रखिए, चिल्ड्रन मे नॉट ऑलवेज लिसन टू व्हाट पेरेंट्स से बट दे ऑलवेज लर्न फ्रॉम व्हाट पेरेंट्स डू। अगर पेरेंट्स हेल्दी मनी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ हेल्दी वेल्थ नहीं बल्कि फाइनेंशियल विजडम का भी विरासत छोड़ कर जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर अब आपसे वक्त हो गया कि इजाजत ली जाए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते

0: तेज, और जो बेस लाइन रखी गई है सब्सक्राइबर्स की वो अभी भी 1000 ही रखी गई है। तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? देखिए, इफेक्ट पड़ेगा नए क्रिएटर्स पे जो पूरी तरह से चाहते हैं कि मोनेटाइज कर लें, प्रीमियम अकाउंट बना लें पहले या बाद में फरवरी से, क्योंकि 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज लाना उससे पहले बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट इजी, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट यू कैन डू इट। दूसरी चीज, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पे भी, जो क्रिएटर्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं पार्टनर प्रोग्राम में इस डेट के आने से पहले, उनको भी अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो लो टीयर्स में जो फैन फंडिंग या शॉपिंग इन सब में आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ चीजें तोड़ मरोड़ के बताना चाहता हूँ, इफ यू स्टार्टिंग योर करियर इन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब, वट एवर। तो जब आप YouTube पे करियर शुरू करने वाले हैं तो आपको लोग दो तरीके का एडवाइस देंगे। नंबर वन एडवाइस जो मैं भी आपको दूंगा, अगर आपका कॉन्टेंट आप ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाला है, तब तो आप 20-25 मिनट का डालें कि आपको इतना यकीन है, आपको भरोसा है अपने ऊपर कि 20 मिनट के अगर मैं कुछ अपलोड कर रहा हूं तो पीपल विल वॉच इट, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल गेट दोज 8000 आवर्स। वो जो 8000 घंटे पूरे करने का जो एक काम थमा दिया है YouTube ने, जो 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं अपना चैनल मोनेटाइज करना, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट। तो अगर ऐसा नहीं है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि मैं 20 मिनट का कंटेंट दूंगा, तो आपको YouTube के शॉर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। वो जो 1 मिनट का जो टाइमलाइन है, 30 सेकंड्स के अंदर, 40 सेकंड्स के अंदर अपने कंटेंट को अगर आप डिलीवर करने वालों में से हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, डू दैट, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। अभी से आप लग गए ना, जी जान लगा दी आपने, तो कुछ वक्त नहीं लगेगा आपको उस लेवल पे पहुंचने पे जो आपने सोच रखा है। बट देन अगेन, मैं पीछे फिर से जाना चाहूंगा उस बात पे जो मैंने पहले कही, यूट्यूब पे अगर आप अपना करियर सोच रहे हैं, एंड दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ सिर्फ आपको नहीं दे रहा, मैं अपने आप को भी रिमाइंड करा रहा हूँ, इफ वी ऑल आर थिंकिंग यूट्यूब एज अ करियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोई टाइम पास नहीं हो सकता, ये कोई सिर्फ हॉबी की तरह नहीं है। अगर यूट्यूब से कमाना है, सिर्फ एंटरटेन नहीं करना है, देन यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब। वेरी वेरी सिंपल, एंड क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। नौकरी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? यूट्यूब को नौकरी मानने का मतलब है कि मैं भैया हफ्ते में 3 दिन आऊंगा, इन दिनों आऊंगा, इतने बजे आऊंगा। यू हैव टू डिलीवर ऑन क्या कहते हैं उसको, एक्सपेक्टेशंस। आप एक टाइमिंग सेट करते हैं, एक दिन सेट करते हैं, जैसे हम लोग अपनी नौकरी पे जाते हैं वैसा। इसमें और बात करता रहूंगा, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा 6622107 पर या फिर सोशल मीडिया FM 107 कतर। ये थी आज की टेक अपडेट, मिलते हैं अगले में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है, ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं, और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें, ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है, ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें, ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें, ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही ज़रूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, कभी एक मुआशरे को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़े मंसूबों की जरूरत होती है, लेकिन कभी एक प्लेट खाना और चंद खूबसूरत अल्फाज दो इंसानों के दरमियान फासला कम कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, इस्लाम की कौन सी खसलत बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में दो ऐसे अमाल बताए जो बज़ाहिर बहुत सादा दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का ताल्लुक दूसरे इंसान से है। एक किसी की जरूरत पूरी करना और दूसरा किसी को अमन, मोहब्बत और अपनाइयत का एहसास देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुतअमु अत्तआम व तक़रअ अस्सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तअरिफ। खाना खिलाओ और हर दीगर शख्स से सलाम करो, खा उसे जानते हो या न जानते हो। गौर कीजिए सामने कराम, एक अमल हाथ से खाना खिलाना और एक अमल जबान से सलाम कहना, गोया एक के जरिए इंसान की जरूरत का ख्याल रखा गया और दूसरे के जरिए उसके दिल का। सबसे पहले फरमाया खाना खिलाओ, किसे? भूख एक ऐसी जरूरत है जिसे इंसान किसी भी जबान, कौम या माशरती मकाम से ताल्लुक रखता हो महसूस करता है। किसी भूखे को खाना देना, ये दरअसल उसे ये एहसास भी दिलाना है कि तुम्हारी जरूरत मेरे लिए अहम है। इसीलिए खाना खिलाने की सुन्नत में बात सिर्फ खुराक की हद तक महदूद नहीं, यहाँ मुआसात, सखावत और मेहमान नवाजी है कि दूसरे इंसान की जरूरत को महसूस करना ये बहुत ही बड़ा एक अहम अमल है। अब खाना खिलाने का तसव्वुर सिर्फ ये नहीं कि किसी इंतहाई गरीब इंसान को खाना दिया जाए, यानी जो अजनबी हो, जिसे कोई जाना पहचाना ना हो। यकीनन जरूरतमंद को खाना खिलाना बड़ी नेकी है, लेकिन खाना मोहब्बत का जरिया भी बनता है। घर में मेहमान आया, खिलाइए, पड़ोसी को कुछ भेजिए, दोस्त को अपने साथ बिठाइए, दफ्तर में कोई आपके साथ है तो उसे साथ बिठा कर कहिए कि आइए साथ, एक साथ मिलकर खाते हैं। कोई मुसाफिर है, कोई नया शख्स शहर में आया है, कोई तालिब इल्म घर से दूर है, कोई मुसाफिर है, आप उनको अपने दस्तरखान में बिठाइए, ये नेकी का काम है। कभी एक दस्तरखान तो अजनबी इंसानों को दोस्त बना देता है। सामने कराम, जरा अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हात याद कीजिए। कितनी यादें किसी दस्तरखान से वाबस्ता हैं, घर वालों के साथ खाना, दोस्तों के साथ बैठना, रमजान में इफ्तार, ईद की दावत, किसी मुसाफिर की मेजबानी, और इस तरह खाना इंसानों को एक जगह बिठाता है, बात शुरू होती है, दिल करीब आने लगते हैं। और इसीलिए कभी किसी इंसान से ताल्लुक मजबूत करना हो तो सिर्फ रस्मी गुफ्तगू के बजाय उसे अपने दस्तरखान में जगह देकर देखिए, कभी रोटी बांटने से दिल भी जुड़ जाते हैं। फिर आगे कहा है, वो तकरा उस सलाम, सलाम करो, यानी जिस शख्स को आप सलाम कर रहे हैं उसे खैर और सलामती की दुआ दे रहे हैं। तो मुलाकात की इब्तिदा ही दुआ से हो, और ये सिर्फ ग्रीटिंग नहीं, ये दरअसल अमन अमान का पैगाम है, ये दुआ है। सामने कराम, जरा हदीस की तरतीब को एक मरतबा फिर एक साथ देखिए, तो तअमु तअाम यानी खाना खिलाओ, व तकरा उस सलाम, सलाम करो, एक में आप दूसरे इंसान को कुछ दे रहे हैं, दूसरे में आप उसी के लिए दुआ कर रहे हैं। एक फ़ाइल है और एक कौल है, वो इस्लाम कहता है लोगों के लिए आपके हाथ से भी खैर निकले और जबान से भी। तो सामने कराम, सलाम को सिर्फ जानने वालों तक महदूद न कीजिए और अपने दस्तरखान को सिर्फ अपने लोगों तक महदूद न रखिए, अपने दायरे को थोड़ा वसी कीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत इस्लामी मुआशरा वहाँ बनता है जहाँ हाथ और जबान दोनों से हम खैर को बांटते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमाए, हमें खैर को आम करने, ज़रूरतमंदों की खबर लेने اور جاننے اور نہ جاننے والوں کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम बात करते हैं। और कल जैसे कि हमने बात किया एक अजीब और गरीब चीप यानी कि सस्ता पिक एंड ड्रॉप स्कूल ट्रांजिट के बारे में, और आज ऐसे ही हम एक और स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज बेट एंड स्विच या फ्री सोशल मीडिया आइटम स्कैम। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्कैम होता क्या है। ये स्कैम सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस जैसे कि फेसबुक हो गया, या ऐसे एप्लीकेशन हो गए जहां पर आपको सेकेंड हैंड मार्केट दिखती है, या सोशल मीडिया का कोई और पेज, वहां पर बहुत तेजी से फैल रहा है ये स्कैम। स्कैमर्स बहुत ही महंगी और अच्छी कंडीशन वाली चीजें जैसे प्रीमियम फर्नीचर, महंगे फोन्स, लैपटॉप्स, रेफ्रिजरेटर्स बिल्कुल फ्री में देने का एड लगाते हैं। ये तो आप देखते ही होंगे, कई जगह आप यू नो सोशल मीडिया पर रहते हैं, आपने उन पेजेस को भी फॉलो कर रखा है जो फ्री में यू नो पोस्ट आता है, जो फ्री के सामान जो है लोग उससे जुड़े हुए हैं। आप ऐसे कई फेसबुक को फॉलो भी करते होंगे पेजेस को, जहां पर 100 से यू नो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 100,000 ऑफ लोग जो है वहां पर जुड़े हुए हैं। वो अपने घर से डीक्लटर करना चाहते हैं, फ्री में सामान बेचना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच एक स्कैमर भी छुपा होता है। वो एड में लिखते हैं या फिर उस सोशल मीडिया के पोस्ट पर लिखते हैं कि हमारे घर पे ये सामान फालतू का पड़ा है, प्लीज यहाँ से लेकर जाइए, हम पूरा फ्री दे रहे हैं, या हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, हमें बस स्पेस खाली करनी है इसलिए फ्री में दे रहे हैं। और जब आप ये सब देखते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं, तो वो बहुत ही स्वीट बनते हैं और आपको आइटम कलेक्ट करने के लिए एक एड्रेस भी भेजते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद खेल चेंज हो जाता है। वो आपसे कहते हैं बहुत सारे लोग लेने के लिए रेडी हैं, अगर आपको चाहिए तो भी एक छोटा सा यू नो फीस जो है वो लगेगी, विच इज कॉल्ड होल्डिंग फी या फिर हैंडलिंग चार्ज भी। उसके अलावा अलग अलग तरीके से पेमेंट करने को वो आपसे कहते हैं, और वो ये भी डराते हैं कि अगर आप यू नो ये सामान नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से लोग हैं, वो सामान ले लेंगे, क्योंकि आप वो फर्नीचर, वो लैपटॉप, वो रेफ्रिजरेटर सस्ता देखते हैं। यू नो एक तो वो फ्री में दे रहा था पहले, लेकिन अब वो कह रहा है नहीं, वो 50 रियाल या 100 रियाल में लेकर जाइए, लेकिन आपको होल्ड करने के लिए फीस देनी पड़ेगी, तो आप अपफ्रंट पे कर भी देते हैं। लेकिन ये एक तरह का स्कैम है। आप सोचते हैं इतनी महंगी चीज है, फ्री में मिल रही है, 500,000 रुपये देने में क्या ही बुराई है, या फिर 50 रियाल 40 रियाल देने में क्या बुराई है। लेकिन जैसे ही आप वो पैसे ट्रांसफर करते हैं, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और एड्रेस भी फेक निकलता है। इससे बचना कैसे है, इस पर भी बात करना बड़ा जरूरी है दोस्तों। देखिए, इनसे बचने के 3 आसान तरीके हैं। गोल्डन रूल को याद रखना सबसे बेहतरीन है आपके लिए। दोस्तों, ऑनलाइन मार्केट प्लेस का सबसे बड़ा रूल है, अगर कोई चीज कंप्लीटली फ्री एडवर्टाइज्ड है या सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई है, तो उसे पाने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई पैसे मांग रहा है तो वो 100% स्कैम है। अगर किसी ने पोस्ट किया है फ्री में, उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद अगर आपसे वो पैसा मांग रहा है, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं फेसबुक के या यू नो अलग अलग सोशल मीडिया पेज पे जहां पर उसने ये पोस्ट किया है, उनके एडमिन से भी आप कह सकते हैं कि ऐसे पेजेस को ब्लॉक

सकते। अगर उनका नंबर आपके पास है तो भी आप जो अथॉरिटीज होती हैं उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फिजिकल इंस्पेक्शन से पहले कोई भी पेमेंट ना करना। अगर आपके सामने कोई भी पोस्ट आती है, आप किसी के घर जाते हैं और जब देखते हैं कि सामान वहां पर रखा है, आपने इंस्पेक्शन कर लिया, किसी तरह की खराबी नहीं है, तब आप पेमेंट करें। किसी भी तरह का डिजिटल डिपॉजिट, टोकन मनी, शिपिंग फी या होल्डिंग चार्ज वगैरह कभी भी अपफ्रंट पहले से ना दें। खुद उस प्रोडक्ट को अपनी आंखों से देखें और चेक कर लें, उसके बाद पेमेंट करें। उसके अलावा सेफ मीटिंग प्लेसेस का भी बहुत ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर आप उनसे प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, सारी बात हो गई है, उन्होंने एड्रेस दे दिया है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है फ्री में ले जाइए, आप अपने लिए पूरा ट्रक बुक करके लेकर जाते, अपनी कार लेकर जाते कि सामान भर कर वापस घर लेकर आएंगे, तो हमेशा किसी पब्लिक प्लेस पर मिले, जैसे कोई बिजी मार्केट है, मेट्रो स्टेशन है, या फिर सबसे सेफ किसी लोकल पुलिस स्टेशन के बाहर, किसी के सुनसान घर या अनजान इलाके में अकेले बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये रिस्क डबल हो जाता है। कई बार आप किसी के घर जाते हैं, वो आप पर कोई इल्जाम भी लगा सकता है, चोरी का इल्जाम भी लगा सकता है, तो ऐसे में कोशिश करें कि घर के बाहर मिले, जहां पर कैमरेज वगैरह लगे हों वहां पर मिले और वहीं पर पेमेंट करें, ताकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ प्रूफ हो। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। उम्मीद है पिछले कुछ मिनट में जो हमने बताया, जितने सॉल्यूशन के बारे में हमने बात करी, उसके बाद आप इस तरह के स्कैम से बचने के लिए अब तैयार होंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

0: लिया जाए वो ज्यादा बेहतर होता है।
1: और ये भी इम्पोर्टेंट है कि 3D प्रिंटिंग सिर्फ एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और प्रोडक्ट डिजाइन जैसे एरियाज में इस टेक्नोलॉजी का यूज एक्सप्लोर किया जा रहा है।
2: तो भाई अमिता जी, अब मैं वो क्वेश्चन रिपीट करती हूँ जो हमने बिगिनिंग में पूछा था सर, ठीक है?
1: ठीक है।
2: अगर आपके पास प्रोडक्ट आइडिया है भाई लेकिन फैक्ट्री नहीं है, तो क्या कंप्यूटर और 3D प्रिंटर आपकी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेप बन सकते हैं?
1: क्यों नहीं बन सकते, मैं तो कहूंगी हो सकता है। और इसी पॉसिबिलिटी की वजह से 3D प्रिंटिंग यंग क्रिएटर्स के लिए इतनी एक्साइटिंग है।
2: अच्छा भाई, आप जो नेक्स्ट जेन हमारा सुन रहे हैं FM 107 पर, उन सबको मैं याद दिलाती चलूं कि आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं। देखिए, आप अपनी ओपिनियन या अपना प्रोडक्ट आइडिया भेज सकते हैं 666-22-107 पर, मैसेज कर सकते हैं हमें, और चाहे तो हमें आप मैसेज हमारे सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं जिसका हैंडल है @FM107Qatar। तो भाई यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे मुलाकात होती है स्टार्टअप स्टोरीज के साथ। सुनते रहें FM 107, दिल से
1: देसी।
3: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही।
1: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, नेक्स्ट जेन है शो का नाम। मैं हूँ आपकी अमिताभ के साथ और हमारी सफा, यस। तो अब चलते हैं हमारे स्टार्टअप स्टोरीज के सेगमेंट की तरफ और आज हम बात कर रहे हैं मेकर स्पेसेस और फैब्रिकेशन लैब्स की, और स्पेसिफिकली इस बात की कि ये यंग प्रोडक्ट डिजाइनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।
2: तो भाई अमिता, देखें मेकर स्पेस नाम सुनकर ना मुझे पहले तो ऐसा लगता था कि शायद कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग बस क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। नाम सुना ना, मेकर्स स्पेस।
1: एब्सोल्युटली, और कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है सफा, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ मेकर स्पेसेस और फैब्रिकेशन लैब्स ऐसी फैसिलिटीज होती है जहाँ यूजर्स को डिफरेंट टूल्स और इक्विपमेंट तक एक्सेस मिल सकते हैं।
2: मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे कि 3D प्रिंटर्स।
1: जी, 3D प्रिंटर्स, लेजर कटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, डिजाइन सॉफ्टवेयर और दूसरे डिजिटल फैब्रिकेशन टूल्स, हर फैसिलिटी में इक्विपमेंट डिफरेंट हो सकता है।
2: और ये स्पेशली स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूजफुल हो सकता है, पता है क्यों? क्योंकि हर बंदे के लिए घर में एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स रखना प्रैक्टिकल नहीं होता ना।
1: एग्जैक्टली, इमेजिन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास एक प्रोडक्ट का ब्रिलियंट आइडिया है। कंप्यूटर पर उसने डिजाइन बना दिया, लेकिन अब उसे क्या पता कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा लगेगा, क्या वो स्टेबल होगा, क्या उसका साइज प्रैक्टिकल है, क्या मटेरियल सफिशिएंट है।
2: स्क्रीन पर तो सब परफेक्ट लगता है ना।
1: बिल्कुल, लेकिन फिजिकल प्रोटोटाइप बनाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर नहीं आती,
2: और यही तो प्रोटोटाइप की इम्पोर्टेंस होती है भाई।
1: यस, सो प्रोटोटाइप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का सैंपल नहीं होता, प्रोटोटाइप एक क्वेश्चन का फिजिकल आंसर होता है, यानी क्या मेरा आइडिया रियल वर्ल्ड में काम करेगा।
2: और हाँ, अगर आंसर है नहीं या थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, तो वो फेलियर नहीं होता, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होती है।
1: एग्जैक्टली, और स्टार्टअप वर्ल्ड में ये माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर को जल्दी लर्न करना होता है।
2: अच्छा, कतर के कॉन्टेक्स्ट में भी ना ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि कतर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है आजकल।
1: राइट,
2: देखें यंग लोगों के लिए फैब्रिकेशन और इनोवेशन फैसिलिटीज एक ब्रिज क्रिएट कर सकती हैं, ये समझने वाली बात।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि कतर में QSTP का फैब्रिकेशन लेबोरेटरी, कतर नेशनल लाइब्रेरी का इनोवेशन स्टेशन, स्केल 7 का डिजिटल फैब्रिकेशन और प्रोटोटाइपिंग इकोसिस्टम, और मादा इनोवेशन का मादा फैब लैब जैसे स्पेसेस यंग इनोवेटर्स को टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंटेशन के एनवायरमेंट से कनेक्ट करते हैं।
2: ये सिर्फ टेक्नोलॉजी कंज्यूम नहीं करता बल्कि टेक्नोलॉजी क्रिएट, मॉडिफाई और एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है।
1: एग्जैक्टली, और मुझे लगता है ये एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को भी चेंज करता है।
2: अच्छा, ये कैसे हो सकता है, जरा इसको एक्सप्लेन करें।
1: ठीक है, तो पहले सवाल होता था कि क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग अफोर्ड कर सकता हूँ।

0: के एनवायरमेंट में सवाल चेंज होकर हो सकता है, क्या मैं प्रोटोटाइप बिल्ड कर सकता हूँ, क्या मैं आइडिया टेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट यूजफुल है।
1: अच्छा, और जब आपके पास वर्किंग प्रोटोटाइप हो ना, तो इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स या पार्टनर्स को आइडिया समझाना भी बहुत इजी हो जाता है भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एक ड्राइंग एक्सप्लेन करना और एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट हाथ में देना, दोनों एक्सपीरियंसेस ना डिफरेंट होते हैं।
1: अच्छा, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल पता है क्या है? वो ये है कि अगर यंग पर्सन्स फर्स्ट प्रोटोटाइप फेल हो जाए तो क्या होगा भाई?
0: तो वो एक्चुअली लर्निंग का पार्ट होगा सफा। फर्स्ट प्रोटोटाइप का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है।
1: तो भाई मेकर स्पेस सिर्फ मशीन्स प्रोवाइड नहीं करता, वो एक्सपेरिमेंटेशन का माइंडसेट भी एनकरेज कर सकता है।
0: एग्जैक्टली। और यहाँ ट्रेडिशनल क्रिएटिविटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी कंबाइन होती है। आपके पास आर्टिस्टिक आइडिया हो, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो या बिजनेस कॉन्सेप्ट, डिजिटल टूल्स उस आइडिया को टेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं।
1: तो भाई हमारा स्टार्टअप क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक ब्रिलियंट प्रोडक्शन आइडिया है या प्रोडक्ट आइडिया है लेकिन फैक्ट्री नहीं है, तो क्या एक मेकर स्पेस आपकी पहली फैक्ट्री बन सकता है?
0: शायद फैक्ट्री नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप हो सकता है।
1: और हो सकता है वो फर्स्ट स्टेप ही एक फ्यूचर बिजनेस की बिगिनिंग बन जाए। तो भाई इसी थॉट के साथ अब एक काम करते हैं, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है टेक टॉक।
0: टेक टॉक।
1: तो भाई साथियों, अब टेक टॉक की तरफ बढ़ते हैं। और अब टेक टॉक में हमारा वक्त आ गया है टेक्नोलॉजी को थोड़ा और क्लोजली समझने का। देखिए, टेक टॉक में आज का क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर एक्चुअली काम कैसे करता है?
0: तो चलिए मिस्ट्री को सिंपल करते हैं। सबसे पहले किसी को एक आइडिया आता है। हाँ,
1: फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोन। हाँ, फोन स्टैंड। ठीक है,
0: हाँ सही कह रही हो कि फोन स्टैंड का आइडिया आया। तो अब आइडिया को कंप्यूटर पर 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है,
1: यानी स्क्रीन पर फोन स्टैंड का कंप्लीट डिजिटल मॉडल बना दिया जाता है।
0: जी, और इस स्टेज पर डिजाइनर शेप, डायमेंशंस और स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। फिर आती है स्लाइसिंग।
1: अच्छा, स्लाइसिंग सुनकर ना लगता है कि जैसे हम पिज्जा कट कर रहे हैं।
0: Right.
1: है, बस वो स्लाइस जैसी आता है तो दिमाग में पिज्जा का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
0: हाँ, सही कह रही हो। वेल, थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं हम कि स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर डिजिटल मॉडल को बहुत सारी थिन हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डिवाइड करता है,
1: और फिर प्रिंटर को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि हर लेयर को कैसे क्रिएट करना है।
0: एग्जैक्टली। फिर प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। प्रिंटर सिलेक्टेड मटेरियल को लेयर बाय लेयर यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है।
1: और क्या हर 3D प्रिंटर सेम मटेरियल यूज करता है?
0: नहीं, डिफरेंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज डिफरेंट मटेरियल्स यूज कर सकती हैं। कुछ सिस्टम्स प्लास्टिक फिलामेंट यूज करते हैं, कुछ रेसिन, कुछ पाउडर्स और स्पेशलाइज्ड कंपोजिट्स। इंडस्ट्रियल सिस्टम्स मेटल्स और एडवांस मटेरियल्स के साथ भी काम कर सकते हैं।
1: ओह वाओ, तो फिर प्रिंटर भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए 3D प्रिंटिंग एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजीज का ब्रॉडर फैमिली है।
1: चलो भाई, यहाँ तक तो आ गए, अब बताओ प्रिंटिंग के बाद क्या होता है?
0: टेस्टिंग। फिजिकल ऑब्जेक्ट को चेक किया जाता है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या डायमेंशंस करेक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट एक्चुअली वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो डिजाइनर चाहता था।
1: तो चलो भाई, अगर हम कह लें कि वर्स्ट सिनेरियो इज कि अगर वो नहीं काम करता
0: तो डिजिटल डिजाइन मॉडिफाई होता है,
1: फिर रीप्रिंट,
0: फिर से टेस्टिंग
1: और फिर इम्प्रूवमेंट।
0: एग्जैक्टली। ये साइकिल मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकती है।
1: तो भाई अगर हम पूरा प्रोसेस सिंपल वर्ड्स में कहें ना, आपको बताएं, तो पहले आइडिया, फिर डिजिटल डिजाइन, फिर स्लाइसिंग, फिर प्रिंटिंग, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्रूवमेंट और फिर रीप्रिंटिंग।
0: परफेक्ट। लेकिन यहाँ एक बिगर टेक्नोलॉजी स्टोरी भी है। 3D प्रिंटिंग डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के लार्जर इकोसिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है।
1: इस इकोसिस्टम में और क्या आता है?
0: कंप्यूटर एडेड डिजाइन, 3D स्कैनिंग, डिजिटल मॉडलिंग, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीनरी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन और डिजिटल फैब्रिकेशन।
1: मतलब फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग में प्रिंटर अकेला नहीं होगा, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एक साथ काम करेंगी।
0: एग्जैक्टली। और यहाँ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस इंटरेस्टिंग हो जाता है।
1: अभी देखें, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक क्वेश्चन होता है, हम एफिशिएंटली थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं?
0: और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एक और क्वेश्चन पूछ सकती है, हम एफिशिएंटली एग्जैक्टली

0: प्रोडक्ट कैसे बनाएं जो एक पर्टिकुलर कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करता है।
1: यानी मास प्रोडक्शन के साथ कस्टमाइजेशन का क्या कोई पॉसिबिलिटी है?
0: जी, और इसी वजह से डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल प्रोडक्शन और कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है।
1: अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ना यंग जनरेशन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसके अंदर उनके लिए ये है कि टेक्नोलॉजी उन्हें आइडिया से प्रोटोटाइप तक का डिस्टेंस कम करने में हेल्प कर सकती है।
0: बिल्कुल, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए सिर्फ मशीन चलाना सीखना इनफ नहीं है, डिजाइन समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और टेस्टिंग करना भी जरूरी है।
1: और भाई, इसी बात से हम नेचुरली अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और अमिता, हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट?
0: जी, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं स्किल्स की, तो डेफिनेटली स्किल अप पर हम कुछ और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हमारा स्किल अप सेगमेंट आज का फोकस है रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड इटरेटिव डिजाइन थिंकिंग पर।
1: अच्छा अमिता, मुझे लगता है इस सेगमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है फर्स्ट विजन का परफेक्ट होना जरूरी नहीं।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और शायद 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड सबसे वैल्यूएबल स्किल प्रिंटर ऑपरेट करना भी नहीं, बल्कि डिजाइन प्रोसेस को समझना होता है।
1: यानी आइडिया को टेस्ट करना।
0: जी, रैपिड प्रोटोटाइपिंग का बेसिक फिलॉसफी है कुछ क्रिएट करो, टेस्ट करो, प्रॉब्लम डिस्कवर करो, चेंज करो और दोबारा टेस्ट करो।
1: इसे इटरेटिव डिजाइन कहा जा सकता है।
0: एग्जैक्टली, इटरेटिव का मतलब है कि डिजाइन एक ही बार फाइनल नहीं होता, वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होता रहता है।
1: और ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है भाई, क्योंकि इनोवेशन रेयरली फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट होती है। ये एक हकीकत बात है।
0: बिल्कुल, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आइडिया खराब है, ठीक है? हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट ने आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी हो जो आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए चाहिए थी।
1: अच्छा लो, अब ना अपनी फोन स्टैंड वाली जो एग्जाम्पल थी ना, उसे कंटिन्यू करते हैं और उसी से समझने की कोशिश करते हैं।
0: यस, तो इमेजिन कीजिए अपने कंप्यूटर्स पर एक ब्यूटीफुल फोन स्टैंड डिजाइन किया, ठीक है? स्क्रीन पर वो परफेक्ट लग रहा है,
1: फिर आप उसे प्रिंट करते हैं
0: और फोन रखते ही वो स्लाइड कर जाता है।
1: मतलब डिजाइन बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल यूज है ना, वो जीरो है।
0: हाँ, exactly. अब आप क्या करेंगे? आइडिया थ्रो अवे करेंगे या डिजाइन इम्प्रूव करेंगे?
1: नहीं भाई, ऑब्वियसली मैं अगर होती ना तो मैं तो उसे इम्प्रूव ही करती, क्योंकि मेरी जान अटकी हुई है, मुझे वो बनाना है फोन का स्टैंड।
0: यस, तो आप एंगल चेंज करते, ठीक है, बेस को वाइडर करते और फोन के लिए बेटर सपोर्ट क्रिएट करते, ठीक है? फिर सेकंड वर्जन प्रिंट होता।
1: और मान लेते हैं कि सेकंड वर्जन स्टेबल है।
0: हाँ,
1: लेकिन अब मटेरियल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है भाई।
0: तो फिर एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। अब डिजाइन को लाइटर और मटेरियल एफिशिएंट बनाया जा सकता है।
1: और फिर आता है थर्ड विजन।
0: एग्जैक्टली, इसी प्रोसेस को इटरेटिव डिजाइन थिंकिंग कहते हैं।
1: अच्छा, इससे ना मुझे एक और इम्पोर्टेंट लेसन मिला इतनी सारी बात करके, कि फेलियर को इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। हमने बचपन से सिर्फ ये बात सुनी है, लेकिन जब हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से इसे देखते हैं तो वाकई में चीजें समझ में आती हैं कि नहीं, इट्स नॉट फेलियर, इट्स समथिंग टू लर्न।
0: एब्सोल्युटली, और यंग पीपल के लिए ये माइंडसेट एकेडमिक से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक बहुत यूजफुल हो सकता है।
1: अच्छा, इस फील्ड में आपको क्या लगता है कौन से स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं अमिता?
0: 3D मॉडलिंग, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इंजीनियरिंग थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, देन प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन, डिजिटल फैब्रिकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप।
1: ओ भाई, इतना कुछ है। यानी कि एक 3D प्रिंटर के अराउंड काम करते हुए यंग जनरेशन सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं सीख रही होती, वो क्रिएटिव और बिजनेस थिंकिंग भी डेवलप कर सकती है।
0: एग्जैक्टली, और सिंपल डिजाइन थिंकिंग जर्नी को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। पहले अंडरस्टैंड करो, फिर इमेजिन करो, डिजाइन करो, बिल्ड करो, टेस्ट करो एंड देन इम्प्रूव करो।
1: और हाँ, ये बात आप भूल गई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि भाई इम्पोर्टेंट वर्ड है इम्प्रूव।
0: एम्फसाइज
1: किया जाए इसे।
0: यस, क्योंकि प्रोटोटाइप फाइनल आंसर नहीं होता, प्रोटोटाइप एक क्वेश्चन होता है।
1: अच्छा, एक सवाल है अमिता, क्या मेरा आइडिया रियल वर्ल्ड में एक्चुअली काम करेगा?
0: एग्जैक्टली,
1: और जब तक आंसर परफेक्ट ना हो ना, डिजाइनर एक्सपेरिमेंट करता रहता है।
0: हाँ, और इसी प्रोसेस में इनोवेशन डेवलप होती है।
1: तो भाई देखो भाई, अगर कोई यंग लिसनर आज हमें सुन रहा है ना और वो ये सोच रहा है कि भाई मेरा आइडिया परफेक्ट

0: नहीं, इसलिए मैं इसे स्टार्ट ही नहीं करूंगा. तो शायद 3D प्रिंटिंग की दुनिया उसे ऑपोजिट लेसन देती है.
1: स्टार्ट करो, टेस्ट करो, गलती से सीखो और इम्प्रूव करो भाई. इनोवेशन का मतलब हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट होना नहीं होता. इनोवेशन का मतलब है बेटर आंसर ढूंढते रहना.
0: और शायद इसीलिए 3D प्रिंटिंग सिर्फ एक मशीन नहीं है, आप कह लें कि ये एक माइंडसेट भी रिप्रेजेंट करता है.
1: एग्जैक्टली. और चलिए इसी बात के साथ अब हम अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गए हैं.
0: तो भाई फाइनल डिस्कशन एंड साइन ऑफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं. साथियों देखें, आज हमने 3D प्रिंटिंग और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें की. मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगी भाई. और मुझे तो आज के जमाने में जैसे हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि हमने तो ऑनलाइन ये बच्चों के खिलौने वगैरह बनते हुए देख लिए हैं भाई.
1: देखे
0: मार्केट में सेल हो रहे हैं वो. शो पीसेस बना रहे हैं लोग.
1: अब तो डिमांड ही उन्हीं की है.
0: हाँ.
1: और हमने देखा कि कैसे 3D प्रिंटिंग जो है वो सिर्फ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का मेथड नहीं है, ये एक ब्रॉडर चेंज का भी पार्ट है सफा, जहाँ डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजिंगली डिजिटल, फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज्ड हो रही है.
0: ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग की जो जर्नी है ना, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का जर्नी आप अगर इमेजिन करें तो वो ये हो सकता है कि आप कह लें कि आइडिया, फैक्ट्री, प्रोडक्शन और फिर प्रोडक्ट.
1: जबकि डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की पॉसिबल जर्नी हो सकती है आइडिया, डिजिटल डिजाइन, प्रोटोटाइप, टेस्ट, इम्प्रूव और फिर प्रोडक्ट.
0: और भाई इस डिफरेंस का इम्पैक्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है.
1: हाँ, एक यंग डिजाइनर को हर आइडिया टेस्ट करने के लिए इमीडिएटली लार्ज प्रोडक्शन फैसिलिटी की जरूरत नहीं हो सकती. पहले प्रोटोटाइप क्रिएट किया जा सकता है और फिर आगे काम.
0: अच्छा, एक स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करके उसे टेस्ट कर सकता है, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है.
1: हाँ, और एक स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट को मास प्रोडक्शन से पहले एक्सपेरिमेंट कर सकता है.
0: अच्छा, और एक आप कह रहे हैं एक और चीज ये कि एक कस्टमर के लिए फ्यूचर में प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना इजियर हो सकता है.
1: लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह 3D भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करती है.
0: फॉर एग्जाम्पल, क्या 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग को जेन्युइनली मोर एक्सेसिबल बनाएगी?
1: क्या ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का नेचर चेंज होगा?
0: प्रिंटिंग मटेरियल्स और वेस्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा?
1: डिजिटल डिजाइन का ओनरशिप किसके पास होगा? अगर किसी ने एक डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन क्रिएट किया और कोई दूसरा पर्सन उसी फाइल को यूज करके प्रोडक्ट बना ले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या होगा?
0: और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल अमिता, अगर ऑलमोस्ट एनीवन किसी ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है तो सेफ्टी कैसे इंश्योर होगी?
1: एग्जैक्टली. टेक्नोलॉजी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. सिर्फ कुछ क्रिएट कर सकना इनफ नहीं है, हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि जो क्रिएट कर रहे हैं वो सेफ, यूजफुल और रिस्पॉन्सिबल हो.
0: और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है भाई. देखें, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है, मैं ये बात मानती हूँ. लेकिन मटेरियल्स, एनर्जी यूज और वेस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता.
1: बिल्कुल. फ्यूचर इनोवेशन का मतलब सिर्फ कैन वी मेक इट नहीं होना चाहिए, सवाल ये भी होना चाहिए शुड वी मेक इट, हाउ शुड वी मेक इट और इसका इम्पैक्ट क्या होगा.
0: अच्छा, मुझे लगता है कि आज की डिस्कशन का सबसे पावरफुल आइडिया यही है कि मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन चेंज हो रही है अमिता,
1: और शायद रियल रेवोल्यूशन प्रिंटर खुद नहीं है.
0: मुझे लगता है रियल रेवोल्यूशन ये आइडिया है कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से नहीं, एक डिजिटल फाइल से भी स्टार्ट हो सकती है.
1: एक आइडिया जो कल सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर था आज प्रोटोटाइप बन सकता है,
0: और प्रोटोटाइप कल एक प्रोडक्ट बन सकता है भाई,
1: और प्रोडक्ट कल एक बिजनेस बन सकता है,
0: और शायद वो बिजनेस किसी यंग एंटरप्रेन्योर का कोई फर्स्ट बिग आइडिया हो.
1: इसीलिए नेक्स्ट जेन का मैसेज सिंपल है, टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज मत कीजिए, उसे समझिए, एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कि आप खुद क्या क्रिएट कर सकते हैं.
0: और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आइडिया है, कोई इनोवेशन का किसी इनोवेशन कॉन्सेप्ट हो सकता है ना किसी के पास,
1: एग्जैक्टली,
0: या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा आइडिया है जो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से बेटर हो सकता है, तो चाहे तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज, और अगर चाहें तो हमारा सोशल मीडिया,
1: यस, FM 107 जो कि हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, उसमें भी आप अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं अपने नाम के साथ, और बताएं जरूर कि आप नेक्स्ट

0: और आप सुन रहे थे नेक्स्ट जेन हमारे FM 107 पर,
1: जहां हम बात करते हैं न्यू जनरेशन के आइडियाज की, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और स्किल्स की भाई।
0: तो अगली मुलाकात तक अपने आइडियाज को सिर्फ आइडियाज मत रहने दें,
1: उन्हें एक्सप्लोर करें, टेस्टिंग करें और मुमकिन हो तो रियलिटी में कन्वर्ट भी करें।
0: हाँ, तो हम कहेंगे कि स्टे क्यूरियस,
1: स्टे क्रिएटिव
0: और सबसे इम्पोर्टेंट,
1: कीप क्रिएटिंग।
0: चलिए इसी के साथ कहते हैं अल्लाह हाफिज
1: और मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107 दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: वो कौन सी बातें हैं जो एक शख्स को अजीम बनाती हैं? वो कौन से काम हैं जो एक शख्स को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं? जानना चाहोगे?
2: जानना चाहो।
1: अपने मैदाने अमल में कारनामे दिखाने वाले और अपने हौसलों से समुद्र का सीना चीरने वाले ऐसी ही अजीम शख्सियतों और जाबाजों की दास्तान लेकर आए हैं हम, इनकी जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डालने। सुनिए स्टोरीज अनटोल्ड एफ और अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: झुर्रियों में छुपी कहानियां, बच्चों की आंखों में नई उड़ान, मिलकर लिखती है जिंदगी की नई दास्तान। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, कैसे हैं आप सब? हाँ, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और अनटोल्ड स्टोरीज में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका इंट्रोडक्शन आपको विकिपीडिया जैसी साइट्स में भी नहीं मिलेगा, मतलब उनके नाम की एंट्री वहां पर भी नहीं है। पर ये वो शख्सियत है जिन्होंने ह्यूमैनिटी को अपने सेल्फलेस लव से पूरी तरह से बदल दिया है। वेल, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्स हैं और इनका नाम है अल्बेरो वर्गास, जो कि कोलंबिया से हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही बुजुर्गों की देखभाल और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने गार्जियन एंजल्स नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें बच्चों को बुजुर्गों के साथ समय बिताने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए अल्बेरो ने बुजुर्गों और बच्चों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद की है, जिससे दोनों को काफी फायदा हुआ। अल्बेरो वर्गास का काम हमें ये याद दिलाता है कि उम्र कोई भी हो, हम सभी दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने इस एंटायर सोसाइटी में पॉजिटिव थिंकिंग से बदलाव ला सकते हैं। यस, तो आज अल्बेरो वर्गास की कहानी आप सुनेंगे हमारी जुबानी अनटोल्ड स्टोरीज में। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम वेलकम वंस अगेन मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज अनटोल्ड स्टोरीज में हम बात कर रहे हैं अल्बेरो वर्गास की जो कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लोगों को ये बताया कि आपके पास जो भी है आप उससे लोगों की मदद कर सकते हैं अगर पैसे नहीं है तो थोड़ा वक्त देकर भी और इस तरह से सोसाइटी को बेहद खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया जहां पर इनका मैसेज वर्ल्ड फेमस होते जा रहा है तो शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर अल्बेरो वर्गास की जिंदगी में इतना बदलाव आया कैसे सो अल्बेरो के माता पिता ये नॉर्दर्न सैंटांडर पोर्टो विल्चेस में रहते थे और वहां पर खेती किसानी करके अपने परिवार का पोषण करते थे लेकिन इनके गांव में कुछ ऐसे ग्रुप्स आ गए जहां पर वायलेंस शुरू हो गया तो अल्बेरो के माता पिता को अपने एंटायर फैमिली के साथ बुकारामंगा आना पड़ गया और वहां पर एक छोटी सी बस्ती में इन्होंने फिर से शुरुआत की जिंदगी की कठिनाइयां स्ट्रगल्स चलती चली जा रही थी लेकिन अल्बेरो के मॉम डैड पीछे नहीं हट रहे थे उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें कैसे भी करके अपने बच्चों की अपने परिवार की देखभाल करनी है पर अल्बेरो की जो माँ थी वो एक्चुअली सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही

0: अल्बेरो के लिए। तो अल्बेरो की माँ जो कि खेती किसानी करती थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें खेतों में काम करने वाले जानवरों के बारे में भी पता था, और जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो कैसे उनकी टेक केयर करना, ये सब उन्हें आता था। तो कहा जाए अल्बेरो की माँ जो थी वो सेल्फ टॉट नर्स थी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जानवरों को और लोगों को दोनों को ही ठीक करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में अल्बेरो की माँ लोगों की मदद करना शुरू कर चुकी थी। उन्होंने अपने बच्चों में बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज खोद खोद के डाली हुई थी, यानी कि दो चीज जो अल्बेरो की माँ ने सिखाई थी, पहली कि जिंदगी में आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना मत भूलना, और दूसरा जैसे भी हो सके गरीबों की या जरूरतमंदों की मदद करना।
1: Son of Eliezer Vargas and Ismenia Romero, the seventh of eight children, was raised with toughness and discipline, but also with many values. His mother, leading by example, taught him the solidarity, responsibility, generosity and love for the people, fundamental aspects that led him to form a firm and solid personality.
0: जब अल्बेरो 6 साल के थे तो उनके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी उनके साथ आकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि मेडिकल का खर्चा उठाने के लिए उतने पैसे नहीं थे, तो अल्बेरो की माँ दिन रात एक करके उनके दादाजी की टेक केयर करती थी, उनका ख्याल रखती थी। अल्बेरो जब अपनी माँ को देखते थे तो वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते थे, और उन्हें लगता था कि मुझे मेरी माँ की तरह बनना है। तो वो भी अपने दादाजी को पूरी तरह से असिस्ट करते थे, उनकी हेल्प करते थे, उन्हें कॉफी ला के देना, उनके साथ लिखना पढ़ना, उनसे बातें करना, कहानियां सुनाना। इस तरह से अल्बेरो और उनके दादाजी का रिलेशन काफी डीप हुआ। धीरे धीरे वक्त बढ़ते जा रहा था और अल्बेरो की जिंदगी का जो सबसे बड़ा कमिटमेंट या यूं कहें सबसे बड़ा मिशन उनके दादाजी से शुरू हुआ, जब उन्हें लगा कि उन्हें बुजुर्गों की मदद करनी है, उनका ख्याल रखना है। कुछ समय के बाद अल्बेरो के दादाजी चल बसे, और जब ये किस्सा हुआ तो अल्बेरो बहुत उदास हुए। उन्हें लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब उनका कोई ना कोई और दोस्त तो बनना चाहिए। तो वो अपने पड़ोस में निकल पड़े और जाकर ढूंढने लगे ऐसे बुजुर्ग लोगों को जो उनसे दोस्ती करें और उनसे बातचीत करें। पर क्योंकि जिस लोकेलिटी में ये रहते थे वहां पर क्राइम रेट बहुत था और ये छोटे बच्चे थे, तो जाहिर सी बात है लोग इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। अब क्योंकि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो अल्बेरो से बात ही नहीं करना चाहते थे। पर अल्बेरो भी ढीठ थे, उन्होंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी के बाद कोई ना कोई तो उनका दोस्त बनेगा। वो रोज उनसे मिलने जाते, सारे बुजुर्गों से उन्हें कहानियां सुनाते, उनके साथ मिलकर प्रेयर करते, और ऐसे जब वो रोज आना जाना करते रहे तो कम से कम 20 बुजुर्गों ने अल्बेरो को अपना दोस्त बना लिया, और उस वक्त अल्बेरो सिर्फ 8 साल के थे। लेकिन 20 बुजुर्गों के साथ दोस्ती करने के बाद अल्बेरो को ऐसा लगा कि वो हर किसी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, हर किसी को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, हर किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि स्कूल में लीडरशिप और गवर्नेंस पर काफी कुछ पढ़ाया गया है, तो क्यों नहीं स्कूल के ही अपने दोस्तों को बुलाकर एक छोटा सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप बना लेता हूँ, और हर किसी को एक एक काम दे दूंगा। कोई रिकॉर्ड्स की डायरी बना लेगा, कोई इन सारे बुजुर्गों को विजिट करने की प्लानिंग कर लेगा, और इससे ऐसा होगा कि हर एक बुजुर्ग को वक्त भी मिलेगा और अटेंशन भी मिलेगा। वाह, कोई सोच सकता है कि इतना छोटा बच्चा जो कि 9 साल का भी नहीं है, उसने इतनी बड़ी सोच रखी और ऐसे प्लानिंग की। तो अब ये छोटे छोटे बच्चे जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन चुके थे, इन्होंने बुजुर्गों की मदद करना शुरू कर दिया, उनसे मिलना शुरू कर दिया, उन्हें जिस भी चीज की जरूरत थी किसी ना किसी तरह से उन तक ये पहुंचाया करते थे। वैसे अब अल्बेरो की बात और इसकी कहानी एक जर्नलिस्ट की नजर में आई जो कि वैंगोडिया लिबरल से थे, और उन्होंने इनकी स्टोरी छाप दी, जिसकी वजह से काफी लोगों ने अल्बेरो को डोनेशन दिए।
1: अल्बेरो's good deed became known in 1988 thanks to a journalist named Euclides Ardila of a local newspaper called Vanguardia Liberal, who interviewed him and asked him

0: about his ideas and goals and announced to all Bucaramanga the sense of humanity and simplicity of a child living in a poor and outcast neighborhood called Regadero. During this interview, Albeiro was baptized as the Angel of the North. The news flew so fast that more than 8,000 kilometers away from Colombia, in France, a journalist called Tony Comiti decides to find and live the experience of Albeiro. For a few days, he goes into north of the city and becomes Albeiro's shadow, recording every step, every moment, capturing it in a very meaningful documentary titled The Little Angel of Colombia.
1: वैसे इस डोनेशन से इनका काम तो हो रहा था, लेकिन डोनेशन बहुत कम थे। तो एक बड़े अमाउंट की इनको तलाश थी, जिसके चलते ये अपने बुजुर्गों की हेल्प कर सके। तो ये कहानी अल्बेरो वर्गास की आगे बढ़ती गई और कैसे अल्बेरो वर्गास का फाउंडेशन एंड द गार्जियन एंजल्स बना, चलिए आपको बताते हैं। तो अल्बेरो महज 14 साल के थे और इतनी छोटी उम्र में इनके काम की बात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंची और हर किसी का अटेंशन इन पर आ गया। फ्रेंच एम्बेसी से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की बात हुई और कहा कि जब अल्बेरो 18 साल के हो जाएंगे उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा। लेकिन अल्बेरो ने जब ये सुना तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं, 18 साल होने में तो अभी मुझे और 4 साल लगेंगे, और ऐसा अगर हुआ तो जो मेरे बुजुर्ग हैं वो शायद ठंड और भूख से चल बसेंगे।
0: अल्बेरो वार्गास हैड नो मनी एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड, नॉट इवन एज। हाउएवर, नथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्टार्टिंग एंड कंटिन्यूइंग विद कोरेज। Yesterday was a corner in a poor house, a street, a park. Now it's a work done, a dream made real that he thoroughly enjoys, but yet an unfinished task.
1: ये सुनने के बाद लोगों के दिलों में एक सनसनी सी दौड़ गई और फिर स्पेशल अरेंजमेंट्स हुए जिससे अल्बेरो को सपोर्ट किया गया। अब 14 साल की उम्र में अल्बेरो को बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने थे। तो बुकारामंगा में एक ऐसा घर था जो खाली पड़ा था, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था। उस घर को अल्बेरो ने ट्रांसफॉर्म किया ओल्ड एज होम में, और जितने भी एल्डरली इंडिविजुअल्स थे, जितने भी बुजुर्ग थे, उनको वहां पर रखा। और इस तरह से अल्बेरो की एंजल्स कस्टोडियस फाउंडेशन की शुरुआत हुई, जहाँ पर लगभग 500 बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है और ये बुजुर्ग वहीं रहते हैं।
0: The guardian angels for Albeiro Vargas Foundation are a symbol of life and hope. They are the staff and the guide for the grandparents. The reason for this work is the love and commitment, along with a group of professionals. And they learn simple things from the experiences and stories of the teachers of life. The guardian angels have the mission to guide, to help, to support the activities of the grandparents.
1: In fact, इस foundation के जरिए अल्बेरो और उनकी team, जो caregivers होते हैं, यानी कि जो nursing homes में काम करते हैं, उनको भी training देते हैं कि कैसे बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है। देखा जाए अब तक 56 nursing homes जो कि Santander में हैं, वहाँ पर इन्होंने caregivers को train किया है। वैसे अल्बेरो का ये जो गार्जियन एंजल्स फाउंडेशन है, इसमें लगभग 90 स्टाफ मेंबर्स हैं।
0: A more convenient infrastructure that allows him to provide more comprehensive and specialized care 24 hours a day for more grandparents with the help of a group of professionals in areas like gerontology, medicine, physiotherapy, psychology, social work, occupational therapy, न्यूट्रिशन एंड मोर।
1: और अल्बेरो मेक श्योर करते हैं कि हर एक बुजुर्ग का इंडिविजुअली ख्याल रखा जाए, उनकी देखभाल की जाए, उनकी बातों को, उनकी कहानियों को सुना जाए। इनफैक्ट उनके लिए जो केयर पॉलिसीज होती हैं, उस पर ये काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो नर्सिंग होम्स हैं, उनकी सपोर्ट के लिए नेशनल टैक्स का एनफोर्समेंट हो सके। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता को अकेला छोड़ दिया है, उन पर लीगल एक्शंस लिए जा सके। सो यस, ये है अल्बेरो वर्गास जिन्होंने कमाल की कोशिशों से आज

इन बुजुर्गों को उनका घर दिया। कुछ और भी बातें हैं अल्बेरो वर्गास के बारे में जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता अनटोल्ड स्टोरीज में आज हम बातें कर रहे हैं द गार्जियन एंजल अल्बेरो वर्गास की तो जनाब अल्बेरो वर्गास की जर्नी जो अभी हमने सुनी आई एम वेरी श्योर कि आपने एक चीज तो समझी होगी कि ये शख्स ऐसा है ये क्या दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा हो सकता है अगर उसके अंदर पक्का इरादा हो और स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो दुनिया को आसानी से बदला जा सकता है वैसे अगर अल्बेरो के बचपन से लेकर अब तक का सिनेरियो देखें तो अल्बेरो का कहना है कि एक चीज जो मुझे बनाती है डिफाइन करती है वो है मेरा परसिस्टेंस और साथ ही साथ मेरा स्ट्रॉन्ग विल पावर क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानता और इसी वजह से आज आगे बढ़ते जा रहा हूँ और बुजुर्गों की मदद करते जा रहा हूँ उनके राइट्स के लिए लड़ते जा रहा हूँ और कहते हैं कि यही वो चीज़ है जो दुनिया को बदल सकती है और ये भी है ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है तो अगर ऐसा कोई विचार किसी के मन में है तो जब आपके दिल में इच्छा होगी तो इसे पूरे करने की हिम्मत भी होगी और जब हिम्मत आ जाएगी तो वो काम डेफिनेटली पूरा हो जाएगा
2: अल्बेरोस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओल्डर एडल्ट्स ट्रांसेंड्स एंड थिंकिंग ऑफ द सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन He created a strategic support unit, Ruitoque Casa Mayor, the first Colombian Eastern Gerontology Center.
1: So, Alberto Vargas ka the Guardian Angel Foundation, 1992 mein formally established hua. Aur Alberto aur unki entire team ke selfless love se, commitment se, ye jo organization hai, ye jo foundation hai, ye flourish hote ja raha hai. Aur inki mehnat se, हजारों बुजुर्गों की जिंदगियां संवरी हैं और आगे भी संवरती रहेंगी
2: This is possible thanks to the contribution and support of all of you. It is a cause that demands considerable sacrifices and generosity. An example of solidarity are the friends of France who for more than 20 years have joined unconditionally through Voices for Alberto Vargas Foundation led by Patrick Bouglot. Through which are regularly received donations and corporate growth opportunities.
1: So hats off to Alberto Vargas, jinki kahani aaj untold stories mein hum aap tak lekar aaye. Aur aapko aaj ka hamara show kaisa laga? Aap humse zarur share karein. 666-22107 par 666-22107 par. Aur chahe to hamara social media platform hai FM 107 ka. उसके जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने आरजी अमिता को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढूंढ सकते हैं अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाजत आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और हाँ बने रहिए एफएम 107 पर दिल से देसी

0: खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
1: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
0: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें।

0: तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, वो है वेट और हेल्दी वेट। आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ वेट लॉस टिप्स जो हैं वो नज़र आती हैं। कोई कहता है ब्रेकफास्ट छोड़ दें, कहीं नज़र आता है कि सिर्फ एक फूड खाइए, कोई बहुत कम कैलोरीज का मशवरा देता है, कोई चंद रोज में बहुत ज़्यादा वेट लॉस का दावा करता है, लेकिन हेल्थ का मकसद सिर्फ स्केल पर एक नंबर कम करना नहीं है। हेल्दी वेट का मतलब क्या है ये हमें समझना ज़रूरी है। हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ है, उसमें उम्र है, कद है या जिंस है, उसमें लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, मसल मास और जो हेल्थ कंडीशंस हैं, सब हमारे वजन पर असर अंदाज होते हैं। इसलिए सिर्फ वजन देखकर किसी शख्स की मुकम्मल सेहत का फैसला नहीं किया जा सकता। अब ये कि आजकल जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर बहुत आम है कि चंद दिनों में इतना ज़्यादा वेट जो है वो रिड्यूस आप कर सकते हैं या क्रैश डाइट जो है वो आप कर सकते हैं, तो ये क्यों बहुत बड़ा मसला बन जाती है? क्योंकि बहुत सख्त डाइटिंग से बस अफराद को शुरू में वेट कम होता नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसी डाइट्स को लंबे अरसे तक मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से एनर्जी कम हो सकती है और बाज़ अफराद में बाद में ओवर ईटिंग भी हो सकती है। इसलिए जो सस्टेनेबल हैबिट्स हैं वो अपनाना बेहद अहम है। अपने जो खाने की प्लेट है उसे आप बेहतर बनाइए। खाने की प्लेट में सब्जियां शामिल कीजिए, मुनासिब मकदार में प्रोटीन लीजिए और इसी तरह से होल ग्रेन्स या न्यूट्रिशंस कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेज हैं वो आप लीजिए और जो पोर्शन साइज है उस पर तवज्जो देना बेहद

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। आज हम बात करेंगे कतर की एक बहुत अहम रिवायत अरबी कॉफी यानी कहवे के बारे में। कहवा सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि मेहमान नवाजी, एहतराम और गुफ्तगू का आगाज है। कतर में जब कोई मेहमान मजलिस में आता है तो अक्सर उसे खजूर के साथ कहवा पेश किया जाता है। मेहमान के आने से पहले ही कॉफी छोटे फंजान तैयार कर लिए जाते हैं। अरबी कॉफी आमतौर पर हल्के भुने हुए कॉफी बीन्स से तैयार की जाती है। बीन्स को पीसा जाता है और फिर पानी के साथ पकाकर इसमें इलायची शामिल की जाती है। कुछ घरानों में जाफरान, लौंग या दूसरे मकामी अज्जा भी डाले जाते हैं। इसीलिए हर खानदान के कहवे में एक अलग खुशबू और जायका महसूस होता है। कतरी घरानों में कहवा बनाने का तरीका सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि एक हुनर होता है। कॉफी के दाने चुनने से लेकर उन्हें भूनने और पीसने तक का हर मरहला तवज्जो का मुतालबा करता है। कुछ बुजुर्ग खुद बीन्स भूनना पसंद करते हैं ताकि खुशबू और रंग उनकी पसंद के मुताबिक हो। कहवा अरबी कॉफी पॉड यानी तला में पेश किया जाता है। तला अपनी खास शक्ल और लंबी नाक की वजह से आसानी से पहचाना जाता है। इसे कॉफी को छोटे बगैर हैंडल वाले कप यानी फंजान में डाला जाता है। कप आमतौर पर छोटा भरा जाता है ताकि कॉफी गर्म रहे और मेहमान को दोबारा पेश की जा सके। कहवा के आदाब में सबसे अहम बात मेहमान का एहतराम है। अक्सर मेजबान या घर का छोटा फर्द कॉफी पेश करता है। कप दाएं हाथ से देना और लेना रिवायती आदाब का हिस्सा है। बड़े या मौजूद मेहमान को पहले पेशकश की जाती है फिर दूसरे लोगों को। मेहमान अगर और कॉफी चाहता हो तो वो कप मेजबान की तरफ बढ़ा सकता है और जब वो मजीद ना लेना चाहे तो आमतौर पर कप को हल्के से दाएं बाएं हरकत देता है। ये खूबसूरत इशारा है जो लंबी गुफ्तगू के दरमियान भी बगैर ज्यादा अल्फाज के समझा देता है कि मेहमान का शुक्रिया अब काफी है। रिवायत की तफसील घर और इलाके के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। कहवे का ताल्लुक मजलिस से भी गहरा है। मजलिस सिर्फ बैठने की जगह नहीं बल्कि मशवरे, मुलाकात और गुफ्तगू का मरकज रही है। पुराने जमाने में इलाकाई खबरें, खानदानी फैसले, मेहमानों का इस्तकबाल और अहम बातें अक्सर कहवे के गिर्द होती थी। यानी एक छोटा सा फंजान लोगों को सिर्फ जगाता नहीं था बल्कि उन्हें बातचीत का मौका भी देता था। कहवे के साथ खजूर पेश करना भी निहायत मशहूर है। खजूर की फितरी मिठास कॉफी की हल्की कड़वाहट के साथ अच्छा तवाजुन बनाती है। दोनों मिलके कतर की मेहमान नवाजी की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां जायका, अदब और मुलाकात एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जदीद कतर में कॉफी की दुनिया बहुत वसी हो चुकी है। नए कैफे मुख्तलिफ किस्म की कॉफी पेश करते हैं और कुछ जगह कहवे को ठंडे या नए अंदाज में भी तैयार किया जाता है। लेकिन छोटा फंजान, दल्ला, इलायची की खुशबू और मेहमान के लिए पहली पेशकश वाली रिवायत अब भी अपनी जगह कायम है। कहवा हमें सिखाता है कि मेहमान नवाजी हमेशा बड़े तोहफों से नहीं होती। कभी छोटे छोटे फंजान में पेश की गई गर्म कॉफी भी बहुत गहरा पैगाम देती है। आप हमारे लिए मौजूद हैं और आपके लिए हमारे पास वक्त है। इसलिए जब आप अगली बार कतर में अरबी कॉफी पिए तो इसे सिर्फ एक मशरूब समझ के ना पिए। इसमें खुशबू के साथ कदीम रिवायत, मजलिस की गुफ्तगू, खानदानी हुनर और मेहमान के लिए दिल से की गई पेशकश भी शामिल होती है। आज के कल्चर मोमेंट का खुलासा यह है कि कहवा कतर में एक कप कॉफी से बढ़कर इज्जत और राब्ते की जिंदा अलामत है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
2: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107, दिल से देसी।

आज हम बात करेंगे इंडियन हॉकी के एक ऐसे लेजेंड की जिनका नाम सिर्फ ओलंपिक मेडल से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, एलिगेंस और अटैकिंग हॉकी से जुड़ा हुआ है। यहाँ दोस्तों नाम है जफर इकबाल, वो खिलाड़ी जिन्हें हॉकी की दुनिया में जेंटलमैन ऑफ हॉकी के नाम से भी याद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं एफएम 107 और आज स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में हम बात करेंगे जफर इकबाल के बारे में। 12 जून 1956 को बिहार में पैदा होने वाले जफर इकबाल ने इंडियन हॉकी के उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब टीम में एक तरफ पुरानी हॉकी की आर्टिस्ट्री थी और दूसरी तरफ गेम रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा था। ग्रास यानी घास के मैदान से एस्ट्रोटर्फ यानी सिंथेटिक टर्फ की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था और हॉकी ज्यादा फास्ट और फिजिकली डिमांडिंग बन रही थी। जफर इकबाल एक लेफ्ट फॉरवर्ड थे यानी ऑन द लेफ्ट विंग में खेलते थे जहां उनकी पोजीशन बॉल कंट्रोल, स्पीड, पासिंग और अटैकिंग इंटेलिजेंस की जरूरत होती है और उनका इंटरनेशनल करियर 1970 के आखिर में उभर कर सामने आया। उन्होंने 1978 के ब्यूनस आयर्स वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जहां टीम डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर गई थी। लेकिन जफर इकबाल के करियर का सबसे यादगार चैप्टर था 1980 का मॉस्को ओलंपिक्स। मॉस्को जाने वाली भारतीय टीम बहुत यंग थी और उस वक्त इंडिया के पास एस्ट्रोटर्फ पर ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। हॉकी इंडिया के रिकॉर्ड के मुताबिक जफर इकबाल उस हिस्टोरिक स्क्वाड का हिस्सा थे जिसने स्पेन को फाइनल में 3-4 चार गोल से शिकस्त देकर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। यह इंडिया का हॉकी में 8th गोल्ड मेडल था और अब तक समर ओलंपिक्स में इंडिया का आखिरी गोल्ड मेडल भी यही है। 1980 के बाद इंडिया ने गोल्ड मेडल नहीं जीता। हाँ, 2020-2024 में इंडिया पोडियम में वापस जरूर आए लेकिन इंडिया को दोनों बार ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल हुए। जफर इकबाल ने बाद में याद किया कि मॉस्को फाइनल स्पेन के खिलाफ बहुत टफ था। इंडिया को मैच के आखिरी मोमेंट्स में मजबूत डिफेंस करना पड़ा लेकिन टीम ने प्रेशर को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल किया था और पोडियम पर गोल्ड मेडल के साथ खड़ी हुई। सोचिए दोस्तों, एक नौजवान

1980 के बाद भी उनका इंटरनेशनल करियर जारी रहा। उन्होंने 1978 और 1982 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल्स जीते और 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच उनकी फेवरेट मेमोरीज में शामिल है। इंडिया मैच में 3-0 से पीछे था, लेकिन कमबैक करते हुए 4-5 से फतेह हासिल। और फिर आया 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। इस बार जफर इकबाल सिर्फ खिलाड़ी नहीं था।

चिप का मतलब सिर्फ मेडल्स नहीं होता। जफर इकबाल का करियर इस बात की मिसाल है कि एक खिलाड़ी अपने गेम बिहेवियर और प्रोफेशनलिज्म से भी लीगेसी क्रिएट करता है। इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट के बाद भी उनका कनेक्शन इंडियन हॉकी के साथ खत्म नहीं हुआ। वो कोचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए गेम की खिदमत करते रहे और हॉकी इंडिया के मुताबिक वो फॉर्मर चीफ नेशनल कोच भी रहे और उनकी कोचिंग में इंडिया ने 1994 हिरोशिमा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। दैट्स एन यूनिक अचीवमेंट। जफर इकबाल की कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिलाती है दोस्तों कि लेजेंड सिर्फ वो नहीं होते हैं जो ट्रॉफीज जीतते हैं, लेजेंड्स वो होते हैं जो अपने दौर के गेम को समझते हैं, बदलते हुए वक्त के साथ अडाप्ट करते हैं और अगली जनरेशन के लिए एक मिसाल छोड़ जाते हैं। जफर इकबाल ओलंपिक चैंपियन, फॉर्मर कैप्टन, कोच और इंडियन हॉकी के एक ट्रू जेंटलमैन। और शायद इसीलिए जब इंडियन हॉकी के गोल्डन एरा का जिक्र होता है, जफर इकबाल का नाम हमेशा इज्जत और फख्र के साथ लिया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है मनी मिस्टेक्स पेरेंट्स एक्सीडेंटली टीच देयर किड्स। पेरेंट्स बच्चों के सबसे पहले टीचर होते हैं, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसीलिए मनी हैबिट्स सिर्फ लेक्चर से नहीं बल्कि डेली एक्शन से ट्रांसफर होती है। अक्सर पेरेंट्स अच्छी नीयत से काम करते हैं लेकिन कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स अनजाने में अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। पहले, पैसा दरख्तों पर नहीं उगता, कहना मगर एक्सप्लेन ना करना। कई पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ ये कहते हुए सुने गए हैं लेकिन वो ये नहीं समझा पाते कि पैसा अर्न कैसे होता है, सेव कैसे किया जाता है और इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। और नतीजा ये होता है कि बच्चे मनी को या तो डरने वाली चीज समझने लगते हैं या फिर उसके बारे में सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। फाइनेंशियल एजुकेशन फियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से शुरू होनी चाहिए। वहीं दूसरा एक और स्टेटमेंट, हर डिमांड को फौरन पूरा कर देना। जब भी बच्चा कोई टॉय, गैजेट या एक्सपेंसिव चीज मांगे और फौरन मिल जाए तो वो पेशेंस और वैल्यू को नहीं समझ पाता। रियल लाइफ में हर चीज इंस्टेंटली नहीं मिलती। बच्चों को वेट करना, सेव करना और प्रायोरिटी सेट करना सिखाना जरूरी है। वहीं पर सेविंग की इम्पोर्टेंस बताई। अगर पेरेंट्स खुद सैलरी आते ही तमाम पैसे खर्च कर देते हैं और सेविंग्स नहीं करते हैं तो बच्चा भी वही हैबिट अडॉप्ट करेगा ना। बच्चे देख कर सीखते हैं। अगर वो देखेंगे कि पेरेंट्स इमरजेंसी फंड्स और सेविंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उनकी सोच भी वैसे ही डेवलप हो। वहीं इमोशनल शॉपिंग ना करें। कुछ लोग स्ट्रेस, सैडनेस या फिर बोर्डम की वजह से शॉपिंग करते हैं। जब बच्चे ये देखते हैं कि हर इमोशनल प्रॉब्लम का सलूशन शॉपिंग है तो वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं। खुशी खरीदी नहीं जा सकती। शॉपिंग टेम्परेरी एक्साइटमेंट दे सकती है लेकिन परमानेंट सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं। वहीं एक और चीज, मनी डिस्कशंस बच्चों से कीजिए। कुछ पेरेंट्स समझते हैं कि मनी के बारे में बात करना जो बच्चे हैं उनसे मुनासिब नहीं, लेकिन जब बच्चों को फाइनेंशियल मैटर्स का बिल्कुल आइडिया नहीं देंगे तो वो अडल्टहुड में भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करेंगे। एज के मुताबिक मनी कन्वर्सेशन हर एज में की जानी चाहिए। क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी जैसा ट्रीट करना। अगर पेरेंट्स हर चीज क्रेडिट कार्ड से खरीदें मगर रिपेमेंट और बजटिंग के बारे में बात ना करें तो बच्चे समझ सकते हैं कि स्पेंडिंग की कोई लिमिट ही नहीं है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि विजडम से भी ग्रो होता है। और ग्रैटिट्यूड, जब बच्चों को हर चीज मिल जाए और अप्रिसिएशन की हैबिट ना हो तो वो चीजों की वैल्यू महसूस ही नहीं करते। ग्रैटिट्यूड फाइनेंशियल वेलबींग का हिस्सा है। जो लोग अपने मौजूदा ब्लेसिंग्स की कदर करते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल चॉइसेस करते हैं। बस आखिर में यही कहूंगी कि पेरेंट्स अक्सर जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में अपनी मनी हैबिट्स बच्चों तक पहुंचा देते हैं और शायद अनहेल्दी मनी हैबिट्स बच्चों तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ बच्चों को पैसा देना ही ना सिखाएं बल्कि मनी मैनेजमेंट भी सिखाएं। सेविंग सिखाएं, बजटिंग सिखाएं, पेशेंस सिखाएं, ग्रैटिट्यूड सिखाएं, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग ये सिखाएं। ये ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चों की पूरी जिंदगी को बेहतर बना देती हैं। याद रखिए, चिल्ड्रन मे नॉट ऑलवेज लिसन टू व्हाट पेरेंट्स से बट दे ऑलवेज लर्न फ्रॉम व्हाट पेरेंट्स डू। अगर पेरेंट्स हेल्दी मनी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए सिर्फ हेल्दी वेल्थ नहीं बल्कि फाइनेंशियल विजडम का भी विरासत छोड़ कर जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर अब आपसे वक्त हो गया कि इजाजत ली जाए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो

FM 107 presents Tech Update. Tech Update. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए पूरी अपडेट्स में हमने अभी तक आपको वेबसाइट्स बताई हैं, बहुत सारी खबरें भी दी हैं। अब जरा मैं सिर्फ खबरों के बारे में बात नहीं करूंगा, ना सिर्फ मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, मगर मैं उन मुद्दों के बारे में बात करूंगा जो आपके फ्यूचर से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके टेक वर्ल्ड पे असर डालने वाले हैं। तो आज मैं बहुत जरूरी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो इंपैक्ट डालेगी उन लोगों पर जो यूट्यूब पर अपना करियर देख रहे हैं। तो हम इस पूरी चीज को आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात सबसे जरूरी है वो ये है कि जो लोग यूट्यूब पर जाना चाहते हैं उनको अभी के अभी अकाउंट बना लेना चाहिए, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ। तो हमें अकाउंट बनाना भी है और अकाउंट का ध्यान रखना है कि उसे हमें एक नौकरी की तरह ट्रीट करना है। आई एम सॉरी टू ब्रेक इट डाउन, लेकिन ये कड़वा सच आपको ये घूंट पीना पड़ेगा। YouTube कैन नॉट बी योर टाइम पास अगर आप YouTube से कुछ कमाना चाहते हैं। फिर रियली रियली सीरियस कि मुझे कुछ अर्निंग चाहिए, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब। ये पहले बबल में लोगों का जो है बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये कि पहले जो था YouTube का मॉडल अलग तरीके से काम करता था। 4000 आवर्स पूरे कर रहे होते थे, 12 महीनों का वक्त होता था, 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज चाहिए होते थे या तो 90 दिनों में। लेकिन अब नई रिक्वायरमेंट फरवरी से आने वाली है, ये रिमाइंडर है। वैसे तो ये खबर लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन जिन तक नहीं पहुंची है जो अभी अकाउंट बनाने वाले हैं, तो नई रिक्वायरमेंट जो है वो लागू हो जाएगी 1 फरवरी 2027 से। अ लिटिल टाइम लेफ्ट, और इसकी जो नई रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि 8000 घंटे इन 365 डेज, मतलब बेसिकली एक साल के अंदर, या फिर 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज इन 90 डेज। और जो बेस लाइन रखी गई है सब्सक्राइबर्स की वो अभी भी 1000 ही रखी गई है। तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? देखिए इफेक्ट पड़ेगा नए क्रिएटर्स पे जो पूरी तरह से चाहते हैं कि मोनेटाइज कर लें, प्रीमियम अकाउंट बना लें पहले या बाद में फरवरी से, क्योंकि 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज लाना उससे पहले बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट इजी, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट यू कैन डू इट। दूसरी चीज, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पे भी, जो क्रिएटर्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं पार्टनर प्रोग्राम में इस डेट के आने से पहले, उनको भी अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो लो टीयर्स में जो फैन फंडिंग या शॉपिंग इन सब में आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ चीजें तोड़ मरोड़ के बताना चाहता हूँ, फिर स्टार्टिंग योर करियर इन यूट्यूब ऑन यूट्यूब व्हाटएवर। तो जब आप YouTube पे करियर शुरू करने वाले हैं तो आपको लोग दो तरीके का एडवाइस देंगे। नंबर वन एडवाइस जो मैं भी आपको दूंगा, अगर आपका कॉन्टेंट आप ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाला है तब तो आप 20-25 मिनट का डालें कि आपको इतना यकीन है, आपको भरोसा है अपने ऊपर कि 20 मिनट के अगर मैं कुछ अपलोड कर रहा हूं तो पीपल विल वॉच इट, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल गेट दोज 8000 आवर्स। वो जो 8000 घंटे पूरे करने का जो एक काम थमा दिया है YouTube ने, जो 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं अपना चैनल मोनेटाइज करना, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट। तो अगर ऐसा नहीं है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि मैं 20 मिनट का कॉन्टेंट दूंगा, तो आपको YouTube के शॉर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। वो जो एक मिनट का जो टाइमलाइन है, 30 सेकंड्स के अंदर, 40 सेकंड्स के अंदर अपने कंटेंट को अगर आप डिलीवर करने वालों में से हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, डू दैट, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। अभी से आप लग गए ना, जी जान लगा दिया आपने, तो कुछ वक्त नहीं लगेगा आपको उस लेवल पे पहुंचने पे जो आपने सोच रखा है। बट देन अगेन मैं पीछे फिर से जाना चाहूंगा उस बात पे जो मैंने पहले कही, YouTube पे अगर आप अपना करियर सोच रहे हैं, एंड दैट इंक्लूड्स मी आल्सो, मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ सिर्फ आपको नहीं दे रहा, मैं अपने आप को भी रिमाइंड करा रहा हूँ। इफ वी ऑल आर थिंकिंग YouTube एज अ करियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोई टाइम पास नहीं हो सकता, ये कोई सिर्फ हॉबी की तरह नहीं है। अगर YouTube से कमाना है, सिर्फ एंटरटेन नहीं करना है, देन यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ जॉब। Very, very simple. And quality और consistency. नौकरी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? YouTube को नौकरी मानने का मतलब है कि मैं भैया हफ्ते में 3 दिन आऊंगा, इन दिनों आऊंगा, इतने बजे आऊंगा। You have to deliver on क्या कहते हैं उसको, expectations। आप एक टाइमिंग सेट करते हैं, एक दिन सेट करते हैं, जैसे हम लोग अपनी नौकरी पे जाते हैं वैसा। इसमें और बात करता रहूंगा, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा 666-22-107 पर या फिर सोशल मीडिया FM 107 कतर। ये थी आज की टेक अपडेट, मिलते हैं अगले में, स्टे ट्यून्ड।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out. यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ. रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी बचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के आज़ाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत ये है कि तेरा रब लोगों की ज़्यादतियों के बावजूद इनके साथ चश्म पोशी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी, तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज के लिए उसके हाँ एक मकदार मुकर्रर है, वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम है, वो बुजुर्ग है और हर हाल में बाला तर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स खास जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसां हैं। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी व मददगार हो सकता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते उसकी हैबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसाओकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जब लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिर वाकई उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है।

तोड़ नहीं डालते। उनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है उन्हें बरकरार रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से अलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो उनकी अबदी कयामगाह होंगे। वो खुद भी उनमें दाखिल होंगे और उनके आबाओ अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो जो साले हैं वो भी उनके साथ वहां जाएंगे। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे, तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहक हुए हो। बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, जो उन राबितों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो जमीन में फसाद फैलाते हैं वो लानत के मुस्ताहक हैं और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फराखी बख्शता है और जिसे चाहता है नपातुला रिस्क देता है। ये लोग दुनियावी जिंदगी में मगन हैं, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं।